राधे तू बड़ भागिनी, कौन तपस्या कीन, तीन लोक तारन तरन सो तेरे आधीन।

0: सेवा से संकल्प जगे, संकल्प से हर जन जुड़े।
1: यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के 25 वर्षों के जनसेवा के संकल्प को आगे बढ़ाने के लिए कृत संकल्प है नए भारत का नया उत्तर प्रदेश।
0: स्वच्छता, स्वास्थ्य, सुरक्षा, शिक्षा, समृद्धि और सुशासन, प्रदेश सरकार आज हर क्षेत्र में रच रही है नया इतिहास।
1: तो आइए आप भी 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक सेवा संकल्प अभियान का हिस्सा बनिए, प्रदेश की विकास यात्रा में भागीदार बनिए।
0: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा जारी।
2: अगर आप अपने खास मौकों के लिए ढूंढ रहे हैं कुछ बेहतरीन गहने, तो आज ही आइए उत्सव ज्वेलर्स। यहाँ आपको मिलेंगे खूबसूरत कुंदन, पोल की नक्काशी और नागरी पर विशेष छूट।
3: हमारे यहाँ 25% डिस्काउंट डायमंड पर और 100% हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ पुराने सोने पर 100% वापसी भी की जाती है।
2: पता लाइन पार्क, प्रकाश नगर चौराहा, मुरादाबाद। मोबाइल नंबर 7055070552।

0: स्किन एलर्जी, मस से नाखून बालों की समस्या, टैटू हटाना, कार्बन लेजर फेशियल के लिए संपर्क करें डॉक्टर ऋचा गर्ग, यूनिवर्सल नेत्र एवं चर्म रोग, Z19 आशियाना 2, निकट विवेकानंद अस्पताल, मुरादाबाद, 7983153386।
1: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन, मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।

0: आवश्यक सूचना 400 केवी बरेली मुरादाबाद पारेषण लाइन NH24 बाईपास यूपी कॉरपोरेशन के मझोला 400 केवी उपकेंद्र तक जा रही है। पारेषण लाइन के निकट प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के साथ पतंगबाजी की जा रही है। पतंग का धागा तार को छूने पर तेज धमाके के साथ आग की चिंगारी निकलने से विद्युत आपूर्ति बाधित होती है। अगर कोई जानलेवा घटना होती है तो उसका उत्तरदायित्व पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का नहीं होगा। किसी भी जानलेवा घटना से बचाने के लिए पतंग उड़ाने से रोकें। निवेदक पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बरेली।
1: 25 से 29 सितंबर तक ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में सजेगा यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का महामंच।
2: जापान, रूस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम की साझेदारी से यूपी के कारोबार को मिलेगा वैश्विक बाजार, जिसमें होगी इंटरनेशनल बायर्स के साथ साथ देश के B2B और B2C खरीदारों की भागीदारी। डिफेंस, एरोस्पेस, AI और इलेक्ट्रॉनिक्स पर खास फोकस के साथ 27 से ज्यादा सेक्टर होंगे शामिल।
1: UPITSF बेहद खास, पूरी दुनिया अब यूपी के साथ।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी।
3: Hey, you're tuned into FM Moradabad 89.6 FM.

0: के तहत हमारे गांव में घर घर नल लगे, उसके बाद हमारी जितनी भी महिला और बहनें हैं उनके लिए बहुत सुविधा हुई है। मैं नरेंद्र मोदी जी का शुक्रिया अदा करना चाहती हूं।
1: वहीं आकांक्षी जिला चंबा के रहने वाले अजय शर्मा ने भी जल जीवन मिशन के तहत दुर्गम क्षेत्रों तक नल से जल पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री का आभार जताया है।
2: बहुत अच्छी बात जो वर्षा जल संग्रहण है, हमने भी इस प्रकार का टैंक बनाया। जब भी बारिश होती है टैंक के माध्यम से स्टोर हो जाता है और जब भी हमें जरूरत पड़ती है तो हम उस पानी का यूज कर लेते हैं।
1: भारत सरकार ने हिमाचल प्रदेश की कार्यक्षमता मूल्यांकन और पेयजल गुणवत्ता में बेहतर प्रदर्शन को लगातार प्रोत्साहित किया है और जल शक्ति मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2026-27 के तहत जल जीवन मिशन 2.0 के लिए प्रदेश को 258,07,00,000 रुपए की राशि का अस्थायी आवंटन किया है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
3: दिल्ली सरकार ने महिलाओं और ट्रांसजेंडर लोगों को सुरक्षित, साफ सुथरा और सम्मानजनक रोजगार का अवसर देने के उद्देश्य से दुर्गा योजना को मंजूरी दी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये फैसला कल नई दिल्ली में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया।
4: नई दिल्ली में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस योजना को स्वीकृति दी गई। इस योजना के पहले चरण में 1,300 गुलाबी इलेक्ट्रिक ऑटो आवंटित किए जाएंगे। इनमें से 1,170 ऑटो महिलाओं के लिए और 130 ट्रांसजेंडर लाभार्थियों को दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने बताया कि यह योजना महिलाओं और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को इलेक्ट्रिक ऑटो का मालिक और चालक बनने का अवसर प्रदान करेगी। उन्होंने कहा कि प्रत्येक राजस्व जिले में महिलाओं के लिए अधिकतम 90 और ट्रांसजेंडर लाभार्थियों के लिए 10 इलेक्ट्रिक ऑटो आवंटित किए जाएंगे। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि यह योजना दिल्ली को अधिक सुरक्षित, हरित और समावेशी शहर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। अक्षित के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के टैक्सी चालकों और किसानों के लिए दो बड़े कदम उठाते हुए भारत टैक्सी सेवा और मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना की शुरुआत की है। इस नई पहल के तहत दो पहिया, तिपहिया और टैक्सी चालक बिना किसी कमीशन के इस प्लेटफॉर्म से जुड़ सकेंगे और उन्हें 5,00,000 रूपए तक की सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाएगी।
5: भारत टैक्सी का संचालन लखनऊ, गोरखपुर, वाराणसी और प्रयागराज में शुरू हो गया है। लखनऊ हवाई अड्डे, लखनऊ मेट्रो और लखनऊ पुलिस सहित विभिन्न संस्थानों के साथ समझौता ज्ञापनों पर भी हस्ताक्षर किए गए हैं। प्रयागराज महाकुंभ 2025 का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि कैसे लाखों युवाओं ने रैपिडो के माध्यम से श्रद्धालुओं को संगम, रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट तक पहुंचाने में मदद की थी। दूसरी ओर मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि

0: योजना के अंतर्गत किसानों को बड़ी राहत दी गई है। उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम्य विकास बैंक द्वारा किसानों को दिए जाने वाले ऋण की ब्याज दर को 11% से घटाकर मात्र 6% कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि खेती और मशीनरी के लिए फंड की कमी ना हो, इसके लिए दीर्घकालिक ऋण की व्यवस्था की गई है, जिससे आने वाले समय में 5 लाख लघु और सीमांत किसानों को लाभान्वित करने का लक्ष्य है। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: पश्चिम बंगाल सरकार ने सरकारी वस्तुओं और सेवाओं की खरीद के लिए सरकारी ई मार्केट प्लेस जेम पोर्टल का प्रयोग अनिवार्य कर दिया है। इस कदम का उद्देश्य सरकारी खरीद में अधिक पारदर्शिता और दक्षता सुनिश्चित करने के साथ लागत में कमी करना है। इस बीच राज्य सरकार ने दुर्गा पूजा से पहले कर्मचारियों के बकाया महंगाई भत्ते का एकमुश्त भुगतान करने का फैसला भी किया है। वित्त विभाग ने बताया है कि अप्रैल 2008 से दिसंबर 2015 तक 7 साल की अवधि का महंगाई भत्ता बकाया सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के अनुसार पूरा दिया जाएगा। इसका भुगतान इस महीने के अंत तक किए जाने की उम्मीद है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
2: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। वित्त मंत्रालय ने बताया है कि ग्राहकों की सुविधा के लिए सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक रविवार 27 सितंबर को खुले रहेंगे। मंत्रालय ने कहा है कि ये कदम यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस द्वारा 28 से 30 सितंबर तक प्रस्तावित 3 दिन की राष्ट्रव्यापी बैंक हड़ताल को देखते हुए उठाया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी बैंक शाखाओं, कार्यालयों, एटीएम से जुड़ी शाखाओं और करेंसी चेस्ट को रविवार को पूरी तरह चालू रखने को मंजूरी दी है। वित्त मंत्रालय ने बताया है कि सरकार और बैंक प्रबंधन ने यूनियनों से प्रस्तावित हड़ताल टालने की अपील की है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने सेंट लूसिया के विदेश मंत्री अल्वा बैप्टिस्ट के साथ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार के मुद्दे पर विकासशील देशों के अंतर क्षेत्रीय समूह की परामर्श बैठक की सह अध्यक्षता की। बैठक को संबोधित करते हुए डॉ जयशंकर ने कहा कि दुनिया में हो रहे अभूतपूर्व बदलावों का सबसे अधिक असर विकासशील और अल्पविकसित देशों पर हो रहा है और संयुक्त राष्ट्र इन अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतर पा रहा है। उन्होंने कहा कि मौजूदा संघर्षों और अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा के लिए खतरों से निपटने में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की असमर्थता केवल तत्काल सुधार की आवश्यकता को उजागर करती है। भारत ने ओमान के पूर्वी तट के पास वाणिज्यिक पोत MV केप डाउ पर कल हुए हमले की निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि पोत पर सवार 20 भारतीय नाविकों में से 19 को सुरक्षित बचा लिया गया है, जबकि एक भारतीय नागरिक की मृत्यु हो गई है। राजस्व आसूचना निदेशालय ने सीमा सुरक्षा बल BSF के साथ मिलकर बांग्लादेश से तस्करी कर लाया गया 12 किलोग्राम सोना जब्त किया है। वित्त मंत्रालय ने बताया है कि भारत बांग्लादेश सीमा पर होने वाली सोने की तस्करी पर लगाम लगाने के लिए कई बड़ी कार्रवाई की गई है। मंत्रालय ने बताया है कि बिहार और बंगाल की बांग्लादेश से लगी सीमा पर लगभग 17 करोड़ रुपए मूल्य के 12 किलोग्राम विदेशी सोना जब्त किया गया है। और अब खेल खबरों के साथ हैं सिद्धार्थ सिंह।
3: खेल खबरों की शुरुआत एशियाई खेलों से, जहां भारत की रोशिबिना देवी नाओरेम ने महिला 60 किलोग्राम सांडा स्पर्धा में रजत पदक, वहीं सतनाम सिंह और सलमान खान की जोड़ी ने पुरुष डबल स्कल्स नौकायन स्पर्धा में कांस्य पदक जीत लिया है। रोशिबिना देवी को फाइनल मैच में चीन की झांग शिया उ से 0-2 से हार का सामना करना पड़ा। ये एशियाई खेलों में रोशिबिना का 3रा पदक है। उधर सतनाम सिंह और सलमान खान की जोड़ी ने पुरुष डबल स्कल्स नौकायन स्पर्धा में कांस्य पदक अपने नाम किया। भारतीय जोड़ी 1500 मीटर तक दूसरे स्थान पर थी, लेकिन अंतिम 500 मीटर में तीसरे स्थान पर आ गई। इससे पहले सतनाम सिंह ने हांगझू एशियाई खेलों में पुरुष क्वाड्रपल स्कल्स में भी कांस्य पदक जीता था। उधर उज्बेकिस्तान के समरकंद में चल रहे फिडे शतरंज ओलंपियाड में भारतीय पुरुष टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 7वें दौर में इंग्लैंड को 1.5 के मुकाबले 2.5 अंकों से हरा दिया। कल खेले गए मुकाबले में मौजूदा विश्व चैंपियन डी गुकेश और आर प्रज्ञानंद ने भारत के लिए शानदार जीत दर्ज की। वहीं महिला वर्ग में 20 सविताशी ने शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए लगातार सातवीं जीत दर्ज की, जिससे भारत ने सातवें दौर में जर्मनी को करारी शिकस्त दी। सविताशी इस ओलंपियाड में अपने सभी सातों मैच जीतने वाली एकमात्र खिलाड़ी बनी हुई हैं। प्रतियोगिता में अब केवल दो दौर बाकी हैं और इस धमाकेदार जीत ने भारत की पदक की उम्मीदों को मजबूती से बनाए रखा है।
1: बंगाल की खाड़ी में बना गहरे दबाव का क्षेत्र कलिंगपट्टनम के पास उत्तरी आंध्र प्रदेश और दक्षिणी ओडिशा तट को पार कर अब आंतरिक क्षेत्रों की ओर बढ़ रहा है। इसके प्रभाव से ओडिशा के कई हिस्सों में मूसलाधार वर्षा हो रही है। एक रिपोर्ट।
4: ओडिशा में लगातार बारिश से कई जिलों, खासकर दक्षिणी जिलों में आम जनजीवन पर असर पड़ा है। संवेदनशील इलाकों में पानी भरने, जमीन खिसकने और सड़कों के संपर्क टूटने की खबर है। आईएमडी ने आज नवरंगपुर के लिए बहुत भारी बारिश की रेड वार्निंग जारी की है, जबकि 6 जिलों के लिए ऑरेंज वार्निंग और 8 अन्य जिलों के लिए येलो वार्निंग जारी की गई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: इस बीच मौसम विभाग ने आज पश्चिम बंगाल, झारखंड, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश और ओडिशा में तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। बिहार, विदर्भ और सिक्किम में भी मूसलाधार वर्षा हो सकती है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
5: अपडेट रहे, आगे रहे। expert@airnewshindi और इंस्टाग्राम पर AIR न्यूज अलर्ट को फॉलो करें।
1: और अब समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
6: धन्यवाद प्रियंका। दुनिया कर रही तारीफ, चार बड़ी एजेंसियों ने बढ़ाया भारत का वृद्धि दर अनुमान। नव भारत टाइम्स ने लिखा है, S&P, फिच, ADB और OECD ने भारत की 2026-27 की GDP का अनुमान बढ़ाकर 7% किया। अमर उजाला ने चिंतन शिविर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान को प्रकाशित किया है, मंत्रियों को मोदी का मंत्र, महिलाओं और युवाओं के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करें। निर्वाचन आयोग में मतभेद को लेकर उठे सवालों पर दैनिक भास्कर ने आयोग का स्पष्टीकरण प्रकाशित किया है, असहमति होना सामान्य बात है, हमारे बीच दरार नहीं। हिंदुस्तान और दैनिक जागरण की खबर है, बैंकों की 28 से 30 सितंबर तक प्रस्तावित हड़ताल के मद्देनजर केंद्र सरकार ने कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को 25 सितंबर को ही वेतन और पेंशन देने का फैसला किया। राजस्थान पत्रिका ने बताया है, रेल मंत्रालय ने नेशनल पेंशन सिस्टम में आने वाले कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम के नियमों की घोषणा की है।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत गुजरात के वडनगर से उत्तर प्रदेश के वाराणसी तक सेवा यात्रा कर रहे प्रतिभागियों से संवाद करेंगे। दिल्ली सरकार ने महिलाओं और ट्रांसजेंडर को सुरक्षित, साफ सुथरा और सम्मानजनक रोजगार का अवसर देने के उद्देश्य से दुर्गा योजना को मंजूरी दी। भारत टैक्सी उत्तर प्रदेश के लखनऊ, गोरखपुर, वाराणसी, कानपुर और प्रयागराज में शुरू। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित सभी बैंक ग्राहकों की सुविधा के लिए इस रविवार को खुले रहेंगे। और जापान में एशियाई खेलों में रोशिबिना देवी ने वुशु में रजत पदक जीता, सतनाम सिंह और सलमान खान ने रोइंग पुरुष डबल्स में कांस्य पदक हासिल किए। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
7: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Sarabjit Kaur. The headlines. Prime Minister Narendra Modi to interact with participants of Seva Yatra from Varnagar to Varanasi under Seva Sankalp Abhiyan this morning. Delhi government approves Durga scheme aimed at providing safe, clean and dignified employment opportunities to women in national capital. Bharat Taxi launched in Lucknow, Gorakhpur, Varanasi, Kanpur and Prayagraj in Uttar Pradesh. All banks, including regional rural banks, to remain open this Sunday for convenience of customers. India's Roshibina Devi bagged silver medal in Wushu at Asian Games in Japan,

0: बिंदास मॉर्निंग सुना क्या?
1: हाँ मेरी कसम,
0: मिस कर दिया तो रीलोड।
2: चाय चाय चाय
3: बिंदास मॉर्निंग,
0: सुनिए बिंदास मॉर्निंग आरजे आनंद के साथ मंडे टू सैटरडे 7 से 10।
4: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
5: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
6: कोई मिल गया,
7: और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन जो बजाता है आपके फेवरेट गाने। बातें होती हैं दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा। मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

0: मेरा इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है,
1: लेकिन सोनिया
0: डॉन को पकड़ना मुश्किल नहीं,
1: नामुमकिन नामुमकिन नामुमकिन।
2: लेकिन बॉलीवुड के गाने पकड़ना बहुत ही मुमकिन है। सुनिए एफएम मुरादाबाद 89.6 पे 90s बॉलीवुड के अमेजिंग गाने। ट्यून इन कीजिए एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए गुनगुनाते रहिए।
3: बसंती इनके सामने मत नाचना।
2: अरे भैया, नाचना है तो एफएम मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना।

बहुत बहुत स्वागत है श्रोताओं आपका। आप जुड़ चुके हैं एफएम मुरादाबाद 89.6 पर आरजे आनंद के साथ और आप सभी का बहुत बहुत इस्तकबाल करते हैं आज की इस प्यारी सी सुबह में। आपका खैर मकदम है, आप जुड़ चुके हैं आरजे आनंद के साथ। ये है आपका फेवरेट रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़ पे, जहां बातें होती हैं ढेर सारी दिल से दिल तक। जी हाँ साथियों, आपको बताते चलें, अभी जो है बहुत ही खूबसूरत मौसम हो रहा है। बिल्कुल आज का टेम्परेचर भी बहुत ही अच्छा है। मैं आपको डेफिनेटली मौसम के हालचाल बताऊंगा थोड़ी देर में, लौट कर आऊंगा। तो फिलहाल आज के सफर की शुरुआत करेंगे एक बहुत ही खूबसूरत गीत के साथ, लेकिन उससे पहले आज का एक प्यारा सा विचार। दोस्तों कहते हैं समय और भाग्य कभी एक जैसे नहीं रहते, इसलिए आज छोटे छोटे प्रयास को आप ज़रूर अपने ज़िंदगी में शामिल करें और उनको बिल्कुल भी नज़रअंदाज ना करें, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, छोटे छोटे प्रयास हमें हमारी बड़ी सफलता की ओर ले जाते हैं। तो कहते हैं ना, जब आप छोटे छोटे प्रयास करते हैं, छोटी छोटी चीज़ों से जब आप शुरुआत करते हैं, तो यकीन मानिए ये छोटी छोटी शुरुआत ही आपको बड़ी सफलता की ओर ले जाती है। बस यही कहना चाहता हूँ आज की सुबह। आप जुड़ चुके हैं फिर मुरादाबाद पर, यही आपके शहर का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। घड़ी मिला लीजिए, वक्त हो गया है 8:21 और फिलहाल आज तारीख की बात कर लेता हूँ जरा फटाफट से। आज 24 सितंबर की तारीख है, 24 सितंबर 2026। बहुत ही खूबसूरत सी सुबह में आप सभी का स्वागत अभिनंदन है। इस बहुत ही खूबसूरत सी गीत के साथ करेंगे आज के सफर की शुरुआत। मोहम्मद रफ़ी साहब ने गाया है और बहुत ही प्यारा गीत है, इसे मैंने लिया है कश्मीर की कली फिल्म से। इसी गीत को सुनते हुए आगे बढ़ेंगे और आज के अपने सफर की एक बेहतरीन शुरुआत करेंगे। जी हाँ श्रोताओं, साथ में आशा ताई भी देंगी साथ, मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़। म्यूजिक ओपी नैयर साहब का है, चलिए सुनते हैं इस गीत को।

0: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
1: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
2: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
1: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।

0: एक बार फिर से स्वागत है आपका। 8:35 का समय हो रहा है स्टेशन की घड़ी में और आप सुन रहे हैं आनंद को ओनली ऑन एफएम मुरादाबाद 89.6 पे, जहां बातें होती हैं ढेर सारी दिल से दिल तक। और देखिए, लाइफ है तो लाइफ में प्रॉब्लम स्ट्रगल तो आते रहते हैं ना, और हमें बस इस चीज़ से गिव अप नहीं करना है, इस चीज़ से बिल्कुल नहीं डरना है, और अपने आसपास का एनवायरनमेंट अच्छा रखना है। आई मीन टू से कि जब आपके आसपास के लोग अच्छे होंगे, जिस सर्कल में आप बैठते हैं, जिस सर्कल में आप रहते हैं, अगर वो एनवायरनमेंट, वो यू नो लोगों का एक जो सोसाइटी आपने बनाया, अगर वो बहुत ही बढ़िया है आपके अकॉर्डिंग है भाई, तो यकीन मानिए आप बहुत ही बेस्ट हो। बट अगर उसमें एक दो लोग ऐसे आ जाते हैं ना जिनसे आपकी वाइब मैच नहीं होती है, जिनसे आपके गुण नहीं मिलते हैं, जिनसे आपकी यू नो थॉट्स मैच नहीं करते हैं, बड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है भाई रिलेशनशिप वो वाली। लेकिन आज की सुबह बस इतना ही कहना चाहता हूँ मैं आपसे कि अपने आसपास के लोगों को भी वैसा ही ढूंढिए जैसे आप बनना चाहते हैं, जैसे आप खुद को देखना चाहते हैं, है ना। जब आप ऐसे लोगों को अपनी लाइफ में एंट्री देते हैं ना, तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं आपको जेन्युइनली बता रहा हूँ बॉस, मतलब आपको इतना अच्छा फील होता है ना, और आप जो चाहते हैं वो सब कुछ आप करने लगते हैं, बिकॉज आपके आसपास के लोग वो कनेक्टिविटी फील कराते हैं आपको, है ना। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, मेरे साथ ढेर सारे लिसनर्स के संदेश पहुंचे हैं आज की सुबह। ये हमारे साथ रिंकू यादव जुड़ चुके हैं आज की सुबह, लिखते हैं आनंद जी गुड मॉर्निंग सुप्रभात, आप कैसे हैं। रिंकू जी थैंक यू सो मच मेरे हाल चाल जानने के लिए, मैं बहुत ही बढ़िया हूँ मेरे भाई। एक मैसेज पहुंचा है मेरे पास, हाई गुड मॉर्निंग, तमन्ना बात कर रही हूँ करूला से। हाई तमन्ना जी, आपका भी इस्तकबाल है हमारे इस प्रोग्राम में। एक मैसेज पहुंचा है, आनंद जी जिंदगी में ना अच्छी बुरी चीज़ें हमारे साथ होती रहती हैं, बस हमें अपने आप को नहीं भूलना चाहिए, अपने चीज़ों को पहचानना सीखो यार, लाइफ में सब अच्छा होगा। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। ये हमारे पास जिगर कॉलोनी से मैसेज आया है आशिफ साहब का। आशिफ जी बहुत बहुत धन्यवाद आज की सुबह हमारे साथ जुड़ने के लिए। और एक प्रेम कुमार सदाना भी जुड़ गए हैं आज की सुबह, ये लिखते हैं आनंद जी कैसे हाल चाल है आपके। यार मैं बहुत ही बढ़िया हूँ यार। गाइज इतने वंडरफुल मैसेज आप करती हो ना, मतलब सुबह सुबह अच्छा लगता है यार, मतलब किसी चलो हाँ यार लाइफ में ऐसे लोग हों तो मज़ा आ जाता है, मतलब आपकी जैसे लोग हों तो यार जिंदगी बड़ी झकास हो जाती है। आने वाला गाना फ्रॉम द फिल्म राजा, संजय कपूर एंड माधुरी दीक्षित पर पिक्चराइजेशन ट्रैक, मूवी बहुत ही कमाल की, गाना बहुत अच्छा है, सुबह सुबह थोड़ी फ्रेश वाइब आपको देगा। अलका याग्निक एंड उदित नारायण साथ में बहुत ही प्यारी आवाजों का कॉम्बिनेशन, म्यूजिक डायरेक्टर है नदीम श्रवण एंड लिखा है समीर साहब ने, क्या सॉन्ग है जरा सुनो।
1: फूल मांगो ना बहार मांगो।
0: आहा, क्या बात है, रेडियो की वॉल्यूम बढ़ाइए, आनंद को सुनते जाइए, लौट कर आते हैं जरा सी देर में।

0: आज बिंदास मॉर्निंग सुना क्या?
1: कहा मेरी कसम?
0: मिस कर दिया तो रीलोड।
2: चाय चाय चाय
3: बिंदास मॉर्निंग।
0: सुनिए बिंदास मॉर्निंग आरजे आनंद के साथ मंडे टू सैटरडे 7 से 10।

0: क्या सॉन्ग है यार उदित साहब की खनकती हुई आवाज।
1: आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके, आए हो मेरी।
0: आज भी याद है भाई स्कूल टाइम में बस वाले भैया इस गाने को इतना चलाते थे ना, मतलब बड़ा मजा आता था। लेकिन यार जो भी बोलो आज की सुबह फैंटास्टिक हो गई गाना सुनके। वेलकम बैक वंस अगेन, आप सुन रहे हैं आनंद को, ये है एफएम मुरादाबाद 89.6, बातें होती हैं दिल से दिल तक।
2: हे यू आर ट्यून्ड इनटू एफएम मुरादाबाद 89.6 FM।
3: क्या आप एक ही जगह पर दुनिया की सैर और जबरदस्त रोमांच का मजा लेना चाहते हैं? तो चले आइए सात अजूबे पार्क। यहाँ शानदार अजूबों के दीदार के साथ आपको मिलेगा तीरंदाजी और मैकेनिकल बुल राइड जैसी एक्टिविटीज का फुल ऑन थ्रिल। तो पूरे परिवार के साथ आ जाइए सात अजूबे पार्क, न्यू मुरादाबाद।
4: सुनो ना, मुझे ज्वेलरी खरीदनी है।
5: तो चलो फिर, इतना सोचना क्यों है, शहर चलते हैं ना ज्वेलरी लेने।
4: नहीं मैं नहीं जाऊंगी, वहाँ पर बहुत ट्रैफिक रहता है और शोर भी बहुत होता है।
5: अरे नहीं,
6: अब ट्रैफिक की चिंता छोड़ो, क्योंकि बाबूराम सर्राफ का नया ज्वेलरी शोरूम ओपन हो गया है,
5: वो भी सिविल लाइंस में। ना ट्रैफिक की चिंता, ना शोर की, और हाँ वहाँ ज्वेलरी खरीदने पर गोल्ड क्वाइन जीतने का मौका भी है।
4: अच्छा?
6: हाँ, आपका वही पुराना एवं विश्वसनीय शोरूम बाबूराम सर्राफ, पता चैन मंदिर रोड सिविल लाइंस मुरादाबाद।
2: आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग।

चलिए दोस्तों, एक बार फिर से आपका इस्तकबाल करते हैं, स्वागत करते हैं और सुबह के 8:50 हो चुके हैं हमारे स्टेशन की घड़ी के मुताबिक। और अभी आपको बताते चलते हैं, आज 24 सितंबर की तारीख है, दिन है आज गुरुवार का, थर्सडे की सुबह है। दोस्तों आज के दिन साल 2014 में मंगलयान मार्स ऑर्बिटर मिशन सफलतापूर्वक मंगल ग्रह के कक्ष में पहुंचा। भारत ने अपने पहले ही प्रयास में उपलब्धि हासिल करने वाला दुनिया का ये पहला देश बना लिया। इसके अलावा आपको बताते चलें, छत्रपति शिवाजी महाराज का दूसरा राज्याभिषेक संपन्न हुआ था आज के दिन 1674 में। एंड जापान के प्रसिद्ध वाहन निर्माता कंपनी होंडा मोटर कंपनी की स्थापना हुई थी 1948 में आज के दिन। और आपको बताते चले, 1986 में अमेरिका में सोने के बाजार में भारी गिरावट के कारण ब्लैक, ये जो था आज का दिन उनके लिए ब्लैक फ्राइडे के रूप में मनाया जाने वाला वित्तीय संकट आया, तो इसीलिए उन्होंने इस दिन को ब्लैक फ्राइडे के रूप में मनाना शुरू किया आज के दिन 1869 को। और श्रोताओं बात करें एक और खास चीज़ की, यानी कि आज के दिन जन्मे कुछ पॉपुलर पर्सनालिटी की, फेमस पर्सनालिटी की, तो आपको बता दें आज के दिन मोहिंदर अमरनाथ, पूर्व भारतीय क्रिकेटर और विश्व कप विजेता टीम के अहम खिलाड़ी, 1950 में इनका जन्म हुआ था आज के दिन। लीलांबा राम, भारत के प्रसिद्ध जो है तीरंदाज, 1971 में इनका जन्म हुआ आज के दिन। तीरदाज जी का जो है ये प्रसिद्ध तीरदाज, आज के दिन इनका जन्म हुआ। भारत की पॉपुलर जो कुछ नाम है जिनका आज के दिन जन्म हुआ है उनके बारे में बात कर रहा हूँ मैं आज की सुबह आपके साथ। और आज के दिन जन्म हुआ था आरती जी का, आरती शाह इंग्लिश के चैनल पार करने वाली पहली भारतीय महिला तैरक रही, 1940 में इनका भी जन्म हुआ। और बाकी श्रोताओं आज के दिन से जुड़ी ये थी कुछ महत्वपूर्ण बातें जो मैंने आपके साथ इमिडिएटली साझा करी। आप भी हमारे साथ अपनी प्यारी प्यारी बातें साझा कर सकते हैं 9837896896 पर। हर दिन कुछ ना कुछ लेटेस्ट होता है, हर दिन कुछ ना कुछ स्पेशल होता है हमारे इतिहास के पन्नों में। और हमारे भी प्रयास होते हैं, कोशिशें होती हैं कि आपको हर दिन कुछ ना कुछ बेहतर जानकारियों से रूबरू कराया जाए। और दोस्तों इसी बीच आपको बताते चले, अभी कुछ लोकल जानकारियां भी हैं जो आपके साथ हमें साझा करनी है इस स्टेशन ऑफ द नेशन पे। तो बस आप ऐसे ही अपना साथ बनाए रखिए आनंद के साथ और ऐसे ही सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6। आपको बता दें यमन को लेकर सऊदी अरब में मिस्र के बीच समझौते हुए थे 1965 में आज के दिन। और आज के दिन कुछ और खास है तो मैं डेफिनेटली आपको बता देता हूँ, फिलहाल इतिहास के पन्नों में कुछ खास नजर नहीं आ रहा है। हाँ, चीन और नेपाल ने दूरसंचार क्षेत्र में एक अहम अनुबंध पर हस्ताक्षर किए थे श्रोताओं 2008 में आज ही के दिन। इसके अलावा और क्या दिख रहा है, हाँ 2009 में देश के पहले चंद्रयान 1 ने चांद के सतह पर पानी खोज निकाला था श्रोताओं आज ही के दिन। एग्जैक्टली, ये एक बहुत ही बड़ी और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जो आज के इतिहास के पन्नों को थोड़ा सा खास और स्पेशल बना देती है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आपको अभी कुछ और बातों से रूबरू कराना है। आप ऐसे ही ट्यून इन रहिए आनंद के साथ, सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6, रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। ढेर सारे हमारे श्रोता साथी हमारे साथ जुड़ चुके हैं आज की सुबह, बिल्कुल हम आपका स्वागत करते हैं जी अपने इस प्रोग्राम में। और अभी थोड़ी देर में लौट कर आएंगे तो ज़रूर आपके ये जो संदेश हैं उनको हम शामिल करेंगे इस स्टेशन पर। आप ऐसे ही अपना साथ, अपना जो ये प्यारा प्यारा माहौल आपने बना रखा है इसको ऐसे ही बनाए रखिए। हम अभी लौट कर आते हैं इस स्टेशन ऑफ द नेशन पर, आप ऐसे ही जुड़े रहिए, टिके रहिए, सुनते रहिए आपका मॉर्निंग मैगजीन शो। एक और खूबसूरत गाना रेडियो सेट में निकल गया है आपके, सुनते हुए इसी को आगे बढ़ रहे हैं। आप ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, चलिए बहुत अच्छी बातें, करते रहिए ब्रेकफास्ट। आज तो मैं भी मॉर्निंग में इमिडिएटली पराठे और आलू की सब्जी बना के निकल के आया हूँ भाई, खा के नहीं आया वो बात अलग है, लेकिन सुबह सुबह आपका ब्रेकफास्ट रेडी हो जाता है तो मतलब बढ़िया रहता है, जाते ही बस अपना ब्रेकफास्ट कर लो। एनीवेज अभी गाना सुनते हैं, आप कहीं मत जाओ, आनंद को सुनते रहो।

0: और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन जो बजाता है आपके फेवरेट गाने। बातें होती हैं दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा। मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
1: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
2: आज बिंदास मॉर्निंग सुना क्या?
3: कहा मेरी कसम?
2: मिस कर दिया तो रीलोड।
4: चाय चाय चाय
5: बिंदास मॉर्निंग।
2: सुनिए बिंदास मॉर्निंग RJ आनंद के साथ मंडे टू सैटरडे 7 से 10।
6: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का थ्रिल, तो स्वागत है देवशांत जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
7: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।
8: स्किन एलर्जी, मस से नाखून बालों की समस्या, टैटू हटाना, कार्बन लेजर फेशियल के लिए संपर्क करें डॉक्टर ऋचा गर्ग, यूनिवर्सल नेत्र एवं चर्म रोग, Z19 आशियाना 2, निकट विवेकानंद अस्पताल मुरादाबाद 7983153386।
9: बसंती, इनके सामने मत नाचना।
0: अरे भैया, नाचना है तो FM मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना।
10: बिल्कुल जी, नाचते रहिए। आप सभी का स्वागत, अभिनंदन है। आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6 पे आनंद को। और मैंने कहा जी, अभी आप जब आ ही गए हमारे स्टेशन पे, तो एक बार आपको अच्छी सी गुड मॉर्निंग हो जाए।
11: गुड मॉर्निंग पाइनएप्पल, लुकिंग वेरी गुड, वेरी नाइस। गुड मॉर्निंग पाइनएप्पल, लुकिंग वेरी गुड, वेरी नाइस।
10: गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग मुरादाबादीज, कैसे हाल चाल है? वेलकम बैक वंस अगेन। हाय, यू आर लिसनिंग टू आपके शहर का स्टेशन ऑफ द नेशन, बातें होती है दिल से दिल तक, ये थर्सडे की सुबह। मेरा नाम आनंद है। तारीख की बात करें तो आज 24 सितंबर हो गया है भाई, 24 तारीख हो गई है। पता नहीं चल रहा है यार, ये 24 तारीख बड़ी तेजी से भाग रही है। अच्छा, क्या चल रहा है लोकैलिटी में, इस पे बात करेंगे अभी जरा सी देर में लौट कर आएंगे तो। एंड मुरादाबाद के अंदर तो चल ही रहा है, लेकिन देश दुनिया में भी बहुत कुछ चल रहा है बॉस, उस पर भी अभी चर्चा करेंगे इस स्टेशन ऑफ द नेशन पे। आप हमारे साथ ऐसे ही ट्यून इन रहिए, क्योंकि देखिए फेस्टिव सीजन है, बहुत सारी चीजें जो है शुरू हो गई हैं। एंड अभी लौट कर आएंगे तो डेफिनेटली आपके साथ ढेर सारी बातें साझा करेंगे इस स्टेशन ऑफ द नेशन पे। आप ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिएगा। एंड मेरे पास एक क्वेश्चन भी होने वाला है आज की सुबह, जो आपकी दिमाग को थोड़ा सा टेंशन से फ्री कर देगा। डोंट वरी यार, टेंशन नहीं देने वाला आज सुबह सुबह आपको। एक छोटा सा क्वेश्चन डेफिनेटली पूछने वाला हूँ, बस अभी लौट कर आता हूँ इसी स्टेशन पे। आप ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए, और बाकी जो लिसनर्स हमारे साथ जुड़े हैं उनके लिए दिल से थैंक यू। मेरे साथ जुड़े हैं रोहन जी, लिखते हैं हाय आनंद, मॉर्निंग मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आप कैसे हैं रोहन? लिखते हैं आनंद जी, आपकी आवाज़ अच्छी है। अच्छा जी, थैंक यू सो मच। आप में से मेरी आवाज़ बिल्कुल मत लेना भाई, क्योंकि मुझे मेरी आवाज़ बहुत प्रिय है। एक मैसेज आया मेरे पास, हाय गुड मॉर्निंग, दिस इज़ मी दीपांशी। गुड मॉर्निंग दीपांशी। दीपांशी मुझे लिखती हैं, आनंद जी सुबह सुबह नए गाने अगर आप बजाएंगे तो बड़ा मज़ा आएगा। जी बिल्कुल, आप सही टाइम पर आई हैं। सबसे पहले ज़ोरदार ताली इतने अच्छे मैसेज करने के लिए, बिकॉज ये वाला टाइम नए गानों का टाइम होता है जी।

0: सुबह किसी की याद आए तो दिन बन जाता है और वो साथ में तो और मजा आ जाता है, राइट? ऐसे कुछ ब्यूटीफुल ट्रैक अरिजीत सिंह की आवाज
1: सुबह सुबह
0: एग्जैक्टली
1: सुबह सुबह तेरी यादें
0: दिन बना देती है।
1: सुबह
0: फिलहाल आगे बढ़ते हुए गाना सुनते हैं,
1: सुबह सुबह दिन बना दे।
0: आप सुन रहे हैं आनंद को वेरी गुड मॉर्निंग, स्टे ट्यून।

अंजी कैसे हालचाल है? गुड मॉर्निंग, आनंद के साथ हैं। थर्सडे की सुबह आप सुन रहे हैं आपका स्टेशन ऑफ द नेशन, दिस इज फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन ऑन योर थ्री। लेडीज एंड जेंटलमैन, आनंद के साथ यह है मॉर्निंग मैगजीन शो, दिस इज बिंदास मॉर्निंग। निकल चुके हैं अपनी मॉर्निंग ट्रिप पे, ऑल द वे बेस्ट यार। अच्छे गाने लगा रहा हूँ, प्लीज वॉल्यूम बढ़ा के एंजॉय करते हुए जाओ।

0: जावेद अली श्रेया घोषाल की आवाजों में भी आप एंजॉय कर रहे थे, बहुत ही प्यारा गाना। मतलब दोनों की आवाजों का कॉम्बिनेशन था यार, आप भी मतलब कदा ही ले जाते।
1: गुड मॉर्निंग पाइनएप्पल,
0: हां जी,
1: लुकिंग वेरी गुड, वेरी नाइस। गुड मॉर्निंग पाइनएप्पल,
0: गुड मॉर्निंग मुरादाबाद बोल देते तो यार थोड़ा सा ब्लड मेरा और बढ़ जाता। हाय, वेलकम बैक वंस अगेन। चलो जी, सुबह सुबह आपको एक काम देते हैं कि आपकी मैं थोड़ी अच्छी खासी है तो शायद आप इसका जवाब पहुंचा दोगे। हाँ जी, जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, आप किचन में सुन रहे हैं, घर पे सुन रहे हैं, गाड़ी में सुन रहे हैं, रोड पे सुन रहे हैं, जहां भी आप सुन रहे हैं, आपको वेरी गुड मॉर्निंग है। चलो फिलहाल आज की सुबह एक बहुत ही इजी क्वेश्चन लेकर आया हूं, बड़ा ध्यान से आपने सुनना है। इट्स नॉट म्यूजिकल क्वेश्चन यार। हाँ जी मेरे दोस्त, सवाल मेरा यह है, यदि 5 पैन की कीमत 75 रुपए है तो फिर 8 पैन की कीमत कितनी होगी? अगेन रिपीट कर रहा हूँ, यदि 5 पैन की कीमत 75 रुपीज है तो 8 पैन की कीमत कितने रुपए होगी? मैं आपको चार ऑप्शन दे रहा हूँ, ऑप्शन ए 100 रुपीज, ऑप्शन बी कितने रुपए होगी यार, मैं अभी नहीं, मेरे को तो पता है, मैं आपको बता रहा हूँ। चलो मैं आपको चार ऑप्शन प्रोवाइड करा रहा हूँ, अगेन रिपीट कर रहा हूँ अपना सवाल, यदि 1 पेन की कीमत 75 रुपए है तो 8 पेन की कीमत कितनी होगी, आपने मेरे को बताना है। चार ऑप्शन आपको दो या नहीं दूँ, एक काम करता हूँ थोड़ा सा पहले वेट कर लूँ, उसके बाद ऑप्शन दूंगा, देखते हैं क्या पता यार, आप बता ही दो जवाब। दैट इज वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन एंड दिस इज मतलब सो इजी यार, सो इजी, ये समझ लो कि बहुत ही इजी है। बस मैं चेक कर रहा हूँ कि देखता हूँ यहाँ पर कौन कितनी शिद्दत के साथ रेडियो को सुनते और कितनी इन्फॉर्मेशन वो कलेक्ट करते हैं हमारे स्टेशन। चलो जी फिलहाल सर काम पे लगो, सुबह सुबह मैं आपसे पूछ रहा हूँ एक छोटा सा सवाल, यदि 5 पैन की कीमत 75 रुपए है तो 8 पैन की कीमत कितनी होगी, कितनी होगी ठाकुर, कितनी होगी? ये तो आप मुझे बता सकते हो मैसेज करके 9837896896 पर, व्हाट्सएप करके बताइएगा 9837896896, दैट इज माई नंबर। लेडीज जेंटलमैन, वक्त हो गया है 9:12, 25 तारीख टुमारो स्टार्ट हो रहा है एक बहुत ही अच्छा खेल की दुनिया का, एक बहुत ही खूबसूरत पहली बार एक ऐसा यू नो सेलिब्रेशन होने वाला है मुरादाबाद के अंदर, जिसके सुनने के बाद आप भी बोलोगे वाह जी वाह, क्या कमाल की चीज़ हो रही है ना। आपको नहीं पता है तो मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर में क्या स्पेशल होने वाला है इस स्टेशन ऑफ द नेशन पे, बस आप ऐसे ही ट्यून इन रहो आनंद के साथ। और अभी लोकल खबरों पर बात करेंगे, लोकेलिटी में क्या चल रहा है मुरादाबाद पे, क्या होने वाला है स्पेशल, क्या हो रहा है इस पे, एक नज़र डालूंगा मैं अभी, आप ऐसे ही ट्यून इन रहिए हमारे साथ। बाकी व्हाट्सएप करते रहिए, अगेन रिपीट कर रहा हूँ आज का क्वेश्चन, दिस इज वेरी वेरी सिंपल सवाल, आज की मॉर्निंग मैंने पूछा है आपसे, अगर 5 पैन की कीमत 75 रुपए है तो 8 पैन की कीमत कितने रुपए होगी, जरा बताओ बिना कैलकुलेटर के दिमाग लगाओ एंड मुझे मैसेज करो यार, मैं इंतजार कर रहा हूँ आपके व्हाट्सएप मैसेजेस का। आने वाला गाना एंजॉय करते हैं, गुड मॉर्निंग।

0: देखो देखो वो आ गया।
1: अरे आनंद इज बैक।
2: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
3: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
2: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 705007052।
4: सिरदर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।

0: बसंती इनके सामने मत नाचना।
1: अरे भैया नाचना है तो एफएम मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना।
2: गुड मॉर्निंग पाइनएप्पल, लुकिंग वेरी गुड वेरी नाइस। गुड मॉर्निंग पाइनएप्पल, लुकिंग वेरी गुड वेरी नाइस।
3: यू आर लिसनिंग टू द बिगेस्ट हिट्स, The biggest hits, non-stop.

क्या बात है, सोना महापात्र की आवाज, बहुत ही प्यारा गाना भी आपने एंजॉय किया आनंद के साथ। लेडीज एंड जेंटलमैन, वक्त हो गया है 9:21 एंड बहुत सारे व्हाट्सएप मैसेज मेरे पास पहुंचे हैं आज की सुबह। मतलब आई कैन बिलीव दिस, इतने जल्दी मैसेज आएंगे यार। थैंक यू सो मच। हमारे पास रघु एंड साथ में प्रिया का मैसेज पहुंच चुका है। थैंक यू सो मच, ये मुझे गुड मॉर्निंग लिखते हैं एंड साथ में बोलते हैं आनंद जी कैसे हालचाल हैं। यार देखो मेरे हाल एकदम बहुत ही बढ़िया है, जबरदस्त है, फर्स्ट क्लास है। एक बार फिर से आपका स्वागत अभिनंदन कर देते हैं, इस्तकबाल कर देते हैं। और देश दुनिया में क्या चल रहा है ये तो हम आपको बताते ही रहते हैं, और हमारे आसपास क्या चल रहा है ये भी हम आपको बताते हैं। बस हम आपसे ये भी कहना चाहते हैं कि यार देखो, सुबह सुबह जो है ना, सिर्फ आपने नाश्ता पानी नहीं करना, उसके अलावा आपको कुछ एक्टिविटी भी करनी चाहिए। सुबह सुबह अगर आप मॉर्निंग वॉक पर निकलते हैं तो भैया बहुत ही अच्छी बात है, और अगर आप नहीं निकलते तो मैं कह रहा हूँ ज़रूर निकला करो यार। सुबह सुबह अपनी हेल्थ के साथ कोई खिलवाड़ मत किया करो, बहुत ज़रूरी है। देखो अगर आज हम थोड़ा सा ऐसे आलस कर लेंगे ना, तो कल ये आलस हमें बहुत बड़ी दिक्कतों में डाल सकता है ना। आजकल तो वैसे भी बड़ी सारी बीमारियाँ, नई बीमारियां, ऐसी ऐसी बीमारियां आ गई जिनके बारे में आप सोचते भी नहीं है। इसीलिए भाई साहब अपना जरा खास ख्याल रखिए। और बाकी चलिए बात कर लेते हैं अपने मुरादाबाद शहर से जुड़ी कुछ खास चीज़ों की। तो देखिए अब जो है मुरादाबाद की तस्वीर बदल गई है, अब महानगर जो है वो एग्जैक्टली मतलब विकास के संग मिलकर एक नई पहचान बना रहा है। आपको पता है अपने मुरादाबाद में नई नई चीज़ें हो रही हैं भाई, एंड कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग जो है यहाँ पर चलता रहता है। जैसे आपको मैं बता दूँ, श्री राम वाटिका हो या हनुमान वाटिका हो या फिर वॉर मेमोरियल हो, एंड इसके अलावा धार्मिक सांस्कृतिक तमाम सारे कार्यक्रम लगातार बैक टू बैक होते हैं, कुछ ना कुछ नया होता रहता है अपने

शहर के अंदर, है ना। एंड और भी बहुत सारी चीज़ें मुरादाबाद के अंदर जो है देखने को मिल रही हैं आजकल, तो काफ़ी डेवलपमेंट मुझे नज़र आता है अपने शहर के अंदर। अब ये महानगर जो है वो सच में स्मार्ट सिटी की तरफ जो है बढ़ रहा है। लेकिन मुद्दा यही है कि भैया, मतलब अभी भी मेन सवाल ये है कि हमारा कितना कॉन्ट्रीब्यूट है, हम कितना योगदान दे रहे हैं अपने शहर को स्मार्ट और सुंदर बनाने के लिए, है ना। इस पर भी तो हमें ध्यान रखना है। देखिए भाई साहब, कोई भी चीज़ सुंदर जब होती है जब उसमें हमारा और आपका, हम सब का कॉन्ट्रीब्यूट होता है ना, तो ये सब चीज़ों का भी ध्यान रखना है। बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं जो शहर के अंदर अब लगातार जो है डेवलप हो रही है मुरादाबाद के अंदर। मतलब अगर पॉजिटिव नजरिए से देखें, सकारात्मकता के साथ देखें, तो बहुत कुछ चेंज हुआ है इन बीते दिनों में और अभी भी बहुत कुछ चेंज होने वाला है अपने शहर में। तो मुरादाबाद की जो ये बदलती तस्वीर है, इस पर तो भाई हमें बहुत ही फख्र है, बहुत ही नाज है कि हाँ यार, कुछ तो इंटरेस्टिंग और स्पेशल हो रहा है शहर में। बहुत ही बढ़िया यार, थैंक यू सो मच। आप लोग सच में इतने अच्छे अच्छे मैसेज कर रहे हैं, उसके लिए भी आपका दिल से धन्यवाद। और मैं तो धन्यवाद के साथ साथ ये भी कहना चाहता हूँ कि जो सवाल जवाब हम कर रहे हैं उस पर भी आप ज़रा गौर करें जनाब। कुछ लोगों ने गलत जवाब दे दिया, गलती से कोई बात नहीं, आपको सही जवाब देना है। हमारा सवाल बहुत सिंपल है, हमने आज आपसे पूछा एक बहुत ही प्यारा सवाल छोटू सा, कि भैया देखिए, अगर 5 पेन की कीमत 75 रुपये है, 8 पेन की कीमत कितनी होगी? फिर पॉज लेके बोल रहा हूँ यार, ताकि आपको समझ में आ जाए। कुछ महान लोग लिख रहे हैं 1200, कुछ महान लोग लिख रहे हैं 600, और कुछ महान लोगों ने तो भाई साहब हद ही कर दी है, कमाल कर दिया है, धोती फाड़ के रुमाल कर दिया। मैं क्या बोलूँ यार, तालियां इसलिए बजाने के मन कर रहा है, इतनी फनी बात ही कौन करता है। ये मजा तो अभी आएगा जब आप लोग अपना दिमाग लगा के सही जवाब देने की जगह गलत जवाब दे रहे हो। भाई ऐसा मत करो यार, सही सही जवाब पहुंचाओ, है ना। बहुत सिंपल सवाल है, अगर आप इसका जवाब दोगे तो मैं आपको एक अच्छी चीज बताने वाला हूँ। आपको क्या मिल सकता है आज की सुबह? फेस्टिव सीजन स्टार्ट हो गया, तो कुछ ना कुछ अच्छी चीजें तो मिलेंगी यार। लेकिन अभी अच्छे गाने भी हैं। चलिए भैया, अभी लौट कर आएंगे तो दिव्यांशु पटेल जी के बारे में बात करेंगे। अगर आपको नहीं पता है दिव्यांशु पटेल जी कौन है, तो बताता हूँ इनके बारे में अभी जरा सी देर में। कम बैक कर रहा हूँ, ऐसे सुनते रहिए इस स्टेशन ऑफ द नेशन पे आनंद को। आई विल बी राइट बैक। ये एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, दिल से कहिए जियो बिंदास।

0: आयशा सुने या ना सुने लेकिन आप जरूर सुनना। हाय वेलकम बैक, ये गुड मॉर्निंग, बहुत ही अच्छा गाना भी आप सुन रहे थे। सुनो आयशा, जावेद अख्तर की आवाज, वंडरफुल सॉन्ग। चलो जी आगे बढ़ते हैं इसी बात के साथ। ये है थर्सडे की सुबह, आनंद को सुन रहे हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, एक बार फिर से वंस अगेन वेलकम बैक है। आपने ट्यून इन किया है आपके शहर का स्टेशन ऑफ द नेशन, जहाँ बातें होती हैं दिल से दिल तक। लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं अभी थोड़ी देर पहले आपको बता रहा था कि लोकैलिटी की बात हम करते हैं, मुरादाबाद में क्या स्पेशल चल रहा है वो सारी इन्फॉर्मेशन हम आपको बताते हैं। एग्जैक्टली, एंड मुरादाबाद के अंदर पहली बार एक ऐसे टूर्नामेंट होने वाला है जिसके बारे में आप सुनेंगे ना तो आप भी ऐसे भौचक्के रह जाएंगे कि क्या इंटरेस्टिंग होने वाला है यार। मतलब आई कॉन्ट बिलीव दिस, एंड इतनी अच्छी चीज़ फर्स्ट टाइम अपने शहर में हो रही है। एंड मैंने एक छोटा सा व्यू कल इंस्टाग्राम पे भी शेयर किया था, नहीं देखा है तो प्लीज़ यू हैव टू गो एंड चेक आउट माई इंस्टाग्राम आईडी, रेडियो वाला आनंद के नाम से मिलता हूँ भाई। एंड अभी मेरे साथ जुड़े हैं इसी विषय पे ढेर सारी बात करने के लिए अनिल सेन जी। तो आइए अनिल जी से बात करते हैं, हमारे स्पेशल मेहमान हैं आज की सुबह, आपको सारी जानकारी देंगे विस्तार से क्या चलने वाला है कल 25 सितंबर से लेके 27 सितंबर तक, क्या स्पेशल हो रहा है अपने मुरादाबाद में, सारी इन्फॉर्मेशन आपको देंगे मुरादाबादीज। जरा वॉल्यूम बढ़ा लो यार, वेरी गुड। चलिए बात करते हैं सर से। हेलो, गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं आप?
1: बहुत अच्छा हूँ आनंद जी, और बहुत बहुत शुक्रिया आपने मुझे लाइव जोड़ा। और जितने भी लोग प्यारे दर्शक आपके मुरादाबाद में ये सुन रहे हैं और जो भी आसपास रामपुर जहाँ तक ये आवाज आपकी जाती है,
0: जी जी।
1: मैं बताना चाहता हूँ कि जो हिस्ट्री इतिहास में पीतल नगरी हमारे शहर में जो इवेंट नहीं हुआ वो हम लोग होस्ट कर रहे हैं, उसके आप भी आनंद जी हिस्सेदार हैं क्योंकि आप बहुत दिन से इस टूर्नामेंट को वॉच कर रहे हैं। और ये यूपी फोर्थ यूपी रैंकिंग है, इसमें इंटरनेशनल प्लेयर भी खेल रहे होंगे। और ये इस टूर्नामेंट का महत्व ये है कि आनंद जी ये टूर्नामेंट जो नहीं खेलेगा वो यूपी टीम से बाहर हो जाएगा, और आप समझ रहे हैं मेरिट लिस्ट से बाहर हो जाएगा। इसलिए अगर किसी की तबीयत खराब है या कोई प्रॉब्लम है वो भी खेलेगा, मतलब आप समझिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टूर्नामेंट है उत्तर प्रदेश का। और मेरे जितने भी प्यारे साथी हैं जो टिबनेस घरों में खेलते हैं या कॉलेज में खेलते हैं उनको एक अच्छी जगह देखने का मौका मिल रहा है। समर वैली स्कूल में आयोजित हो रहा है, कल से स्टार्ट हो जाएगा। और आपके जितने भी जो प्यारे प्यारे साथी हैं जो इस आवाज को सुन रहे हैं वो आए। और आनंद जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने प्लेटफॉर्म पे लोगों को बता रहे हैं अच्छी बातें, ये बहुत अच्छी बात है।
0: थैंक यू अनिल जी। सबसे पहले तो मैं, आप जैसे शुरू है ना आपने बंद होने का नाम ही नहीं लिया, मुझे बोलने का मौका ही नहीं मिला। मेरे को ऐसा लग रहा था इस पार से उस पार भी एक रेडियो अनाउंसर बात कर रहा है, तो आपकी आवाज इतनी गजब की यार, सुबह सुबह मतलब लोगों को लग रहा होगा ये दो आरजेस क्या कर रहे हैं एक साथ।
1: नहीं नहीं, एक आनंद और एक ए फॉर आनंद,
0: ए फॉर अनिल,
1: अनिल
0: अनिल,
1: और दो जब अनिल मिल जाते हैं तो मुरादाबाद की सुबह अच्छी कर देते हैं।
0: वेरी गुड यार, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, लवली टॉकिंग टू यू अनिल जी। और आपके नाम में मुझे सुष्मिता सेन की याद आ गई,
1: उनसे भी जल्दी कराएंगे क्योंकि निखिल भाई बोल रहे थे ना तो हाँ, वो भी अरेंज करना पड़ेगा।
0: एब्सोल्युटली। तो अच्छा एक चीज और मैं पूछ रहा था, इसकी टाइमिंग वगैरह क्या रहेगी थोड़ा सा मुरादाबाद की जनता को?
1: सुबह कल से स्टार्ट हो जाएगा, 25 सितंबर से 8:30 बजे से स्टार्ट हो जाएगा। और इसमें टेबल टेनिस की दुनिया के माहिर लोग, वर्ल्ड फेमस लोग हमारे इस टूर्नामेंट का हिस्सा होंगे, और जो आप जिनको टीवी पे देखते थे, बड़े बड़े स्क्रीन पे देखते थे, वो यहाँ को देखने को मिलेंगे।
0: मतलब लाइव एक्सक्लूसिवली मुरादाबाद के अंदर ये चीज हो रही है, वाओ,
1: बिल्कुल
0: इट इज वंडरफुल। अच्छा अखिल, एक चीज और पूछ रहा था अनिल जी आपसे मैं, कि इसमें जो मुरादाबाद की जनता भी सुन रही है, कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये फ्री होगा एंट्री या फिर कैसे?
1: 100% फ्री होगा। और मैं गुजारिश करूंगा अपने जितने भी प्यारे छोटे बच्चे हैं, क्या होता है क्या है आनंद जी, जैसा मैंने अपनी लाइफ में देखा है कि माँ बाप मतलब पेरेंट्स क्या करते हैं कि जो उन्होंने बचपन में नहीं किया वो अपने बच्चों से कराना चाहते हैं, लेकिन यहाँ मुझे लगता है कि गलत है वो, क्योंकि बच्चों को जीने दीजिए, उनको उड़ने दीजिए, और एक उड़ने का देखने का मौका यहाँ पे मिल रहा है समर वैली स्कूल में। हो सकता है हमारे शहर के कई बच्चों को टेनिस खेल पसंद आ जाए, वो खेलना चाहे, और वो कहाँ खेलेंगे, जब देखेंगे तभी तो वो खेलेंगे। तो उनको एक अच्छी चीज है कि आपको कहीं बाहर नहीं जाना है, बनारस लखनऊ दिल्ली नहीं जाना है, आपको आपके शहर में है, आप आइए अपने बच्चों को दिखाइए। और छोटे छोटे बच्चे जब खेल रहे होंगे, लड़ रहे होंगे उस पॉइंट के लिए, और जीवन में भी आपको लड़ना है, तो खेल बहुत ही अद्भुत चीज है चाहे वो कोई भी स्पोर्ट्स हो। मुझे ऐसा लगता है कि एक अच्छी प्लेटफॉर्म पे आपको देखने को मिल रहा है, तो बिल्कुल अपने बच्चों को लेके आइए।
0: ओके, क्या नाम बताया आपने अपने इस पूरे सेगमेंट का जो होने वाला है?
1: ये ये जो फोर्थ यूपी स्टेट रैंकिंग, जिससे यूपी टीम सेलेक्ट होती है, और समर वैली स्कूल में। आनंद जी
0: क्या बात है, बहुत ही कमाल का टेबल टेनिस टूर्नामेंट होने वाला है 2026 का, राइट?
1: बिल्कुल, बिल्कुल। और बहुत सारी कैटेगरी है, अंडर 13, अंडर 15, 17, 19 एंड सीनियर कैटेगरी, यही बॉयज में है, यही वुमेन्स में है। तो बहुत, मतलब मैं बार बार गुजारिश कर रहा हूँ आनंद जी आपके प्लेटफॉर्म से कि जितने भी बच्चे हैं इस समय इस आवाज को सुन रहे हैं, या पेरेंट्स सुन रहे हैं, या दादाजी नानी जी सुन रही हैं, उसका फायदा उठाएं, पूरा फायदा उठाएं, क्योंकि ऐसे मौके बार बार नहीं आते।
0: क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी, आप जुड़े, इतना टाइम आपने निकाला।
1: थैंक यू, थैंक यू। इस खेल के लिए और स्पोर्ट्स के लिए जब तक इस दुनिया में हो ये आवाज आप सुनते रहेंगे।
0: वेरी नाइस, प्लेजर टॉकिंग टू यू सर, अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं कल। ओके, बाय सर, बाय बाय।

देखो यार, टेबल टेनिस टूर्नामेंट 2026 हो रहा है मुरादाबाद में। पहली बार इतना वंडरफुल जो है आपके लिए अरेंजमेंट्स किए जा रहे हैं, इतना वंडरफुल सेशन आपको देखने को मिलेगा पहली बार। सबसे पहले तो जोरदार तालियां, क्योंकि कुछ इंटरेस्टिंग हो रहा है अपने शहर के अंदर। तो मुझे लगता है यार, आपके पास मौका भी है, दस्तूर भी है और पूरा माहौल भी है, तो जाके एंजॉय करो।

0: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का थ्रिल, तो स्वागत है देवशांत जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
1: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।

यूपी इंटरनेशनल ट्रेंड शो 2026 की शुरुआत हो गई है लेडीज एंड जेंटलमैन। मैंने आपको कहा था अपनी मुरादाबाद की दाल को इसमें शॉर्टलिस्ट किया गया है, एक अलग पहचान मिलने वाली है अब अपनी मुरादाबादी दाल को। Yes, welcome back here once again. You are listening to FM Moradabad 89.6. सुन रहे आनंद को 9:39 हो गए स्टेशन क्लॉक में, 9:39 हो रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अभी आपको बताते हैं इस अमेजिंग ट्रेंड शो के बारे में। हाँ जी, तो यूपी इंटरनेशनल ट्रेंड शो 2026 जिसमें व्यापार, निवेश और नवाचार का एक महाकुंभ होने वाला है एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ जो होने वाली है आपको बता दें 25 सितंबर यानी कल से स्टार्ट होगा। 25 सितंबर से लेकर 29 सितंबर 2026 तक जो है ये होने वाला है इंडिया एक्सपो सेक्टर एंड मार्ट ग्रेटर नोएडा में आयोजित होने जा रहा है यूपी इंटरनेशनल ट्रेंड शो 2026। उत्तर प्रदेश के औद्योगिक क्षमता, नवाचार एंड कुछ और खास चीज़ें जो है यहाँ पर होंगी जिसको एक वैश्विक मंच पर प्रस्तुत करने का एक महा मौका, एक ग्रैंड मौका आपको मिलने वाला है। एंड इनफैक्ट ये मुरादाबाद के अंदर जो है ना बहुत सारी चीज़ें जो वहाँ पर मुरादाबाद से फीचर की जा रही हैं अपने शहर की, तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है कि चलो यार अपने शहर को तो ऑलरेडी बहुत अच्छी पहचान मिली हुई है लेकिन जब इस तरह की चीज़ों में और ज़्यादा अपने शहर की चीज़ें पहुँचती हैं तो बड़ा प्राउड और बड़ा फख्र होता है यार। तो मैंने आपको बता दिया भैया, देखिए कल जो है कल से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फेस्टिवल की शुरुआत हो रही है। एग्जैक्टली मैंने थोड़ी देर पहले आपको डेट भी बताई है, कल 25 सितंबर से 29 सितंबर के बीच जो है ये इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट ग्रेटर नोएडा में आयोजित किया जाएगा यूपी इंटरनेशनल ट्रेंड शो 2026 का बहुत ही स्पेशल महाकुंभ हो रहा है गाइज। एंड इसके अलावा और क्या चल रहा है ये भी मैं आपको इमीडिएटली बता देता हूँ। देखो यार बहुत सारी चीज़ें हैं जो फटाफट मैं आपको बताते रहता हूँ। आज की तीन कड़क बातें फटाफट ध्यान से सुन लो भाई साहब। हाँ जी, तो आज इन तीन इलाकों में जो है बत्ती गुल्ड रहने वाली है, ध्यान से सुन लो भैया। आज गुरुवार का दिन है एंड आवास विकास के प्रथम, दूसरा शिवपुरी और भैया एक और इलाका है जहाँ पर आज बिजली गायब रहेगी। 11 बजे से जो है बताया जा रहा है कि यहाँ पर बिजली अवेलेबल नहीं होगी। सो दो घंटे के लिए बिजली हो सकता है गायब चली जाए। अगर अभी आपके एरिया में लाइट नहीं है तो समझ जाओ आपके एरिया में 11 बजे तक लाइट आ जाएगी, और अगर आपके एरिया में भी लाइट है तो हो सकता है 11 बजे आपके यहाँ की लाइट चली जाए। अगर नहीं जाती तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिलहाल अभी बताया जा रहा है कि 8 बजे से 11 बजे तक लाइट नहीं होगी, तो यानी कि आप अगर इन एरिया में हैं तो शायद आपके यहाँ भी लाइट ना हो। चलिए बात करते हैं अभी आज के टेम्परेचर की, तो फिलहाल 35 डिग्री सेल्सियस पहुंच सकता है हाईएस्ट एंड लोएस्ट की बात करें तो 26 तक भी आ सकता है। तो ये है आज का मौसम, बाकी हल्के फुल्के बादल छाए रहेंगे, हल्की हल्की बारिश होने की भी संभावना है लेकिन सूर्य देवता को देखते हुए लग रहा है कि ऐसा कुछ होगा नहीं। चलो भाई फिलहाल आगे बढ़ते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन। एक छोटा सा सवाल मैंने आपसे पूछा था आज की सुबह, मैंने कहा था मुझे बताओ जरा अगर 5 पेन की कीमत 75 रुपये है तो 8 पेन की कीमत कितने रुपए होगी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था एंड इस पे ढेर सारे लोगों ने मुझे आंसर्स किए, थैंक यू वेरी मच बहुत सारे मैसेज करने के लिए। बट एक और फाइनल मौका आपको दे रहा हूँ मैं, एक बार और आइडेंटिफाई कर लूँ। अगर 1 पेन की कीमत 75 रुपये है तो 5 पेन की कीमत 75 रुपये है तो 8 पेन की कीमत कितनी होगी, समझ गए ना आप मेरा सवाल। तो इसका जवाब दे दो, मैं आपको 4 ऑप्शन दे रहा हूँ, ऑप्शन ए 100 रुपीज या ऑप्शन बी कितना है ये 110। हाँ जी, 100, 110, 120 या 125, इन चार में से कोई एक करेक्ट है, मैं आपको फिर से बता रहा हूं। ठीक है जी, एक बार फिर से अगेन रिपीट कर देता हूं, अगर 5 पेन की कीमत 75 रुपये है तो 8 पेन की कीमत कितनी होगी। 4 ऑप्शन आपके पास हैं जी, ऑप्शन ए 100 रुपये, ऑप्शन बी 110 रुपये, ऑप्शन बी मैंने बता दिया ऑप्शन सी बता रहा हूँ, ऑप्शन सी है 120, 110, 120, 125 या ऑप्शन आपके पास हैं। सो 110, 120 या 125, इन चारों में से कोई एक

जब आप अगर आप बता रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बता रहे तो बता दो भाई, ये गलत बात है, बताना चाहिए आपको। चलो भैया अभी लौट कर आ रहे हैं हम आपसे, कह रहे हैं वक्त मिलाओ, 8:42 हो गए और इसी बात पे गाना सुनो, बादशाह इन द हाउस। आप कहाँ जा रहे हैं? दिल्ली रोड जा रहे हैं? अच्छा ओके, आप रामपुर रोड जा रहे हैं। आप जहाँ भी जा रहे हैं मुझे भी बता दो यार। फिलहाल आप सुन रहे हैं आरजे आनंद को, यह है FM मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़ पे, जहाँ बातें होती हैं दिल से दिल तक, क्योंकि यह है आपके शहर का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। लेडीज एंड जेंटलमैन, गाना सुनते हुए आगे बढ़ते हैं, लौट कर आ रहा हूँ एक अमेजिंग क्वेश्चन के साथ वापस, इसके जवाब भी बताऊंगा यार।

0: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
1: सीने में दर्द, सांस फूलना या तेज धड़कन को बिल्कुल नजरअंदाज ना करें।
2: श्री साई हॉस्पिटल में डॉक्टर अखिल कौशिक डीएम कार्डियोलॉजी द्वारा
1: एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर एवं अत्याधुनिक कार्डियक कैथ लैब की सुविधा उपलब्ध है। वो भी किफायती रेट्स पर। स्वस्थ दिल, सुरक्षित जीवन। आज ही अपॉइंटमेंट ले। श्री साई हॉस्पिटल, दिल्ली रोड, मुरादाबाद। कॉल करें 7060002430।
3: सुनो ना, मुझे ज्वेलरी खरीदनी है।
4: तो चलो फिर, इतना सोचना क्यों है? शहर चलते हैं ना ज्वेलरी लेने।
3: नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, वहाँ पर बहुत ट्रैफिक रहता है और शोर भी बहुत होता है।
4: अरे नहीं,
5: अब ट्रैफिक की चिंता छोड़ो, क्योंकि बाबूराम सर्राफ का नया ज्वेलरी शोरूम ओपन हो गया है,
4: वो भी सिविल लाइंस में। ना ट्रैफिक की चिंता, ना शोर की। और हाँ, वहाँ ज्वेलरी खरीदने पर गोल्ड कॉइन जीतने का मौका भी है।
3: अच्छा?
4: हाँ, आपका वही पुराना एवं विश्वसनीय शोरूम बाबूराम सर्राफ, पता चैन मंदिर रोड, सिविल लाइंस, मुरादाबाद।
6: मेरा इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, लेकिन सोनिया डॉन को पकड़ना मुश्किल नहीं।
7: नामुमकिन, नामुमकिन, नामुमकिन।
1: लेकिन बॉलीवुड के गाने पकड़ना बहुत ही मुमकिन है। सुनिए एफएम मुरादाबाद 89.6 पे 90s बॉलीवुड के अमेजिंग गाने। ट्यून इन कीजिए एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो। बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

0: क्या बात है, एक बहुत ही बेहतरीन और वंडरफुल ट्रैक ये काफ़ी सुना है यार हमने। एंड फाइनली इस गाने को सुनने के बाद आपका स्वागत करते हैं आप ही के फेवरेट रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। ढेर सारे लोगों ने जवाब दिए थे मुझे, थैंक यू सो मच इतने वंडरफुल मैसेज और इतने प्यारे प्यारे आंसर करने के लिए।
1: Looking very good, very nice. Good morning, pineapple.
0: हाँ जी हाँ जी, गुड मॉर्निंग हो गई है यार, गुड मॉर्निंग हो गई है। थैंक यू सो मच गाइज इतने प्यारे प्यारे मैसेज करने के लिए। मैं वंस अगेन आपका दिल से थैंक यू करना चाहता हूँ और तालियां आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एग्जैक्टली उस पेन का राइट आंसर क्या है बहुत सारे लोगों ने दिया है, मैं अभी लौट कर आऊंगा तो जरूर बताऊंगा, लेकिन उससे पहले अभी आज का सवाल आप तक पहुँचा देता हूँ इमीडिएटली यार। ये देखो अभी फिलहाल शुरुआत हो गई है यहाँ पर बिंदास मॉर्निंग की, और जब बिंदास मॉर्निंग की शुरुआत हो जाती है तो कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग होता रहता है यहाँ। हाँ जी, तो आज का कड़क क्वेश्चन बहुत सिंपल है, एक डायलॉग प्ले कर रहा हूँ ऋतिक रोशन साहब का, बहुत ही फैबुलस फिल्म है इनकी ये। एंड ऑफ कोर्स अगर आपने ये गाना सुना होगा तो आपको याद आ जाएगा इस पिक्चर का नाम, बहुत ही खूबसूरत फिल्म है और बहुत बारी आपने ये फिल्म जो है देखी होगी आई एम श्योर, मैंने तो बहुत बारी देखी है। और इसमें जो डायलॉग है बहुत ही खूबसूरत है, अब देखो इस डायलॉग को आपको यहाँ से ध्यान से सुनना है। ये जो डायलॉग है इस डायलॉग में आवाज़ तो आपको पता है कौन से हीरो की है, लेकिन ये जो डायलॉग है वो कौन से फिल्म का है ये मैं आपसे पूछूंगा। 3, 2, 1 गो स्टार्ट। ये लीजिए सुनिए आज का डायलॉग
2: क्या जाता है। मिस्टर माथुर, आप इसे नीचा दिखाने के लिए जानबूझकर मुश्किल क्वेश्चन पूछ रहे हैं।
3: सबसे पहले प्रोग्राम में जाकर क्लिक कीजिए, जब विंडोज एक्सप्लोरर खुल जाए तो कर्सर को उस फाइल पर ले जाकर राइट क्लिक कीजिए, फिर बिना बटन छोड़े दूसरी ड्राइव में ले जाकर बटन छोड़ दीजिए, आपकी फाइल कॉपी हो जाएगी सर।
2: इट्स राइट, इट्स एब्सोल्युटली राइट।
4: यस होइला,
2: हाउ डू यू नो दिस?
3: आपने कहा था ना सर कि अपने बाप से सीख क्या, मैं अपने पापा से सीख क्या सर।
0: बताइए जरा कौन सी फिल्म का डायलॉग है, अगर आपको पता है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं 9837896896 पे, व्हाट्सएप कर सकते हैं मुझे इसी नंबर पे। एंड अगेन आपने मेरे को बताना है ये जो डायलॉग है वो कौन सी फिल्म का है, रिपीट कर रहा हूँ।
2: पूछ रहे हैं,
3: सबसे पहले प्रोग्राम में जाकर क्लिक कीजिए, जब विंडोज एक्सप्लोरर खुल जाए तो कर्सर को उस फाइल पर ले जाकर राइट क्लिक कीजिए, फिर बिना बटन छोड़े दूसरी ड्राइव में ले जाकर बटन छोड़ दीजिए, आपकी फाइल कॉपी हो जाएगी सर।
2: इट्स राइट, इट्स एब्सोल्युटली राइट।
4: यस होइला,
2: How do you know this?
0: यार बिल्कुल ये हो गया है पॉसिबल, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं अगर आपको समझ में आया है ये सवाल तो डेफिनेटली इसका जवाब पहुंचाओ यार 9837896896 पे। ठीक है जी, इंतजार कर रहे हैं आपकी व्हाट्सएप मैसेजेस का। धीरे-धीरे इस गाने को सुनते हुए आगे बढ़ते हैं, बहुत ही प्यारा ट्रैक, नहीं यूं लगता दिल तेरे बिना।

0: सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग, बिंदास मॉर्निंग, बिंदास
1: मॉर्निंग। अरे भैया इसकी बातें हैं चटपटी, गाने सुनाता है मस्त, और जब ये बोलता है ना तो भाई साहब मॉर्निंग और भी हो जाती है जबरदस्त। सुनिए बिंदास मॉर्निंग आज आनंद के साथ ओनली ऑन FM मुरादाबाद 89.6 FM। DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
2: You are listening to the biggest hits. The biggest hits. Non-stop.
3: बिल्कुल जी मजा आएगा, सुबह के 10 बजने वाले हैं। ऑफ कोर्स आपको मजा आएगा क्योंकि अभी मैं जब लौट कर आऊंगा तो आपसे एक और खास बात करने वाला हूँ। स्टेशन की घड़ी में 10 बज चुके हैं भाई, 10:02 हो गए। आप अपनी ऑफिस के लिए निकल रहे हैं, ऑल द वे बेस्ट। ऐसे ही सुंदर आनंद को अभी लौट के लाता हूँ। ये है आपका स्टेशन ऑफ द नेशन, दिस इज FM मुरादाबाद। रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, फ्रीक्वेंसी याद रखिए 89.6। फिलहाल वॉल्यूम बढ़ाओ, सुनिधि चौहान राइट हियर। एंजॉय करते हैं इस गाने को।

0: भैया प्यार का हो या फिर यार का हो, दिल दीवाना होना चाहिए, हमारा दिल आपका दीवाना। 10:04 हो गए, आप सुन रहे हैं आरजे आनंद को, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग है, 89.6 आपने ट्यून इन किया है। गुड मॉर्निंग तो होती है भैया अच्छी वाली, क्योंकि हम गुड गुड बातें जो आपके साथ करते हैं। देखिए दिवाली सेलिब्रेशन जो है बहुत करीब है, दिवाली है ना, लेकिन अभी एक इन्फॉर्मेशन आई कि दिवाली पर इस बार खरीदारी थोड़ी सी महंगी हो सकती है बॉस, जैसे ग्लास बर्तन और टेबल वेयर इन और थोड़े से फर्नीचर, इन सब के जो है थोड़े से दाम बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि भैया हो सकता है इन दिवाली पर, इस दिवाली के मौके पर इन चीज़ों के दाम थोड़े से बढ़ जाएँ, जो ये अपने डेकोरेशन के आइटम होते हैं हो सकता है इनके रेट थोड़े बढ़ जाएँ। वैसे यार फेस्टिवल टाइम पे तो वैसे भी बढ़ जाता है यार, लेकिन अगर बजट से बाहर चले जाता है तो थोड़ी दिक्कत हो जाती है जी। मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि देखो, अगर आपके आसपास में अगर आपको कोई ऐसी सूचना देता है कि भैया यहाँ चले जाओ, यहाँ पे कोई फॉर्म भरा जाएगा, आपको पैसा मिलेगा, वहाँ चले जाओ, वहाँ पे जाकर ये करा लो करा लो, तो किसी की बातों में ऐसे आया नहीं करना चाहिए, वैसे किसी की बातों में आना नहीं चाहिए, मतलब क्योंकि बहुत सारे लोग ना हमें ऐसे मैनिपुलेट करते हैं, डोमिनेटिंग पर्सन बहुत है आजकल, साइबर क्राइम बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, तो किसी की बातों में बिल्कुल मत आओ भाई। एंड अगर आपको सही जानकारी चाहिए तो आप अपने आसपास में जो जहाँ पर आपको लगता है कि हाँ ये जानकारी यहाँ सही मिल सकती है, जैसे बहुत आशा करती होती हैं, आपकी ANM होती हैं जो जिनके पास जानकारी होती है, आप उनसे पूछें या फिर आप कहीं पर जनसेवा केंद्र पर जाएं, पूरी जानकारी लें आसपास में, तभी कोई चीज़ में जो है जाके आप पार्टिसिपेट करें, क्योंकि ऐसे आजकल भाई साहब पैसे बनाने के लिए बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं, ठीक है, तो ऐसे किसी की बातों में नहीं आना है और अपनी जो मेहनत की कमाई है उसको इधर उधर नहीं गंवाना है। फिलहाल के लिए गणपति बप्पा मोरिया, गणपति विसर्जन जो है बहुत सारे शहरों में चल रहा है, अपने गणपति उत्सव तो यहाँ भी चल रहा है और यहाँ पर भी अभी भी विसर्जन चालू है लगातार, और कल अनंत चतुर्दशी है फाइनली, गणपति बापा कल अपने घर चले जाएंगे एंड इस बार 12 दिनों के लिए धरती पर विराजमान थे, और आज फाइनली गणपति बापा की लास्ट महाआरती होने वाली है शाम को, कल सुबह की फाइनल, उसके बाद गणपति बापा होंगे विसर्जित। तो हमारी तरफ से भी आप सभी को एक बार फिर से गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं,
1: अगले बरस आना है आना ही होगा।
0: गणपति बप्पा मोरिया, अभी ये गाना जरूर प्यारा सा गणपति भजन सुनाऊंगा आपको, लेकिन उससे पहले मैंने आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछा था, ये कौन से फिल्म का डायलॉग है ये आपने बताना है मेरे को, फटाफट से रिपीट कर रहा हूँ।
2: सबसे पहले प्रोग्राम में जाकर क्लिक कीजिए, जब विंडोज एक्सप्लोरर खुल जाए तो कर्सर को उस फाइल पर ले जाकर राइट क्लिक कीजिए, फिर बिना बटन छोड़े दूसरी ड्राइव में ले जाकर बटन छोड़ दीजिए, आपकी फाइल कॉपी हो जाएगी सर।
3: इट्स राइट, इट्स एब्सोल्युटली राइट,
0: यही आपको बताना है 9837896896 पे। अभी जो आपने सुना डायलॉग वो कौन से फिल्म का है, ऋतिक रोशन पर पिक्चराइजेशन, मूवी बहुत ही अच्छी थी, अगर आपको समझ में आई है तो बताओ मुझे इस मूवी का नाम। और अभी के लिए हमारी तरफ से आप सभी को गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं, एक बार फिर से बप्पा का विसर्जन हो रहा है कुछ जगहों पर आज, कुछ जगहों पर कल होगा, हमारी तरफ से ढेरों शुभकामनाएं, जाते जाते गणपति बप्पा आपकी सारी इच्छाएं पूर्ण करें, आपके सारे विघ्नों को हरें।

0: चलिए गाइस, फिलहाल मेरा जाने का समय हो गया। मैंने एक छोटा सा सवाल आपसे पूछा था आज की सुबह, आपने मेरे को बस बताना था ये जो डायलॉग है वो कौन से फिल्म का है, यही आपने मेरे को मैसेज करके बताना था।
1: तो आप इसे नीचा दिखाने के लिए जानबूझकर मुश्किल क्वेश्चन पूछ रहे हैं।
2: सबसे पहले प्रोग्राम में जाकर क्लिक कीजिए, जब विंडोज एक्सप्लोरर खुल जाए तो कर्सर को उस फाइल पर ले जाकर राइट क्लिक कीजिए।
0: एंड राइट आंसर इज दिस इज द राइट आंसर फ्रॉम द फिल्म, कोई मिल गया है। इसके जवाब मेरे पास बहुत सारे हैं, कुछ लोगों ने तो भाई साहब महा गलत जवाब दिए, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ, मतलब ऐसे ऐसे जवाब जो उम्मीदें भी नहीं होंगी, ऐसे ऐसे आंसर्स मेरे पास हैं। लेकिन अभी फिलहाल के लिए रवि जी बताइए, रवि जी आपके लिए तालियां, बाकी लोगों के लिए छोटा सा कंग्रेचुलेशन। थैंक यू दर्पण भाई, आपने भी सही जवाब दिया है, बहुत बहुत बधाइयाँ। और बाकी लोगों के लिए दिल से थैंक यू, आप लोगों ने मैसेज किए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, एक बार मैं दिल से थैंक यू करना चाहता हूँ। जल्दी जल्दी चलते चलते आपके नाम को यहाँ पर शामिल करना चाहता हूँ। भाई साहब इतने सुंदर सुंदर मैसेज आप करते हो यहाँ पर, थैंक यू वेरी मच। चलिए आपके मैसेज को फटाफट पढ़ लेता हूँ। ये देखिए रेडियो वाले आनंद को गुड मॉर्निंग पहुंचाते हैं विक्की सागर जी, अमित वर्मा जी जुड़े हैं हरथला से, गुड मॉर्निंग सर। रिहाना जी गुड मॉर्निंग पहुंचाती हैं, और ये हमारे पास जुड़ चुके हैं चमन लाल साहब। मैंने पूछा था ना अगर आपके पास 5 पेन है और उसकी कीमत 75 रुपए है तो 8 पेन की कीमत कितनी होगी। द राइट आंसर इज 120, लेकिन इन्होंने लिखा है 600। भाई मुझे मारो। और ये हमारे साथ कश्मीर से महराजुद्दीन साहब सही जवाब पहुंचा रहे हैं, गुड मॉर्निंग सर कैसे हाल चाल है। राइट आंसर 120 रुपए होंगे सर, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच अपना आंसर देने के लिए। ये निरांशी यादव हमारे साथ जुड़ रही हैं आज की सुबह, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ सहारनपुर से जोन रोजी पल विलीस हमारे रेगुलर लिसनर जुड़ते हैं, लिखते हैं अपनापन जताने वाले बहुत मिल जाते हैं पर निभाने वाले बहुत कम मिलते हैं, क्या बात है सर। फिरोज हमारे साथ जुड़ चुके हैं आज की सुबह, और इन्होंने लिखा है सर 100 रुपए होंगे जी, थोड़ा सा जवाब गलत हो गया आपका, वैसे पूरा ही गलत है। प्रिंस भाई मेरे साथ जुड़े हैं सही जवाब के साथ, थैंक यू मेरे भाई जुड़ने के लिए, इनको शो अच्छा लग रहा है। हाय गुड मॉर्निंग जी कैसे हालचाल है। ये जारिफ बाबू जी जुड़ रहे हैं हमारे साथ एमबीडी से, गुड मॉर्निंग पहुंचाते हैं सही जवाब के साथ। एंड कोमल सही जवाब दे रही है मुझे आज की सुबह, थैंक यू कोमल। दुर्गेश भाई जुड़े थे हमारे साथ सही जवाब के साथ, थैंक यू दुर्गेश भाई। ठीक है रोड़ा चंदन नगर से मुझे गलत जवाब पहुंचा रहे हैं आज की सुबह सर, गलत हो गया आपका आंसर। ललिता कश्यप नवीन नगर से मेरे साथ जुड़ गई हैं आज की सुबह सही जवाब के साथ। मंसूरी कॉलोनी मुरादाबाद से इरशाद हुसैन अंसारी सैयद शारी गली जी लिखते हैं आनंद वेरी गुड मॉर्निंग आप कैसे हो, और इन्होंने सही जवाब दिया, बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी। गुड मॉर्निंग जी, अमित यादव आंसर लिखते हैं क्रिश, गलत हो गया जवाब, थैंक यू दर्पण जी फॉर पार्टिसिपेटिंग। एंड गीता कश्यप लक्ष्मी भाभी हमारे साथ जुड़ गई हैं आज की सुबह, गुड मॉर्निंग पहुंचा रहे हैं, थैंक यू गाइस हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, और अभी फिलहाल मैं यहाँ से जाता हूँ, लौटकर आपको मिलूंगा इसी स्टेशन पे कल। जी हाँ फिलहाल बहुत ही सुंदर सुंदर आप लोग मैसेज करते हो, उसके लिए बस मेरे पास अभी थैंक यू ही है, इसके अलावा और कोई शब्द नहीं है इतने प्यारे और वंडरफुल मैसेज के लिए। मेरे पास अभी
3: उस मोड़ पे वो मुट्टी
0: मैसेज आ रहे हैं, लेकिन अभी टाइम नहीं है, फिलहाल कल पढ़ते हैं, अभी के लिए निकलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, खूब सारा अपना ख्याल रखिए अच्छे से, और सेफली अपने ऑफिस पहुंचे अगर आप ऑफिस जा रहे हैं तो, बाकी आप जहां भी हैं ऐसे स्टे ट्यून रहिए और रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, कल मिलते हैं, बाय बाय।

हुस्न को चांद, जवानी को कमल कहते हैं, देखकर हम तुझे एक शोक गजल कहते हैं। उफ ये संगे मरमर सा तराशा हुआ शफाफ बदन, देखने वाले तुझे ताज महल कहते हैं।

0: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
1: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
2: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
1: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।
2: सुनो ना, मुझे ज्वेलरी खरीदनी है।
3: तो चलो फिर, इतना सोचना क्यों है, शहर चलते हैं ना ज्वेलरी लेने।
2: नहीं मैं नहीं जाऊंगी, वहाँ पर बहुत ट्रैफिक रहता है और शोर भी बहुत होता है।
3: अरे नहीं,
4: अब ट्रैफिक की चिंता छोड़ो क्योंकि बाबूराम सर्राफ का नया ज्वेलरी शोरूम ओपन हो गया है,
3: वो भी सिविल लाइंस में। ना ट्रैफिक की चिंता, ना शोर की, और हाँ वहाँ ज्वेलरी खरीदने पर गोल्ड कॉइन जीतने का मौका भी है।
2: अच्छा?
4: हाँ, आपका वही पुराना एवं विश्वसनीय शोरूम बाबूराम सर्राफ, पता चैन मंदिर रोड, सिविल लाइंस, मुरादाबाद।

वाली मॉर्निंग है, यानी कि मॉर्निंग मसाला शो में आरजेरीना के साथ अब कनेक्ट हो गए हैं। आई नो कि आप सोच रहे होंगे कि ओहो आरजे खुशी जी आने वाली है, लेकिन आरजे खुशी जी आज तो छुट्टी पर है, तो आरजेरीना आप सभी के साथ कनेक्ट हो गई है। मॉर्निंग मसाला शो में करेंगे ढेर सारी बातें और आप सभी को प्यारी प्यारी गुड वाली मॉर्निंग है जी। सत श्रीकाल, राम राम जी, मेके की हाल चाल है। आई नो कि आप सभी बहुत चंगे होंगे, बहुत ठीक होंगे। और साथ ही साथ समय की बात करूं तो देखिए 10:30 यानी कि 10:30 हो चुके हैं और आज की तारीख 24 सितंबर और कल 25 यानी कि गणेश भगवान जी विसर्जित हो जाएंगे, अपने घर चले जाएंगे। लेकिन एक तो ये परंपरा है कि हम उनका विसर्जन करते हैं इतने दिन के बाद, लेकिन भगवान कभी कहीं नहीं जाते, वो आपके अंदर ही रहते हैं, आपके घर ही रहते हैं। बस उनको परखने की आपको और उनको अच्छा फील करने की आपको ज़रूरत है, अपने अंदर झांकने की ज़रूरत है कि भगवान तो हमारे साथ ही है, भगवान कभी नहीं जाते अपने बच्चों को छोड़कर। और हम यहाँ पर करेंगे ढेर सारी बातें। आज 24 सितंबर है, क्या डेज मनाए जाते हैं, और साथ ही साथ आप सभी के लिए गोल्डन चांस है कि अगर आप घूमना चाहते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं, तो आपके पास लकी चांस है जहां पर हम विनर बनाने वाले हैं। अगर जो भी आप राइट आंसर देंगे तो आप वहां पर घूमने जा सकते हैं 7 अजूबे। हाँ जी, 7 अजूबे जाना है आपने, लेकिन पूरा प्रोसेस क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा उसके बारे में हम बताएंगे, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा पेशेंस बना के रखना है और हमें मैसेज करना है। नंबर है 9823789689 पर मैसेज कर सकते हैं। जो भी आप गाना सुनना चाहते हैं बिल्कुल आपने मैसेज करना है, आराम से, धीरे धीरे, होले होले, ठीक है जी, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी आपने, ओके। चलिए फिलहाल गाना सुनते हैं, बहुत ही शानदार वाला, उसके बाद आप सभी के गाने।

घटकर हो गया है 22.5%। यानी कि त्योहार पर हर किसी घर में तेल जाना चाहिए, हर किसी घर में दिए जलना चाहिए, हर किसी के घर में पूरियां कचौड़ियां तलनी चाहिए। इसीलिए सरकार ने ये देखते हुए इस नतीजे पर आई है कि

अब ऑयल को सस्ता कर दिया जाएगा। अह क्या बात। तो आई होप कि आप सभी बहुत खुश होंगे, है ना। हाँ जी, आपके चेहरे के मुस्कान बता ही देती कि आप बहुत ही खुश हैं। चलिए फिलहाल गज वाली मॉर्निंग है जी, मॉर्निंग मसाला शो में आरजे रीना के साथ आप कनेक्टेड श्रोताओं। और समय की बात करूँ तो 10:52 हो चुके हैं। और अगले मैसेज की बात करूं तो गोविंदपुर से हमारे साथ जिला मुरादाबाद चौराहा से कनेक्ट होते हैं राजा हुसैन जी, और कहते भी किसी भी गाने में हमें शामिल कर लीजिएगा। ओके सर, किसी भी गाने में आपको शामिल करेंगे, लेकिन जो गाना मैं हरियाणवी ट्रैक चलाने वाली हूं, आई होप कि आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाला है। अगले मैसेज की बात करूं तो राम राम सीताराम जी, अजीत कशाना जी, माया देवी, ऋतिक और आदित्य कशाना लदावली जिला मुरादाबाद से। अगले मैसेज की बात करूं तो हाय दी, कैसी हो आप, बहुत अच्छे हैं जी, आपकी दोस्त अफरोज फातिमा कनेक्ट होती है और ये गाना सुनना चाहती है, तेरी मासूमियत ने हमें बंजारा बना दिया। क्या बात है जी। और साथ ही साथ इनकी दोस्त है, बेस्ट फ्रेंड लैबा काजमी, और साथ ही साथ इनकी बहन है नजमा रामपुर से, सबनम भी। ओके चलिए, इन्हीं के साथ आपको ये हम गाना सुनवाएंगे। फिलहाल आप गाने को बिंदास सुनते रहिए और यूं ही आरजे रीना के साथ कनेक्ट रहिए, ओनली ऑन एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। आई होप कि आप सभी ने ब्रेकफास्ट तो कर ही लिया होगा, अगर नहीं करा होगा तो कर लीजिए, क्योंकि अक्सर ये होता है कि एक तो हम लेट उठते हैं और ऊपर से जब लेट उठते हैं तो हर काम लेट ही होता है। बहुत से अपने ऑफिस पहुंच गए हैं और वहां पर बैठ के काम करते करते रेडियो ईयरबड्स लगा के सुन रहे हैं धीमी धीमी आवाज में, और जो ट्रैवलिंग कर रहे हैं उनसे की बात कहना चाहेंगे कि देखिए, अगर आप ट्रैवलिंग में हैं तो वॉल्यूम बढ़ाना बनता है, अगर वॉल्यूम नहीं बढ़ाएंगे ना तो सच्ची कह रहे हैं मजा नहीं आने वाला है। तो इसीलिए जब गाड़ी में हो आप तो वॉल्यूम जरूर बढ़ाकर रेडियो सुनना चाहिए, आपको और मजा आता है। और साथ ही साथ और भी ढेर सारे हमारे पास मैसेज आ गए हैं जिनको मैं शामिल करती रहूंगी, बस आप बेधड़क बिंदास होकर अपना मैसेज हमें फॉरवर्ड करते रहिएगा। नंबर है 9823789689।

अगले मैसेज की बात करूं तो गुड मॉर्निंग रीना जी, वेरी गुड मॉर्निंग जी। ये मुरादाबाद गांगन दिल्ली वाली कपिल कश्यप जी कनेक्ट होते हैं हमारे साथ। कैसी हो आप? बहुत अच्छे हैं जी। रिक्वेस्ट है गाने की, अरे गाना बताइए, रिक्वेस्ट तो अपने आप पूरी हो जाएगी। चलिए फिलहाल हम गाने की तरफ बढ़ते हैं। एक बहुत ही शानदार गाना जो हम प्ले करने वाले हैं आप सभी के लिए, तो इस गाने को एंजॉय करें।

0: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
1: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
2: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
1: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 705-07-0552।
3: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल, जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
4: क्या आप एक ही जगह पर दुनिया की सैर और जबरदस्त रोमांच का मजा लेना चाहते हैं? तो चले आइए सात अजूबे पार्क। यहाँ शानदार अजूबों के दीदार के साथ आपको मिलेगा तीरंदाजी और मैकेनिकल बुल राइड जैसी एक्टिविटीज का फुल ऑन थ्रिल। तो पूरे परिवार के साथ आ जाइए सात अजूबे पार्क, न्यू मुरादाबाद।
5: हेलो जी, गुड वाली मॉर्निंग है। बिंदा मॉर्निंग मसाला शो में आरजे रीना के साथ अब कनेक्ट है। और बात करूं तो देखिए दूसरे घंटे की शुरुआत हो गई भैया। हाँ जी, यानी कि 11:03 हो चुके हैं और बात आती है सात अजूबे। यानी कि FM मुरादाबाद ने पार्टनरशिप, यानी कि आप सभी के लिए एक बहुत ही शानदार मौका है। अगर आप सात अजूबे पार्क घूमना चाहते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं, तो बिल्कुल जा सकते हैं, क्योंकि हमारे

पास उसके लिए है आप सभी के लिए गेस कार्ड, जिसको आप अगर विनर बनते हैं तो वो आप लेकर जा सकते हैं और सात अजूबे पार्क में आराम से एंजॉय कर सकते हैं, घूम सकते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ दो ही जाना है आपने। तो हम आप सभी के लिए लेकर आने वाले हैं एक कड़क सवाल और फिर जो पहले आंसर देता है कहते पहले आओ पहले पाओ, तो आप बन जाएंगे विनर। और आज यानी कि 24 तारीख से लेकर 31 तारीख तक ये आपके पास मौका है। तो आप चाहते हैं कि भैया हम घूम सकते हैं, फ्री में एंट्री मिल सकती है, एंजॉय कर सकते हैं, अगर आप पास दिखाते हैं तो कोई आपको रोक टोक नहीं करेगा, आप आराम से दो जा सकती हैं। अगर आप विनर होते हैं तो आप अपने साथ एक और किसी को लेकर जा सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, घूम सकते हैं। तो चलिए लेकर आने वाले आप सभी के लिए कड़क सवाल, लेकिन उससे पहले कुछ मैसेज हैं, मुझे लगता है कि वो भी शामिल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए किनका क्या मैसेज आता है हमारे पास। कश्मीर से मिराज उद्दीन जी कनेक्ट होते हैं और गाने की रिक्वेस्ट करते हैं, ये गोरी है कलाइया पिन्हा दे मुझे हरी हरी चूड़िया। गुड मॉर्निंग पर जाती हैं अखी जी, वेरी गुड मॉर्निंग। हां जी गुड मॉर्निंग रीना जी, कैसी हैं आप? बहुत अच्छी हैं जी। कहाँ गए थे, छुट्टी थी आपकी? नहीं नहीं हम कहीं नहीं गए थे, हम एक्चुअली बहुत सा काम रहते हैं सर, तो हम कल वहाँ बिजी थे इसीलिए हम आ नहीं पाए आप सभी के साथ, कल इवनिंग मस्ती शो में कनेक्ट नहीं हो पाए। लेकिन आरजे आनंद ने आप सभी के साथ ढेर सारी बातें करी और आपको मज़ा भी आया होगा आई होप, कि अलग अलग आवाज़ें सुनने को मिलती हैं तो बहुत अच्छा लगता है ना। और ये गाना सुनना चाहते हैं, हरियाणवी ट्रैक है, मैं 18 की तो 40 का। ओके क्या कहना है कि रेडियो का सर्वर डाउन चल रहा है, अगर अभी भी आपको ऐसा लग रहा है तो आप मैसेज करके बता सकते हैं हमें, नंबर है 9823789689 ताकि देखा जाए भैया क्या दिक्कत आ गई है।

अगले मैसेज की बात करूं तो हेलो गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग जी, ये हमारे साथ मायने में जी प्रिंस मुरादाबाद से कनेक्ट होते हैं और एक गाना सुनना चाहते हैं। डेफिनेटली हम आपको ये गाना सुनाएंगे। चलिए फिलहाल एक और गाना सुनते हैं और लौट कर आते हैं।

साबिर कुमार की आवाज में, लता मंगेशकर की आवाज में बहुत ही शानदार वाला आपने गाना एंजॉय किया है, गोरी हो कल आइया। आज का अर्जुन मूवी से आपने ये गाना एंजॉय किया है श्रोताओं, और समय की बात करूं तो 11:17 हो चुके हैं। और साथ ही साथ आज का जो डे है भैया, बहुत ही खास है, बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि आज है 24 सितंबर, और 24 सितंबर को मनाया जाता है, यानी कि बहुत ही खास डे जिसका हम ध्यान बहुत कम देते हैं और गंदा करने में सबसे आगे रहते हैं। लेकिन अब क्या करें, हम अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो खुद ठीक नहीं करते हैं, सिर्फ और सिर्फ इसलिए होता है। तो आज का जो डे है, आज मनाया जाता है विश्व समुद्री दिवस। जी, इस दिन समुद्री दुनिया की अहमियत को समझने के लिए हर साल ये डे मनाया जाता है 24 सितंबर को। यानी कि एक दिन का मकसद सिर्फ हजारों और समुद्र की बात करना नहीं है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री परिवहन, हजारों की सुरक्षा और समुद्री पर्यावरण की रक्षा के प्रति लोगों को जागरूक करना है। दुनिया के अलग अलग देशों के बीच बड़ी मात्रा में यानी कि बात की जाए, समुद्री रास्तों से पहुंचा जाता है, इसीलिए समुद्र में काम करने वाले लोगों की सुरक्षा और हजारों की सुरक्षित आवाजाही और समुद्र को प्रदूषण से बचाने के लिए ये डे मनाया जाता है, क्योंकि समुद्र सिर्फ पानी नहीं बल्कि दुनिया को जोड़ने वाला एक बड़ा रास्ता है। आपने देखा होगा कि कहीं भी जाते हैं तो समुद्र के बीच से यानी कि रास्ते बनाए जाते हैं, ट्रेन की पटरियां है वो निकाली जाती हैं, जिसका हम गाड़ी में से या ट्रेन में से बैठ के हमें देखकर व्यू बहुत ही फैंटास्टिक लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही आनंद अनुभूति के साथ हम बाहर का नज़ारा देखते हैं। लेकिन साथ ही साथ उसकी सुरक्षा और उसका बचाव किसको करना है, हमें ही करना है, क्योंकि हम अक्सर देखा जाता है ऐसे नदियों में, गंगा जी में, समंदर में ऐसे ही कूड़ा कचरा फेंक देते हैं, लेकिन कभी ये नहीं सोचते कि जिसमें हम कूड़ा कचरा फेंक रहे हैं वो पानी दूषित होता है और फिर पर्यावरण में मिल जाता है, और फिर वही दूषित हवा हमारे घरों तक आती है, हमें सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, फिर बैक्टीरिया बीमारी फैलती है। तो इसके जिम्मेदारी किसको करनी है, किसको उठानी है, ये सिर्फ और सिर्फ हम उठा सकते हैं, पड़ोसी या कोई दूसरा कोई नहीं कर सकता है। जब आप करेंगे तो आपको देखकर और भी होंगे, वो भी कहेंगे बिल्कुल स्वच्छ करना है हमें अपने समुद्र को, जल को और गंगा जी को। तो देखिए, शुद्ध हवाएं भी आपको मिलेंगी, और वहाँ पर आप घाट के पास बैठेंगे ना तो बड़ा ही एक अलग ही आनंद की अनुभूति होगी आपको, लेकिन वो तब होगी जब आप साफ रखेंगे, तभी होगी, ऐसे नहीं होगी। चलिए फिलहाल मैसेज की तरफ बढ़ते हैं। मंसूरी कॉलोनी मुरादाबाद से इरशाद हुसैन अंसारी जी कनेक्ट होते हैं। सैयद चारी कली जी, मेराज अंसारी, बाबू अंसारी, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? बहुत अच्छे हैं जी, आपका शो मॉर्निंग मस्ती सुन रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। और साथ ही साथ ये ट्रिक रिक्वेस्ट करते हैं, यानी कि गाना सुनना चाहते हैं। अजनबी कौन हो तुम, लता मंगेशकर की आवाज में गाना सुनना चाहती हैं। रीना जी, खुशी जी कैसी हैं? अजी खुशी जी एकदम फैंटास्टिक है, बिंदास है, बेधड़क है, बहुत अच्छी हैं। अगले मैसेज की बात करूं तो गुड मॉर्निंग रिस्पेक्टेड होस्ट, एंड ये हमारे साथ कनेक्ट होते हैं जनकपुरी सहारनपुर से जोन रोजेस पलवलील जी, और ये गाना सुनना चाहते हैं, ये दिल तुम बिना लगता नहीं, इज्जत मूवी से ये गाना सुनना चाहते हैं। तो सर, ये वाला जो गाना है हम आपको डेफिनेटली सुनाने वाले हैं, और साथ ही साथ आप सभी के लिए मैं कड़क सवाल भी लेकर आ गई हूँ, लेकिन जो सबसे पहले आंसर देगा वही 7 अजूबे पार्क में घूमने जा सकते हैं, क्योंकि आज से शुरू हो चुका है और ये आज से लेकर 31
सितंबर तक आप एंजॉय कर सकते हैं, घूम सकते हैं, अपने साथ एक और को भी लेकर जा सकते हैं। क्योंकि कहीं भी जाए अकेले जाने में ना बड़ा थोड़ा लगता ना अजीब सा कि नहीं यार कोई तो साथ में होना चाहिए, तो बड़ा मज़ा आता है ना घूमने के लिए। तो आप अपने साथ एक किसी और को भी ले जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको राइट आंसर तो पहुँचाना पड़ेगा मेरी जान, अदरवाइज कतई भी एंट्री नहीं मिलेगी आपको। पैसे लगेंगे तभी एंट्री मिलेगी, अदरवाइज बिल्कुल भी नहीं। तो आज का हमारा आप सभी के लिए क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। आप मुरादाबाद के रहने वाले हैं और आपको ना पता हो ये आंसर, ऐसे कैसे हो सकता है। तो आज का हमारा क्वेश्चन है, मुरादाबाद को पहले किस नाम से जाना जाता था। बस इतना छोटा सा आपने काम करना है। और क्या करना है आपने, हमें व्हाट्सएप मैसेज करना है, आप आसानी से बता सकते हैं। नंबर है 9837896896 पर आपने मैसेज करना है और आप आसानी से आंसर बता सकते हो, फॉरवर्ड कर सकते हो, लेकिन गूगल सर्च नहीं करना है आपने, ठीक है। कि मुरादाबाद को पहले किस नाम से जाना जाता था। बस इतना सही काम करना है, जल्दी जल्दी बताइए मैसेज करके कि मुरादाबाद को पहले किस नाम से जाना जाता था। जल्दी जल्दी करिए, तभी आप राइट आंसर पहुंचा पाएंगे, अदरवाइज कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन है। और एक गाना है ना, इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता, तो आप चाहते हैं साथ अजूब

ये पार्क जाए तो आंसर तो देना पड़ेगा रे बाबा कि मुरादाबाद को पहले किस नाम से जाना जाता था। चलिए चलिए सोचिए और मैसेज करिए। फिलहाल गाना हरियाणा।

0: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
1: सिर दर्द, लकवा, ये रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
2: सेवा से संकल्प जगे, संकल्प से हर जन जुड़े।
3: यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के 25 वर्षों के जनसेवा के संकल्प को आगे बढ़ाने के लिए कृत संकल्प है नए भारत का नया उत्तर प्रदेश।
2: स्वच्छता, स्वास्थ्य, सुरक्षा, शिक्षा, समृद्धि और सुशासन, प्रदेश सरकार आज हर क्षेत्र में रच रही है नया इतिहास।
3: तो आइए आप भी 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक सेवा संकल्प अभियान का हिस्सा बनिए, प्रदेश की विकास यात्रा में भागीदार बनिए।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी।

हेलो जी, गुड वाली मॉर्निंग है, यानी कि मॉर्निंग मसाला शो में। और समय की बात करूँ तो 11:31 हो चुके हैं श्रोताओं। और भैया, दिवाली यानी कि पूरा अभी आराम से 2 महीने हैं, यानी कि फिलहाल अभी बात करूँ तो सितंबर फिलहाल तो ख़त्म होने के कगार पर ही है। और बात बीच की जाए तो अक्टूबर यानी कि 19 नवंबर को दिवाली है। और उससे पहले ही ये कहा जा रहा है कि दिवाली के मौके पर देखिए, हम बहुत से सामान खरीदते हैं, बर्तन खरीदते हैं, झाड़ू खरीदते हैं, ग्लास वेयर, टेबल वेयर और घरेलू बर्तन जो खरीदते हैं वो अब उसमें आप बढ़ोतरी देखेंगे। जी, दिवाली के मौके पर कुछ चीज़ें सस्ती होंगी तो कुछ चीज़ें महंगी भी होंगी। दिमाग बड़े अच्छे से गेम खेल लेते हैं ना। देखिए, अब कुछ चीज़ें सस्ती हो रही है तो कुछ चीज़ें बड़ी महंगी हो रही है, लेकिन फिर भी क्या करें, दिवाली तो मनानी है ना, दिवाली फीकी नहीं जानी चाहिए, है ना। और चलिए, इसी के साथ आपके मैसेज भी फीकी नहीं जाने चाहिए। हेलो जी, गुड मॉर्निंग रीना जी, क्या हाल है आपके? बहुत अच्छे हैं जी, उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक होंगी। आई हाँ जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज मॉर्निंग मसाला शो में आपको सुनकर बहुत अच्छा लग रहा है। काफ़ी कभी कभी जब आप मॉर्निंग मसाला शो लेकर आती है तो सुबह का माहौल और भी खूबसूरत हो जाता है। क्या बात है जी। और सुबह सुबह की ठंडी ठंडी हवा निकली हुई सूरज किरणों के साथ काफ़ी एक और प्यारी सी चुस्की, यानी कि चाय कॉफ़ी की एक प्यारी सी चुस्की, और उस पर उसी के साथ साथ आपकी आवाज़ के साथ इतने प्यारे प्यारे मैसेज और गाने सुनकर खुशनुमा हो जाता है सुबह का जो वेदर है। क्या बात है जी। साथ ही साथ ये एक फरमाइश करते हैं गाने की, जो कि सत्येंद्र सरताज जी की टाइटल ट्रैक सॉन्ग है ये। डेफिनेटली हम ये गाना आपके लिए प्ले करेंगे। थैंक यू सो मच, आप इतना प्यारा मैसेज भेजते हैं, बड़ी लंबी चौड़ी मैसेज भेजते हैं आप, यानी कि मोहम्मद असीफ जी ने ये मैसेज भेजा है, बहुत ही खूबसूरत है। और इन्होंने बोला है कि थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है रेडियो में, कभी कभी आवाज़ बंद हो जाती है फिर अचानक शुरू हो जाती है। ओके, चलिए हम इशू का जो है ना ये सोल्यूशन हम ज़रूर निकालते हैं।

अगले मैसेज की बात करूं तो ये हमारे साथ कनेक्ट होती हैं, बबली अनजान जी, गीता कश्यप जी, लक्ष्मी कश्यप जी, प्यारी प्यारी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग जी। बहुत ही प्यारा ये गाना सुनना चाहती हैं, सो इस गाने को हम डेफिनेटली सुनवाएंगे आप सभी को। साथ ही साथ अगले मैसेज की बात करूं तो हर हर महादेव, रीना जी क्या हाल है आपके? बहुत अच्छे हैं जी, आप बताइए कैसे हैं। ये हमारे साथ कनेक्ट होते हैं बबलू सैनी मुंबई महाराष्ट्र से, और गाने की बोल है, चिट्टे सूट पे दाग पे गए, ओहो क्या बात है जी। हम ये गाना आपको डेफिनेटली सुनवाएंगे, लेकिन उससे पहले हमारा कड़क कड़क कड़क सवाल जो हमने पूछा है आप सभी से, अगर आप सात अजूबे पार्क में जाना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं भैया, एंजॉय करना चाहते हैं, तो बिल्कुल आंसर दीजिए, पासेस लेके जाइए और एंजॉय करिए अपने दोस्तों के साथ, है ना। फिलहाल आज हमने आप सभी से क्वेश्चन बहुत ही शानदार वाला पूछा है। मैं कहती हूँ जी बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है आपने, क्योंकि आप मुरादाबाद के हैं और ये क्वेश्चन का आंसर ना मिल पाए तो बड़ा ही दुख वाली बात है जी। यानी कि हमने आज आप सभी से क्वेश्चन पूछा है कि मुरादाबाद को पहले किस नाम से जाना जाता था, बस इतना सा सोचना है और मैसेज करना है। नंबर है 9837896896 पर मैसेज करिए कि मुरादाबाद को पहले किस नाम से जाना जाता था। चलिए सोचिए, फिलहाल ही गाना सुनते हैं।

0: क्या बात है जी, बहुत ही शानदार आपने मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में और लता मंगेशकर जी की आवाज़ में इज्जत मूवी से आपने गाना एंजॉय किया है, यानी कि मूवी रिलीज हुई थी 1968 में। ये दिल तुम बिन लगता नहीं हम क्या करें, बस कुछ मत करिए, अपने आप को शांत रखिए। कभी कभी ऐसा होता है बेमतलब भी मन नहीं लगता, सच में ऐसा लगता है कि कभी कभी कि ये दिन ही पूरा उजाड़ है, मतलब पतझड़ वाला दिन लगता है। समझ नहीं आता कि हो क्या रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कुछ समझ ही नहीं आता है। उस टाइम आपने बस शांत रहना है। आप जितना शांत रहेंगे आप कोई भी काम हो आसानी से कर पाएंगे। आई नो, मुझे पता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि मन कुछ भी करने का मन नहीं करता, ना किसी से बात करने का मन करता है, बस मन करता है बैठे रहो, ना कोई बोलने वाला हो, ना कोई सुनने वाला हो, बस आप हो और आपके साथ आपका जो भी आप पसंद है आपको, चाहे गाना सुने, कुछ भी काम करे, चाहे आप सोए, चाहे आप एक कमरे में बंद रहे, लेकिन मुझे लगता है कि उस दिन आपको शांत रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शांत रहने से हर चीज़ का सॉल्यूशन मिल जाता है। क्योंकि हम गुस्सा करते हैं, बात बात पे चिड़चिड़ापन फील करते हैं, तो उस टाइम आपको मतलब जो आपका ब्रेन है वो अलग डायरेक्शन में होता है और आप सोचते हैं अलग डायरेक्शन में लेके आने के लिए, तो उस टाइम बहुत सी चीज़ें हैं जो उलट पुलट हो जाता है। तो उस टाइम शांत रहिए। फिलहाल मैसेज आ रहे हैं आप सभी के, प्यारे प्यारे आंसर भी आ रहे हैं, तो हम वो भी शामिल करेंगे। लेकिन फिलहाल समय की बात करूँ तो 11:45 हो चुके हैं। लंच बनाने के लिए अब किचन के अंदर जाने वाले हैं आप सभी, है ना। जो प्यारी विमेन है, जो गर्ल्स घर पर खाना बनाती है, वो लंच की तैयारी अब करने वाली है। क्योंकि देखिए उनके दिमाग में ना कुछ हो ना हो, लेकिन ये सुबह शाम खाने में क्या है, खाने में क्या बनेगा, ये ज़रूर दिमाग में चलता रहता है। कहीं भी आपका दिमाग हो, लेकिन जैसे घड़ी में टाइम देखती हैं, ओह शिट क्या बनेगा आज, ये सोचते रहते हैं। फिलहाल अभी आपने ये सोचना है कि क्या मैसेज करें, आखिरकार इसका क्या राइट आंसर हो सकता है जो बताए और आप विनर बन जाए। बस इतनी सी बात है और इतना ही सोचना है आपने और मैसेज करना है। तो आज का हमारा कड़क सवाल ये है कि भैया आपने थोड़ा सा दिमाग लगाना है और सोचना है आराम से, ध्यान से, कि मुरादाबाद को पहले किस नाम से जाना जाता था। बस इतनी सी बात है। सोचिए और मैसेज करिए और आप बन जाइए विनर। 7 अजूबे पार्क में आपको घूमने का मौका मिलेगा, आप एंजॉय कर सकते हैं। इसीलिए आराम से सोचकर मैसेज करिए। चलिए फिलहाल बहुत सारे मैसेज आ गए, उनको हम शामिल करेंगे, लेकिन गाना सुन लेते हैं फिर मैसेज शामिल करेंगे। आप सभी के प्यारे प्यारे राइट आंसर आ गए हैं, तो फिलहाल पहले कुछ कमर्शियल एड ब्रेक।
1: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM. सिरदर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
2: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार तो आपके लिए है जिग प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। जिग करो, स्वच्छता की जिद करो।

0: जी क्या बात है, चिट्टे सूट दे दाग पे गए। बहुत ही शानदार वाला आपने गाना एंजॉय किया है, और साथ ही साथ अब हम अपने शो में आगे बढ़ने वाले हैं, यानी कि आप सभी के प्यारे प्यारे मैसेज क्योंकि आज का कड़क सवाल यही है कि मुरादाबाद को पहले किस नाम से जाना जाता था। तो हमारे पास एक वॉइस मैसेज आया है, चलिए देखते हैं क्या कहते हैं अपनी आवाज में हमें।
1: मुरादाबाद को पहले रुस्तम नगर कहा जाता था।
0: अयो बाबा, रुस्तम तो दूसरे नंबर पे आया है जी।
1: हेलो मिलन विहार मुरादाबाद।
0: ओके आलोक जी, थोड़ा मुद्दे से आप भटक गए हैं। देखिए आप जब भी मैसेज करते हैं ना, प्लीज आप अपने नाम के साथ मैसेज करिए, क्योंकि बहुत परेशानी होती है ऐसे। भैया बस नाम मैसेज पढ़ दो, नाम ना बताओ, तो नाम बताना।

कोमल शर्मा जी हमारे साथ कनेक्ट होती हैं और जादू मूवी से ये गाना सुनना चाहती हैं, तो हम डेफिनेटली जो आपने गाने की रिक्वेस्ट की है वो हम आपको जरूर सुनवाएंगे, लेकिन साथ ही साथ ये राइट आंसर के साथ कनेक्ट होती हैं। अब राइट आंसर क्या है वो हम आपको जरूर बताएंगे, और ये गाना सुनना चाहती है कोई मिल गया। आय हाय, उदित नारायण जी की आवाज में बहुत ही खूबसूरत गाना है ये। अब राइट आंसर क्या है वो भी बताएंगे, क्योंकि ये बनती है मॉर्निंग मसाला शो के विनर। देखिए हरिओम महेश्वरी जी, हमने आपका गाना प्ले कर दिया था। अब सिर्फ गाना एक बार प्ले होता है, आप एक नंबर से एक ही बार मैसेज करेंगे तो बेटर होगा, आपको बाद में बुरा फील ना होए कि हमारा गाना नहीं हुआ। और ये कहते कि पीतल नगरी नाम से जाना जाता है, पीतल नगरी सर तो बाद में आया, ये ऐसे कैसे हो सकता है सर? पीतल नगरी तो बाद में बोला गया, सबसे पहले किस नाम से जाना जाता था मुरादाबाद को, ये आपने राइट आंसर पहुंचाना था हमें। अगले मैसेज की बात करूं तो ये भी हमारे साथ राइट आंसर के साथ कनेक्ट होते हैं। धर्मेंद्र कश्यप लाइन पर कुंदनपुर ढक्का से राइट आंसर के साथ, लेकिन राइट आंसर क्या है आपको जरूर बताएंगे। अगले मैसेज की बात करूं तो ये हमारे साथ कपिल कश्यप जी कनेक्ट हो गए हैं और इनका आंसर भी राइट है। अगले मैसेज की बात करूं तो रीना मैम मुरादाबाद से कनेक्ट होती हैं और ये भी राइट आंसर के साथ कनेक्ट होती हैं। डोली हमारे साथ गांगन मुरादाबाद से कनेक्ट होती हैं। अगले मैसेज की बात करूं तो जय श्री राम गुड मॉर्निंग खुशी जी तो नहीं है सर, मतलब आप रेडियो नहीं सुन रहे हैं, गलत बात है बिल्कुल, ये हमारे साथ कनेक्ट होते हैं। दुर्गेश सैनी कल्याणपुर मुरादाबाद से गाना सुनना चाहते हैं, मेरा दोस्त गया बाहर, मेरा दोस्त आया बाहर, आई डोंट नो ये कौन सा गाना है, एक बार सुनने के बाद पता लगेगा। अगले मैसेज की बात करूं तो खेमपाल सैनी जी

इंजॉय करिए और अपने साथ किसी एक को और ले जा सकते हैं और साथ ही साथ सेकंड विनर बनते हैं, यानी कि धर्मेंद्र कश्यप जी लाइन पार कुंदनपुर ढक्का से, क्योंकि दो ही विनर बनाएंगे। और अगर आप चाहते हैं कि और भी विनर बने, पासेज आप जीते, तो शाम इवनिंग मस्ती शो के लिए रेडी रहिएगा, क्योंकि तब भी मैं आप के लिए बहुत ही शानदार वाला कड़क सवाल लेकर आऊँगी और आपसे पूछने वाली हूँ, तब आप आंसर दीजिएगा सबसे पहले और विनर बनिएगा और साथ अजूबे पार्क में इंजॉय करिएगा, जाइएगा, घूमिएगा। अभी के लिए शाइनिंग ऑफ, बाय। हम आपको मिलने वाले हैं इवनिंग मस्ती शो में शाम 5 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक। बाय।

0: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
1: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट

0: सर्किट हाउस दिल्ली रोड मुरादाबाद।
1: सुनो ना, मुझे ज्वेलरी खरीदनी है।
0: तो चलो फिर, इतना सोचना क्यों है, शहर चलते हैं ना ज्वेलरी लेने।
1: नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, वहाँ पर बहुत ट्रैफिक रहता है और शोर भी बहुत होता है।
0: अरे नहीं,
2: अब ट्रैफिक की चिंता छोड़ो, क्योंकि बाबूराम सर्राफ का नया ज्वेलरी शोरूम ओपन हो गया है,
0: वो भी सिविल लाइंस में। ना ट्रैफिक की चिंता, ना शोर की, और हाँ, वहाँ ज्वेलरी खरीदने पर गोल्ड कॉइन जीतने का मौका भी है।
1: अच्छा?
0: हाँ, आपका वही पुराना एवं विश्वसनीय शोरूम बाबूराम सर्राफ, पता चैन मंदिर रोड, सिविल लाइंस, मुरादाबाद।

0: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
1: स्वागत है साथियों, आप सुन रहे हैं आपका अपना कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई और मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त आरजेरीना। साथियों, पिछले कार्यक्रम में हमने टीबी की इलाज के बारे में विस्तार से बात की थी। हमने जाना था कि टीबी का इलाज पूरी तरह संभव है, सरकार मुफ्त दवाइयां देती है और यहां तक कि दवा प्रतिरोधी यानी MDR टीबी का भी इलाज उपलब्ध है। लेकिन आज हम उस विषय को थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि सच कहे तो टीबी के खिलाफ सबसे बड़ी लड़ाई केवल दवा शुरू करने से नहीं होती, बल्कि दवा को लगातार और सही तरीके से जारी रखने से होती है। बहुत सारे मरीज इलाज शुरू कर लेते हैं लेकिन बीच में दवा छोड़ देते हैं, फॉलो अप जांच नहीं करवाते, कई बार काम पर चले जाते हैं या फिर दवा से होने वाली किसी परेशानी के कारण खुद ही इलाज बंद कर देते हैं और यही छोटी सी गलती कई बार बहुत बड़ा नुकसान कर देती है। तो आज हम बात करेंगे इलाज को बीच में ना रोकने की, दवाओं को संभावित रिएक्शन की, अगर दवा से परेशानी हो क्या करना चाहिए, निक्षय जैसी सरकारी व्यवस्थाएं मरीजों की मदद कैसे करती हैं और परिवार तथा समुदाय का सहयोग कितनी जरूरी है। इन सब विषयों पर बात करने के लिए एक बार फिर से हमारे साथ मौजूद है हमारी अपनी स्वास्थ्य साथी टीकन देवी। स्वागत है टीकन भाभी आपका।
2: धन्यवाद आरजेरीना, और सभी श्रोताओं को भी मेरा कोटि कोटि धन्यवाद। आरजेरीना जी, पिछले कार्यक्रम के बाद मुझे कई लोगों के फोन आए, अधिकांश लोगों ने तो एक ही बात कही, हमें पता है कि टीबी का इलाज होता है लेकिन इतने महीनों तक दवा लगातार लेना आसान नहीं होता। और सच कहूँ तो यही वह जगह है जहाँ सबसे ज्यादा सावधानी की जरूरत होती है। इलाज शुरू करना महत्वपूर्ण है लेकिन इलाज पूरा करना उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण।
1: बिल्कुल सही कहा आपने, और मुझे लगता है कि आज की चर्चा शुरू करने से पहले अगर आप कोई ऐसी कहानी सुनाए जो इस विषय को समझने में मदद करे तो श्रोताओं को बताओ और अच्छी तरह समझाइए।
2: बिल्कुल, मैं आपको एक ऐसी घटना बताना चाहूँगी जो कुछ वर्ष पहले हुई थी। पास के एक छोटे से कस्बे में लगभग 12 साल का एक छोटा सा बच्चा था, रवि। रवि को लगातार बुखार रहता था, वजन कम हो रहा था और खांसी भी लंबे समय से बनी हुई थी। जांच हुई और पता चला कि उसे टीबी है। परिवार घबरा गया लेकिन डॉक्टर ने समझाया कि चिंता की बात नहीं है, इलाज शुरू हो गया है। शुरुआती कुछ हफ्तों में रवि की हालात सुधरने लगी, बुखार कम हुआ, भूख लौटने लगी और घर वालों को लगा कि अब सब ठीक है। लेकिन लगभग 1.5 महीने बाद रवि को एक नई समस्या शुरू हुई। उसके शरीर पर लाल चकत्ते निकलने लगे, उसे मतली महसूस होने लगी, कभी कभी उल्टी भी होने लगी। तब पिता बहुत डर गए। गांव में कुछ लोगों ने सलाह दी, दवा बंद कर दो, दवा ही नुकसान कर रही है। लेकिन सहयोग से उसी समय उसके पिता ने हमारे इस कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई का एक पुराना एपिसोड सुना था, जिसमें कहा गया था कि दवा से कोई भी असामान्य परेशानी हो तो तुरंत स्वास्थ्य कर्मी या डॉक्टर को बताना चाहिए लेकिन अपनी तरफ से दवा बंद नहीं करनी चाहिए। उन्होंने वही किया, अगले ही दिन बच्चे को अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने जांच की, दवाओं की समीक्षा की, आवश्यकता बदलाव किए और कुछ अतिरिक्त उपचार दिए। कुछ ही दिनों में स्थिति नियंत्रण हो गई। आज रवि पूरी तरह स्वस्थ है। सोचिए, अगर उसके माता पिता डरकर दवा बंद कर देते तो बीमारी दोबारा गंभीर हो सकती थी, यानी समस्या दवा से नहीं बल्कि समय पर सलाह ना लेने से पैदा होती है।
1: वाह, यह कहानी सचमुच बहुत सीख देती है, यानी दवा के दौरान कोई परेशानी हो जाए तो घबराना नहीं है बल्कि तुरंत स्वास्थ्य प्रणाली से संपर्क करें। लेकिन भाभी, सबसे पहले यही बताइए कि इलाज की निरंतरता यानी कंटिन्यूटली ऑफ ट्रीटमेंट इतनी महत्वपूर्ण क्यों मानी जाती है?
2: देखिए आरजेरीना, टीबी का जीवाणु बहुत चालाक होता है। जब मरीज दवा शुरू करता है तो कुछ ही हफ्ते में खांसी कम होने लगती है, बुखार कम हो जाता है और शरीर बेहतर महसूस करने लगता है। यही पर कई लोग गलती कर बैठते हैं, वैसे सोचते हैं कि अब हम ठीक हो गए हैं लेकिन वास्तव में उस समय शरीर के अंदर मौजूद सभी जीवाणु समाप्त नहीं हुए होते हैं। लक्षणों का कम होना और बीमारी का पूरी तरह खत्म होना दो अलग अलग बातें हैं। इसीलिए राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम बार बार कहता है कि डॉक्टर जितने समय तक दवा लेने को कहें उतने समय तक नियमित रूप से दवा लेना जरूरी है। याद रखिए, आराम महसूस होना इलाज की सफलता का संकेत हो सकता है, लेकिन इलाज पूरा होने का प्रमाण नहीं।
3: बहुत महत्वपूर्ण बात है, लेकिन व्यवहार में लोग इलाज बीच में छोड़ देते हैं, क्यों?
2: कारण कई होते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि अब वे ठीक हो चुके हैं, कुछ लोग रोज दवा लेने से उब जाते हैं, कुछ लोगों को काम पर जाना होता है और वे फॉलोअप नहीं कर पाते, कुछ लोग दूर शहर या राज्य में काम करने चले जाते हैं, कुछ लोग दवा के हल्के दुष्प्रभावों से डर जाते हैं और कुछ लोग समाज की डर या शर्म की वजह से इलाज छिपाने लगते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि सरकार ने इन चुनौतियों को समझते हुए कई व्यवस्थाएं बनाई हैं ताकि मरीज का इलाज बीच में ना टूटे।
3: यही तो मैं पूछना चाहती थी, अगर कोई मरीज इलाज के दौरान गांव छोड़कर दूसरे शहर चला जाए तब क्या होगा? क्या उसे फिर से पूरी प्रक्रिया शुरू करनी पड़ेगी?
2: नहीं, बिल्कुल नहीं। और ये बात खासकर उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जहां लाखों लोग रोजगार के लिए दूसरे जिलों या राज्यों में जाते हैं। सरकार ने ट्रांसफर अकाउंट की व्यवस्था बनाई है। अगर मरीज अपने स्वास्थ्य कर्मी या टीवी टीम को जानकारी देते हैं तो उसका रिकॉर्ड निश्चय प्रणाली में अपडेट किया जा सकता है और नए स्थान पर भी इलाज जारी रखा जा सकता है। यानी केवल स्थान बदलने के कारण दवा बंद करने की कोई जरूरत नहीं है। जहां जाए वहां की सरकारी स्वास्थ्य सुविधा से जुड़िए और इलाज रखिए।
3: आपने निक्षय नाम का नाम लिया, बहुत सारे श्रोताओं ने इसके बारे में सुना होगा लेकिन विस्तार से शायद नहीं जानते होंगे।
2: निक्षय वास्तव में टीबी मरीज के लिए बहुत महत्वपूर्ण व्यवस्था है। यह एक डिजिटल प्रणाली है जिसके माध्यम से मरीजों का रिकॉर्ड, इलाज की प्रगति, फॉलोअप, सहायता और निगरानी की जाती है। इसके जरिए स्वास्थ्य कर्मी ये देख सकते हैं कि मरीज इलाज पर बना हुआ है या नहीं। अगर किसी मरीज की फॉलोअप जांच बाकी है तो उसे याद दिलाया जा सकता है। अगर मरीज कहीं और चला गया है तो उसका इलाज एक नए स्थान से जोड़ा जा सकता है और इसी व्यवस्था के माध्यम से कई प्रकार की सहायता भी सुनिश्चित की जा सकती है। यानी निक्षय केवल एक कंप्यूटर सिस्टम नहीं बल्कि इलाज की निरंतरता बनाए रखने का एक महत्वपूर्ण साधन है।
3: अब बात करते हैं दवाओं से होने वाली प्रक्रियाओं की, यानी साइड इफेक्ट या रिएक्शन, क्योंकि यही वह विषय है जिससे लोग सबसे ज्यादा डरते हैं।
2: और डर अक्सर जानकारी की कमी से पैदा होता है। आर्जेरीना, जैसे ही किसी को पता चलता है कि टीबी की दवाई कई महीनों तक चलेगी तो उसके मन में एक चिंता भी रहती है, कहीं दवा से कोई परेशानी हुई तो। इसलिए सबसे पहले मैं ये स्पष्ट करना चाहूंगी कि अधिकांश टीबी मरीज बिना किसी गंभीर समस्या के अपना पूरा इलाज सफलतापूर्वक करवा लेते हैं। लेकिन हाँ, कुछ मरीजों को इलाज के दौरान कुछ दुष्प्रभाव या प्रक्रियाएं महसूस हो सकती हैं। उदाहरण के लिए, किसी को शुरुआत में मितली या उल्टी की शिकायत हो सकती है, किसी का पेट भारी लग सकता है या जलन महसूस हो सकती है, कुछ लोगों की भूख थोड़ी कम हो जाती है, कई बार त्वचा पर खुजली या लाल चकते दिखाई दे सकते हैं, कुछ मरीज कमजोर, थकान या चक्कर आने की बात भी बताते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे संकेत भी हैं जिन पर विशेष ध्यान देने की जरूरत होती है, जैसे आँखों या त्वचा का पीला पड़ना, पेशाब का रंग बहुत गहरा हो जाना, धुंधला धुंधला दिखाई देना, हाथ पैरों में झनझनाहट या सुन्नपन महसूस होना, सुनने की क्षमता में बदलाव आना या व्यवहार और मानसिक स्थिति में कई असामान्य परिवर्तन महसूस होना। ऐसे लक्षणों को हल्के में नहीं लेना चाहिए। लेकिन मैं यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कहना चाहूँगी, दुष्प्रभाव होने का मतलब ये नहीं कि इलाज असफल हो रहा है और न ही इसका मतलब ये है कि मरीज अपने मन से दवा बंद कर दे। वास्तव में सबसे बड़ी गलती यही होती है, कई बार लोग किसी पड़ोसी, रिश्तेदार या अधूरी जानकारी आधार पर दवा छोड़ देते हैं, जबकि सही कदम ये है कि तुरंत अपने स्वास्थ्य कर्मी, आशा बहन, नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र या डॉक्टर को इसकी जानकारी दें। याद रखें, अधिकांश दुष्प्रभावों का प्रबंध किया जा सकता है। डॉक्टर जरूरत पड़ने पर जांच करेंगे, सलाह देंगे और यदि आवश्यक हुआ तो इलाज में उचित बदलाव भी करेंगे। लेकिन अगर मरीज बिना बताए दवाएं बंद कर देता है तो बीमारी फिर से सक्रिय हो सकती है और इलाज और भी कठिन हो सकता है। इसीलिए हमारा संदेश बहुत सरल है, दुष्प्रभाव छुपाइए मत, घबराइए मत और अपने मन से दवा बिल्कुल भी मत रोकिए। समय पर जानकारी देना ही सुरक्षित और सफलता इलाज की कुंजी है।
3: यानी दवा

0: से परेशानी हो तो पहला कदम दवा छोड़ना नहीं बल्कि डॉक्टर से बात करना।
1: बिल्कुल, क्योंकि हर शिकायत गंभीर नहीं होती, कुछ दुष्प्रभाव अस्थायी होते हैं, कुछ का इलाज किया जा सकता है, कुछ मामलों में डॉक्टर दवा की समीक्षा कर सकते हैं, लेकिन ये निर्णय केवल परीक्षित स्वास्थ्य कर्मी या डॉक्टर को लेना चाहिए, मरीज को नहीं। याद रखिए, जल्दी जानकारी देना इलाज बचाता है, जबकि चुप रहना इलाज को खतरे में डाल सकता है।
0: वाह, फॉलो अप जांचों की भी बात होती है। कई लोग सोचते हैं कि दवा मिल गई तो अब अस्पताल जाने की जरूरत ही नहीं।
1: यही एक और बड़ी गलतफहमी है। इलाज केवल दवा खाने का नाम नहीं है, इलाज में नियमित निगरानी भी शामिल है। डॉक्टर या स्वास्थ्य कर्मी जब फॉलो अप जांच के लिए बुलवाएं तो अवश्य जाएं। अगर बलगम का नमूना मांगा जाए, अगर कोई जांच लिखी जाए तो करवाएं। इन जांचों से पता चलता है कि दवा सही काम कर रही है या नहीं, कहीं अतिरिक्त सहायता की जरूरत तो नहीं है, और यदि कोई समस्या है तो उसे समय रहते पकड़ा जा सकता है।
0: भाभी, आपने पिछली बार MDR TB का भी जिक्र किया था, इसके संदर्भ में इलाज की निरंतरता कितनी महत्वपूर्ण है?
1: रीना, MDR TV यानी दवा प्रतिरोधी TV में तो यह और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि ऐसे मामलों में इलाज अपेक्षाकृत जटिल हो सकता है, दवाएं अधिक हो सकती है, निगरानी ज्यादा करनी पड़ सकती है और फॉलो अप भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन मैं श्रोताओं को ये बताना चाहूँगी कि MDR TB का मतलब इलाज असंभव होना नहीं है। आज बेहतर जांच, बेहतर निगरानी और नए उपचार पद्धतियों के कारण मरीजों के ठीक होने की संभावना पहले से कहीं अधिक है। बस शर्त एक ही है, इलाज बीच में नहीं रुकना चाहिए।
0: और परिवार की भूमिका, कई बार मरीज अकेला पड़ जाता है।
1: परिवार की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है आजरीना। सरकार भी मानती है कि टीवी का इलाज केवल मरीज नहीं करता, पूरा परिवार करता है। घर का कोई सदस्य दवा याद दिला सकता है, फॉलो अप में साथ जा सकता है, लक्षणों में नजर रख सकता है, मानसिक सहारा दे सकता है और सबसे महत्वपूर्ण, मरीज को ये महसूस करा सकता है कि वह अकेला नहीं है। कई बार दवा से ज्यादा असर एक सहारा देने वाले शब्द का होता है।
0: और पोषण, क्योंकि पिछली बार भी आपने कहा था कि रिकवरी में भोजन की बड़ी भूमिका होती है।
1: बिल्कुल, दवाएं बीमारी का इलाज करती हैं, लेकिन शरीर को ताकत भोजन देता है, इसलिए सरकार निक्षय पोषण योजना जैसी व्यवस्थाओं के माध्यम से पोषण सहायता भी उपलब्ध कराती है। मरीज को नियमित भोजन, पर्याप्त आराम और पौष्टिक आहार लेना चाहिए। दालें, दूध, अंडे, चना, सोयाबीन, हरी सब्जियां और स्थानीय पौष्टिक खाद्य पदार्थ शरीर की रिकवरी में मदद करते हैं।
0: तो अगर आज की चर्चा को कुछ मुख्य संदेशों में समेटा हो तो आप क्या कहेंगे?
1: श्रोताओं से 8 बातें याद रखने का आग्रह करूंगी। पहले, टीवी की दवा कभी अपने मन से बंद ना करें। दूसरी, बेहतर महसूस होना इलाज पूरे होने का संकेत नहीं। तीसरा, दवा से कोई भी असामान्य परेशानी हो तो तुरंत स्वास्थ्य कर्मी को बताएं। चौथा, फॉलो अप जांचें इलाज का जरूरी हिस्सा है। पांचवी बात, अगर आप कहीं और जा रहे हैं तो स्वास्थ्य टीम को बताकर इलाज जारी रखें। छठी बात, निक्षय और सरकारी स्वास्थ्य सेवाएं इलाज की निरंतरता में मदद करती है। सातवीं बात, परिवार और उपचार सहयोगी मरीज की सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और आठवीं बात, MDR TV भी इलाज योग्य है, बशर्ते मरीज नियमित रूप से कार्यक्रमों से जुड़ा रहे।
0: बहुत सुंदर। और मैं एक बात और जोड़ना चाहूँगी, अगर रवि के माता पिता उस दिन डर का दवा बंद कर देते तो शायद आज कहानी कुछ और होती, लेकिन उन्होंने सही समय पर सही कदम उठाया। यही समझ, यही जागरूकता और यही सतर्कता हर परिवार तक पहुँचनी चाहिए। साथियों, याद रखिए, टीवी का इलाज केवल दवाओं से नहीं बल्कि धैर्य, नियमितता, परिवार के सहयोग और स्वास्थ्य व्यवस्था से जुड़े रहने से सफल होता है। आइए अंत में हम सब मिलकर लेते हैं सेहत की शपथ।
1: हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे,
0: अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि सेहत ही असली धन है।
1: सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे।
0: साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके।
1: नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे।
0: संतुलित आहार व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहे।
1: महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे।
0: जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा तभी भारत समृद्ध बनेगा।
1: सेहत सही तो लाभ कई।

डीएमआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें डीएमआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।

0: आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहे गुनगुनाते रहे। कार्यक्रम है खेती किसानी।
1: आज हम कार्यक्रम में स्वागत करना चाहेंगे हमारे खास अतिथि डॉक्टर ए के सिंह। ये जंबल फर्टिलाइजर्स में वरिष्ठ प्रबंधक है। नमस्कार सर।
2: हाँ नमस्कार, और स्वागत के लिए आपका बहुत बहुत आभार दिव्या जी, और जो भी हमारे श्रोता सुन रहे हैं उनको नमस्कार।
1: सर हमारे साथ आज शामिल है कार्यक्रम में, और आज के कार्यक्रम का जो खास विषय है वो भी हम आपको बताते हैं। आज हम कार्यक्रम में जो खास बातें करने जा रहे हैं वो है खरीफ का समापन व रबी का आरंभ। स्कूल में बच्चों को जब पढ़ाया जाता है तो हम दो तरह के क्रॉप प्लांटेशन के बारे में पढ़ते हैं, एक रबी क्रॉप और एक खरीफ क्रॉप। बच्चों को पढ़ाते समय तो हमने भी कई बार रट्टा लगाया कि खरीफ क्रॉप क्या है, रबी क्रॉप क्या है, किस तरह की फसलों को हम लगाते हैं, और ये हमसे ज्यादा हमारे जो किसान भाई हैं वो बेहतर जानते होंगे। और आने वाले समय में ऐसे जितने भी हमारे सहयोगी हैं जो अब खेती किसानी की तरफ आगे बढ़ते जाएंगे या खेती किसानी बेहतर करना चाहेंगे, उनके लिए भी कुछ अहम जानकारी हो सकती है। तो हम कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे हमारे कार्यक्रम के से पहले कुछ अहम जानकारी के साथ। सर से बातचीत जब हो रही थी तो फिर सर ने हमें PMKSK योजना के बारे में बताया था, जो केंद्र सरकार और उर्वरक मंत्रालय की ओर से ये पॉलिसी चलाई जा रही है किसान भाई और किसान बहनों के बेहतर खेती किसानी प्रक्रिया के लिए। तो हम जानना चाहेंगे इस योजना के द्वारा किसानों को क्या लाभ मिलने वाला है, के बारे में कुछ जानना चाहेंगे।
2: जी हाँ बिल्कुल, मैं आपको इसके बारे में जानकारी देता हूँ। भारत सरकार और भारत सरकार के अंतर्गत ही जो उर्वरक का जो मंत्रालय है वो कार्य करता है। उर्वरक मंत्रालय हम ऐसे समझें कि जितने भी खेती में उर्वरक जो उपयोग में आते हैं उनकी जो दुकानें हैं उनसे संबंधित जो भी सारी क्रिया है, क्रियाएं से अर्थ ये है कि वहां पर खाद की पूरी जानकारी वहां की रखना, उनकी आवश्यकता क्या है, उनकी मांग क्या है, और कौन से सीजन में कौन सा उर्वरक उनको चाहिए, ये सारा काम जो उर्वरक मंत्रालय का है। अगर आपको ऐसे समझे PMKSK तो आपको लगेगा शॉर्ट फॉर्म में ये समझ में थोड़ा उतना ना आए, लेकिन मैं आपको संक्षेप में बताऊं कि जितनी भी खाद की दुकानें हैं जहां पर उर्वरक उपलब्ध होता है, उर्वरक मतलब हर तरह के खाद जिनमें कि यूरिया है, DAP है, MOP है, NPK है, और भी अलग तरह के न्यूट्रिएंट हैं जो उपलब्ध होते हैं। इसके अलावा खेती से संबंधित जो और भी आधान है जिनमें कि आपके खरपतवार नाशी हैं, कीटनाशी हैं, फफूंद नाशी हैं, और अन्य तरह के भी पोषक तत्व हैं जो उपलब्ध होते हैं, वो खाद की दुकानें कही जाती हैं। अब ये जो खाद की दुकानें हैं ये ऐसे ही नहीं खुल जाती, इसके लिए राज्य सरकार जो अपना एक लाइसेंस इश्यू करती है और उस लाइसेंस के आधार पर फिर उनको ये अनुमति होती है कि वो खाद उनके यहाँ सप्लाई होता है, वो उसका भंडारण करेंगे और वो उसका विक्रय करेंगे। वो एक तरह से ऑथराइज दुकानें होती हैं। ऐसा था पीछे वाले समय में कि इनमें जो लोग खाद के काम में थे या इच्छुक थे उन्होंने लाइसेंस लिए और वो इसका काम करने लगे, लेकिन लंबे समय से भारत सरकार और राज्य सरकार ने एक जो निर्णय लिया कि जितने भी उर्वरक की दुकानें हैं या खेती के आदान की विक्रय के जो दुकानें हैं वहां पर हम ऐसे लोगों को रखें या ऐसे लोगों को ही लाइसेंस दें जो कि खेती बाड़ी के बारे में सलाह दे सकते हैं या उनको खेती के बारे में जानकारी है। मतलब आप ऐसे समझिए कि अगर कोई भी खेती का आदान इस्तेमाल होना है तो वो कैसे इस्तेमाल होना है, कितनी मात्रा में इस्तेमाल होना है, कौन से समय में इस्तेमाल होना है, अगर जो किसान को वह जानकारी चाहिए तो वो उसको सही सलाह दे सके। तो एक तरह से ये मान के चले कि ये मतलब विक्रय केंद्र है और साथ के साथ सलाह केंद्र भी है। फिर भारत सरकार ने इसके ऊपर और विचार किया और उन्होंने कहा कि हम इसको एक अलग पहचान देते हैं जो PMKSK है, जो मतलब जो प्रधानमंत्री जो किसान सेवा केंद्र, ठीक है जी। तो उसका अर्थ अब ये है कि यहाँ पर जो जो भी खेती के आदान आपको उपलब्ध हो रहे हैं उनके बारे में पूरी जानकारी किसानों को देना अत्यंत आवश्यक है, और अगर उनकी कोई खेती बाड़ी से संबंधित समस्या भी है तो उसके समाधान के लिए भी उनकी ओर से प्रयास किया जाएगा। और प्रयास करने में ये शामिल है कि वहां पर कोई अगर वैज्ञानिक संस्था है, जैसे कि कोई एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, कृषि विज्ञान केंद्र है, और एग्रीकल्चर के जो और अधिकारी हैं उनको भी वो उसमें शामिल करें, उनसे सलाह लें और फिर उसको वो जो किसानों तक पहुंचाएं। तो खाद की विक्रय और खेती के आदान की जो सेल है उसके साथ साथ फार्मर्स को सही सलाह मिले, सही ढंग से वो इस्तेमाल करें। सही ढंग से इस्तेमाल ये है कि हम कभी भी कोई चीज जब लेके आते हैं तो अगर हमें मालूम नहीं है तो हम क्या करते हैं, किसी अड़ोस पड़ोस के किसान से पूछ लेंगे। अगर उन्होंने भी उसका सही ढंग से इस्तेमाल नहीं किया है वो आपको भी उतनी अच्छे से जानकारी नहीं दे पाएंगे। लेकिन हर एक उत्पाद का जो उपयोग है उसका समय, उसकी मात्रा फसल के अनुसार अलग अलग होती है, और उसको जब वैज्ञानिकों की ओर से पूरा अनुसंधान हो जाता है उसके बाद फिर उसकी रिकमेंडेशन आती है, सलाह आती है कि सपोज मान के चले कि धान की फसल है, धान की फसल में यूरिया का कब इस्तेमाल करना है, डीएपी का कब इस्तेमाल करना है, एनपीके का कब इस्तेमाल करना है और कितनी मात्रा में उसका इस्तेमाल करना है एक एकड़ में, तो वो सारी जानकारी होती है। लेकिन अगर हमें जानकारी ना हो तो हम क्या करेंगे, हम ले आएंगे और उसको ऐसे ही उसको इस्तेमाल कर लेंगे। उसकी मात्रा आपकी तरफ से ज्यादा भी हो सकती है और आपकी मात्रा कम हो सकती है, ज्यादा होगी तो आपका खर्चा हुआ लेकिन लाभ जो आपको होना था उतना ही होगा, तो जो आपने एक्स्ट्रा पैसा लगाया उसका कोई आपको लाभ नहीं मिला। और लाभ की वजह तो मैं ये ऐसा कहूंगा कि उससे जो कहीं ना कहीं नुकसान ही होता है, आर्थिक नुकसान हुआ और पर्यावरण को नुकसान होता है, और अगर आपने कम मात्रा में दिया तो उसका भी आपको लाभ उतना नहीं मिल पाएगा। उसके साथ साथ जो है मतलब कौन से समय पर इसका इस्तेमाल करना है ये पूरी जानकारी होना बहुत जरूरी है। अब आपने कहा कि चलो हमें एक बार यूरिया डालना है तो शुरू में ही सारा डाल दिया, ऐसा नहीं है, हर एक की क्रांतिक अवस्था होती है उसके हिसाब से। अब जैसे कि हम भी भोजन करते हैं, अगर हमें 24 घंटे में सिर्फ एक बार जो 24 घंटे का इकट्ठा भोजन हम अगर जो कहें कि आप ये खा लीजिए, हो सकता है आप जोर लगा के खा भी लें लेकिन वो आपके लिए सुपाच्य नहीं होगा, स्वास्थ्यवर्धक नहीं होगा। तो उसमें समय अलग अलग, जैसे सुबह आपने थोड़ा सा नाश्ता लिया, फिर दोपहर में लिया, फिर संध्या को आपने कुछ जो खाया, तो वो स्वास्थ्यवर्धक है, उसका पाचन भी अच्छे से होता है और कम मात्रा में आप उसका ज्यादा से ज्यादा लाभ ले सकते हो। इसी तरह से खेती में इस्तेमाल होने वाले उर्वरक है, कीटनाशक है या खरपतवार नाशी है या अन्य पोषक तत्व है, उनकी मात्रा, उनका समय और उनके उपयोग का जो ढंग होना चाहिए उसके बारे में एक जो है आपके साइंटिस्ट की ओर से या जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की ओर से पूरी जानकारी होती है, तालिका होती है, तो वह तालिका है अब पीएम की एसके पर उपलब्ध है। अगर नहीं भी है, आपको लगता है कि वहां पर वो चीजें उपलब्ध नहीं है, तो आप उनसे कहिएगा कि आप ये हमें उपलब्ध कराएं।
1: इसी के साथ हम कार्यक्रम में अब शामिल करना चाहेंगे हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की एक खास मैसेज को, जो उन्होंने उर्वरक उपयोग सलाह के बारे में कुछ बातें उन्होंने हमारे साथ साझा की है, चलिए उसे सुनते हैं और फिर कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे हमारी आज के विषय पर चर्चा के साथ।
2: असल में जो भी हमारे उर्वरक हैं उनका सही इस्तेमाल हो वो इसलिए आवश्यक है क्योंकि ये रासायनिक उर्वरक है और इनका अगर हम अधिक मात्रा में अगर हमने इनका उपयोग किया तो वो वेस्ट भी हो जाते हैं क्योंकि जो फसल है वो उतना ही लेगी, उससे ज्यादा नहीं लेगी और उसमें खर्चा भी आपका ज्यादा होगा। दूसरा उसमें सबसे बड़ी जो खामी वो ये है, इससे हमारे जो खेत के अंदर जो हमारे मित्र जीव हैं या जो खेत के आसपास का पर्यावरण है जिससे कि हमारी खेती होती है उसको एक नुकसान पहुंचता है, तो वो नुकसान नहीं पहुंचे और हमारे जो खेती करने वाले लोग हैं उनको आर्थिक क्षति भी ना हो, उनका पैसा ज्यादा खर्च न हो, एक संतुलन में हम उर्वरकों का उपयोग करें। कभी कभी होता है देखी देखा हमके जैसे उन्होंने इतना खाद डाला है एक एकड़ में तो मैं भी इतना खाद डाल देता हूँ, या उसने ये वाला खाद लिया तो मैं भी ये वाला खाद देता हूँ, नहीं ऐसा नहीं है। आप जो भी उर्वरक ले रहे हैं उसमें ये जरूर देखिए कि उसमें पोषक तत्व तो है कौन से और कितने हैं, आपको कौन सा पोषक तत्व चाहिए और कितनी मात्रा में चाहिए। जैसे कि हमें प्रोटीन चाहिए, प्रोटीन के लिए अगर हम शाकाहारी है तो हमें जो है मतलब उसके हिसाब से जो चुनना है भोजन के, जैसे दालें हैं, सोयाबीन है, ऐसी चीजें हमें जो मतलब चुननी है। अगर हम थोड़ा सा नॉन वेज खाते हैं तो अंडा भी खा सकते हैं और चीजों का भी इस्तेमाल हमारी ओर से हो सकता है। तो ये हमें कोई भी चीज है उसके नाम से नहीं खरीद के उसके अंदर जो उसके अंदर पोषक तत्व है और उसका जो लाभ हमें होने वाला है उसको देख के हम खरीदें और उसकी कितनी मात्रा किस समय पर प्रयोग करनी है यह बहुत जरूरी है। तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये अपने संबोधन में यही कहा है कि उर्वरकों का जो एक अंधाधुंध हम उपयोग कर रहे हैं उससे हम बचें क्योंकि ये हमारे राष्ट्र के लिए हानिकारक है। आज जो खेती इस जो है एक तरह से सक्षम है, हमें इतने सालों से हम इसमें उगा रहे हैं, अपना पोषण कर रहे हैं, अगर हम इसी तरह से हमने ध्यान नहीं दिया तो इसका स्वास्थ्य खराब हो सकता है। तो प्रधानमंत्री जी ने अपने संबोधन में यही कहा है, तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि प्रधानमंत्री जी के संबोधन को आप सभी लोगों को अवश्य सुनाएं।
3: जी बिल्कुल,
4: मैं किसान भाई बहनों को भी कहूंगा कि आपको भी मेरी मदद करनी होगी और वो मेरी मदद है इतना ही नहीं, मेरे किसान भाई बहन, आपकी भी मदद है और वो है ये धरती माता को बचाना। हम धरती माता को अगर नहीं बचाएंगे तो यूरिया की कितने ही थैले डाल दें, ये धरती माँ हमें कुछ नहीं देगी। और इसलिए जैसे शरीर में बीमारी हो जाए तो दवाई भी हिसाब से लेनी पड़ती है। दो गोली की जरूरत है, चार गोली खा लें तो शरीर को फायदा नहीं नुकसान हो जाता है। वैसा ही ये धरती माँ को भी अगर हम जरूरत से ज्यादा, पड़ोस वाला ज्यादा बोरी डालता है, इसलिए मैं भी बोरी डाल दू, इस प्रकार से अगर करते रहेंगे तो ये धरती माँ हमसे रूठ जाएगी। यूरिया खिला खिला करके हमें धरती माता को मारने का कोई हक नहीं है। ये हमारी माँ है, हमें उस माँ को भी बचाना है।
1: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम खेती किसानी और आज के कार्यक्रम का खास विषय है खरीफ का समापन और रबी का आरंभ। तो सर, हमने कार्यक्रम की शुरुआत में बच्चों के स्कूल बुक्स के बारे में चर्चा की थी हमने कि किस तरीके से बच्चों को पहले रट्टा लगाया जाता था क्रॉप रोटेशन, क्रॉप प्लांटेशन के बारे में, खरीफ रबी फसलों के बारे में। तो ये खरीफ फसल के समापन से हम क्या कहना चाह रहे हैं, समापन होता क्या
2: है? जैसे अभी जो सीजन चल रहा है हमारा वो खरीफ का चल रहा है
1: जी।
2: खरीफ मतलब ये है कि जो फसलें हमने जून जुलाई में लगाई थी वो हमारे पकाव की तरफ आ रही है धीरे धीरे, और वो सितंबर का आखिर हम मान लें या अक्टूबर में मान लें या ज्यादा ज्यादा नवंबर के पहले सप्ताह तक उनकी कटाई होती है। कटाई का मतलब ये है कि जो उनकी उपज है वो तैयार हो जाती है, अनाज पक जाता है, फिर हम उसकी कटाई करते हैं और फिर उसको अपने घर लाते हैं, फिर आगे उसके विक्रय का प्रबंध करते हैं या जो उपयोग के लिए उसको हम रखते हैं। अब उससे तात्पर्य ये है कि हमने सारे चार महीने बहुत मेहनत करी, सब कुछ किया, लेकिन इस वक्त पर जब हमें उपज लेके आनी है उस समय अगर हमारी सावधानी नहीं रही, उसका समापन अगर हमने अच्छे से नहीं किया तो जो हमारा अहम उद्देश्य था वो हमारा उस

0: हम कहीं ना कहीं चूक जाएंगे। तो समापन का अर्थ से मेरा यही है कि हम सारी क्रियाओं को सोच समझकर और एक अच्छी प्लानिंग के साथ करें। प्लानिंग से अर्थ मेरा ये है कि हम ये देखें कि भाई इस समय पर हमारी फसल तैयार होगी तो इसको काटने के लिए मुझे क्या क्या संसाधन चाहिए
1: जी।
0: क्या क्या संसाधन से अर्थ ये है कि कटाई की व्यवस्था करनी है, लेबर चाहिए या कंबाइन से कराना है, ये भी कुछ है। फिर जब वो कटाई होगी तो वो आगे का अरेंजमेंट है, वो सारी चीज। तो मतलब ये है कि फिर उसके विक्रय से संबंधित है कि अगर उसको बेचना है तो कैसे बेचना है, कहाँ बेचना है। तो ये सारी तैयारियां अगर हम एडवांस में करते हैं, जैसे कि हमें होता है ना कि हमारा बच्चे ने अब 8वीं कर ली, अब इसकी हाई स्कूल में एडमिशन होना है, इसका 9th में एडमिशन होना है, गांव में स्कूल हमारा 8वीं तक है, तो हम तैयारी करते हैं कौन से स्कूल में इसको भेजना है, कौन सा पास है, अगर दूर है तो वो यहाँ से रोज जाएगा, जाएगा तो कैसे जाएगा, या साइकिल लेनी पड़ेगी या यहाँ से थोड़ी दूर पैदल जाएगा, वहां से उसको कोई सवारी मिल जाएगी, बस मिल जाएगी, तो ये सारी व्यवस्था हम करते हैं। अगर वो साइकिल से जाता है तो साइकिल हमारे पास है या खरीदनी है, या अगर वो किसी और साधन जाता है तो उसका किराया लगेगा, उसका कितना खर्चा होगा महीने का, सुबह जाएगा शाम तक रहेगा, क्या वो खाना लेके जाएगा, सुबह उसके लिए भोजन बना दिया जाएगा, इतने बजे लौट के आएगा, तो ये सारी व्यवस्था है। उस स्कूल की यूनिफॉर्म अलग है, उसकी व्यवस्था करनी है, तो ये सब तैयारियां हम एडवांस में सोच के रखते हैं। और अगर वो हमें चीजें चाहिए तो कहाँ कहाँ से मिलेंगी, क्या रेट होगा उसका, है ना। ये जो जो तैयारियां है वो हर जीवन के हर जो मतलब पहलू के साथ है। तो एक जो समापन की तैयारी, समापन में ये है कि भाई अब जैसे ये 8वां कर लिया है तो अब ये 8वां इसका होने वाला है, कितने नंबर इसको चाहिए, कैसा क्या चाहिए
1: जी,
0: आगे के लिए इसने क्या सोचा है, तो ये समापन की होगी। फिर तो उसके बाद हम आगे
1: सर, जिस तरीके से हम रबी क्रॉप्स और खरीफ ये जो फसल है इन दोनों को जब हम देखते हैं तो हमें एक तो जिस तरीके के फसल उगाते हैं उसमें फर्क देखने को मिलता है, उसके हिसाब से आप जिन तैयारियों के बारे में बात कर रहे हैं उन तैयारियों में भी फर्क होगा। तो क्या उस हिसाब से हम मिट्टी को तैयार करते हैं या फिर फसल हिसाब से बीज लेकर आते हैं या फिर मौसम का उसमें कोई असर देखने को मिलता है?
0: जैसे कि अभी जैसे खरीफ, तो खरीफ का तो समापन है
1: जी।
0: समापन से अर्थ ये है कि हमें उपज अपने घर लानी, तो इसमें तो कोई आगे के लिए हमें व्यवस्था नहीं करनी है, लेकिन जो अब तक हमने व्यवस्था करी थी उसका जो मतलब परिणाम है वो हमें लाना है। अब उसमें मेन चीज क्या है कि जैसे हमें कटाई करनी है तो कटाई के साधन हमारे पास है, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने कटाई शुरू करी बीच तक हमारे साधन रहे उसके बाद फिर लेबर नहीं मिली या कंबाइन की व्यवस्था नहीं हो पाई, मतलब एक साथ हमारे काम होते चले जाए और एक बार में वो चीजें फ्लोलेसली जो मतलब जो निवट जाए। उसके लिए आपको लेगर को आगे से बोलना है, उसके लिए इक्विपमेंट आपको चाहिए, या कंबाइन को कहना है तो कंबाइन वाले को तय करने के लिए, क्योंकि उसके पास सभी लोग आ रहे होंगे तो उसको तय करने के लिए कुछ एडवांस देना है, कितना देना है, क्या रेट जो करना है, आपने अपनी तरफ से बोली डेट, वो कुछ और डेट आपको चाहता है देना, वो समायोजन करना पड़ेगा। फिर आप कटाई करके उपज लेके आ रहे हैं तो एक तरीका ये होता है कि वहां से आपने काटा और सीधा मंडी ले गए
1: जी,
0: तो साधारण है, आपने काटा ट्रॉली में डाला मंडी ले गए, मंडी में आपने उसको बेच दिया। मंडी में बेचना है तो उस समय पर ये भी ध्यान रखना है कि अगर मौसम सही है, खुला है, कोई दिक्कत नहीं, आप बेच के आ सकते हैं, एक दिन रुक भी सकते हैं, लेकिन अगर मौसम में उतार चढ़ाव है तो जो आप ट्रॉलियों से उससे लेके जा रहे हैं उसको त्रिपाल से ढक के ले जाना है,
1: कवर करके ले जाना।
0: आप जब मंडी में लेके जा रहे हैं तो वहां कौन सी दुकान से आपका कांटेक्ट है, आपको रेट का पता करना पड़ेगा कि भाई क्या क्या रेट चल रहे हैं, कैसे है, तो ये सारी तैयारियां। और फिर पूछते रह जाइए कि जैसे अभी कुछ फसलें होती है वो थोड़ी एडवांस में आ जाती है, उसका इस रेट में बिका, उसका इस रेट में किया, अभी रेट क्या चल रहे हैं, मंडी भाव क्या है, तो ये सारी चीजें समापन से पहले आपकी अगर तैयार होंगी तो आप बेहतर ढंग से चीजों को संभाल पाएंगे और ज्यादा फायदा ले पाएंगे। दूसरा, अगर आप घर लेके आ रहे हैं तो वहां आपकी भंडारण की व्यवस्था है, क्योंकि जो इस समय अनाज लेकर आ रहे हैं उसमें नमी ज्यादा होती है, तो पहले तो उसको सुखाना है, सुखा के फिर भंडारण करना है। अगर नमी वाला ही आपने ज्यादा स्टोर कर दिया कहीं पे तो उसमें फफूंद लग सकती है, वो खराब हो सकता है अनाज, तो सुखाना फिर भंडारण करना। भंडारण की भी जो जो जो स्थान है वो साफ सुथरा हो, उसमें नमी नहीं हो, जिससे कि अगर हम कुछ लंबे समय के उसके लिए स्टोर भी करें तो वहां पे कीड़े ना लगे, इंसेक्ट लगे जो कि आपकी उपज को खराब कर सके। तो ये सारी तैयारियां जो है ये समापन की तैयारियां है। अब समापन में आपने सपोज आपने जो मतलब जो विक्रय कर रहे हो, विक्रय के बाद कितना आपके पास पैसा आने वाला है उसकी भी आपको अरेंजमेंट करनी है कि
1: जी
0: भाई ये मेरे पास इतना आया, इसमें से इतना मैं अगली फसल के लिए रख रहा हूँ, इतना मेरे और कुछ खर्चे हैं उसके लिए रख रहा हूँ, बाकी है मैं बैंक में रख सकता हूँ जिसका मुझे कुछ ब्याज मिल सकता है, कुछ आप और कुछ कर सकते हैं, एफडी कर सकते हैं, कुछ आपने हो सकता है कि कुछ उधार लिया हो उसका आपको आपके पेमेंट करना है। तो ये समापन से अर्थ ये है कि जो अब तक हमने प्रयास किए मेहनत की उसका जो परिणाम आने वाला है उसका हम ज्यादा से ज्यादा लाभ ले सके। दूसरा, जब आपकी फसल की कटाई होती है तो फसल अवशेषों का सही प्रबंधन आपको करना
1: जी
0: है, हल से आपको खेत को तैयार कर देना है, तो ये सारी चीजें समापन से रिलेटेड है।
1: खरीफ फसल के समापन के समय आपने इतने जो तैयारियां हैं इसके बारे में बताया, तो ऐसे कौन से फसल हैं खरीफ सीजन में जो हम लगाते हैं और समापन के समय हमें
0: जी
1: अलग से उनके लिए स्पेसिफिकली कोई
0: जी
1: तैयारी
0: जी
1: करनी
0: अब
1: होगी?
0: जैसे कि अगर खरीफ में हम देखें तो धान है, मक्का है, बाजरा है,
1: जी
0: मूंगफली है, उड़द है, मूंग है, ये सारी फसलें हमारे करीब करीब क्षेत्र में होती है। हर एक की अलग अलग तैयारी होती है। जैसे कि अगर आपको धान काटना है उसका अलग तरह का
1: हाँ
0: उसका तरीका, उसका अलग तरह का बाजार है।
1: जी
0: मूंग काटनी है, उड़द काटनी है, उसका एक अलग तरीका है, उसको काटना है, उसका थ्रेसिंग करनी है तो हाथ से करी जाती है या उससे या बैल से करी जाती है, या कुछ ऐसे थ्रेसर आते हैं जो कि उसको दाना टूटता नहीं है। तो
1: जी
0: सबका, अब जैसे मूंगफली है, मूंगफली की खुदाई करनी है आपको, तो खोदना है, फिर उसको काटना है और फिर उसको सुखाना है, उसका जो आपने कितनी मात्रा में लगाई है, बेचने के लिए लगाई है या खाने की लगाई है उसके हिसाब से आप तैयारी कर सकते हैं।
1: जी
0: थोड़ी लगाई है तो हो सकता है कोई कोई आसपास का ही थोड़ा थोड़ा करके ले जाए तो वो आप व्यवस्था कर सकते हैं। मक्का है, मक्का का भुट्टा होता है, भुट्टा काट के आपको अलग करना है, उसकी एक अलग तरह से तैयारी, उसके जो फसल अवशेष है वो चारे के रूप में भी इस्तेमाल हो सकते
1: जी
0: होते हैं और उसको उनको इकट्ठा भी किया जाता है, ठंड में चारे के रूप में काम आते हैं। तो ये सारी चीजें हैं, अलग अलग फसल के हिसाब से अलग अलग होता है, लेकिन जो खेती करते हैं वो समझते हैं इसका इसका कैसे प्रबंधन करना है। लेकिन यही है कि मुख्य चीज जो है कि उससे जो आपको लाभ या आमदनी होनी चाहिए थी वो पूरी हो उसका पूरा से।
1: खरीफ फसलों के बारे में आपने बहुत सी बातें हमें बताई, ये जानना चाहूंगी कि किस तरीके से खरीफ क्रॉप्स और जो हमारे खरीफ फसल है और रबी फसल जो है उनमें किस तरह के मुख्य आपको डिफरेंस देखने को मिलते हैं, क्योंकि फिर इनकी तैयारी में भी आपको
0: जी खरीफ फसल है वो आमतौर पर जून से लेकर, या जो जुलाई का महीना ले लो उससे लेकर सितंबर या अक्टूबर के आखिर तक तैयार हो। रबी की जो फसलें हैं उनकी जो तैयारी है वो अक्टूबर के प्रथम सप्ताह से लेकर और फिर जो नवंबर तक उसकी बिजाई बिजाई के सारे काम हो जाते हैं। तो खरीफ हम ये कह दें कि जब जो समय होता है उस समय पर हम खरीफ कहते हैं, और जब धीरे धीरे ठंड की ओर हम जा रहे होते हैं तो
1: जी
0: उसको हम रबी कहते हैं। शुरुआत में ठंड इतनी शुरू होती है, बीच में काफी होती है, फिर आखिर पका की।
1: कभी फसलों की शुरुआत करके आरंभ होता है तो उसका महत्व क्या क्या इंपॉर्टेंस है उसका?
0: हाँ, रबी फसलों जब आरंभ हम कर रहे हैं क्या महत्व है उसका या उसका क्या अर्थ है, रबी फसलों की तैयारी क्यों करें? रबी
1: जी
0: तैयारी नहीं होगी तो कुछ काम नहीं होगा, काम नहीं होगा तो उसका कोई पता हो जाएगा, खाद है, सारी चीजें समायोजित नहीं होंगी तो प्रॉपरली आपका आउटपुट नहीं दे पाएगी।
1: देखते हैं कि किस तरीके से जब हम खरीफ फसल लगा रहे हैं तो उसमें जिस तरीके की मिट्टी का हम उपयोग कर रहे हैं उसमें, और उसी खेत में जब हम रबी की फसलें लगा रहे हैं तो
0: जी
1: उस मिट्टी में कुछ फर्क हमको देखने को मिलता है?
0: हाँ, फर्क सिर्फ इतना है कि जो जो खरीफ फसल जो जो खरीफ फसल थी उसको उसमें से जो पोषण ले लिया है, रबी की फसल अगर आप उसमें लगा रहे हैं तो उसमें आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि अब हमें क्या पोषण देना चाहिए।
1: जी खरीफ फसलों के आरंभ की जब हम बातें करते हैं तो हम और किन किन तैयारियां या किन तरह के कार्यों पर हम?
0: हाँ, रबी की तैयारियों के बारे में अगर हम कहें तो सबसे पहली चीज आ जाती है बीज।
1: जी
0: बीज में दो साधन है हमारे पास, एक तो हमारा अपना बीज जो हम ये कहें कि हम अपना बीज से ही फसल उगाएंगे, तो अगर वो बीज है तो बीज आपने संभाल के रखा होगा ऐसा लगता है, उसे आप लें और उसे धूप में सुखाएं अगर नमी वगैरह है, और उसका बीज उपचार जरूर करें, तब लगाएं, उससे बहुत सारे जो होने वाले रोग है उनको आप रोक सकते हैं।
1: जी
0: नंबर एक। नंबर दो, अगर बीज लिए या उनके अलावा कोई नया आप बीज जो कि अधिक उपज दे सकता है या ज्यादा अच्छा आया है तो उनके बारे में बाजार से जानकारी आप प्राप्त करें। और ऐसा नहीं है कि किसी एक ने कहा कि आप ये डाल लो ये बढ़िया, नहीं, एक दो जगह से और चेक करें। आजकल तो प्रचार प्रसार है, मोबाइल फोन पे भी सुविधाएं होती हैं, बहुत सी कंपनियां भी अपना प्रचार करती
1: जी
0: हैं, सब अपनी अपनी बात कहते हैं, तो आप उनकी बात भी सुनिए। और अगर वह बीज एकदम नया आया है तो ज्यादा प्रयोग न करें, और अगर पहले से वो चल रहा है और उसके अच्छे परिणाम मिले तो कोई ना कोई आसपास में आपके उस बीज का प्रयोग किया होगा पिछले साल में, उसके अनुभव से आप जो जान सकते हैं कि वो कैसा रहा, उसके हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं, दुकान पर पूछ सकते हैं, आपको रेट भी देखने पड़ेंगे। तो सारी चीजों का तालमेल करके आप बीज को खरीदने की व्यवस्था आप करें, चाहे वो गेहूं का बीज हो, चाहे वो सरसों का बीज हो, या जौ हो, कोई भी चीज हो, कोई भी जो रबी की फसल आप लेने जा सकते हैं, चना है, चना भी एक अच्छी फसल है रबी की, उसके बारे में तो बीज सही लें, रोग रहित बीज लें वो करें। दूसरा जो उर्वरकों की मांग है उसमें पूरी फसल के लिए उर्वरकों की मांग है उसके लिए प्रयास न करें, जो शुरुआत में हमें चाहिए
1: जी
0: वो उर्वरकों का प्रबंध के लिए आप जो प्रयास करें, जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटियां हैं, PMKSK है, सब जगह उर्वरक मिलते हैं, तो उसमें आप देख लें कि जो फसल लगाने जा रहे हैं उसमें क्या पोषण की हमें आवश्यकता है, उस पोषण के हिसाब से आप उर्वरक चुने। आप ऐसा ना सोचेंगे मैं पहले ये डालता था तो ये मैंने चुन लिया, ऐसा नहीं है।
1: तो सही उर्वरक के लिए हम किसी सलाहकार से मिल सकते हैं?
0: सलाहकार से भी ले सकते हैं, जैसे कि मान के चलो कि आपको गेहूं में आपको 1 एकड़ में 20 किलो फॉस्फोरस डालना है
1: जी
0: नहीं, करीबन जो आपको जो मतलब पोटास इस्तेमाल इतना ही करना है 20 किलो, और नाइट्रोजन आपको 20 किलो डालनी है, तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है। एक तो क्या है कि आप जैसे सिंगल सुपर फास्फेट ले सकते हो, यूरिया ले सकते हैं और पोटास मिला सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है DAP ले सकते हैं और उसमें पोटास मिला सकते हैं। तीसरा ऑप्शन है कि एक ही खाद में तीनों पोषक तत्व मिल जाएंगे,
1: अच्छा
0: जैसे कि उसमें नाइट्रोजन भी मिल जाएगी, फॉस्फोरस भी मिल जाएगी और पोटास भी मिल जाएगी। तो मैं समझता हूँ कि जहाँ तीनों मिल रहे हैं वो ज्यादा अच्छा चीज है, क्योंकि उसके हर दाने में जो मतलब पोषण तत्व की समान मात्रा है। अलग अलग अगर खाद से आप उर्वरक से जो अगर जो उसको देते हैं तो कोई उर्वरक कहीं पड़ा कोई कहीं पड़ा तो एक जगह उसको पूरा नहीं मिलता है पौधे को, लेकिन अगर ये जो है NPK है इनमें पूरा एक जगह मिल जाता है, तो ये अच्छा परिणाम है। आप इस तरह से चुनाव कर सकते हैं। फिर जो फसल लगाने जा रहे हैं वहां सिंचाई की क्या व्यवस्था है वो आप देख सकते हैं, क्योंकि रबी फसलों में बारिश कम होती है, सिंचाई पर आधारित होना है। अगर पानी कम है तो उस हिसाब से फसल का चुनाव करें, पानी अगर पर्याप्त है तो उस हिसाब से फसल का चुनाव करें। तो ये कुछ रबी की तैयारियां हैं ये आपको करनी है, और अगर आप ऐसे करेंगे

0: किसी में कम किसी में ज्यादा ऊपर नीचे होता है, लेकिन आपका एक जो एवरेज आपको प्रॉफिट मिलना चाहिए था वो आपको मिल जाता है। तो इस तरह से फसलों का चुनाव करें। और दूसरा एक चीज और ध्यान रखें कि फसल चक्र जरूर अपना है, खेतों में अदल बदल के आप जो प्रयास करें, उससे खेत की जो ताकत है वो पुष्ट होती है और फसलों में रोग बीमारियां कम आती है। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो मैं जो है अपनी ओर से कुछ बात रख रहा हूँ कि भाई रबी की जो फसल आप लगाना जा रहे हैं उसमें ये जरूर आप ध्यान रखें। और ये अगर आप ध्यान रखेंगे तो एक सार्थक उपज आपको मिलेगी, सार्थक
1: खरीफ
0: खेती आपके यहाँ हो सकेगी। तो ये कुछ बातों की।
1: फसलों और रबी फसलों के समापन और आरंभ के से जुड़े आपने बहुत सी जानकारी दी सर। इसी के साथ में कार्यक्रम के समापन से पहले कुछ एक सवाल है जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। कई बार हम जितनी जानकारी विशेषज्ञों से लेते हैं या फिर सलाहकारों से लेते हैं, उसे इम्प्लीमेंटेशन तक का जो प्रोसीजर होता है उसके बीच में बहुत सी रुकावट आ जाती है, जिस
0: जी
1: कारण से हम जो सलाह हम लेते हैं, हमें जितनी जानकारी होती है उसे
0: हाँ,
1: हम ठीक से इम्प्लीमेंट कर नहीं पाते और उसका हमें सही
0: लाभ नहीं
1: लाभ
0: मिलता
1: नहीं मिल पाता है।
0: जी।
1: तो अगर हम ऐसी तैयारी नहीं करते तो खेतों में और हमारी फसलों में किस तरीके का दुष्प्रभाव देखने को मिलता है?
0: हाँ, अगर आप तैयारी नहीं करते तो आपके लिए ये है कि जैसे अगर आप बीज देने जा रहे हैं और कोई बीज चाहिए था वो आपको नहीं मिला,
1: जी
0: है ना, या कोई दूसरा बीज लेके आने पड़ा तो जो आप सोच रहे थे वैसा नहीं हुआ। खरीफ फसल का जो समापन है उसमें आप चाह रहे थे कि मैं बेच के आऊँ मंडी में, लेकिन रेट अच्छे नहीं चले और आपने अगर स्टोरेज की कोई व्यवस्था नहीं करी तो ना आप जो मंडी ले पाए ना सही ढंग से उसका भंडारण कर पाए, तो नुकसान हो सकता है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं, इनको आप अगर करते रहेंगे और इनमें थोड़े थोड़े प्रयोग करते रहेंगे तो आपको जो नुकसान होने की संभावनाएं हैं या आपको लगे कि भाई मेरे को ये ठीक नहीं हुआ, वो थोड़ी कम हो जाएंगी। और धीरे धीरे अगर आप इनको अपनाते रहेंगे तो आपके पास एक अरेंजमेंट हो जाएगा। जैसे अगर सपोज भंडारण है, भंडारण का अगर आपने यहाँ पे कुछ व्यवस्था इस साल की है तो वो हमेशा के लिए होगी, वो ऐसा तो है नहीं साल खत्म हो जाएगा। सपोज कोई ज्यादा वैसा नहीं है, आपका आंगन है वहां उसको ऊंचा कर सकते हैं, टीन शेड लगा के जिससे कि बारिश वारिश उसमें ना आए, वहां स्टोर कर सकते हैं, उसकी पुताई कर सकते हैं अच्छे से जगह की, जिससे कि चूल्हे से पुताई करते हैं ना, तो उससे क्या है कि बहुत सारे कीड़े वो आपस में अपने आप ही खत्म हो जाते हैं। तो ऐसा करके हम अपने संसाधनों को जो ठीक कर सकते हैं और लाभ ले सकते हैं।
1: इसी के साथ हम आज की कड़ी को यहीं समाप्त करना चाहेंगे सर। आपके साथ जुड़कर आपसे खेती किसानी से जुड़े हुए इतनी बातें करना बहुत ही ज्ञानवर्धक था और मैं आशा करती हूँ कि हमारे जो किसान भाई हैं वो भी इससे बहुत से फायदे उठा पाएंगे।
0: हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद, और किसान भाई इसका लाभ लें ऐसी हम आशा करते हैं। और ये जो वार्ताएं हैं हम इसलिए करते हैं कि कोई ना कोई सार्थक परिणाम इसके हमारी
1: जी
0: खेती बाड़ी में आए।
1: आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेती किसानी, आपकी बात हो रही थी दिव्या और चंबल फर्टिलाइजर्स के वरिष्ठ प्रबंधक डॉक्टर AK सिंह सर के साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के
0: आपका भी
1: लिए।
0: बहुत बहुत धन्यवाद दिव्या जी।
1: दिव्या को इजाजत।

0: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशांत जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर नैनीताल में, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
1: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।
2: अगर आप अपने खास मौकों के लिए ढूंढ रहे हैं कुछ बेहतरीन गहने, तो आज ही आइए उत्सव ज्वेलर्स। यहाँ आपको मिलेंगे खूबसूरत कुंदन, पोल की नक्काशी और नागरी पर विशेष छूट।
3: हमारे यहाँ 25% डिस्काउंट डायमंड पर और 100% हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ पुराने सोने पर 100% वापसी भी की जाती है।
2: पता लाइन पार्क प्रकाश नगर चौराहा मुरादाबाद, मोबाइल नंबर 7055070552।
4: नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 पर, और मैं लेकर हाजिर हूँ आपका अपना पसंदीदा शो सोच बदलो। आज हम बात करेंगे एक ऐसी आदत की जो

0: जाने अनजाने में हम सब में कहीं ना कहीं होती ही है किसी की पूरी कहानी जाने बिना उसके बारे में राय बना लेना। हम किसी को देखकर कह देते हैं कि इंसान कितना घमंडी है, ये बहुत लापरवाह है, इसे किसी की परवाह ही नहीं है। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि शायद उस इंसान की कहानी कुछ और ही हो? तो आज हम अपनी सोच को थोड़ा सा बदलते हैं और इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6। मैं आपके साथ आपकी होस्ट आरजे खुशी और मेरे साथ में यहाँ पर रीना जी हैं। हम दोनों लेकर आए हैं आपके लिए ये बेहतरीन कार्यक्रम और आगे भी बात करते हैं रीना से भी। हाय रीना, कैसे हो आप?
1: मैं बहुत बढ़िया हूँ, तुम बताओ तुम कैसे हो?
0: मैं एकदम फर्स्ट क्लास हूँ। और आज का मौसम भाई, ये क्या था, कभी धूप कभी बारिश?
1: ये तो मुझे भी समझ नहीं आया एक मिनट के लिए कि धूप के साथ साथ बारिश, मतलब एक अलग ही, मतलब मौसम भी कंफ्यूज है भैया कि बारिश खुद ही कंफ्यूज है।
0: हाँ, तो हम कंफ्यूज नहीं होने वाले हैं, हम बात करने वाले हैं आज बहुत ही अच्छे टॉपिक पर। आपको कैसा लगा ये टॉपिक?
1: नहीं, अच्छी बात है, हमें हर अलग अलग टॉपिक लेकर आना चाहिए अपने श्रोताओं के लिए ताकि उनको भी अच्छा लगे, अपनी जिंदगी में भी बदलाव करे, क्योंकि बदलाव बहुत जरूरी है अपने लाइफ में। चाहे आप छोटा काम करे चाहे बड़ा काम करे, कोई भी काम करे, हमें अपने आप को बदलना बहुत जरूरी है। मुस्कान के पीछे की एक कहानी है भैया, बहुत ही शानदार, जो हम आपको बताते हैं। और ये मतलब सही है कि मुस्कान के पीछे की आखिर का रीजन क्या होता है। कभी कभी जो इंसान सबसे ज्यादा मुस्कुराता है, जरूरी नहीं कि उसके जिंदगी में सब कुछ परफेक्ट हो। हो सकता है वो अपनी परेशानियों के बावजूद मुस्कुरा रहा हो, इसीलिए किसी की स्माइल देकर उसकी जिंदगी का अंदाजा मत लगाइए। हर इंसान अपनी एक अलग कहानी लेकर चलता है और क्या पता उसके लाइफ में कितनी प्रॉब्लम्स चल रही हो। तो जो इंसान मुस्कुराता है ना, तो ये मत सोचिए कि वो भैया बल्ले बल्ले है, उसकी जिंदगी बहुत अच्छी कट रही है। क्या पता वो किसी को दिखाना नहीं चाहता हो, और दिखाना इसलिए नहीं चाहता हो, देखिए दुनिया के आगे दिखाकर तमाशा करवाना कोई नहीं चाहता है।
0: और आज के टाइम में ना रीना, बहुत कम लोग हैं जो इंसान एक दूसरे की तकलीफ को समझ पाए। मोस्टली लोग क्या करते हैं ना, सपोर्ट करने की जगह उसकी मजाक बनाते हैं। तो ये चीजें इसीलिए शायद इंसान अपने दुख में भी फेक स्माइल रखता है। अभी हम बात करते हैं चुप रहने वाला इंसान। और बहुत लोग होते हैं जो शांत रहते हैं, कुछ लोग कम बोलते हैं। हम उन्हें सोचते हैं कितना एटीट्यूड वाला इंसान है ये, इतना शांत बातें भी नहीं कर रहा है, लेकिन शायद वो नेचुरल क्वालिटी हो या फिर किसी ऐसी सिचुएशन से गुजर रहा हो जिसके बारे में हम कुछ नहीं जानते। कम बोलना हमेशा घमंडी नहीं होता है, कभी कभी खामोशी भी एक कहानी कहती है एवरीवन। कभी किसी की लाइफ में होता है ना कि इंसान बहुत सारी सिचुएशन से गुजर रहा होता है और हम सोचते हैं कि पता नहीं ये क्यों नहीं बात कर रही, क्यों नहीं बात कर रहा है। शायद हो सकता है उसके पीछे का भी कोई रीजन हो, कोई प्रॉब्लम हो। कभी कभी रीना होता है ना कि हम बहुत ज्यादा टायर्ड हो जाते हैं, बहुत कुछ लाइफ में चलता है, तो हमारा मन करता है कि हम कुछ ना बोलें, बस शांत रहें।
1: हाँ, ये तो है
0: ना। तो ऐसी सिचुएशन में ना किसी को जज मत कीजिए आप कि बहुत एटीट्यूड है, आप बात क्यों नहीं कर रहे हो, शायद ये घमंडी है। तो ऐसा नहीं है कि अगर हर इंसान शांत हो तो वो एटीट्यूड में हो, वो घमंडी हो, नहीं, उसके पीछे का रीजन भी जानना जरूरी होता है। मतलब बिना कोई रीजन जाने आप किसी को जज मत कीजिए,
1: करना भी नहीं चाहिए,
0: करना भी नहीं चाहिए। एग्जैक्टली।
1: और साथ ही साथ कपड़ों की राय, कपड़ों से राय, दोस्तों किसी के कपड़े, मोबाइल, गाड़ी या लाइफस्टाइल देकर उसकी पूरी पर्सनालिटी तय कर लेना कितना सही है या नहीं है। किसी को चीजें उसकी पूरी पहचान नहीं होती, इंसान की असली पहचान उसके व्यवहार और उसके दिल से होती है। चाहे आपके पास लग्जरी गाड़ी क्यों ना हो और आप किसी की रिस्पेक्ट नहीं करते हो, तो आप सच बताओ किसी काम के नहीं हो, सिर्फ और सिर्फ आपके अंदर एटीट्यूड भरा हुआ है। इसीलिए इंसान तो वो होता है जिसके अंदर इंसानियत हो, तो दूसरे के बारे में थोड़ा सा सोचता हो और दूसरों को परेशानी दुख देकर खुद का दुख समझता हो, तो रियल इंसान वो कहलाता है।
0: रीना, ये तो आपने सही कहा कि देखो किसी से, किसी को ना अच्छे, अगर किसी ने अच्छा सूट वूट पहना है, अच्छा यू नो ड्रेसिंग सेंस है उसका या अच्छा लाइफ स्टाइल है, तो उसको देखकर ना हमें किसी को जज नहीं करना चाहिए कि लाइक ये इंसान बहुत अच्छा है, अरे यार क्या बात है, वो कितनी ब्यूटीफुल लड़की जा रही है देखना, शायद वो रिच फैमिली से होगी, या फिर बहुत सारे मन में थॉट आते हैं। तो जरूरी नहीं है कि अगर वो उसने अच्छा ड्रेस पहना है, ब्यूटीफुल लग रहा है, तो वो इंसान नेचर का भी अच्छा हो। क्योंकि बहुत इंसान ऐसे भी होते हैं जो देखने में बहुत ही अच्छे होते हैं लेकिन उनका व्यवहार उतना अच्छा नहीं होता है,
1: घमंडी टाइप का होता है।
0: लेकिन कुछ इंसान ऐसे भी होते हैं जो बहुत सादगी में रहते हैं लेकिन वो सबके दिलों को जीत लेते हैं, है ना। अभी आप मुझे बता रहे थे कि एक आपको मैम मिली थी, वो बहुत सिंपल सिटी में थी और उनका नेचर, उन्होंने हेल्प की थी, याद है आपको? जब हम मंदिर से बाहर आ रहे थे तो एक महिला बैठी थी वहां पर, बुजुर्ग महिला, तो उन्होंने उनको रात में, मतलब बारिश हो रही थी, तो उन्होंने तुरंत उनको छाता दिया, उनकी हेल्प की और उनको खाना भी दिया। तो सच्ची इंसानियत वही होती है रीना, रियलिटी वही है जो इंसान किसी के दुख में काम आए, किसी की पानी को समझे।
1: ये तो है।
0: मान लीजिए ऑफिस में कोई कलीग आपसे ठीक से बात नहीं कर पाया और आपने तुरंत सोच लिया कि बहुत एटीट्यूड है, लेकिन क्या पता उस समय उसके घर में कोई परेशानी हो सकती है, इसलिए एक मोमेंट के बिहेवियर को पूरी पर्सनैलिटी मत समझिए। अगर कोई इंसान आपको लगता है कि वो आपसे बात नहीं कर रहा है या फिर वो आप मतलब आपने उसको कुछ काम वो कंप्लीट ना कर पाए, तो आप ये सोचें कभी कि यार ये इंसान कैसा है, मैंने इसको ये काम दिया उसने काम नहीं किया। हो सकता है कि उसकी कुछ चीजें पहले से स्ट्रेस में हो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है इंसान को ना, एक इंसान को समझना बहुत जरूरी है। हम बिना सोचे समझे किसी पर भी कुछ भी रिएक्ट कर देते हैं, कुछ भी बोल देते हैं। अगर सामने वाला इंसान परेशान है और हम उसको चार बातें सुनाते हैं तो वहाँ पे इंसान को तकलीफ होती है। तो पहले इंसान को समझो सामने वाला कैसा है क्या है, उसके बाद ही रिएक्ट करो, बिना किसी को कुछ बोले जाने आप किसी को जज ना करें, मैं तो यही कहना चाहती हूँ। बाकी हम बात करते हैं अभी स्कूल और कॉलेज की लाइफ की।
1: देखो स्कूल और कॉलेज की बात ये है कि हम जब स्टार्टिंग में एडमिशन लेते हैं तो हम एकदम ये उम्मीद लगाने लग जाते कि भैया ये तो मेरी अच्छी दोस्त बननी चाहिए, या फिर कोई तुमसे दूसरा कोई उम्मीद लगाता है कि ये मेरी अच्छी दोस्त बन जानी चाहिए। और जब हम अच्छे दोस्त नहीं बना पाते हैं या फिर नहीं बन पाते हैं तो जज करने लग जाते हैं। मुझे लगता है कि जब तक आपको वो नहीं समझेगा, आपको नहीं जानेगा अच्छे से, तो दोस्ती कैसे कर सकता है? क्या पता आपके साथ वो कम्फर्ट जोन में हो ही ना। जब तक आपके साथ वो कम्फर्ट जोन में नहीं आएगा तब तक आपको वो दोस्त नहीं बन पाएगा। इसीलिए हमें इस चीजों का भी ध्यान रखना है कि जब भी आप नए दोस्त बनाते हैं या फिर कुछ भी हो, पहले उसके बारे में जानना बहुत जरूरी होता है, तभी धीरे धीरे दोस्ती होती है और फिर वो दोस्ती इतनी गहरी हो जाती है ना कि कभी खत्म नहीं होती। लेकिन वही आप बिना सोचे समझे किसी को फोर्स करने लग जाओ, तू मेरा दोस्त है, तू मेरी दोस्त है, मेरे साथ रहेगी, ये वो, तो ये वाली दोस्ती ना काफी टाइम तक नहीं चलती है। वो लगता है कि यार मैं इसका दोस्त बनना चाहता नहीं हूँ, ये बिना मतलब में मुझे अपना दोस्त बनाना चाहता है, वही फॉर्मेलिटी वाला फिर दोस्ती हो जाती है। तो इसीलिए दोस्ती वहां करे जहां आपको कंफर्ट जोन मिले, वो आपको समझे और आप उसका साथ दे सके। अदरवाइज दोस्ती हर किसी से की भी नहीं जाती है और हर कोई आपका दोस्त हो भी नहीं सकता। तो देखिए श्रोताओं, ढेर सारी बातें करते रहेंगे आप सभी के साथ, लेकिन यहाँ पर लेते एक म्यूजिकल ब्रेक और गाना एंजॉय करने वाले हैं मेरी कॉलेज की लड़कियों, ये वाला गाना एंजॉय करेंगे क्योंकि हमने बातें भी अभी कॉलेज वाली ही करी हैं। तो बस सुनते रहिए आप हमारे साथ और जुड़े रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहे गुनगुन।

0: हेलो एवरीवन, आपने सुना ये अमेजिंग सा ट्रैक कॉलेज की नटखट लड़कियों। वैसे हम भी नटखट हैं, पर ज्यादा नहीं, थोड़े से हैं। और अब बात करते हैं हम सोशल मीडिया। सोशल मीडिया ने तो राय बनाना और भी आसान कर दिया है। किसी की एक फोटो देखी और हमने उसकी पूरी लाइफ, पूरी जिंदगी इमेजिन कर ली। लेकिन दोस्तों, एक पिक्चर पूरी कहानी नहीं होती। सोशल मीडिया पर जो दिखता है ना, वो जिंदगी का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा होता है। तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ, अगर आप सोशल मीडिया यूज करते हैं, किसी की आप ब्यूटीफुल प्रोफाइल देखते हैं, पिक्चर्स देखते हैं, तो आप उनकी तरफ अट्रैक्ट मत होइए, है ना। आप थोड़ा सा सोशल मीडिया को यूज कीजिए, लेकिन संभल कर, क्योंकि जो इंसान दिखता है असल में वैसा होता नहीं है। तो सेफ रहिए, अपनी सोच बदलिए। और यहाँ पर बस मैं आपसे कहना चाहूंगी कि सोशल मीडिया यूज करना अच्छी बात है, लेकिन सावधानी के साथ।
1: और हम कभी कभी ना ये भी सोचते हैं कि कोई भी काम करते हैं ना, उसका रिजल्ट हमें बहुत जल्दी मिल जाए, लेकिन ऐसा कभी होता नहीं है। देखिए, जिंदगी में उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं। आप कभी हारेंगे, कभी जीतेंगे, कभी गिरेंगे, कभी उठेंगे, लेकिन असली सिकंदर वही होता है जो गिरकर फिर से उठना जानता हो और खुद को संभालना जानता हो। क्योंकि देखिए, मेहनत कभी आपकी खराब नहीं होती है, चाहे उसको भले ही परिणाम मिलने में 1-2 साल लगे, लेकिन मिलती ऐसी है कि आप फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखती है। इसीलिए मेहनत हमेशा करना ना छोड़े, आगे बढ़ते रहे। कुछ नहीं पता कल आपके साथ क्या हो जाए, क्या आपने जो सोचा भी नहीं होगा ना, आपने एक्सपेक्ट भी नहीं करा होगा, वो चीज आपको मिल सकती है। इसीलिए हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि जो हमने काम किया और कल ही हमें परिणाम मिल जाए। मानकर सोच लीजिए आप खुद ही कि आपको फीवर है और आपने आप मेडिसिन लिया और कल आपको फीवर ठीक हो जाए, ऐसा भी नहीं हो सकता है। कोर्स पूरा करना पड़ता है तभी आप अच्छे से ठीक हो पाते हो। इसीलिए परिणाम चाहिए किसी भी चीज में, तो मेहनत बिल्कुल ना छोड़िए, आगे बढ़ते रहिए और अपने

0: असूलों को बुलंद रखे।
1: पता है रीना, एक आदत है जो रिश्तों में ना नुकसान पहुंचाती है, और वो आदत है कभी कभी ऐसा होता है कि किसी रिलेशन वाले का कॉल आया और कॉल नहीं उठाया, या आपके फैमिली मेंबर में भी होता है, ये रिलेशनशिप में भी होता है, लाइफ पार्टनर में भी चीजें होती हैं कि अगर हमने कॉल किया और कॉल का रिप्लाई नहीं आया तो हमें लोग सोचने लगते हैं कि शायद उसको हमारी परवाह ही नहीं है, इसीलिए उन्होंने कॉल नहीं रिसीव किया। लेकिन मैं आपसे कहना चाहती हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि आपको ना यहाँ पर ज्यादा ओवर थिंक नहीं करनी चाहिए। शायद हो सकता है कि कोई ऐसी प्रॉब्लम हो जिसकी वजह से उन्होंने फोन ना उठाया हो या बिजी भी हो, तो यहाँ पर आपको ना नेगेटिव नहीं सोचना है। अगर आप चाहते हैं कि आपका रिश्ता लॉन्ग टर्म चले, आपका रिश्ता यू नो लॉन्ग टर्म चले और अच्छा चले, तो उसके लिए आपको नेगेटिव नहीं सोचना है, पॉजिटिव सोचना है। हो सकता है वो शायद काम में बिजी हो, राइट ना, तो उस पर्सन को आपको क्या करना है, जज नहीं करना है यहाँ पर, आपको उनको समझना है। और जब समझते हैं रिश्तों में, रिश्ते दोनों तरफ से बनते हैं ना, एक तरफ से नहीं, आप दोनों तरफ से समझिए एक दूसरे को। और अगर मैम ने कॉल नहीं उठाया या सर ने कॉल नहीं उठाया तो ज्यादा ओवर थिंक ना करें, अब बाद में भी बात कर सकते हैं।
2: इसी के साथ साथ देखिए, आज हम सोच बदलो सो में बहुत से टॉपिक पर बात कर रहे हैं, और टॉपिक पर बात करना भी बहुत जरूरी है। फिलहाल इसी के साथ हम बात करेंगे ट्रैफिक वाला। सुबह के टाइम ऑफिस जाते हैं आप या शाम के टाइम ऑफिस से घर आते, तो एक जल्दबाजी रहती है कि भैया कुछ भी हो जाए हम अपने घर जल्दी पहुंच जाए, और इस चक्कर में हम कुछ गलतियां भी कर देते हैं जिसको हमें भी पता नहीं रहता है, और बाद में पता चलता है जब आपके अकाउंट से पैसे ऑटोमेटिक कट जाते हैं तब आपको पता चलता है कि ओ ये तो मेरा चालान कटा है क्योंकि मैंने हेलमेट और सीट बेल्ट तो पहनी ही नहीं थी। और इतनी जल्दबाजी होती है कि हम कुछ चीजें ऑफिस में भी भूल जाते हैं, और साथ ही साथ जल्दबाजी के चक्कर में देखिए लंबी लाइन कतार में भीड़ लगी हुई होती है, और हम हॉर्न पर हॉर्न बजाते रहते हैं। अब खुद आप सोच कर देखिए कि आप बाहर खुद खड़े होकर उसी हॉर्न की आवाज आप खुद सहन नहीं कर पाएंगे, तो दूसरा इंसान आपकी जो आप गाड़ी का हॉर्न है बार बार बजाए जा रहे, वो कैसा कोई सहन कर सकता है। इसीलिए जब भी आप ट्रैफिक में हो, या तो आप पहले निकलने से पहले सर्च कर ले कि इस ट्रैफिक से या इस रूट से मैं जा रहा हूँ उस पर आप हमें ट्रैफिक मिलेगी या नहीं मिलेगी। अगर आपको ट्रैफिक मिलती है तो आप वहां से कट ऑफ कर दे, यानी कि दूसरा रूट अब मतलब जारी रखे ताकि आप अपने घर आसानी से पहुंच सके। अगर आपके अंदर पेशेंस लेवल है तो आप उसी रूट से जाइए, और हॉर्न कम बजाइए, और हेलमेट और सीट बेल्ट जरूर पहनिए, क्योंकि ट्रैफिक नियम फॉलो करना हमारी जिम्मेदारी है, और जिससे हम सेफ रह सकते, चाहे वो बच्चा हो चाहे बड़े हो। और गाड़ी चलाते समय, स्कूटी चलाते समय या साइकिल भी चलाते समय ना हमें फोन यूज नहीं करना चाहिए। मैंने बहुत से बच्चों को देखा भी है, आजकल के बच्चे भैया बड़े ही स्मार्ट है, वो कहते हैं कि हम हर काम कर सकते हैं चाहे कुछ भी करते हैं, गाड़ी चलाते चलाते फोन चला लेते हैं, स्कूटी चलाते चलाते फोन चलाते हैं, साइकिल चलाते चलाते भी फोन अटेंड करते हैं, और एक हाथ से ही चलाने की कोशिश करते हैं, और कभी कभी डिसबैलेंस हो जाता है। तो सोचिए, छोटी सी लापरवाही बड़ी लापरवाही में वो परिवर्तन हो जाता है। इसीलिए कुछ चीजें हमें खुद से भी सोचना होता है, और जो ट्रैफिक नियम है वो फॉलो करिए। देखिए, फोन से इतना ही प्यार है तो घर आके उसको प्यार करिए, ट्रैफिक में नहीं।
1: और रीना कहते हैं ना कि जान है तो जहान है, तो इन चीजों का ख्याल रखिए। बाकी एक आपकी कहते हैं ना कि नजर हटी दुर्घटना घटी, तो ये छोटी सी आपकी प्रॉब्लम, छोटी सी इश्यू अगर आपका हो गया, आपने कॉल उठाने का मतलब अगर डिसाइड किया कि चलो कॉल उठा लेता हूँ, कॉल आ रहा है अर्जेंट है, बट ऐसा करने से कभी कभी बड़े हादसे भी हो जाते हैं। तो अगर आपको लगता है कि बात करना जरूरी है तो साइड में गाड़ी को रोकिए, उसके बाद आप बात कर लीजिए, सबसे बेस्ट ऑप्शन है ना। तो हम गाड़ी की बात भी कर रहे हैं, है ना, ट्रैफिक की बातें की हमने, अभी हम जो ऑन द वे हमें कार में सुन रहे हैं रीना, क्यों ना उनके मूड को फ्रेश किया जाए, कुछ ऐसा सुनवा देते हैं ताकि वो भी खुश हो जाए और हम भी खुश हो जाए।
2: हाँ ये तो है, गाना तो बनता ही है।
1: एक आप भी अपने, अगर आप कार में हमें सुन रहे हैं या फिर आप हमें ऑटो रिक्शा में सुन रहे हैं, ठीक है, तो आप अपने कार में थोड़ा सा म्यूजिक का वॉल्यूम हाई कीजिए, कि ये गाना हम प्ले करने वाले हैं सिर्फ आप सभी के लिए, तो एंजॉय कीजिएगा और सुनते रहिए फिर मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुना दे रहिए।
3: भूख लगी जोरों की भूख लगी, मुर्गे की बांग हमें कोयल की भूख लगी।

तो दोस्तों, अभी आपने सुना ये प्यारा सा ट्रैक, और एक खूबसूरत बात याद रखिएगा, हर इंसान की कहानी का एक हिस्सा, एक ऐसा चैप्टर होता है जिसे दुनिया नहीं जानती। इसलिए किसी के एक चैप्टर को देखकर उसकी पूरी किताब का फैसला मत कीजिए। आप सामने वाले इंसान की एक छोटी सी बात पर उसे जज ना कीजिए। जरूरी नहीं है कि जैसा आप देख रहे हैं वैसा ही हो। तो हर इंसान को समझने की कोशिश कीजिए। एंड रिश्ते तभी खूबसूरत बनते हैं दोस्तों, जब हम एक दूसरे को समझते हैं बिना किसी जजमेंट के। किसी को जज ना करें, रिश्तों को खूबसूरत बनाइए। और सुनते रहिए फिर मुरादाबाद 89.6। अपने व्यवहार पर भी बदलाव लाना बहुत जरूरी है दोस्तों, और ये बदलाव सिर्फ दूसरों के लिए नहीं अपने लिए भी है। जब हम हर किसी को जज करना कम करते हैं तो हमारा अपना माइंड भी ज्यादा पीसफुल रहता है। हर चीज पर ऑप्शन देना जरूरी नहीं होता, कभी कभी बस समझना ही काफी होता है। तो मैं आपसे बस यही कहना चाहूंगी कि आप भी हैप्पी रहिए, औरों को भी हैप्पी रखिए। जिंदगी बहुत प्यारी, बहुत खूबसूरत है। बी पॉजिटिव, बी हैप्पी एवरीवन। और एक चैलेंज आपके लिए भी है। आज मैं आपको एक छोटा सा चैलेंज देती हूँ, उसकी सिचुएशन समझने की कोशिश कीजिए। हो सकता है आपका नजरिया थोड़ा बदल जाए, और हमें जरूर बताइए।

0: कीजिएगा 9837896896। तो दोस्तों आज की पूरी बात को,
1: तो दोस्तों हम जाते जाते आप सभी से एक ही बात कहना चाहेंगे, आज अगर मुझे एक लाइन में या फिर आपको एक लाइन में सोच बदलो के लिए कुछ कहना हो तो आप क्या कहेंगे, आप हमें मैसेज करके बता सकते हैं। खुशी ने नंबर भी बता दिया है। तो मैं एक ही बात कहना चाहूंगी, किसी इंसान को उसकी एक पल से नहीं उसकी पूरी कहानी समझ कर देखिए। हर किसी की जिंदगी में कुछ एक पन्ने होते हैं जिन्हें हम पढ़ नहीं पाते हैं, इसीलिए थोड़ी किडनेस रखिए, इसलिए थोड़ी समझदारी रखिए, अंडरस्टैंडिंग रखिए अपनी सोच में, तभी आप किसी की जिंदगी के बारे में अच्छे से सोच पाएंगे और उसके बारे में समझ पाएंगे। लोगों को समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि हर मुस्कान के पीछे एक कहानी हो सकती है, हर खामोशी के पीछे एक वजह हो सकती है, इंसान के पीछे एक पूरा सफर है। अपनी सोच को थोड़ा और खूबसूरत बनाइए और जुड़े रहिए अपने पसंदीदा शो के साथ, यानी कि हमारे सामुदायिक रेडियो के साथ, एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। आपको हम फिर मिलेंगे एक नई सोच एक नई बात के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।
2: सीने में दर्द, सांस फूलना या तेज धड़कन को बिल्कुल नजरअंदाज ना करें। श्री साई हॉस्पिटल में डॉक्टर अखिल कौशिक टीएम कार्डियोलॉजी द्वारा एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर एवं अत्याधुनिक कार्डियक कैथ लैब की सुविधा उपलब्ध है। मूवी किफायती रेट्स पर, स्वस्थ दिल सुरक्षित जीवन। आज ही अपॉइंटमेंट ले, श्री साई हॉस्पिटल, दिल्ली रोड, मुरादाबाद। कॉल करें 7060002430।
3: क्या आप एक ही जगह पर दुनिया की सैर और जबरदस्त रोमांच का मजा लेना चाहते हैं? तो चले आइए सात अजूबे पार्क। यहाँ शानदार अजूबों के दीदार के साथ आपको मिलेगा तीरंदाजी और मैकेनिकल बुल राइड जैसी एक्टिविटीज का फुल ऑन थ्रिल। तो पूरे परिवार के साथ आ जाइए सात अजूबे पार्क, न्यू मुरादाबाद।
4: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6, आपके शहर का सामुदायिक रेडियो। आनंद के साथ हैं आप और प्रोग्राम का नाम है हेलो डॉक्टर, और हमारे साथ कोई ना कोई विशेषज्ञ, कोई ना कोई एक्सपर्ट मौजूद होते हैं। और आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर आकाश सिंघल, जो श्री साई हॉस्पिटल में है, इस वक्त वहाँ पर वर्किंग है। अब सर का वेलकम करेंगे और उनसे बहुत कुछ जानने की कोशिश करेंगे। आज हमने उनको क्यों आमंत्रित किया है अपने स्टूडियो में और हमारे इस प्रोग्राम में हेलो डॉक्टर में, तो वो तो हम आकाश जी से ही जानेंगे। तो डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे एफएम मुरादाबाद के स्टूडियो में, जोरदार तालियों के साथ वेलकम टू एफएम मुरादाबाद। हाउ आर यू, कैसे हैं आप, प्लीज बताएं आकाश जी।
5: फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी ऑन दिस प्लेटफॉर्म।
4: थैंक यू सर,
5: दिस इज द फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस।
4: ओह वाओ, लवली, कैसा लग रहा है? पहले तो मैं यही पूछूंगा।
5: इट्स एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। थोड़ा सा है कि नाउ आई कैन शेयर माई थॉट्स विद द पीपल, ठीक है। आपके चैनल से काफी लोगों को मैं इन्फॉर्मेशन दे पाऊंगा, जो जो चीजें हैं जो मैं चाहता हूँ कि एवरी पेरेंट शुड नो।
4: क्या बात है।
5: तो पहले तो मैं बताता हूँ, मेरा नाम डॉक्टर आकाश सिंघल है, जैसे कि आपने सबको बताया है।
4: जी जी, प्लीज।
5: मैंने MBBS किया है मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज न्यू दिल्ली से।
4: Beautiful.
5: फिर MD पीडियाट्रिक्स किया है लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज न्यू दिल्ली से।
4: Wow.
5: उसके बाद मैंने किया है DM न्यूरोलॉजी एम्स न्यू दिल्ली से।
4: क्या बात है।
5: अब लोग सोचते हैं ये DM न्यूरोलॉजी है क्या?
4: जी,
5: तो मैं बताना चाहूंगा कि DM न्यूरोलॉजी बच्चों की सुपर स्पेशलिटी है।
4: हाँ जी।
5: इसमें हम बर्थ से 1 मंथ तक के बच्चों को देखते हैं। अब आजकल प्रीमेच्योरिटी, लो बर्थ वेट, मतलब समय से पहले बच्चे डिलीवर हो रहे हैं, कम वजन के साथ बच्चे डिलीवर होते हैं, तो इसकी एक सुपर स्पेशलिटी है। ऑल दो हम सारे ही पेडियाट्रिशियंस अपने ही कोर्स में न्यूबॉर्न बच्चे देखते हैं, बट सुपर स्पेशलिटी की जहां बात आती है, तो वी आर एक्सक्लूसिवली लुकिंग आफ्टर न्यूबॉर्न फॉर द लास्ट 3 ईयर्स।
4: हाँ जी।
5: तो इसमें एक्सपर्टीज बढ़ता है और विद टाइम नॉलेज भी होती है। एंड रही बात मेरे बारे में, तो मैंने दिल्ली एम्स से किया है, तो वो एक हायर रेफरल सेंटर है, तो वहाँ पे हाई रिस्क केसेस ही मोस्टली होते हैं।
4: Alright.
5: तो हमारी एक्सपर्टीज उसी में ज्यादा होती है। समय से पहले डिलीवर हो गए हैं, खून बदलना पड़ा है किसी बच्चे का, बच्चा पैदा होने के बाद नहीं रोया है, ये सब केसेस।
4: बहुत ही अच्छा परिचय सर ने दिया है, तो ऑडियंस अब आप दिल थाम के बैठिए, आपको बहुत सारी जानकारियां मिलेगी। आज हेलो डॉक्टर के प्रोग्राम में डॉक्टर आकाश सिंघल जी मौजूद हैं, जिन्होंने बहुत अच्छे से अपने आप को जो है आपके साथ इंट्रोड्यूस किया। सो डॉक्टर साहब, मेरा पहला सवाल आपसे होगा कि जो नवजात शिशु है उसकी देखभाल में मतलब किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए हमें, जब न्यू बॉर्न बेबी होता है,
5: जब बेबी डिलीवर होता है। एक्चुअली कॉमन चीजें कुछ मिथ्स हैं। जो अगर बेबी नॉर्मल है, हेल्दी है, तो क्या करते हैं फैमिलीज, कभी कभी कुछ बुट्टी पिलाने लगते हैं
6: जी, जी।
5: कोई कोई अम्बिलिकल कॉर्ड जो बच्चे की नाल होती है उस पर पाउडर या तेल लगाने लगते
6: जी,
5: हैं
6: जी, जी, जी।
5: एक बहुत बड़ा मिथ है कि धूप दिखाएंगे तो पीलिया कम हो जाएगा, जॉन्डिस कम हो जाएगा
6: जी, जी, जी।
5: ये कॉमन चीजें हैं। कुछ लोग गाय का दूध, भैंस का दूध, मतलब डिफरेंट ये सब चीजें ट्राई करते हैं, ये चीजें नहीं होती, होनी चाहिए। ये सब चीजें बच्चों में इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ाती हैं। तो कुछ जैसे कि जैसे अगर बेबी हेल्दी है, मदर के पास है, तो उसे हर से 2 से 3 घंटे में ब्रेस्ट फीड कराना चाहिए, ठीक है। अच्छे से साफ सफाई रखनी चाहिए। ये नहीं कि कभी कभी मैं देखता हूँ हॉस्पिटल में कि एक बेबी डिलीवर हुआ है, साथ में 6-7 रिश्तेदार हैं उसके साथ, तो हमें नहीं पता कि किसको क्या बीमारी है, कोई वायरल इन्फेक्शन है, कुछ है, तो वो बच्चे की इम्यूनिटी बहुत वीक होती है, तो वो बहुत जल्दी इन्फेक्शन कैच कर लेते हैं और फिर बच्चों की उनकी दिक्कत बढ़ जाती है। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर बेबी डिलीवर है तो पूरी साफ सफाई का ध्यान रखें, हाइजीन मेंटेन रखें, हाथ धो के ही बच्चे को टच करें, इन सब चीजों का ध्यान दें।
6: ओके, सो डॉक्टर साहब बहुत अच्छे से आपने बताया। और कई बार ऐसा होता है कि जन्म के तुरंत बाद, जैसे कहते हैं कि बच्चे को माँ का दूध देना बहुत जरूरी होता है, तो ये कितना इम्पोर्टेंट है, जन्म के तुरंत बाद बच्चे को माँ का दूध मिलना चाहिए?
5: हाँ, डेफिनेटली यस। अगर मदर हेल्दी है, मतलब नॉर्मली क्या होता है, अगर नॉर्मल डिलीवरी है,
6: हाँ
5: तो हम प्रैक्टिस करते हैं स्किन टू स्किन कॉन्टेक्ट एंड अर्ली ब्रेस्ट फीडिंग विद इन 1 आवर ऑफ बर्थ। इसका मतलब है कि जैसे ही बच्चा डिलीवर होता है उसे माँ के पेट के ऊपर रख देते हैं।
6: दिस इज कंगारू मदर केयर आई थिंक,
5: सॉर्ट ऑफ, इट्स अ डिफरेंट थिंग।
6: ऑलराइट,
5: कंगारू मदर केयर मोस्टली प्रीटम बच्चों के लिए होती है, जो कम वजन के बच्चे होते हैं।
6: हाँ जी, हाँ जी,
5: ठीक है। इन एवरी बेबी डिलीवरी के बाद क्या होता है, अंदर जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तो उसका तापमान मेंटेन रहता है, बाहर आने के बाद ठंडा होने का रिस्क रहता है
6: जी।
5: तो बच्चों के लिए ठंडा होना काफी हानिकारक होता है। तो यही कहा जाता है कि जैसे ही बच्चा डिलीवर हुआ है तो उसको माँ के पेट के ऊपर रखें और वहीं पे ही इमीडिएटली ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट करें। नॉर्मल डिलीवरी में ये पॉसिबल होता है, कुछ मुश्किलें आती हैं जब बच्चा ऑपरेशन से, सीजरियन डिलीवरी से होता है, उसमें इमीडिएटली पॉसिबल नहीं हो पाता है कुछ कुछ जगह, अगर हम चाहें तो हम कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। बट ब्रेस्ट फीडिंग इज द बेस्ट मेथड ऑफ फीडिंग फॉर द बेबी।
6: ओके, डॉक्टर साहब एक सवाल रहेगा, जो नवजात शिशु होते हैं उनको मतलब कितनी बार वो दूध पीते हैं या उन्हें कितनी बार दूध पिलाना चाहिए, इसके विषय में थोड़ा सा आप बताइए।
5: बेबी को 2-3 आवरली, इनिशियली 2-3 आवरली हम बोलते हैं, जैसे अगर बच्चे शुरू में कि दो से तीन घंटे में आप फीड कराएं, कुछ चीजें होती हैं जैसे मदर्स को नहीं, जो फर्स्ट टाइम मदर्स बने
6: हैं,
5: उनको नहीं पता होता है, वो क्या करती हैं, एक कॉन्सेप्ट होता है फोर मिल्क और हैंड मिल्क, मतलब शुरू का दूध और बाद का दूध
6: जी।
5: तो हम ये कहते हैं कि एक बार अगर मदर फीड करा रही है तो वो सफिशियंट टाइम के लिए फीड कराएं, जिससे बच्चे को पूरे एक तरफ से पूरा दूध मिले।
6: Okay.
5: क्योंकि क्या होता है, अगर बच्चा सिर्फ शुरू का दूध पीता है तो उसमें सिर्फ उसकी थर्स्ट, मतलब कि उसकी प्यास बुझती है, उसका पेट नहीं भरता है, ना ही वजन बढ़ता है। जो बाद का दूध होता है, वो जो गाढ़ा होता है, जिसको हम हैंड मिल्क बोलते हैं, उसमें हमारे फैट्स होते हैं, बाकी चीजें होती हैं, तो जिससे उसका पेट भी भरता है और उसका वजन बढ़ता है। तो कुछ मदर्स अगर एक बार में दोनों तरफ से फीड करा रही है तो सिर्फ फोर मिल्क दे रही है तो बच्चे का वजन नहीं बढ़ेगा, पेट नहीं भरेगा, बच्चा क्रैंकी रहेगा। और जब बच्चा बड़ा होने लगता है तो हम प्रैक्टिस करते हैं फीडिंग ऑन डिमांड, मतलब बच्चा जब मांग रहा है दूध हमें उसको फीड कराना है। फीड कराने के बाद हमें ध्यान रखना है कि हमें हर बार डकार दिलानी है। फीड कराने के बाद बर्फ कराना, मतलब डकार दिलाना, बेहद जरूरी होता है। तुरंत लेटाए ना उसको, अच्छे से बर्फ करा के तभी लेटाए।
6: बहुत ही बढ़िया, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम हेलो डॉक्टर, मेरा नाम आनंद है और इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ श्री साई हॉस्पिटल से डॉक्टर आकाश सिंगल जी मौजूद हैं। डॉक्टर साहब कई बार ऐसा होता है कि जो नवजात शिशु होते हैं वो कई बार रोने लगते हैं, तो ऐसे में जो समझ नहीं आता है, ना तो मम्मी को समझ आता है ना पापा को समझ आता है, तो बच्चा अगर ज्यादा रोता है तो ऐसे केसेस में क्या करना चाहिए?
5: अगर बच्चा बहुत ज्यादा रो रहा है तो कुछ बच्चे तो उसके पास ओनली वे ऑफ एक्सप्रेशन इज रोना, अगर उसको कोई भी दिक्कत होगी वो सिर्फ रोएगा।
6: बिल्कुल बिल्कुल,
5: है ना,
6: बिल्कुल।
5: वो कॉमन चीजें होती हैं, सबसे पहले
6: मतलब कोई रीजन, कोई कारण, मतलब जिससे पता,
5: तो हम थोड़ा सा सबसे पहले ट्राई करते हैं कि फीड करा के देखते हैं। मोस्टली बच्चों में क्या होता है, वो भूखे होते हैं, इस वजह से वो रो रहे होते हैं, हमने फीड करा के शांत हो जाते हैं, इट्स गुड। कुछ कुछ बच्चों में क्या होता है, अगर वो फीड भी नहीं कर रहे होते हैं तो एक नोज ब्लॉक बहुत कॉमन चीज होती है, मतलब मैंने जितने भी मैं पेशेंट्स देखता हूँ तो वन ऑफ द नेक्स्ट पेशेंट, सब में किसी न किसी को नोज ब्लॉक बहुत कॉमन होता है। सिंपल, अब बेबी की नोज गंदी है, वो क्लीन तो कर पाएगा नहीं, तो उसके लिए है कि हम कुछ मेडिकेशन या फिर नॉर्मल सलाइन ड्रॉप्स होती हैं, उसको हम डालते हैं, बेबी की नोज क्लियर हो जाती है, तो वो इजिली फीड कर पाते हैं, शांत हो जाती है। ठीक है, कुछ बच्चे लाइक अगर हमें देखना है कि अगर एक्सेसिवली क्राई कर रहा है तो उसमें डायपर तो वेट नहीं है, कॉमन कॉमन चीजें हमें देखनी है। कभी कभी हम मिस कर देते हैं कि बच्चे का डायपर गीला है, वो उसको इरिटेट कर रहा होता है और बच्चा रो रहा होता है।
6: बिल्कुल, बहुत अच्छे से डॉक्टर साहब आपने बताया। नवजात में जो बुखार है वो कितना खतरनाक होता है छोटे बच्चों में?
5: छोटे बच्चों में ज्यादा खतरनाक पहले कहें तो हमें उनके अंदर टेम्परेचर मेंटेन करने की इतनी कैपेसिटी नहीं होती, तो इसलिए ही आप देखेंगे कि कहीं पे भी आपने अगर नर्सरी देखी होगी तो उसमें हर बच्चा यूजुअली वार्मर के नीचे लेटा होता है, मतलब कि उसको कॉन्स्टेंटली हम उसको हीट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, जो इसलिए उनमें ठंडे होने का रिस्क ज्यादा होता है।
6: ठीक है, बहुत
5: उनमें ठंडे होने का रिस्क ज्यादा होता
6: जी,
5: है
6: जी, जी,
5: ठीक है, तो हमें मैं यही बोलता हूँ सब पेरेंट्स को कि जितने आप कपड़े पहन रहे हैं उससे एक लेयर एक्स्ट्रा पहना के रखें, बच्चों को कवर करके रखें। पेरेंट्स का सवाल होता है कि सर एसी चला सकते हैं, पंखा चला सकते हैं, अब इतनी गर्मी है। मैं यही बोलता हूँ कि ठीक है आप एसी चला सकते हैं, बट टेम्परेचर आप रूम का 25-27 डिग्री मेंटेन करके रखो, डायरेक्टली पंखे के नीचे नहीं लेटाओ बच्चों को, बच्चों को अपने से लेयर एक्स्ट्रा पहना के रखो। ठीक है, और दूसरा चीज आती है बच्चे का टेम्परेचर आप थर्मोमीटर से चेक करने की जरूरत नहीं है, हम अपने हाथ से भी छू के बच्चे के हाथ और पैर देख सकते हैं, अगर वो ठंडे हैं तो हम एक्स्ट्रा कपड़े पहना रहे हैं। ठीक है, और अगर बच्चा बहुत ज्यादा पसीने आ रहे हैं कुछ है तो हमें कपड़े कम कर देने हैं।
6: बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब, जो जन्म लेते हैं बच्चे उन्हें जन्म की कितनी देर बाद उनको नहलाना चाहिए और उनको कब नहलाना चाहिए? बेसिकली नहीं पता होता है जो न्यू पेरेंट्स होते हैं, तो आजकल लाइफस्टाइल इतना बिजी है, सुपर फास्ट है भाई, बहुत सारी चीजों से जो पेरेंट्स नहीं होते हैं रूबरू, तो मैं अगर आपसे ये पूछना चाहूँ तो डॉक्टर साहब,
5: अगर बेबी का वेट 2 kg से ज्यादा है
6: जी,
5: मतलब यूजुअली हमारा 2 kg से ज्यादा तो मतलब ऑलमोस्ट पूरे समय पे पैदा हुआ है।
6: हाँ जी, हाँ जी,
5: ठीक है, तो हम ये बोलते हैं कि जब बच्चे की जो कॉर्ड होती है अम्बिलिकल कॉर्ड, जिसको हम आम भाषा में बच्चे की नाल बोलते हैं या नाभि बोलते हैं,
6: हाँ जी, हाँ जी,
5: जब वो अलग हो जाती है उसके बाद ही बच्चे को नहलाना चाहिए। ठीक है, और अगर किसी बच्चा जो समय से पहले पैदा हुआ है, वजन कम है, जिनका जैसे 1.5 kg मतलब 1.5 किलो 1.25 किलो इस टाइप के वजन है, जितना भी, तो जब बच्चे का वजन 2 किलो या उससे ज्यादा हो जाए हमें उसके बाद नहलाना चाहिए बच्चों को।
6: छोटे बच्चों के लिए, जो छोटे न्यू बॉर्न बेबी होते हैं, उनके लिए टीकाकरण कितना महत्वपूर्ण है, कितना इम्पोर्टेंट है? कई बार पेरेंट्स लगवाने से डरते हैं आज भी ग्रामीण इलाकों में कि बच्चे को बुखार आ जाएगा, बच्चा रोने लगेगा, तो ये बहुत सारे ना लोग एक्सक्यूजेस देते हैं, टीकाकरण नहीं करवाते हैं, तो ये कितना जरूरी है डॉक्टर साहब?
5: टीकाकरण बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है बच्चों में, क्योंकि हम इससे कई बीमारियों से बचा सकते हैं, इसलिए हमारी गवर्नमेंट में भी काफी सारी वैक्सीन आती है, तो हर वैक्सीन के साथ साइड इफेक्ट होते हैं, बट वैक्सीन से होने वाले फायदे कई ज्यादा हैं उन साइड इफेक्ट से। तो मैं यही कहूंगा सारे पेरेंट्स से कि अपने बच्चों को सारे ही टीके लगवाएं जितने अवेलेबल हैं, उनसे एटलीस्ट बीमारियां या तो नहीं होंगी, चांसेस कम हो जाएंगे या सीवियरिटी कम हो जाएगी बीमारी की।
6: दोस्तों आप सुन रहे हैं हेलो डॉक्टर प्रोग्राम, मेरा नाम आनंद है और ये है आपके शहर का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 एफएम पे। हेलो डॉक्टर प्रोग्राम में आज डॉक्टर आकाश सिंघल जी हमारे साथ मौजूद है श्री साई हॉस्पिटल से, और आज हम न्यू बॉर्न के ऊपर ढेर सारी बात करें, नवजात शिशुओं को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। डॉक्टर साहब एक और मेरा सवाल है, जो नवजात का वजन होता है वो कितना सामान्य माना जाता है?
5: नॉर्मली कहें तो हम 2.5 kg के अराउंड एक एवरेज बर्थ वेट होता है। ठीक है, उससे कम है अगर हम उनको लो बर्थ वेट बोलते हैं, मतलब जन्म का वजन कम है, बट जैसे जैसे वजन कम होने के कई कारण हो सकते हैं, या तो बच्चा पहले डिलीवर हो गया है या फिर ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन है, मतलब उसका गर्भ के अंदर वजन ठीक से ही बढ़ा है, तो वो एक अलग चीज होती है। वजन अगर जैसे जैसे बच्चा समय से पहले होगा तो उसका स्वाभाविक है वजन भी कम होगा, तो इसके साथ सारी चीजें हमारे रिस्क बढ़ते हैं, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलती हैं न्यूबॉर्न प्रीटर्म या फिर हमारे लो बर्थ या वेरी लो बर्थ 1500 ग्राम से कम वाले बच्चों में काफी कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलती हैं, क्योंकि सारे बॉडी के सारे ऑर्गन्स इमेच्योर हैं। मैं अपने पेशेंट्स को भी यही समझाता हूँ कि उसका अगर आप ब्रेन देखें तो ब्रेन की वेसल्स हैं वो कमजोर हैं, उनमें अगर कोई भी प्रेशर चेंज होगा तो उनमें रप्चर का रिस्क रहेगा, ब्रेन हेमरेज का रिस्क रहता है। बच्चे के लंग्स ठीक से डेवलप नहीं हुए हैं अगर, तो उनमें छोटी मशीनी, जैसे हम आम भाषा में छोटी मशीन कहते हैं, जो सीपैप होता है या फिर वेंटिलेटर की जरूरत पड़ सकती है। और अगर बच्चे की गट भी हमारे अगर समय से पहले हैं तो वो भी कमजोर होती है, तो बच्चे कुछ बच्चे प्रीटम बच्चे या हमारे जो कम वजन वाले बच्चे हैं फीड यानी कि दूध पचाने में भी दिक्कतें हैं, ठीक है, और उनमें इन्फेक्शन से लड़ने की शक्ति भी कम होती है। तो ये सारी कॉमन कॉम्प्लिकेशंस हैं जो समय से पहले जन्म हुए बच्चे या फिर जो काफी मतलब हमारे 1500 ग्राम 1600 ग्राम वाले ये जो बच्चे होते हैं इनमें देखी जाती है। इन बच्चों को आईसीयू की बेहद जरूरत होती है, यहाँ पे हम इनको मिनिमल हैंडलिंग करनी होती है, मतलब कम से कम डिस्टर्ब करें बच्चों को, सारा काम बच्चों का क्लस्टर केयर की सारा काम जो भी करना है, डायपर चेंज करना है, फीड देनी है, ये सब हम एक साथ करें। जितना कम हम इनको हैंडल करेंगे, जितनी पूरी कोशिश रहनी चाहिए कि हम इनको इन यूट्रो एनवायरमेंट जो कि गर्भ के अंदर का वातावरण होता है वो हमें प्रोवाइड करने की, जिससे इनकी ग्रोथ अच्छी होती है।
6: डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच, आप आए हमारे स्टूडियो और आपने हमारे तमाम सुनने वालों को बहुत बेहतरीन जानकारी दी, और मुझे पूरी उम्मीद है ये जानकारी कहीं ना कहीं जो न्यू पेरेंट्स बनने वाले हैं उनके लिए भी बहुत कमाल होगी और जो लोग बन चुके हैं उनके लिए भी कमाल की होगी। सो थैंक यू सो मच, वेल आपने इतना टाइम दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, हम आगे भी आपको आमंत्रित करते रहेंगे और आप प्लीज आते रहिएगा श्योर। और मैं जाने से पहले आपसे एक संदेश लेना चाहूंगा, जो तमाम लोग आपको सुन रहे हैं स्पेशली मॉम डैड जो अभी न्यू बनने वाले हैं और जो बन गए उनके लिए आप क्या संदेश नहीं है जाते जाते?
5: मैं बताना चाहूंगा कि बच्चों में हमें डेंजर साइंस का ध्यान रखना चाहिए। डेंजर साइंस मतलब खतरे के संकेत।
6: हाँ जी,
5: किस स्थिति में हमें बच्चों को तुरंत अस्पताल लेके जाना है। अगर बच्चा सुस्त है, मोस्टली बच्चे पूरे दिन सोते हैं, फीड करेंगे सो जाएंगे, फीड करेंगे थोड़ी बहुत एक्टिविटी करेंगे सो जाएंगे, बट आपके उठाने से भी नहीं उठ रहे हैं, वो बच्चा सुस्त है, आप उसको अस्पताल लेके जाएंगे। बच्चे को दौरे आ रहे हैं या फिर बच्चे को सांस लेने में तकलीफ है या बच्चा दूध नहीं पी रहा है या फिर बच्चा तापमान बच्चे का टेम्परेचर काफी कम है या उसको बुखार है,
6: हाँ जी हाँ,
5: ठीक है, या फिर बच्चे के हथेली या तलवे पीले हो गए हैं, ये सब हमारे डेंजर साइंस होते हैं, इनको बेहद ध्यान रखना है। और ऐसी अगर बच्चों में कोई भी चीजें देखने को मिलती हैं तो तुरंत अस्पताल में दिखाना है। और एक और एडवाइस पेरेंट्स के लिए कि मदर्स को अपनी सेहत का भी ध्यान रखना है बच्चे की केयर करते टाइम, क्योंकि अगर मदर की हेल्थ अच्छी नहीं होगी तो मदर का मिल्क आउटपुट कम होगा, वो बेबी का ठीक से ध्यान नहीं रख पाएंगी तो वो ठीक नहीं है, तो मदर्स को भी अपना ध्यान रखना। और एडवाइस रहेगी पेरेंट्स के लिए कि आजकल इंटरनेट के जमाने में सिर्फ इंटरनेट पे ही भरोसा ना करें,
6: बिल्कुल सही कहा,
5: अगर कोई भी दिक्कत लगती है आप अपने नजदीकी डॉक्टर से डिस्कस करें और अपनी उनके ओपिनियन को ही माने, क्योंकि नेट पे तो अगर खोलेंगे तो कुछ भी आ जाएगा, उसके बाद डरेंगे और कोई फायदा नहीं होगा, तो बेहतर रहेगा कि आप अपने डॉक्टर से सलाह लें और उनकी एडवाइस को माने।
6: थैंक यू सो मच डॉक्टर आकाश जी, आप आए, बहुत बहुत थैंक यू, और एफएम मुरादाबाद आरजे आनंद आपका शुक्रिया करता है, उम्मीद करता हूँ आगे भी ऐसे मिलते रहेंगे सर।
5: थैंक यू,
6: बहुत बहुत थैंक यू। सुनते रहिए आप एफएम मुरादाबाद 89.6 आपके शहर का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन, रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, फिर मिलते हैं एक नई सीरीज में किसी और नए एक्सपर्ट के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।

0: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग रीढ़ की हड्डी नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
1: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं आपके साथ जरीना और आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो। बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। और आज का हमारा टॉपिक है भैया बहुत ही खास है, डिफेमेशन टॉपिक हम लेकर आए हैं। आपने अक्सर सुना होगा मेरी मानहानि हुई है, लेकिन आखिरकार मानहानि होती क्या है? किसी व्यक्ति के बारे में ऐसी झूठी या अपमानजनक बात कहना, लिखना या फैलाना जिससे उसकी इज्जत प्रतिष्ठा या समाज में सम्मान को नुकसान उसे आम तौर पर मान हानि कहा जाता है। यानी किसी की छवि को जानबूझकर खराब करना सिर्फ मजाक की बात नहीं हो सकती, इसे कानूनी पहल भी कह सकते हैं। तो इसी टॉपिक पर बात करने के लिए आज हमारे साथ कनेक्ट है एडवोकेट अनिरुद्ध अरोरा जी। सर, आपका बहुत बहुत वेलकम है हमारे रेडियो पर।
2: बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे स्टूडियो में बुलाया, थैंक्स।
1: तो सर, हमारा सबसे पहले टॉपिक यही होगा कि मानहानि होता क्या है।
2: देखिए, सरल शब्दों में अगर हम मानहानि की बात करते हैं, यानी डिफेमेशन की बात करते हैं, तो जब किसी व्यक्ति के बारे में ऐसा कोई झूठ या उसकी प्रतिष्ठा को या उसकी इमेज को नुकसान करने वाला कोई आरोप लगाया जाए या कोई बयान दिया जाए, उसको प्रकाशित कराया जाए कहीं, वो पब्लिशिंग फॉर्म में, या उसको संचारित किया जाए, यानी उसको प्रचार प्रसार करके उसको संचारित फैलाया गया है वो, जिससे उसकी रेपुटेशन को नुकसान पहुंच रहा हो, तो उस परिस्थिति के अनुसार जो भी उसकी रेपुटेशन का नुकसान होता है उसको हम डिफेमेशन बोलते हैं, यानी कि उसको मानहानि बोला जाता है कि उसकी डिफेमेशन, उसकी इमेज का डिफेमेशन हुआ है।
1: ओके, क्या किसी को बुरा भला कहना ही डिफेमेशन है?
2: देखिए, आमतौर पर मजाक में आजकल लोग आपस में फ्रेंड्स बात कर रहे हैं, या नेता एक दूसरे को, आपने देखा होगा पॉलिटिक्स में लोग आरोप प्रत्यारोप का एक जो है लोगों पे बयानबाजी होती है, राजनीतिक विश्लेषण हम लोग देखते हैं तो उसमें नेता एक दूसरे पे खूब आरोप लगाते हैं। तो जरूरी नहीं है कि हर भाषा जो है वो डिफेमेशन के कैटेगरी में आए। अपमानजनक या अशोभनीय शब्द अगर आप डिफेमेशन मतलब उस पर नहीं बनता है, या कोई ऐसा वर्ड आपने यूज किया जो डिफेमेशन की कैटेगरी में नहीं आता है, तो जरूरी नहीं कि हर बार डिफेमेशन हो। मामले में ये भी देखा जाता है कि जो व्यक्ति ने जो कथन किया है वास्तव में उस व्यक्ति की रेपुटेशन उससे हर्ट हो रही है या नहीं हो रही है, और कानूनी अर्थ में नुकसान अगर पहुंच रहा है तो डिफेमेशन बनता है। और डिफेमेशन के साथ साथ कुछ हमारे कानून में कुछ ऐसे वर्ड्स दिए गए हैं, कुछ ऐसी जो एक पैरामीटर दिए गए हैं, अगर उस पैरामीटर के अंदर वो उसने स्टेटमेंट दिया है तो वो तभी डिफेमेशन की कैटेगरी में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा।
1: ओके सर, इसके टाइप्स कितने होते हैं?
2: देखिए, डिफेमेशन आमतौर पर समान सिविल डिफेमेशन और क्रिमिनल डिफेमेशन की बात की जाती है। सिविल एक्शन में कंपनसेशन और डैमेजेस मांग सकते हैं, और जबकि क्रिमिनल जो डिफेमेशन होता है क्रिमिनल लॉ में प्रेस्क्राइब उसमें पनिशमेंट का प्रावधान है। तो सीधे तौर पर मैं कहूंगा कि अगर आपका सिविल डिफेमेशन हुआ तो सिविल डिफेमेशन में आप सिविल कोर्ट में वाद दायर करके उसमें हर्जाना मांग सकते हैं, कंपनसेशन मांग सकते हैं। अगर क्रिमिनल डिफेमेशन हुआ तो क्रिमिनल कोर्ट में आप जो है वाद दायर करके मजिस्ट्रेट से रिलीफ मांग सकते हैं कि इसकी वजह से ये क्रिमिनल डिफेमेशन हुआ है, इस तरीके से जो है ये अगेंस्ट में इसको पनिशमेंट मिलना चाहिए।
1: सर, मेरा अगला क्वेश्चन है, आजकल आपने देखा होगा कि फेसबुक, इंस्टाग्राम या एक्स पर किसी के खिलाफ गलत पोस्ट करना भी डिफेमेशन हो सकता है?
2: देखिए, ये तो आजकल बहुत ट्रेंड चल गया, हम देखते हैं, आप अगर मोबाइल उठा के देख लेते हैं, आप फेसबुक देख लीजिए, इंस्टाग्राम देख लीजिए, आप ट्विटर देख लीजिए, या आप यूट्यूब देख ली, तो बाढ़ आई पड़ी है तमाम मैसेजेस की, सोशल मीडिया मैसेजेस की। तो सबसे पहले तो हमें ध्यान रखना है कि कोई भी मैसेज अगर आप देख रहे हैं तो उसको बिना देखे बिना समझे आप फॉरवर्ड बिल्कुल मत करिए। अगर सपोज करिए कोई आपके पास कोई डिफेमेशन मैसेज आया और आपने उसको आगे फॉरवर्ड कर दिया, तो आप भी उसमें बराबर के भागीदार बन जाते हैं, है ना? हाँ, तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। परिस्थितियों के अनुसार सोशल मीडिया पर किया गया कोई भी डिफेमेशन पब्लिकेशन मानहानि का आधार बन सकता है। ऑनलाइन होने से कानून समाप्त, मतलब ऐसा नहीं है कि अगर चीजें ऑनलाइन हो गई है तो कानून आपके ऊपर नहीं लगेगा। तो अगर आपने ऑनलाइन भी किसी के बारे में कुछ अपशब्द कह दिए या किसी ने कोई अपशब्द लिखा और आपने उसको फॉरवर्ड कर दिया दूसरे ग्रुप में, तो आप भी बराबर के भागीदार बन जाते हो।
1: ओके, मतलब शेयर करना भी
2: हो जाता है। पहले जो है हमारे कोर्ट में एक जो है क्वेश्चन था कि भाई किसी ने अगर अपशब्द लिखे हैं और दूसरे ने फॉरवर्ड किया है तो उसको भागीदार नहीं होना चाहिए, लेकिन कोर्ट ने कहा कि अगर आप गलत चीज का साथ दे रहे हो, डिफेमेशन कर रहे हो और कंटिन्यूस डिफेमेशन कर रहे हो, तो आप भी बराबर के उसमें कल्प्रिट माने जाओगे, आप भी उसमें दोषी माने जाओगे। तो लिहाजा अगर कोई अपशब्दों का इस्तेमाल कर रहा है तो आप उसको सोच समझ के वही डिलीट कर दिए या उसको आगे फॉरवर्ड तो बिल्कुल नहीं करना है।
1: सर ये भी होता है ना कि जैसे हम केस दर्ज करवा रहे तो आगे से भी पोस्ट डिलीट कर दिया जाता है इसकी कोई साइड?
2: देखिए वो सब साइबर क्राइम जब होता है ना तो जो साइबर एक्सपर्ट्स होते हैं जो हमारे लीगल जुडिशरी में और पुलिस के पास एक टीम होती है वो सब ढूंढ लेते हैं कि कौन सी पोस्ट कहाँ करी थी। आईपी एड्रेस से पता चल जाता है, आपका सोशल मीडिया हैंडल से पता चल जाता है कि आपने कब कौन सी पोस्ट करी है, तो वो डाटा आप कितने डिलीट कर ले वो सब फाइंड आउट हो जाता है वो।
1: ओके तो सर हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाट्सएप ग्रुप में किसी व्यक्ति के बारे में गलत आरोप लगाने पर क्या मामला बन सकता है?
2: यदि कोई लीगल उसमें जो एविडेंसेस हैं, लीगल कोई सब्सटेंस उसके अंदर है जो आपने कम्युनिकेशन जो व्हाट्सएप ग्रुप में किया है उससे किसी की रेपुटेशन को नुकसान पहुंच रहा है तो निश्चित तौर पर आपके खिलाफ जो है डिफेमेशन का मामला बनता है और एज पर सिचुएशन आपके खिलाफ लीगल एक्शन 100% हो सकता है। तो इसलिए व्हाट्सएप पे भी आप किसी के बारे में अपशब्द लिख रहे हैं या कुछ ऐसी अशोभनीय बातें लिख रहे हैं तो वो भी लीगल एक जो है डिफेमेशन की कैटेगरी में आती है वो भी।
1: मतलब वही ना सर कि मजाक में भी बोलती है, रोज दिल पर ले गया तो ये बुरा ही है।
2: हाँ तो सोच समझ के आपको कोई भी सोशल मीडिया हैंडल का इस्तेमाल करना चाहिए। आप अगर व्हाट्सएप पे भी ग्रुप में भी आप चैट कर रहे हैं तो आपको किसी को डिफेम करने का राइट नहीं मिल जाता है, है
1: बिल्कुल
2: ना? तो आपको सोच समझ के पोस्ट करना चाहिए और कोई भी अगर डिफेमेटरी कोई स्टेटमेंट किसी ने दिया है तो आपको उसे आगे फॉरवर्ड नहीं करना है।
1: सर अगर

0: जो है किसी की भी फोटो से कुछ और फोटो बना देते हैं, उसकी वास्तविक फोटो को चेंज करके।
1: ये तो अब चला भी हुआ है।
0: हाँ, तो ये डीप फेक का जो आपने देखा होगा, बहुत सारे बॉलीवुड एक्टर्स हमारे शिकार होते हैं, पॉलिटिशियंस शिकार होते हैं, बहुत सारे पॉपुलर जो पर्सनैलिटीज है उनके ऊपर उनकी डीप फेक जो है वीडियोज बना दी जाती है। तो यदि किसी व्यक्ति की रेपुटेशन प्रभावित हो रही है और ये गंभीर कानूनी मुद्दा है, तो फिर अगर आपने स्क्रीनशॉट, यूआरएल और डेट वगैरह अगर सब आपका एविडेंस के रूप में फाइंड आउट हो गया कि आपने भी उस पार्टिसिपेट किया है उस कैटेगरी में, तो आपके ऊपर निश्चित तौर पर डिफेमेशन केस बनता है।
1: आजकल तो ये बहुत चला भी हुआ है सर।
0: हाँ बिल्कुल बना हुआ है,
1: एआई का जमाना है।
0: एआई के कुछ नुकसान भी है
1: और कुछ फायदे भी हैं
0: कुछ, तो हमें जो चीज अच्छी है वो एडॉप्ट करनी चाहिए।
1: करेक्ट, बिल्कुल सही कहा सर आपने। अगला क्वेश्चन है, क्या व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट कोर्ट में एविडेंस बन सकता है?
0: हाँ बिल्कुल बन सकता है, सुप्रीम कोर्ट की अभी गाइडलाइंस भी आई हैं। अगर आप सिचुएशन के अकॉर्डिंग, अगर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड एविडेंस हो सकता है लेकिन उसकी ऑथेंटिसिटी और उसकी एडमिसिबिलिटी कानून के अकॉर्डिंग रिक्वायरमेंट पूरी हो रही हो तभी वो एडमिसिबल हो।
1: अगर पोस्ट बाद में डिलीट कर दी जाए तो क्या मामला खत्म हो जाता है या फिर ये मामला चलता ही रहता है? सर
0: देखिए ऐसा है, आपने ये तो वही वाली बात हो गई, पहले आपने अपराध कर दिया फिर उस अपराध का साक्ष्य मिटा रहे हो आप उसका एविडेंस, मतलब एक तरफ आपने अपराध किया फिर उसका एविडेंस आप मिटा रहे हो, तो इसमें कैसे माफी मिल पाएगी आपको, है ना? तो इसमें ये है कि अगर आपने उस चीज को पब्लिश कर दिया और उसका एविडेंस अभी भी उपलब्ध है, उसका साक्ष्य उपलब्ध है, और आपने बाद में अगर उसको डिलीट भी कर दिया है लेकिन लीगल कॉन्सिक्वेंसेस आपके ऊपर समाप्त नहीं होता क्योंकि आपने साक्ष्य मिटाया है।
1: ओके,
0: आपने अपराध तो कर दिया और फिर आप अपराध करके बाद में उसको डिलीट कर रहे हैं, तो जब अपराध हो गया तो अपराध की तो सजा मिलनी चाहिए ना,
1: मतलब माफी मांगने से भी नहीं होएगा कुछ भी।
0: वो देखिए विक्टिम के ऊपर है, अगर विक्टिम माफ कर देता है ठीक है, या कोर्ट उसको माफ कर देती है, लेकिन अपराध तो हुआ है ना।
1: ये तो है सर, मतलब वही है ना, किसी के ऊपर पत्थर मार के सॉरी बोलो तो क्या फायदा।
0: तो अपराध आपने किया है, तो अपराध अगर करा है तो आपके ऊपर केस बनता है।
1: ओके,
0: ये विक्टिम के ऊपर है कि विक्टिम उसको माफ करता है या कॉम्प्रोमाइज करता है या कोर्ट उसको कोई ग्रांट देती है।
1: अगर सर मान लीजिए उसने कोर्ट में भी मतलब बता दिया उसके बारे में और उसने खुद भी माफ कर दिया तो फिर क्या कोर्ट तक?
0: ये डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट होता है, अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि ज्यादा बड़ा अपराध नहीं था तो वो हो सकता है कि उसको माफ भी कर सकते हैं, और लगता है कि वास्तव में एक कॉन्सिक्वेंसेस था तो उसमें पनिशमेंट दे सकती है कोर्ट, या उसपे पेनल्टी लगा सकती है, फाइन लगा सकती है, कम्पनसेशन सकती है, तो बहुत सारी चीजें होती हैं।
1: अगर मैंने किसी के बारे में सच बात कही तो क्या ये भी मानहानि हो सकता है सर?
0: देखिए क्रिमिनल डिफेमेशन के संदर्भ में ट्रूथ जो होता है एक महत्वपूर्ण स्टैट्यूटरी एक्सपेक्टेशन है, लेकिन उसके साथ अगर कानून में अनकंडीशन मतलब और दूसरी कंडीशन भी लगी हुई है, जैसे कि सच है कह देना हर मामले का ऑटोमेटिक डिफेंस नहीं होता है, है ना? अगर आपने कह दिया कि भाई इस आदमी ये आदमी ऐसा है और वो वास्तव में सच भी है, तो आप ये कह के कोर्ट को नहीं कह सकते साहब ये बात ठीक थी और इसलिए मैंने ऐसा कह दिया, ये इसका नेचर ऐसा था, बदतमीज आदमी है, ये लड़ाई झगड़ा करता है। लेकिन अगर उससे डिफेमेशन हुआ है या उसका जो है कुछ लीगल इंफ्रिंजमेंट हुआ है उसके राइट्स का, तो आपके ऊपर डिफेमेशन का केस बनता है।
1: मतलब तारीफ करना भी गलत है सर?
0: तारीफ डिफेमेशन में नहीं आता ना, अगर आप उसकी रेपुटेशन को हर्ट कर रहे हैं।
1: Okay.
0: उसकी रेपुटेशन हर्ट होने से अगर उसके ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है, उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा धूमिल हो रही है, उसके रोजगार पे इफेक्ट पड़ रहा है, उसके जीने का आप राइट जो है डिस्टर्ब कर रहे हो, लीगल राइट का इंफ्रिंजमेंट हो रहा है, तो आपके ऊपर डिफेमेशन का केस बनता है।
1: किसी व्यक्ति की आलोचना करना और मानहानि में क्या अंतर होता है सर?
0: देखिए फेयर क्रिटिसिज्म जो होता है और डिफेमेटरी एलिगेशंस होती हैं, दोनों अलग अलग कंसेप्ट होती हैं। किसी काम, पॉलिसी या पब्लिक कंडक्ट की उचित आलोचना और किसी व्यक्ति के बारे में रेपुटेशन हार्मिंग फॉल्स एलिगेशन में अंतर किया जाता है। अगर आप उसकी उचित एक आलोचना कर रहे हो, फेयर क्रिटिसिज्म कर रहे हो, वो चीज अलग है, लेकिन आप उसका इंटेंशन ही आपकी उसको डिफेमेशन करने की है जिससे उसके रोजगार पे इफेक्ट पड़े, उसके काम पे इफेक्ट पड़े, उसकी इमेज पे इफेक्ट पड़े, तो निश्चित तौर पे आपको लीगल जो प्रोसीडिंग्स है फेस करनी पड़ सकती हैं।
1: क्या पब्लिक फिगर की आलोचना करना भी अपराध है?
0: नहीं देखिए पब्लिक फिगर की फेयर क्रिटिसिज्म अगर आप कर रहे हैं तो अपराध नहीं है, लेकिन क्रिटिसिज्म और डिफेमेटरी एलिगेशन के बीच लीगल बाउंड्रीज का ध्यान रखना होता है कि लीगल बाउंड्रीज के अंदर ही अगर हम किसी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं तो वो चीज तो समझ में आती है, लेकिन उस बाउंड्री से बाहर निकल के अगर आप कर रहे हो तो वो दिक्कत है थोड़ी सी।
1: तो क्या सर बिना किसी के नाम लिए भी बात करना मानहानि हो सकता है?
0: हाँ, यदि परिस्थितियों से लोगों को ये स्पष्ट हो जाए कि ये

0: बात आपने इस व्यक्ति के बारे में कही है, ठीक है, तो केवल नाम ना लेने से आपका मामला स्वतः समाप्त नहीं हो जाता। ये जरूरी नहीं कि आपने उसका नाम नहीं लिया है, लेकिन अगर आपने ये जता दिया एक पब्लिक के बीच में कि उस व्यक्ति के बारे में ही बात हो रही है, भले ही आपने नाम नहीं लिया। अब सपोज करिए आपने किसी देश के, किसी भी देश के, मैं मतलब वर्ल्ड की बात करूं, किसी भी देश के प्रधानमंत्री के बारे में बात करी, और देश का आपने नाम लिया
1: जी,
0: आप किसी देश का नाम ले रहे हो, प्रधानमंत्री की बात कर रहे हो, तो आपने प्रधानमंत्री का नाम तो नहीं लिया ना
1: जी, जी,
0: लेकिन आपने देश का नाम लिया और प्रधानमंत्री का नाम लिया।
1: ओके,
0: तो आपने एक क्राइम कर दिया अगर आपने कोई अपशब्द बोले उनके खिलाफ, तो है ना, कोई डिफेमेशन अगर आपने करी है तो क्राइम बनता है फिर वो।
1: अगर किसी ने कहा कि मैंने तो सिर्फ अपनी राय दी थी, तो क्या ये भी हमेशा बच सकता है या फिर गलत है?
0: देखिए, आप ये कह के कोर्ट से जो है, आप जो है कोर्ट को गुमराह नहीं कर सकते। कोर्ट कथन की जो वास्तविकता होती है, नेचर होता है उसका, कंटेक्स्ट होता है, और उसके प्रभाव को देखती है कि आपने किस इंटेंशन से, किस प्रभाव से उस चीज को यूज करा। तो आप ये नहीं कह सकते कि मैंने जो है सिर्फ अपनी राय दी थी, तो इसको कह के आप नहीं बच सकते।
1: सर, अगला क्वेश्चन है हमारा, पत्रकारिता में मान हानि से कैसे बचा जा सकता है?
0: देखिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। आमतौर पर रिपोर्टर्स को ये डिफेमेशन के केसेस बहुत झेलने को मिलते हैं
1: जी, जी, जी।
0: क्योंकि रिपोर्टिंग, आपने देखा होगा कि अगर आप किसी की भी खिलाफ रिपोर्टिंग कर देते हो, चाहे वो नेता हो, अभिनेता हो, या कोई बड़ा बिजनेसमैन हो
1: जी,
0: तो सीधे डिफेमेशन का नोटिस भेज देती है जो विक्टिम होता है या जो जिसको लगता है कि डिफेमेशन हुई है उसकी। तो मीडिया को खासतौर पर डिफेमेशन से बहुत सामना करना पड़ता है। पत्रकारिता में और मीडिया में सबसे बड़ी चीज ये है कि आपको कोई भी खबर प्रसारित करने से पहले फैक्ट्स की जानकारी करनी चाहिए, उसको वेरीफाई करना चाहिए, रिलायबल सोर्स पर भरोसा करना चाहिए कि कौन से सोर्स से आपके पास इन्फॉर्मेशन आई है
1: जी।
0: आमतौर पे आपने भी देखा होगा कि लोग आजकल प्रतिस्पर्धा इतनी हो गई है टीआरपी बढ़ाने के लिए चैनल
1: जी, बिल्कुल बिल्कुल,
0: कि वो खबर चला देते हैं तुरंत ब्रेकिंग कि साहब यहाँ पे ये एक्सीडेंट हो गया, यहाँ पे पहाड़ गिर गया, यहाँ पे कुछ हो गया, और पता चलता है कि वो खबर जो है वो ऐसी कुछ हुआ ही नहीं था वहाँ पे
1: जी, जी, जी।
0: तो एक कंपटीशन के दौर पे मीडिया को भी एक थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कि आपके पास जो खबर आ रही हो रिलायबल सोर्स से आ रही हो, तभी आप उसे प्रसारित करें, उस फैक्ट्स को वेरीफाई करें कि वास्तव में ऐसी कुछ घटना हैपनिंग वहाँ हुई है या नहीं हुई, और उसमें संबंधित व्यक्ति का भी आपको पक्ष लेना पड़ता है। अगर आप किसी के बारे में कह रहे हो कि साहब इस आदमी ने जो है धोखाधड़ी कर ली, एक के खिलाफ चला रहे हैं, एक के पक्ष में चला रहे हैं, एक के विपक्ष में चला रहे हैं
1: जी,
0: तो मीडिया को बायस नहीं होना चाहिए, उसको पक्ष और विपक्ष दोनों की बात सुन के दोनों के स्टेटमेंट फैक्ट्स को अच्छी तरह पब्लिश करना ही उसकी जिम्मेदारी है। और अगर वो ऐसा नहीं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनको डिफेमेशन का सामना करना पड़ सकता है।
1: सर, अगर किसी की मान हानि हो जाए तो सबसे पहले उसे क्या करना चाहिए?
0: देखिए, सपोज करिए कि अगर आपके बारे में किसी ने अपशब्द कह दिए, या आपको फेसबुक पे कुछ अपशब्द कह दिया है, कुछ गाली दे दी है, कुछ और दे दिया, तो आप सबसे पहले तो उस एविडेंस को इकट्ठा करिए, आप उसका स्क्रीनशॉट लीजिए
1: जी,
0: ठीक, उस पोस्ट को, मैसेज को, कोई न्यूज़पेपर में आया, कोई क्लिपिंग है, कोई रिकॉर्डिंग है, कोई यूआरएल है, कोई स्क्रीनशॉट है, उन सारे फैक्ट्स को आप इकट्ठा करिए और एक अच्छे एडवोकेट से आप लीगल एडवाइस लीजिए, उसके बाद आप उसको एक डिफेमेटरी नोटिस दीजिए, और नोटिस के बाद आप सीधे कंप्लेंट केस भी कोर्ट में डाल सकते हैं।
1: सच बताऊं तो सर, इस टॉपिक के बारे में मुझे आज पता चला है कि किसी के मान हानि के बारे में भी अगर हम बोल रहे हैं तो वो भी कोर्ट तक बात जा सकती है।
0: बिल्कुल जा सकती है। अगर आपने फेसबुक पे भी किसी को अपशब्द कह दिए तो आपको कोर्ट का रास्ता देखना पड़ सकता है।
1: क्या मान हानि के मामले में लीगल नोटिस भेजना जरूरी है?
0: जी हाँ, डिफेमेशन के मामले में मोस्टली लीगल नोटिस भेजना जरूरी होता है, लेकिन अगर आमतौर पे अगर डिफेमेटरी नोटिस आपने नहीं भी भेजा, आप सीधे कंप्लेंट केस भी डाल सकते हैं। हर सिचुएशन एक जैसी नहीं होती, लेकिन मोस्टली मामलों में लीगल नोटिस भेजकर एक क्लैरिफिकेशन और अपोलॉजी और विड्रॉल या कंपनसेशन की मांग करना प्रैक्टिकल पहला कदम माना जाता है।
1: ओके,
0: तो ये फर्स्ट स्टेप होता है कि आप लीगल नोटिस भेजें, उसके बाद आप केस फाइल करें।
1: क्या मान हानि का मामला सीधे पुलिस में दर्ज कराया जा सकता है?
0: देखिए, क्रिमिनल डिफेमेशन की प्रक्रिया समानता कंप्लेंट केस के माध्यम से मजिस्ट्रेट के समक्ष ही शुरू की जाती है, इसलिए केवल पुलिस कंप्लेंट पर निर्भर रहने के बजाय एप्लीकेबल जो लीगल प्रोसीडिंग है उसको आपको समझना पड़ेगा, और लीगल प्रोसीडिंग के तहत ही आप सीधे मजिस्ट्रेट के यहाँ कंप्लेंट केस फाइल कर सकते हो। तो क्योंकि पुलिस जो है हमारी बड़े कोई मैटर्स होते हैं उनके लिए होती है, लीगल केसेस जो ये डिफेमेटरी स्टेटमेंट्स हैं और ये, तो ये मजिस्ट्रेट के समक्ष ही जो है कंप्लेंट केस में वाद दायर कर सकते हैं आप इसके लिए।
1: क्या सिविल डिफेमेशन में क्या क्या मांग की जा सकती है?
0: देखिए, जो भी आपका डेफेमेशन हुआ है, सिविल डेफेमेशन होता है, फैक्ट्स के आधार पे जो भी आपका नुकसान हुआ है, जो भी डैमेजेस हुए हैं, जो भी आप जो है कंपनसेशन चाह रहे हैं, और कुछ परिस्थितियों में इंजेक्शन जैसी रेमेडीज भी मांगी जा सकती हैं, तो एज पर सिचुएशन डिपेंड करता है कि उसमें आपको जो है क्या कंपनसेशन डिमांड करनी चाहिए। और बेहतर होगा कि आप इसे किसी अच्छे, अगर कोई ऐसा आपको कोई आपको फेस करना पड़ रहा है डिफेमेशन, तो आप किसी अच्छे लॉयर से डिस्कस करके और उसको कंप्लेंट केस एक फाइल करें कोर्ट में।
1: डिफेमेशन केस में इविडेंस कितना महत्वपूर्ण है?
0: देखिए, डिफेमेशन केस में इविडेंस बहुत महत्वपूर्ण होता है। क्या कहा गया है, किस टाइम कहा गया है, कौन से प्लेटफॉर्म पे, यूआरएल पे कहा गया है, फेसबुक पे कहा गया है, किसी मैगजीन में छपा है, किसी अखबार में छपा है, उसका कंटेक्स्ट क्या था और रेपुटेशन पे उसका क्या इफेक्ट आया है, ठीक है, तो इन सबको इस्टेब्लिश करना पड़ सकता है। इसलिए डिफेमेशन में जो भी चीज होती है, जो एविडेंस होते हैं, वो बहुत जरूरी होते हैं। तो आपको एक एक चीज को संभाल के रखना है और जो भी फैक्ट्स हैं उसके अकॉर्डिंग ही आपको अपना जो है डिफेमेशन आगे कंप्लेंट केस फाइल करना है। पब्लिक अपोलोजाइज जो होती है, वो अगर पार्टीज के बीच में सेटलमेंट हो रहा है या अप्रोप्रिएट अपोलोजाइज से डिस्प्यूट रिजोल्व हो रहा है और इसका इफेक्ट केस की स्टेज और एप्लीकेबल लॉ पर निर्भर करता है, अगर दोनों पार्टी सेटलमेंट कर रही हैं और एक विक्टिम जो है वो अगर इससे संतुष्ट है कि हाँ पब्लिक अपोलोजाइज कर लें या पब्लिकली वो माफी मांग लेता है अपने किए गए कृत्य के लिए या उसने जो उसकी मानहानि करी है, तो पब्लिक अपोलोजाइज से भी डिफेमेशन केस समाप्त हो सकता है।
1: क्या सिर्फ स्क्रीनशॉट लेकर रखना पर्याप्त है?
0: देखिए, स्क्रीनशॉट यूजफुल है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस की ऑथेंटिसिटी और लीगल एडमिसिबल के लिए आपको एडिशनल रिक्वायरमेंट हो सकती है। तो स्क्रीनशॉट के साथ साथ कोई ऐसी बात किसी के सामने कही गई हो, कोई विटनेस हो, कोई पब्लिश हुई हो किसी मैगजीन में या कहीं पे कोई व्हाट्सएप ग्रुप में, तो सारी चीजों को जो एविडेंस के तौर पे जब आप प्रेजेंट करोगे तभी आपका केस मजबूत बनता है। तो निश्चित तौर पे देखिए, स्क्रीनशॉट तो है ही है, लेकिन उसके साथ साथ और भी एविडेंस आपको रखने पड़ सकते हैं।
1: क्या गाली देना हमेशा मानहानि है?
0: नहीं, देखिए, हमेशा मैं नहीं बोल सकता। हर एब्यूसिव स्टेटमेंट जो है वो ऑटोमेटिकली डिफेमेशन नहीं होता। और किस माहौल में कौन सी बात कही गई है और किस इंटेंशन से कही गई है, जैसे मैंने पहले भी बताया था, तो सबसे बड़ी चीज आपकी जो नेचर ऑफ कंटेक्स्ट है उसका, प्लस उसमें जो आपका इंटेंशन है, वो सारी चीजों को देख के ही हम डिसाइड कर सकते हैं कि ये डिफेमेशन कैटेगरी में है या नहीं है।
1: क्या किसी की रिपुटेशन खराब करने के लिए झूठी खबर फैलाना कानूनी अपराध हो सकता है?
0: देखिए, फैक्ट्स और एप्लीकेबल लॉ के आधार पर लीगल कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। अगर आप किसी के खिलाफ झूठी खबर प्रसारित कर रहे हैं, फैला रहे हैं, तो निश्चित तौर पे डिफेमेशन की कैटेगरी में आता है और इसके लिए आपको लीगल जो है प्रोसीडिंग्स का सामना करना पड़ सकता है।
1: मानहानि और साइबर क्राइम में क्या संबंध है?
0: देखिए, जो मानहानि होती है, ऑनलाइन डिफेमेटरी कंटेंट होता है, वो डिजिटल मीडियम का उपयोग करता है, लेकिन हर ऑनलाइन डिफेमेशन को आप ऑटोमेटिकली साइबर क्राइम नहीं कह सकते, ठीक है। तो एप्लीकेबल ऑफेंस और लीगल प्रोविजन फैक्ट्स पर निर्भर करता है कि वो डिफेमेटरी कंटेंट था या वो साइबर क्राइम की कैटेगरी में जाएगा। दोनों में बहुत अंतर होता है। देखिए, साइबर क्राइम हो गया एक तरीके से, आपसे ऑनलाइन किसी ने फ्रॉड कर दिया, पैसे का नुकसान हो गया, और डिफेमेशन हो गया आपकी इमेज को नुकसान पहुंचाना। तो इसलिए ऑनलाइन अगर डिफेमेशन हो रही है तो उसको आप साइबर क्राइम नहीं कह सकते, है ना। कहीं ना कहीं वो जो है दोनों की एक प्रोसीडिंग्स अलग अलग है और दोनों में जो फैक्ट्स हैं वो अलग अलग हैं, तो फैक्ट्स देखने पड़ेंगे कि कौन से फैक्ट्स के अकॉर्डिंग वो चीज लीगल प्रोसीडिंग्स में जाएगी।
1: अगर कोई व्यक्ति आपके बारे में झूठी बात व्हाट्सएप पर सिर्फ 2-3 लोगों को बताता है, तभी भी एक्शन हो सकता है?
0: देखिए, पब्लिकेशन का प्रश्न और अन्य लीगल रिक्वायरमेंट फैक्ट्स के आधार पर देखे जाएंगे। अगर ऑडियंस की संख्या अकेला है तो निर्णायक फैक्टर, अगर मतलब एक ही आदमी है तो उसको हम कहते हैं कि भाई एक उसको हम नहीं मानेंगे डिफेमेशन, लेकिन अगर पब्लिक ग्रुप में आपने डाला है और व्हाट्सएप ग्रुप पे कई मेंबर्स हैं, तो निश्चित तौर पर वो डिफेमेटरी प्रोसीडिंग्स का आपको सामना करना पड़ सकता है।
1: अगर आम नागरिक को मानहानि से बचाने के लिए क्या सावधानी रखनी चाहिए?
0: देखिए, पहली चीज तो आपको कोई भी स्टेटमेंट को फॉरवर्ड नहीं करना है ना, बिना किसी को जांचे परखे। अगर कोई आपने डिफेमेटरी स्टेटमेंट देख लिया, किसी के बारे में कोई बात किसी ने अपशब्द लिखी और आपने उठा के उसको ऐसे ही फॉरवर्ड कर दिया, तो उस चीज को आपको नहीं करना है। बिना वेरिफिकेशन के किसी पर गंभीर आरोप ना लगाएं, सोशल मीडिया पर सोच समझ के लिखें और किसी विवाद या फैक्ट्स और एविडेंस के बिना आरोप को पब्लिक में ना कहें। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। और सबसे बड़ी चीज है कि मैं तो ये बोलूंगा कि अगर आप अपने काम से काम रखते हैं तो वो ज्यादा बेटर रहेगा।
1: ये तो है।
2: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
1: सुनो ना, मुझे ज्वेलरी खरीदनी है।
3: तो चलो फिर, इतना सोचना क्यों है, शहर चलते हैं ना ज्वेलरी लेने।
1: नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, वहां पर बहुत ट्रैफिक रहता है और शोर भी बहुत होता है।
3: अरे नहीं,
2: अब ट्रैफिक की चिंता छोड़ो, क्योंकि बाबूराम सर्राफ का नया ज्वेलरी शोरूम ओपन हो गया है,
3: वो भी सिविल लाइंस में। ना ट्रैफिक की चिंता, ना शोर की, और हाँ, वहाँ ज्वेलरी खरीदने पर गोल्ड कॉइन जीतने का मौका भी है।
1: अच्छा?
2: हाँ, आपका वही पुराना एवं विश्वसनीय शोरूम बाबूराम सर्राफ, पता जैन मंदिर रोड, सिविल लाइंस, मुरादाबाद।
4: एशियाई खेलों में भारतीय मिक्स्ड निशानेबाजी टीम ने कांस्य पदक जीता। पुरुष कबड्डी टीम आखिरी ग्रुप ए मुकाबले में चीनी ताइपे को हराकर सेमीफाइनल में। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जीवन का मुख्य उद्देश्य सेवा हर व्यक्ति में स्वाभाविक रूप से होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि राजनीति में भी सर्वोच्च पद पर पहुंचने के बाद सेवा ही मार्गदर्शक सिद्धांत रहना चाहिए। प्रधानमंत्री आज वडनगर से वाराणसी तक यात्रा कर रहे सेवा यात्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संवाद कर रहे थे।
5: सेवा, यही मुख्य हमारा काम होना चाहिए, और हम सेवा कर कर के ही सेवा का संदेश देंगे, शब्दों में नहीं देंगे। हमारे अपने आचरण से लोगों को पता चले कि राजनीति में सत्ता कितनी ही क्यों न बड़ी हो जाए, लेकिन हमारा मार्ग सेवा का ही रहेगा। कितने ही ऊंचे शिखर पर पहुंचेंगे, लेकिन सेवा परमो धर्म, इस भाव को लेकर आगे बढ़ेंगे।
4: प्रधानमंत्री ने कहा कि पीएम किसान और पीएम सूर्य घर योजना जैसी अनेक योजनाओं की पहचान अंतिम छोर तक पहुंचने वाली सेवाओं के रूप में बनी है।
5: हमारे किसानों के पास पीढ़ियों से बना हुआ ज्ञान का भंडार है, वे इस नॉलेज को हर दिन अपने जीवन में अपनाते हैं। हमें इन अनुभवों से भी सीखना है। अगर अनुभव करते तो भारत की विविधता की अनुभूति होती है, और उन सब विविधता में भी एकता के भी दर्शन होता है। वो हमें हिंदुस्तान के हर कोने में पहुंचाने ही है, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है। एक गांव का अच्छा प्रयोग दूसरे गांव के काम आए, एक युवा का समाधान दूसरे युवा की ताकत बने।
4: श्री मोदी ने कहा कि सेवा की भावना से ही 4 करोड़ गरीब परिवारों को पक्के मकान मिल सके हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि जब सेवा की भावना देश की नीतियों में शामिल होती है तो ऐसी योजनाएं सामने आती हैं जिनसे 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकलने में मदद मिली है। प्रधानमंत्री ने कहा कि राजनीति, चुनाव और शासन व्यवस्था का अपना महत्व है, लेकिन देश के निर्माण के लिए सभी को मिलकर काम करना है। उन्होंने विकसित भारत के निर्माण में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका को बढ़ाने का आह्वान किया।
5: इस वर्ष लाल किले से शक्ति की जिन सप्त धाराओं की चर्चा मैंने की है, उनके विषय में भी लोगों से बात करनी है। मैन्युफैक्चरिंग की धारा, टेक्नोलॉजी इनोवेशन की धारा, कनेक्टिविटी की धारा, ऐसी 7 धाराएं विकसित भारत के निर्माण की बहुत बड़ी ऊर्जा बनेगी, और इस ऊर्जा को देश के हर नागरिक से ही गति मिलेगी। तो आपकी ये ऊर्जा, आपके ये अनुभव विकसित भारत की यात्रा को और गति देंगे।
4: सेवा यात्रियों ने प्रधानमंत्री के साथ अपने अनुभव साझा किए। उन्होंने बताया कि अभियान के अंतर्गत पौधरोपण और स्वच्छता अभियान चलाए गए। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग स्वच्छता और सुशासन सुनिश्चित करने के लिए विशेष अभियान 6.0 चलाएगा। इसका उद्देश्य कार्यस्थलों पर स्वच्छता को बढ़ावा देना, लंबित मामलों का तेजी से निपटान करना और शासन में सुधार करना है। ये अभियान 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक चलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जन सेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। उनकी यात्रा जन सेवा से देश सेवा के संकल्प और निरंतर जन सेवा की भावना से प्रेरित रही है। इसी सेवा और सुशासन की सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए लोगों के जीवन में बदलाव लाने का प्रयास किया जा रहा है। हमारी विशेष श्रृंखला में आज हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने इस सोच को किस तरह धरातल पर उतारा है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उद्देश्य देश की शिक्षा व्यवस्था को अधिक समावेशी, लचीला और विद्यार्थी केंद्रित बनाना है। इसके तहत उच्च शिक्षा में विषय के चयन में विद्यार्थियों को अधिक स्वतंत्रता, बहुविषयक अध्ययन, कौशल विकास, शोध और नवाचार को बढ़ावा देने पर विशेष बल दिया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को देश भर में लागू करने की दिशा में ओडिशा भी लगातार आगे बढ़ रहा है। नई शिक्षा नीति के अनुरूप उच्च शिक्षा संस्थानों में आवश्यक बदलाव किए जा रहे हैं। सरकार का ध्यान विद्यार्थियों को पारंपरिक डिग्री के साथ साथ रोजगार और उद्यमिता के लिए आवश्यक कौशल उपलब्ध कराने पर केंद्रित है। इसके अलावा भारतीय भाषाओं, स्थानीय आवश्यकताओं और तकनीकी शिक्षा को भी नई शिक्षा व्यवस्था में जोड़ने की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं। नई शिक्षा नीति में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के साथ साथ शोध और नवाचार के लिए बेहतर वातावरण तैयार किया जा रहा है। नई शिक्षा नीति के विभिन्न प्रावधानों के क्रियान्वयन और उच्च शिक्षा में इसके प्रभाव को लेकर राज्य के उच्च शिक्षा मंत्री सूर्यवंशी सूरज कहते हैं,
6: 2024 में नई सरकार गठन होने के बाद उच्च शिक्षा विभाग ने संरचनात्मक और शैक्षणिक सुधार के लिए हमेशा प्राथमिकता दिया है। कौशल विकास और उद्योग संपर्क के लिए AEDP, अप्रेंटिसशिप एम्बेडेड डिग्री प्रोग्राम, नास्कम, फ्यूचर स्किल, कोर्सेरा जैसे कार्यक्रम को अपनाए हैं। इंटर्नशिप बहुत अच्छी तरीके से उड़ीसा में हो रहा है।
4: राष्ट्रीय शिक्षा नीति का प्रभावी कार्यान्वयन केवल पाठ्यक्रम में बदलाव तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका व्यापक उद्देश्य विद्यार्थियों को ज्ञान, कौशल और अवसरों से सशक्त बनाना है। ओडिशा में नई शिक्षा नीति के प्रावधानों को चरणबद्ध तरीके से लागू करते हुए उच्च शिक्षा को बेहतर और भविष्य की जरूरतों के अनुरूप बनाने की दिशा में प्रयास जारी है। भुवनेश्वर से दीपक कुमार बेहरा के साथ मैं इतिश सिंह राठौर।
7: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
8: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए। एक्सपर्ट @AIRNewsHindi को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
7: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कल न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र से इतर भारत प्रशांत द्वीप सहयोग मंच FIPIC के विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में सहयोग मंच की साझेदारी और क्षेत्रीय तथा बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई गई।
9: बैठक में FIPIC शिखर सम्मेलनों के परिणामों की समीक्षा की गई और भारत तथा प्रशांत द्वीप देशों के बीच सहयोग में हुई प्रगति का स्वागत किया गया। इनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2023 में घोषित 12 सूत्रीय कार्य योजना के तहत हुई प्रगति भी शामिल है। नेताओं ने नवीनीकरणीय ऊर्जा, जलवायु कार्यवाही, आपदा प्रबंधन, स्वास्थ्य और क्षमता निर्माण के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर भी चर्चा की। बैठक में समाओं के उप प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री तथा फिजी, मार्शल द्वीप समूह, पलाऊ, पापुआ न्यू गिनी, सोलोमन द्वीप समूह और तुवालु के विदेश मंत्री शामिल हुए। टोंगा के वित्त मंत्री ने भी बैठक में भाग लिया। इसके अलावा माइक्रोनेशिया के संघीय राज्यों के न्याय विभाग के सचिव और अटॉर्नी जनरल, वानुअतु के स्वास्थ्य मंत्री, नाउरू के उप विदेश मंत्री तथा प्रशांत द्वीप मंच के महासचिव भी बैठक में उपस्थित थे। अंकित की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
7: भारत, ब्राजील, जर्मनी और जापान के विदेश मंत्रियों ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जल्द सुधार की आवश्यकता पर बल दिया है। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र से इतर G4 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई। संयुक्त बयान में मंत्रियों ने कहा कि मौजूदा चुनौतीपूर्ण भू राजनीतिक परिस्थितियों को देखते हुए सुरक्षा परिषद में सुधार पहले से कहीं अधिक आवश्यक हो गया है। भारत ने सिकल सेल उपचार में सुगमता और परिवर्तन लाने के लिए वैश्विक साझेदारी 1SCD की सह मेजबानी की। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के दौरान स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन अभियान में भारत के प्रयासों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि 2047 तक सिकल सेल रोग को समाप्त करने के उद्देश्य से वर्ष 2023 में यह अभियान शुरू किया गया। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी सचिव एस कृष्णन ने कहा है कि भारत में मोबाइल फोन की कुल घरेलू मांग का लगभग 99.2% विनिर्माण होता है। नई दिल्ली में आज 13वें वार्षिक पब्लिक अफेयर्स फोरम ऑफ इंडिया के उद्घाटन सत्र में श्री कृष्णन ने कहा कि भारत में प्रतिवर्ष लगभग 32 से 33 करोड़ मोबाइल फोन विनिर्मित होते हैं।
10: हम देश में अपनी कुल घरेलू मांग का लगभग 99.2% खुद तैयार करते हैं। भारत में होने वाला मूल्यवर्धन जो लगभग 7-8 साल पहले करीब 10-15% था, अब वो बढ़कर लगभग 22-23% हो गया है। हमारा लक्ष्य 35-40% के बीच मूल्यवर्धन हासिल करना है। इस उद्योग को देश में ही बनाए रखने के लिए ये बेहद महत्वपूर्ण है।

0: the industry located in the country.
1: उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में यमुना एक्सप्रेसवे पर कल रात एक स्लीपर बस में आग लगने से 9 यात्रियों की मौत हो गई। पुलिस के अनुसार ये घटना आधी रात के करीब जेवर पुलिस थाना क्षेत्र के दयानाथपुर गांव के निकट हुई। बस नोएडा से आगरा जा रही थी और इसमें करीब 35 यात्री सवार थे। जेवर पुलिस ने मामले की प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बस दुर्घटना में हुई जान माल की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने प्रत्येक मृतक के परिजन को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह

0: घटना आधी रात के करीब जेवर पुलिस थाना क्षेत्र के दयानाथपुर गांव के निकट हुई। बस नोएडा से आगरा जा रही थी और इसमें करीब 35 यात्री सवार थे। जेवर पुलिस ने मामले की प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बस दुर्घटना में हुई जान माल की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने प्रत्येक मृतक के परिजन को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह घटना आधी रात के करीब जेवर पुलिस थाना क्षेत्र के दयानाथपुर गांव के निकट हुई घटना आधी रात के करीब जेवर पुलिस थाना क्षेत्र के दयानाथपुर गांव के निकट हुई। बस नोएडा से आगरा जा रही थी और इसमें करीब 35
1: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं आपके साथ जरीना और आप सुन रहे हैं
2: एक जो है गॉसिप हो रही है ना बंद कमरे में।
1: ओके
2: डिफेमेशन तब होगी जब उस इमेज से तीसरे आदमी आपकी इमेज का आपको नुकसान पहुंच रहा है।
1: मतलब प्रूफ होना चाहिए तभी।
2: बिल्कुल प्रूफ होना चाहिए। कोर्ट में हर चीज प्रूफ पे ही एविडेंस पे ही डिपेंड करती
1: है। चलिए इस चीज का तो भाई कंफर्म हो गया कि अगर आपके पास प्रूफ है तो देखिए भैया आप बिल्कुल कोर्ट जा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मेरे लिए अच्छा नहीं है, इसने कैसे बोल दिया, तो बिल्कुल आप जाइए और केस करिए। बाकी इस चीज के बारे में मुझे भी आज ही पता चला है, आई होप कि आपको भी आज ही पता चला होगा। तो आप किसी के बारे में कुछ बोलने से पहले या व्हाट्सएप मैसेज करने से पहले, अब शब्द बोलने से पहले एक बार नहीं हजार बार सोचेंगे कि भैया आगे एक्शन भी लिया जा सकता है आप सभी के लिए। तो सर एक छोटा सा मैसेज।
2: देखिए मैसेज बस यही है कि आप लोग जो है अपने लीगल राइट्स को जाने और कभी भी किसी से कोई भी ऐसा डिफेमेशन का काम ना करें। कोई भी पोस्ट को बिना देखे आप आगे फॉरवर्ड ना करें। और अपने जब आपको लीगल राइट्स पता होंगे तो निश्चित तौर पे आपके व्यवहार में वो चीजें आएंगी। आप क्राइम भी नहीं करेंगे और आप सुधरेंगे और एक अच्छे नागरिक बनेंगे।
1: ये तो है।
2: और जो है ऐसी हमारा कम्युनिटी रेडियो 89.6 आप सुनते रहिए
1: और से यही निवेदन करेंगे कि आते रहिए।
2: मैं तो हर बार ही आऊंगा जब आप बुलाएंगे।
1: जी बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए हम श्रोताओं अब हम यहाँ से लेते हैं जाने की इजाजत। बाकी आप हमें मैसेज करके बता सकते हैं कि आज का हमारा टॉपिक आपको कैसा लगा है, क्योंकि आप सभी के लिए हम टॉपिक लेकर आते रहते हैं अलग अलग टॉपिक। बिल्कुल सर सही है ना?
2: बिल्कुल ठीक कहा आपने। और मैं वेट करता हूँ कि कब जो है आपका ये लीगल टॉक शो आप आए और आप मेरे को इनवाइट करें और मैं कोई अच्छा सा नया टॉपिक अपने जो हमारे लिसनर्स हैं 89.6 कम्युनिटी रेडियो के उनको एक नई जानकारी उन्हें मिले।
1: जी बिल्कुल ये तो सही कहा। तो मिलते हैं नेक्स्ट संडे, करेंगे ढेर सारी बातें।
3: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
4: सुनो ना, मुझे ज्वेलरी खरीदनी है।
5: तो चलो फिर, इतना सोचना क्यों है, शहर चलते हैं ना ज्वेलरी लेने।
4: नहीं मैं नहीं जाऊंगी, वहाँ पर बहुत ट्रैफिक रहता है और शोर भी बहुत होता है।
5: अरे नहीं,
3: अब ट्रैफिक की चिंता छोड़ो क्योंकि बाबूराम सर्राफ का नया

0: ज्वेलरी शोरूम ओपन हो गया है,
1: वो भी सिविल लाइंस में। ना ट्रैफिक की चिंता, ना शोर की, और हाँ, वहाँ ज्वेलरी खरीदने पर गोल्ड कॉइन जीतने का मौका भी है।
2: अच्छा।
0: हाँ, आपका वही पुराना एवं विश्वसनीय शोरूम बाबूराम सर्राफ, पता चैन मंदिर रोड, सिविल लाइंस, मुरादाबाद।
3: सेवा से संकल्प जगे, संकल्प से हर जन जुड़े।
4: यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के 25 वर्षों के जनसेवा के संकल्प को आगे बढ़ाने के लिए कृत संकल्प है नए भारत का नया उत्तर प्रदेश।
3: स्वच्छता, स्वास्थ्य, सुरक्षा, शिक्षा, समृद्धि और सुशासन, प्रदेश सरकार आज हर क्षेत्र में रच रही है नया इतिहास।
4: तो आइए आप भी 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक सेवा संकल्प अभियान का हिस्सा बनिए, प्रदेश की विकास यात्रा में भागीदार बनिए।
3: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा जारी।
2: हेलो, मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी आरजे रीना, और मेरे साथ आरजे खुशी है। आप सभी को पता है कि देखिए, जब भी हम आते हैं ना, तो दोनों कुड़िया साथ में ही आते हैं गप्पे शप्पे करने के लिए, आपसे ढेर सारी बातें करने के लिए। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है भैया, सच में बहुत ही स्पेशल, बहुत ही खास टॉपिक है, क्योंकि हर किसी इंसान के लाइफ में ना एक ऐसा पर्सन जरूर होता है जो उसके लिए हमेशा खास होता है, चाहे कुछ भी हो जाए। मतलब उसकी एक मैसेज, एक कॉल देखकर ना हमारे चेहरे पर एक प्यारा सा स्माइल आ जाता है। मतलब वो इंसान हमारे लिए बेहद खास होता है। आई नो कि आपके लाइफ में भी कोई ना कोई ऐसा इंसान जरूर होगा जो बेहद और बहुत ज्यादा खास भी होगा। कहते हैं ना, जिंदगी में भीड़ बहुत मिलती है, लेकिन उस भीड़ में कोई एक ऐसा इंसान जरूर होता है जो बाकी सबसे अलग होता है, जिसके सामने आपको अपनी खुशी एक्सप्लेन नहीं करनी पड़ती है, दुख छुपाना भी नहीं पड़ता है। वो बस देखकर समझ जाता है कि आज मन ठीक नहीं है। जरूरी नहीं है कि वो आपका सबसे पुराना दोस्त हो या परिवार का सदस्य ही हो। कभी कभी कोई इंसान अचानक जिंदगी में आता है और धीरे धीरे बहुत खास बन जाता है। आपके लिए भी ऐसा कोई इंसान जरूर होगा जिसके बारे में सोचते ही चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ जाती है। हाँ भाई खुशी, तुम बताओ, तुम इतनी टहल क्यों रही हो, ये बताओ पहले।
5: टहलना बहुत अच्छा होता है, इसलिए मैं टहल रही हूँ। और मैं बताती हूँ कि जिंदगी में ना सबसे खूबसूरत रिश्ता शायद वही होता है जहाँ आपको हर बात बोलकर समझानी नहीं पड़ती, सामने वाला आपकी चुप्पी से भी समझ जाता है कि कुछ तो हुआ है। एक बात, एक छोटा सा सवाल, क्या हुआ, और अचानक लगता है कि चलो कोई तो है जो मुझे पूछने वाला है। ऐसे लोग हमारी जिंदगी में किसी गिफ्ट से कम नहीं होते, और हो सकता है आप रोज उनसे बात ना करते हो, लेकिन जब जरूरत पड़े तो उनका एक मैसेज भी बहुत बड़ी उम्मीद दी जाता है। ऐसे इंसान को संभाल कर रखिए, क्योंकि हर इंसान को ऐसा इंसान समझने वाला नहीं मिलता।
2: ये तो बिल्कुल सही कहा तुमने, और उस वक्त का साथ ये बहुत जरूरी होता है। अच्छे समय में तो हर कोई साथ दिखाई देता है, असली पहचान तो तब होती है जब जिंदगी थोड़ी मुश्किल हो जाती है और जब चेहरे पर स्माइल नहीं होती, बस कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, और जब लगता है कि सब कुछ उल्टा चल रहा है, तब कोई एक इंसान अगर आपके पास खड़ा रहता है तो उसकी जगह जिंदगी में बहुत खास हो जाती है। उसने शायद आपकी प्रॉब्लम सॉल्व ना की हो, लेकिन उसने आपको अकेला महसूस नहीं होने दिया। और कई बार इंसान को सॉल्यूशन से ज्यादा जरूरत इस बात की होती है कि कोई उसके साथ खड़ा है।
5: और रीना, तुम्हें पता है, पुराने दोस्त, कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जिनसे महीनों बातें ना हो, लेकिन जब फोन पर बात शुरू होने लगती है ना, तो जैसे कल ही मिले थे। ना कोई फॉर्मल कन्वर्सेशन, ना कोई हिसाब किताब, बस वही पुरानी हंसी, वही पुराने किस्से और वही बेफिक्री बातें। जिंदगी आगे बढ़ती रहती है, लोग बदलते रहते हैं, लेकिन कुछ दोस्त हमारी यादों में वही के वही रहते हैं। अगर आपके पास ऐसा कोई पुराना दोस्त है जो आज, उसे एक छोटा सा मैसेज जरूर देना, यार याद आ रही थी। हो सकता है सामने वाले का पूरा दिन ही बन जाए, तो आप भी अपने दोस्त को मैसेज कीजिए ना जिनसे आपने महीनों बात नहीं की है, शायद आपका मैसेज का वो इंतजार कर रहे हो और उनका पूरा दिन बन जाए, या फिर आप किसी को मिस कर रहे हैं, कोई आपके पास ही मैसेज कर दे, है ना दोस्तों। ये दोस्ती का रिश्ता ना बहुत खास होता है, चाहे आप दूर हो या आप नजदीक हो, तो उस दोस्ती के रिश्ते को ना हमेशा संभाल कर रखिए, और बीच बीच में वीकली मंथली जब आपको टाइम मिले तो जरूर टाइम स्पेंड करें, एक दूसरे से मिले जुले, उससे रिश्ते और ज्यादा खूबसूरत होते हैं।
2: हर परिवार में कोई ना कोई ऐसा इंसान होता है जिसके पास बैठते ही मन हल्का हो जाता है। कभी वो माँ होती है, कभी पापा, कभी भाई बहन, कभी दादा दादी, या कोई ऐसा रिश्तेदार जो आपकी बात ध्यान से सुनता है। उसकी खासियत ये नहीं कि हर समस्या का हल जानते हैं, उसकी खासियत ये है कि वो आपको आपकी प्रॉब्लम के साथ एक्सेप्ट करते हैं। परिवार की यही छोटी सी खुशी हमें बाहर की बड़ी बड़ी परेशानियों से लड़ने की ताकत देती है। इसीलिए अपने घर के उस खास इंसान को कभी कभी बता भी दिया कीजिए कि वो आपके लिए कितना मायने रखते हैं, क्योंकि आपके लाइफ में जो भी इंसान खास हो ना, वो आपके लिए बेहद आपके लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं।
5: कभी कभी दोस्तों हमारी जिंदगी में ना ऐसा वक्त आता है जब हमें खुद पर भी भरोसा नहीं रहता, लेकिन तभी कोई एक इंसान बोलता है, तू कर लेगा, मुझे पूरा भरोसा है। बस ये चार पांच शब्द अंदर से कुछ बदल देते हैं, क्योंकि किसी का आप पर विश्वास करना बहुत बड़ी बात होता है। हो सकता है दुनिया आपकी कमी दिख रही हो, लेकिन वो इंसान आपकी पोटेंशियल दिख रहा होता है। अगर आपकी जिंदगी में ऐसा कोई इंसान है जो आपकी क्षमता पर आपसे ज्यादा भरोसा करता है, तो समझ लीजिए आप बहुत लकी हैं। हाँ हाँ, आप जो मुस्कुरा रहे हैं, मैं आप ही को बोल रही हूँ, वो लकी पर्सन आप ही हैं।
2: ये तो बिल्कुल सही कहा तुमने, और साथ ही साथ आजकल बहुत से रिश्तों में मतलब ढूंढ लिया जाता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बिना किसी एक्सपेक्टेशन के आपके साथ खड़े रहते हैं। ना उन्हें बदले में कुछ चाहिए, ना कोई फायदा, बस इसीलिए साथ है क्योंकि उन्हें आपकी परवाह है। ऐसे लोग शायद ज्यादा बड़ी बड़ी बातें नहीं करते, लेकिन जब जरूरत होती है तो सबसे पहले पहुंच जाते हैं। और सच कहे तो जिंदगी में ऐसे लोगों की कीमत किसी महंगे गिफ्ट से ज्यादा कहीं ज्यादा होती है। और जब आपके पास ऐसे इंसान है तो मैं कहती हूँ उसको संजो कर रखिए, अपने पास से कभी दूर मत होने दीजिए। चाहे आप बात ना करें, लेकिन जब भी मिले तो आपको मिलकर ऐसा ना लगे कि हम काफी टाइम बाद मिल रहे हैं।
5: दोस्तों हमारी लाइफ में ना कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ हमारे साथ नहीं रहते, वो हमें बदल भी देते हैं। कोई हमें कॉन्फिडेंस देना सिखाता है, कोई खुद के लिए खड़ा होना, कोई मेहनत करना, और कोई ऐसा समझाता है कि जिंदगी में हार के बाद भी उठना जरूरी है। हो सकता है वो इंसान आज आपकी जिंदगी में ना हो, लेकिन उसकी कही हुई कोई बात आज भी आपके साथ चल रही हो। ऐसे लोग हमारे सफर का हिस्सा भले ही कम समय के लिए बने हों, लेकिन उनका असर बहुत लंबे समय तक रहता है। क्यों दोस्तों, होता है ना ऐसा? आपकी लाइफ में भी ऐसे ही लोग हैं जो आपको कहीं ना कहीं मोटिवेशन देते हैं, कॉन्फिडेंस देते हैं, और आपको लाइफ में आगे बढ़ने के लिए हौसला देते हैं। तो आप भी आगे बढ़ते रहिए।
2: मतलब बात तो वही है ना कि जो अच्छे दोस्त होते हैं ना, वो आपके अंदर कोई कमी है तो उसको बताते हैं कि इस कमी को ठीक करो, तुम ऐसे करो तभी आगे बढ़ोगे। लेकिन जो इंसान आपसे मतलब के लिए रिश्ता रखता है, मतलब के लिए दिखावे रखता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन काम गलत कर रहे हो, क्या सही है क्या गलत है, कभी इंटरफेयर नहीं करता वो आपके लाइफ में। लेकिन जो आपके सच्चे मित्र होते हैं, वो हमेशा आपकी परवाह करते हैं और आपकी गलतियों को हमेशा बताते हैं। किसी खास इंसान की पहचान हमेशा बड़ी बड़ी यादों से नहीं होती, कभी उसकी याद किसी छोटे से काम से आ जाती है। कोई गाना सुनकर, कोई जगह देखकर, कोई चाय की खुशबू, या फिर कोई पुराना डायलॉग सुनकर अचानक मन कहता है, अरे ये तो वो कहा करता था, और चेहरे पर अपने आप स्माइल आ जाती है। यही तो खास रिश्तों की खूबसूरती है। इंसान दूर हो सकता है, लेकिन उसकी छोटी छोटी बातें हमारी जिंदगी में कभी ना कभी हमारी जिंदगी में कहीं ना कहीं रह जाती हैं।
5: सही समय पर सही इंसान का मिल जाना, साथ देना अपने आप में ब्लेसिंग्सफुल होता है एवरीवन। कभी कभी ना जिंदगी में कोई इंसान ऐसे समय पर आता है जब हमें उसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। शायद उसे खुद भी नहीं पता होता कि उसकी एक बात, एक सलाह, एक छोटा सा सपोर्ट हमारे लिए कितना बड़ा था। जिंदगी में हर इंसान हमेशा हमारे साथ नहीं रहता, लेकिन कुछ लोग बिल्कुल सही समय पर आकर ना हमें संभाल जाते हैं। इसीलिए हर रिश्ते की उम्र नहीं देखनी चाहिए। कभी कभी किसी इंसान का कुछ समय के लिए आना भी जिंदगी में बहुत मायने रखता है।
2: जो आपकी छोटी छोटी बातें याद रखता है। आपने कभी नोटिस किया है, खास इंसान वही नहीं होता जो आपके लिए बड़े काम करे। कभी कभी वो इंसान खास इसलिए होता है क्योंकि उसे आपकी छोटी छोटी बातें याद रहती हैं। आपको कौन सी चीज पसंद है, किस बात से आपको बुरा लगता है, आप परेशान होने पर चुप हो जाते हैं। ऐसी छोटी बातें याद रखना बताता है कि सामने वाला आपको ध्यान से सुनता है, और आज के बिजी समय में किसी को इतनी अटेंशन देना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है श्रोताओं। और इसी के साथ हम लेंगे एक म्यूजिकल ब्रेक, और इसके बाद फिर कनेक्ट होंगे और करेंगे ढेर सारी बातें। फिलहाल आप सभी से यही कहना चाहेंगे, रेडियो के सिवा बिल्कुल नहीं घुमानी है, हमारे साथ कनेक्ट रहिए और ढेर सारी बातें एंजॉय करते रहिए। आपके लाइफ में ना कोई पर्सन तो ऐसा जरूर होगा, तो आप हमें मैसेज करके बता सकते हैं। नंबर है 9837896896।

0: हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। मैं आपके साथ आपकी खुशी, और अभी आपने ये हैपनिंग ट्रैक एंजॉय किया एंड अब हम बात करने वाले हैं हंसी वाले इंसान की। जी हाँ दोस्तों, कुछ लोग ना हमारी जिंदगी में हैप्पीनेस की तरह होते हैं। इनके साथ 5 मिनट बैठो और मूड अपने आप ठीक होने लगता है। वो कोई जादू नहीं करते, बस अपनी बातें करके आपको हंसा देते हैं। कभी बेवकूफी वाली बात, कभी पुराने किस्से, और कभी ऐसी जोक कि हंसी रुकने का नाम ही नहीं लेती। ऐसे इंसान जिंदगी में ना बहुत जरूरी होते हैं, क्योंकि हर दिन सीरियस रहने के लिए नहीं बना है एवरीवन। अगर आपकी जिंदगी में कोई ऐसा पर्सन है ना जो आपको बिना किसी वजह के हंसा सकता है, तो उसे जरूर संभाल के रखिए। क्योंकि दोस्तों, तकलीफ देने वाले ना हजारों लोग मिल जाएंगे, लेकिन खुशियां देने वाले लोग बहुत कम मिलेंगे। और अगर ऐसे पर्सन आपके पास है तो संभाल के रखो और खुश रहो।
1: दूर रहकर भी करीब, ये बहुत देखा जाता है। क्योंकि देखिए, आज के टाइम में ना हर कोई आगे बढ़ रहा है, ग्रो कर रहा है, और हमेशा के लिए एक साथ रहते भी नहीं है। तो कुछ रिश्तों में दूरी सिर्फ जगह नहीं होती, दिल की नहीं। इंसान किसी दूसरे शहर में हो सकता है, रोज बात ना होती हो, लेकिन जरूरत पड़ते ही कनेक्शन वही महसूस होता है कि फोन कॉल, एक मैसेज, और लगता है जैसे दूरी खत्म हो गई। ऐसे रिश्ते हमें बताते हैं कि किसी के करीब रहने के लिए हमेशा उनके पास रहना जरूरी नहीं। अगर दिल में जगह है तो हजारों किलोमीटर की दूरी भी रिश्ते को कमजोर नहीं कर पाती है। और चाहे आप कितने भी दूर रहो, और जब कॉल आती है ना तो भाई लगता ही नहीं है कि हम कब मिले हैं, यानी कि लगता है कि बस जस्ट अभी तो मिले हैं। और कैसे वही, यानी कि अनप्रोफेशनल वाली बातें हम करने लग जाते हैं, जैसे हम मिलते थे, बात करते थे। मतलब सोचना ही नहीं पड़ता कि क्या बोले क्या ना बोले, मतलब जो दिल में आता है हम बोल देते हैं। तो वो होती है असली इंसानियत और असली दोस्ती।
0: दोस्तों, हर इंसान की जिंदगी में ना कभी ऐसा मोमेंट आता है जब वो खुद को कमजोर महसूस करने लगता है। उस वक्त अगर कोई आपके कंधे पर हाथ रखकर कह दे कि तुम कर सकते हो, तो वो बात लंबे समय तक याद रहती है। क्योंकि कई बार हमें अपनी ताकत दिखाई नहीं देती, लेकिन सामने वाला उसे पहचान लेता है। ऐसा इंसान सिर्फ दोस्त नहीं होता, वो आपकी जिंदगी में कॉन्फिडेंस की वजह बन जाता है। और आपकी लाइफ में ऐसे इंसान है, हमारी लाइफ में भी ऐसे पर्सन है जो हमें कहीं ना कहीं आगे बढ़ने के लिए हमें मोटिवेट करते हैं हर दिन। वो हमें कभी कभी ऐसा होता है, माइंड में बहुत सारे थॉट आते हैं कि कुछ चीजें होती हैं लाइफ में कि हम हिम्मत हार जाते हैं, अब नहीं होगा, बस बहुत हो गया, अब नहीं कर पाएंगे। लेकिन वहीं जब कोई इंसान आए और वो हमें संभाल ले, हमें प्यार से दो शब्द कह दे कि आप कर सकते हो, विश्वास रखो खुद पर, तो एवरीवन यकीन मानिए, वो छोटी सी कही हुई बात ना इंसान को फर्श से अर्श तक पहुंचा देती है।
1: खास होने के लिए रिश्ते जरूरी नहीं होते। एक बात हमेशा याद रखिए, बहुत खूबसूरत है किसी इंसान का खास होना। हमेशा किसी रिश्ते के नाम पर डिपेंड नहीं रहता। जरूरी नहीं कि वो आपका बेस्ट फ्रेंड हो, या कोई फैमिली मेंबर हो, या कोई टीचर, कलीग, पड़ोसी, या कोई पुराना जान पहचान वाला आपकी जिंदगी में ऐसे जगह बना लेता है, मतलब जिसको आप नहीं जानते हैं वो भी आपकी जिंदगी में एक ऐसी जगह बना लेता है जिसे शब्दों में डिफाइन करना मुश्किल हो जाता है। रिश्ता चाहे जो हो, अगर उस इंसान की मौजूदगी आपको बेहतर महसूस कराती है, तो वो इंसान आपके लिए बेहद खास होता है।
0: दोस्तों, आज के टाइम में सच्चा अपना कौन है, इसका एक छोटा सा टेस्ट है। आप अपनी कोई अचीवमेंट बताइए और सामने वाले की खुशी देखिए। कुछ लोग आपकी सफलता को देखकर खुश होते हैं बिना किसी कंपैरिजन के, ना उन्हें

0: सच्चा अपना कौन है इसका एक छोटा सा टेस्ट हो जाए। आपकी अपनी कोई अचीवमेंट बताइए और सामने वाले की खुशी देखिए। कुछ लोग आपकी सफलता को देखकर खुश होते हैं बिना किसी कॉम्प्रोमाइज के, ना उन्हें जलन होती है ना वो आपकी खुशी छोटी करने की कोशिश करते हैं। वो सच में कहते हैं मुझे तो तुम पर गर्व है। ऐसे लोगों की मौजूदगी बहुत कीमती होती है। आपकी खुशी में ना हर कोई खुशी होने वाला हर कोई इंसान नहीं होता है। वो पर्सन बहुत लकी होते हैं और वो पर्सन फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी फैमिली मेंबर्स होते हैं, आपके पेरेंट्स होते हैं, जो आपको खुश आपकी खुशियों में वो सबसे ज्यादा खुश होते हैं। जब आप एक छोटी सी भी कोई अचीवमेंट अचीव करते हैं ना तो वो प्राउडली उनका जो कहते हैं ना कि गर्व से उनका सर ऊंचा हो जाता है, क्योंकि वो जानते हैं किस तरह से उन्होंने मेहनत की है और हर एक छोटी छोटी चीजों को वो बहुत खुशी से सेलिब्रेट करते हैं। तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ एवरीवन कि अगर आपके पेरेंट्स भी आपको पढ़ा लिखा रहे हैं तो उनकी पढ़ाई उनकी मेहनत को आप प्लीज जाया मत होने दीजिएगा। आप शिद्दत के साथ पढ़ाई करें और जो भी आपके ड्रीम है आप उनको पूरा करें।
1: इसको कहते हैं निस्वार्थ प्यार, क्योंकि माँ बाप का जो प्यार होता है ना वो निस्वार्थ होता है। शायद आपको भी अपने जिंदगी का कोई ऐसा दिन याद हो जब सब कुछ ठीक नहीं था, मन परेशान था, आंखों में आंसू थे और किसी से बात करने का मन नहीं था, लेकिन कोई एक इंसान था जिसने उस वक्त आपको अकेला नहीं छोड़ा। शायद उसने सिर्फ आपकी बात सुनी थी, शायद कुछ भी नहीं कहा था, लेकिन उसकी मौजूदगी काफी थी। जिंदगी में ऐसे मोमेंट्स और ऐसे लोग कभी भूले नहीं जाते, क्योंकि उन्हें हमें उस वक्त संभाला जब खुद को संभालना मुश्किल हो रहा था। तो ऐसे इंसान आपकी ताकत बनते हैं और मुझे लगता है कि जब वो आपके साथ खड़े रहते हैं तो आपको भी उनके साथ हर मुश्किल में साथ देना चाहिए।
0: अब दोस्तों एक मैसेज की ताकत पता है ना, जब एक मैसेज आ जाता है तो हमारा हौसला बढ़ जाता है हमारे चेहरे पर। कहाँ हमारा मूड कभी कभी सैड होता है, लेकिन जैसे ही एक मैसेज आता है, एक नोटिफिकेशन आता है, हमारे चेहरे पर ऑटोमेटिकली स्माइल आ जाती है। कभी कभी किसी खास इंसान का सिर्फ एक मैसेज पूरे दिन को बदल देता है। कैसे हो, खाना खाया, परेशान मत होना, सब ठीक हो जाएगा, या बस एक सिंपल सा मैं हूं ना। शब्द छोटे होते हैं लेकिन उनका असर बहुत बड़ा होता है, क्योंकि असली बात मैसेज की नहीं होती है, असल बात होती है किसी ने आपको याद किया है। और जिंदगी में याद किया जाना भी अपने आप में बहुत खूबसूरत फीलिंग है। देखो हम भी आपको याद करते हैं ना, तभी तो आपसे मुलाकात करने आते हैं एवरीडे।
1: और साथ ही साथ एक ऐसा पार्ट जब कोई आपकी कहानी का हिस्सा बनता है। हमारी जिंदगी एक किताब की तरह है, इसमें बहुत सारे किरदार आते हैं, कुछ कुछ पन्ने तक रहते हैं, कुछ नई चैप्टर तक और कुछ पुरानी कहानी का हिस्सा बन जाते हैं, लेकिन हर किरदार की अपनी जगह होती है। कोई हमें हंसाता है, कोई सिखाता है, कोई संभालता है और कोई हमें मजबूत बनाकर चला जाता है। इसीलिए हर खास इंसान को उसकी जगह और उसके योगदान के लिए याद करना चाहिए हम। और कुछ लोगों के साथ बैठकर आपको कुछ बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ती, बस उसकी मौजूदगी में मन शांत हो जाता है और ना कोई प्रेशर, ना कोई जजमेंट, ना खुद को अच्छा साबित करने की जरूरत। आप जैसे हैं वैसे ही रह सकते हैं। ऐसे लोग जिंदगी में बहुत रियल होते हैं। अगर किसी इंसान के साथ आपको खुद को बदल कर नहीं बल्कि खुद बनकर रहे कम्फर्ट मिलता है तो समझ लीजिए कि वो इंसान आपके लिए बेहद खास है। और श्रोताओं हम मुझे लगता है कि अब म्यूजिकल में ब्रेक ले लेना चाहिए, क्योंकि बातों के साथ साथ गानों का तड़का लगता है तो और भी मजा आ जाता है। तो बस हम लौट कर आते हैं आप सभी के साथ, करेंगे ढेर सारी बातें। फिलहाल कनेक्ट रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहे, गुनगुनाते रहे।

0: तू भी कूद जा।
1: नहीं
0: कप्तान, क्या तुझे यकीन नहीं है?
1: हाँ पार्टनर, यकीन है, पूरा यकीन है। अगर मैं कूद जाऊंगा तो मैं मर जाऊंगा।
2: साले डर गया, क्यों बुलाई?
0: साले इतने हंस गया, तू कूद गया।
2: अबे पागल नहीं हूँ तेरी तरह, मर जाएगा किसी दिन, लाश भी नहीं मिलेगी।
0: क्यों?
2: तो क्या हुआ? अबे आत्मा भटकती रहेगी तेरी, शांति नहीं मिलेगी।
0: अगर ये लाश नहीं मिली ना तो जला देना मेरी चीजें, मेरे कपड़े, मेरे जूते और उसकी राख नदी में बिखेर देना, मिल जाएगी मेरी आत्मा को शांति। अब तू भी खुद मेरे साथ।

एवरीवन, हमारी लाइफ में ना ऐसे इंसान भी होते हैं जो हमें अकेला नहीं छोड़ते हैं। मुश्किल वक्त में सबसे जरूरी चीज हमेशा सलाह नहीं होती, कभी कभी बस किसी का साथ चाहिए होता है। ऐसा कोई जो बोले, चल मैं तेरे

0: दिन के किसी भी वक्त अचानक किसी एक इंसान का ख्याल आता है, कोई वजह भी नहीं होती, बस याद आ गया। यही बताता है कि वो इंसान हमारे मन में कहीं खास जगह बना चुका है। वो हो सकता है हम उसे रोज ना बताते हो, लेकिन दिल के किसी कोने में उसकी तस्वीर जरूर होती है, उसकी यादें जरूर होती है, जो हमेशा उसकी याद कहीं ना कहीं कोई भी मोमेंट हो आ ही जाती हैं।
1: हमारी लाइफ का, जिंदगी का टीचर, मैं आपको बताती हूँ, कुछ लोग ना हमारे टीचर इसलिए नहीं होते क्योंकि उन्हें हमें कोई सब्जेक्ट पढ़ाया, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्होंने हमें जिंदगी सिखाई। उन्होंने बताया कि लोगों को कैसे समझना है, मुश्किलों में कैसे खड़े रहना है और खुद की वैल्यू कैसे पहचाननी है। हो सकता है उस वक्त उनकी बातें समझ ना आई हूँ, लेकिन सालों बाद वही बातें जिंदगी में काम आती हैं। ऐसे इंसान सिर्फ याद नहीं रहते, उनकी सीख हमारे साथ चलती रहती है। दोस्तों, हमारी कॉलेज की बात है, मेरी एक टीचर थी और वो मुझे हमेशा, मतलब मैं आपको बताती हूँ, मेरे को संस्कृत सब्जेक्ट मिला हुआ था और संस्कृत में मेरा इतना मतलब इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन वो मैम मेरे को जबरदस्ती संस्कृत पढ़ाती थी और हमेशा वो मेरे को संस्कृत पढ़ाती थी। तो मुझे ऐसा लगता था, उस टाइम भी मेरे को लगता था कि मैम क्यों मुझे जबरदस्ती फोर्स करके पढ़ाती हैं, लेकिन मुझे आज समझ आता है अगर वो मुझे उस टाइम पर ज्ञान नहीं देती, वो मुझे संस्कृत नहीं पढ़ाती, तो मैं लाइफ में शायद बहुत कुछ मिस कर जाती।
0: देखिए, पता है उसे क्या होता है, हमें खुद नहीं पता कि हमारे अंदर क्या क्वालिटी है।
1: Exactly.
0: जो इंसान सामने वाला होता है वो देखकर हमें जज कर लेता है। इनफैक्ट जो हमारे टीचर होते हैं वो हमारी मेहनत लगन देकर वो पहले ही डिसाइड कर लेते हैं कि ये बच्चा इस चीज में आगे है और तुम आगे एक दिन जरूर बढ़ोगे। वो इस चीज को हमेशा कहते भी हैं और कभी कभी आप परेशान होते हो तो वो संभालते भी हैं, क्योंकि एक गुरु ना निस्वार्थ होकर बच्चों को पढ़ाते हैं और वो बस यही चाहते हैं कि जो मेरे पढ़ाए बच्चे हैं वो एक ना एक दिन जरूर सक्सेस हो।
1: कहते हैं ना रीना कि हीरे की कीमत जोहरी को ही पता होती है।
0: अरे वाह, कहाँ कहाँ से लेकर आती है लड़की ऐसी ऐसी लाइनें।
1: जिंदगी का अनुभव है।
0: ओह माय गॉड,
1: सीख रहे हैं अभी, पूरी जिंदगी सीखने के ही।
0: राइट,
1: जिंदगी का नाम ही है सीखना है। तो हर दिन सीखते रहते हैं कुछ ना कुछ,
0: और मुझे लगता है कि सीखना बहुत जरूरी है, हर रोज सीखिए। और अब हम बात कर लेते हैं, हम अक्सर सोचते हैं कि कभी समय मिले तो अपने खास लोगों को बताएंगे कि वो हमारे लिए कितने इम्पोर्टेंट है, लेकिन जिंदगी बहुत बिजी है और कभी अक्सर आता ही नहीं है। इसीलिए अगर आपकी जिंदगी में कोई ऐसा इंसान है जिसकी वजह से आपको खुशी मिलती है, हिम्मत मिलती है या सुकून मिलता है, तो आज ही उसे बता दीजिए। जरूरी नहीं है कि कोई बड़ा गिफ्ट दे, बस इतना कह दीजिए कि तुम मेरी जिंदगी में हो, ये मेरे लिए बहुत मायने रखता है।
1: वो गाना है ना, आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके,
0: हाँ,
1: मेरे दिल में यूं ही रहना बस प्यार बनके।
0: सदा बहार बनके।
1: तो वही है, कुछ लाइफ में होते हैं ऐसे इंसान,
0: हाँ,
1: जो हमारी लाइफ को खूबसूरत बनाते हैं।
0: बिल्कुल।
1: और हमारी लाइफ में सबसे अच्छा कौन है? हमारा रेडियो, जो हमारी लाइफ को एवरीडे खूबसूरत बनाता है। आप सबसे मिलने का, बात करने का मौका हमें मिलता है।
0: हाँ, मतलब हम देखा कितने भी परेशान हो, लेकिन जब रेडियो पर आते हैं ना, एक तो हम बिंदास हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता वो सारा
1: टेंशन। खुशी ना हम शब्द में एक्सप्लेन नहीं कर सकते। एवरीवन, ये जो रिश्ता है, ये जो कनेक्शन है ना, अमेजिंग, माइंड ब्लोइंग।
0: तो श्रोताओं, हम लेंगे यहाँ से जाने की इजाजत, लेकिन जाते जाते खुशी कुछ कहना चाहती है। तो जी मैडम, क्या कहना चाहती है?
1: तो दोस्तों, आज की बात यहीं से आप तक पहुंचाते हैं। जिंदगी में ना भीड़ बहुत है, कांटेक्ट की लिस्ट भी बहुत लंबी है, लेकिन दिल के बहुत करीब लोग शायद गिने चुने ही होते हैं। कोई ऐसा जो आपकी खुशी देखकर खुद खुश हो जाए, कोई जो आपके दुख में बिना बुलाए आ जाए, कोई जो आपकी चुप्पी समझ ले, या कोई जो बस इतना कह दे मैं हूँ ना। अब सवाल आपका है, आपकी जिंदगी में वो खास इंसान कौन है? नाम मत बताइए तो भी चलेगा, बस मन ही मन उसे याद कर लीजिए, और अगर मौका मिले तो उसे आज बता भी दीजिएगा कि वो आपके लिए कितना खास है। ठीक है, छुपाइए मत, बता दीजिएगा उनको कॉल करके। और शर्माने की भी बात नहीं है, जो है वो है, चाहे वो आपके पेरेंट्स हैं, आपके फैमिली मेंबर्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, एंड आपका लाइफ पार्टनर भी हो सकता है। तो आज दिल की बातें कह देना। और अब हम भी अब आपको कहना चाहेंगे बाय बाय, टेक केयर एवरीवन, सुनते रहिए।

0: मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए और ये खूबसूरत सा रिश्ता हमारे साथ बनाए रखिए, दिल से दिल का।
1: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
0: सुनो ना, मुझे ज्वेलरी खरीदनी है।
2: तो चलो फिर, इतना सोचना क्यों है, शहर चलते हैं ना ज्वेलरी लेने।
0: नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, वहाँ पर बहुत ट्रैफिक रहता है और शोर भी बहुत होता है।
2: अरे नहीं,
3: अब ट्रैफिक की चिंता छोड़ो, क्योंकि बाबूराम सर्राफ का नया ज्वेलरी शोरूम ओपन हो गया है,
2: वो भी सिविल लाइंस में। ना ट्रैफिक की चिंता, ना शोर की, और हाँ, वहाँ ज्वेलरी खरीदने पर गोल्ड क्वाइन जीतने का मौका भी है।
0: अच्छा।
3: हाँ, आपका वही पुराना एवं विश्वसनीय शोरूम बाबूराम सर्राफ, पता जैन मंदिर रोड, सिविल लाइंस, मुरादाबाद।
4: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल, जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन, मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
5: बसंती, इनके सामने मत नाचना।
6: अरे भैया, नाचना है तो FM मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना।

हेलो जी, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, कैसे हालचाल है, नमस्कार। आप जुड़ चुके हैं एफएम मुरादाबाद के साथ, आपकी मुरादाबाद शहर की सुरीली धड़कन, जहां बातें होती हैं दिल से दिल तक। हां जी, कैसे हालचाल है आप सभी के। मेरा नाम आनंद है, एक बार फिर से अपनी प्रस्तुति लेकर, अपनी प्यारी सी पेशकश लेकर आपके बीच में हाजिर हो गया हूं आपके रेडियो सेट पर। सबसे पहले श्रोताओं, अपने हालचाल बताइए, कैसे हैं। अब आप सोच रहे होंगे आनंद जी जब फोन मिलेगा तभी बताएंगे ना। हां, तो उसके लिए मैं नंबर भी बताऊंगा ना, लेकिन उससे पहले मेरा नमस्कार तो स्वीकार कीजिए। आप सभी का इस्तकबाल है, आप सभी का स्वागत, अभिनंदन करते हैं। आप भी हमारे प्रोग्राम में शिरकत कर सकते हैं मोबाइल फोन के जरिए, मतलब कॉल लगाकर यार। हाँ जी, सब कुछ बढ़िया चल रहा है जिंदगी में, देखिए अच्छा ही चलना चाहिए। फिलहाल वक्त हो गया है 3:09, आज 24 तारीख है, दिन है आज गुरुवार का। और हेलो फरमाइश में यूं तो हर बार आपको खुशी मिलती है, लेकिन आज गुरुवार की दोपहर खुशी ने यह मौका मुझे दिया है खूबसूरत आपसे गुफ्तगू करने का, ढेर सारी बातचीत करने का। तो फिर बिना किसी देरी के हमने सोचा हम इस मौके को भाई क्यों गंवाएं, जैसे मौका मिला हम चले आए आपसे मिलने। साथियों, आपको कुछ भी नहीं करना है, ये आपका फेवरेट फोन इन प्रोग्राम है जो 3 बजे से लेकर के 5 बजे तक प्रसारित होता है इसी स्टेशन ऑफ द नेशन पे, जहां बातें होती हैं दिल से दिल तक। और आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6। और वक्त है दोपहर का, जहां 3:10 हो चुके हैं इस वक्त। और अब आपकी फरमाइशें चलेंगी आपके नाम के साथ, और आपकी दोपहर होगी और भी खास। जितने भी हमारे श्रोता साथी हैं, जो भी हमारे साथ इस प्रोग्राम में जुड़ना चाहते हैं, आपका स्वागत है। आप जुड़ सकते हैं 9837896 के साथ, ये स्टूडियो का नंबर है, एक बार रिपीट कर रहा हूँ, 9837896896, ये हमारे स्टूडियो का नंबर। इस नंबर के जरिए आप हमसे मुखातिब हो सकते हैं, ढेर सारी गुफ्तगू कर सकते हैं। लेकिन चलिए प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे एक खूबसूरत गीत के साथ, और ये पहला गीत मेरी पसंद का है जो मैं आपके लिए निकाल रहा हूँ आज की दोपहर आपके रेडियो सेट पर। आप वॉल्यूम बढ़ाकर इस गाने का आनंद लीजिए और मुझे फोन लगाना शुरू कीजिए 9837896896 पर। दोस्तों, कहते हैं कुछ गीत दिल के करीब होते हैं, कुछ गीत किसी के खास होते हैं, और कुछ गीत ऐसे होते हैं जो आपको फिर से पुरानी यादों में लेकर चले जाते हैं। ऐसे एक खूबसूरत गीत है जो आज की सुबह आपको थोड़ा सा फ्लैश बैक की तरफ मूव ऑन करा देगा आपका। कहते हैं ना श्रोताओं, कुछ बातें दिल में रह जाएं तो अधूरी सी लगती हैं, और कुछ बातें अगर कह दी जाएं तो दिल हल्का सा हो जाता है। तो आज कहना जरूरी है कि आप आनंद के साथ हैं। गुड आफ्टरनून।

0: अंकुर जी, आज कहना जरूरी है कि आपकी मुलाकात आनंद के साथ हो रही है।
1: मुश्किल
0: कोई मुश्किल और कोई दूरी नहीं है मेरे और आपके बीच में। बस आपको क्या करना है, आपको फोन उठाना है अपना और हमारा नंबर डायल करना है 9837896896। इस नंबर के जरिए आप हमारे साथ मुखातिब हो सकते हैं आज की दोपहर। और सुबह की इतनी बड़ी लत लगी हुई है, इतनी ज्यादा एडिक्शन, मतलब वो कहते हैं ना, जब कुछ चीजों को आप दिल से करते हो तो वो आपकी हैबिट में चेंज हो जाती है ना, तो एडिक्शन मुझे भी मॉर्निंग वाली है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने ही दोपहर को सुबह में तब्दील कर दिया, लेकिन कभी कभी पुराना घिसा पिटा अपना डायलॉग है ना, जब जागो तब सवेरा। फिलहाल जितने भी श्रोता इस वक्त हमें सुन रहे हैं, आपने ट्यून इन किया है एफएम मुरादाबाद 89.6 एफएम पे आरजे आनंद को, जहां बातें होती हैं ढेर सारी दिल से दिल तक।

0: श्रोताओं, आइए जुड़ते हैं अपने कार्यक्रम की पहली कॉलर के साथ। कौन है लकी कॉलर जो हमारे साथ जुड़ चुकी है आज की दोपहर इस चिलचिलाते हुए से कूल से मौसम में? आइए बात करते हैं। फिलहाल वक्त हो गया है 3:16, घड़ी के साथ से चलते रहिए बॉस, और हाँ, हमें फोन भी लगाते रहिए। फिलहाल बात करते हैं अपनी पहली कॉलर से। हेलो फरमाइश। हेलो, क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? हेलो फरमाइश। हेलो हेलो फरमाइश, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है मैम? हेलो हेलो, लगता है वो फोन लगाकर शायद कहीं और चली गई हैं। एंड अगला कॉल किसका होगा ये तो अभी आपका लक डिसाइड करेगा। कौन जुड़ रहे हैं हमारे साथ? हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश
0: सर, आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अपने रेडियो की वॉल्यूम कम कर लीजिए, रेडियो से थोड़ा दूरी बना लीजिए। आप जो भी मुझे सुन रहे हैं प्लीज़ रेडियो थोड़ा कम करिए। हेलो हेलो
1: हेलो
0: जी, नमस्कार, स्वागत है आपका, नाम बताएं सर।
1: आकाश चौधरी
0: जी। आकाश जी, कहाँ से कॉल किया है इस वक्त आप जुड़ चुके हैं फिर मुरादाबाद में? मुरादाबाद में कहाँ से फोन किया आकाश भाई?
1: गाड़ी में, कांट रोड पीएसी।
0: अच्छा, कांट रोड पीएसी, अरे वाह, बहुत बढ़िया। क्या करते हैं आकाश जी, थोड़ा अपने बारे में बताएं।
1: मैं जॉब करता हूँ सर।
0: अच्छा, जॉब करते हैं, अरे वाह, वेरी गुड यार। क्या जॉब करते हैं आकाश, थोड़ा सा ये बताएं।
1: हॉस्पिटल में।
0: अच्छा, हॉस्पिटल में, बहुत बढ़िया। आप बड़ा अच्छा बोलते हैं भाई, ऐसे ही बोलते हैं घर पर भी या फिर अभी कॉल पे ऐसी बात कर रहे हो?
1: नहीं, मैं बोलता
0: ही। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और बताइए आकाश जी, कैसी चल रही है जॉब?
1: बस क्लास एकदम मस्त।
0: वेरी गुड। तो आपको समय मिल जाता है जॉब की शिफ्टिंग, मतलब कौन सी शिफ्ट में आप वर्क कर रहे हैं अभी? मॉर्निंग नाइट शिफ्ट में। ओके, तो इसीलिए आप आराम से कॉल कर रहे हैं।
1: जी।
0: बहुत बढ़िया। तो रेडियो कैसे सुनते हैं, मतलब आपके थ्रू या फिर फ्रिक्वेंसी पे?
1: नहीं, गाड़ी में था, मैं गाड़ी में चला रहा
0: हूं। अच्छा, तो आपका फोन लग भी गया?
1: अरे बहुत टाइम से ट्राई कर रहा था, अभी लास्ट कॉलर जो आपकी थी उनका कट के मेरा लग गया।
0: मतलब वो वाली बात है ना कि जिसके नसीब में लिखा होता है भाई प्रसाद उसी को मिलता है।
1: जी, लक बाई चांस।
0: एग्जैक्टली। और कौन है आपके साथ गाड़ी में?
1: गाड़ी में फिलहाल मैं अकेला हूँ।
0: अच्छा, तो सवारी कहाँ निकल रही है आज?
1: घर के लिए जा रहा था।
0: अच्छा अच्छा, चलिए बहुत बढ़िया। कैसे लगता है आपको रेडियो सुनना, थोड़ा सा ये बताएं।
1: एकदम दिल खुश हो जाता है।
0: अरे वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और जब अपनी आवाज़ सुनने को मिले, अपनी पसंद के गाने सुनने को मिले, तो और भी मजा आता है ना?
1: और भी अच्छा लगता है।
0: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आकाश जी, आप पहले भी कॉल कर चुके हैं या फिर आज पहली बार जुड़े हैं?
1: फर्स्ट टाइम।
0: अरे वाह, पहली बार जुड़े हैं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आपको कैसे लगते हैं हमारे स्टेशन के प्रोग्राम्स?
1: जी, बहुत अच्छी,
0: बहुत बढ़िया। आप कितने समय से जुड़े हुए हैं जरा ये भी बताएं आकाश भाई?
1: लगभग 6 मंथ।
0: अच्छा, 6 मंथ से आप सुन रहे हैं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो कितने बजे आप रेडियो सुनना शुरू करते हैं, मतलब कब से आपको टाइम मिलता है रेडियो सुनने का?
1: मैं जब भी गाड़ी पे ड्राइव करता हूँ तभी आपका एफएम लगा लेता हूँ, मतलब अच्छा लगता है।
0: अच्छा लगता है, बहुत बढ़िया।
1: मुझे फोन में गाने सुनना अच्छा नहीं लगता।
0: दैट्स वेरी ग्रेट। हम चाहते भी नहीं किसी को अच्छा लगे यार, रेडियो आए तो रेडियो पे अच्छे गाने होते हैं, अच्छी इन्फॉर्मेशन होती है ढेर सारी। ये क्या हुआ आकाश जी? हेलो, शायद आकाश जी को कोई बहुत अर्जेंट कॉल आ गया है इसीलिए उन्होंने अपनी कॉल को होल्ड पर डाल दिया। चलिए एक मिनट वेट कर लेते हैं दोस्तों, तब तक आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं 9837896896 पे। आकाश जी, आपको किसी का कॉल आया था?
1: हाँ जी, एक कॉल आ गया।
0: कोई बात नहीं, चलिए। अच्छा, कौन सा गाना सुनेंगे आज? आपका पहली बार फोन लगा है तो ये बताएं। ये आपके साथ नहीं आकाश मेरे भाई, ये मैक्सिमम लोगों के साथ ही सिचुएशन होती है। कई बार हम बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं तो दिमाग में ना दाएं बाएं कुछ आता ही नहीं है यार, क्या बताएं, मतलब वो एक अलग ही सिनारियो होता है। मैं समझ रहा हूँ आपकी बात। अच्छा, आप मुझे थोड़ा सा एक आइडिया दो, मतलब बेसिकली कौन से जोनर के आप गाने सुनते हैं? नए,
1: मैं आपको एक गाना बताता हूँ।
0: अच्छा ठीक है। अरे वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जिंदगी के ना टूटे लड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी, राइट? बहुत बढ़िया। आकाश, किसी का नाम लोगे मेरे भाई? पहली बार कॉल लगा, मुझे बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके।
1: थैंक यू सर।
0: कुछ कहना चाहते हो जाते जाते? तमाम लोग आपकी आवाज सुन रहे हैं। बहुत बढ़िया। और अभी गणेश विसर्जन भी चल रहा है तो गणपति बप्पा मोरया। चलिए बाय बाय, ख्याल रखिए अपना। ओके आकाश, थैंक यू मेरे भाई, थैंक यू फॉर कॉलिंग यार। सो हमारे साथ पहले कॉलर जुड़े आकाश जी, जिनसे बातचीत करके काफ़ी अच्छा लगा। उनसे पहले कोई मैम जुड़ी थी बट अनफॉर्चुनेटली उनका कॉल से कोई वॉइस ही नहीं आई, आई मीन कॉल डिस्कनेक्ट तो नहीं हुआ, फिर हमें ही करना पड़ा मजबूरी में, क्योंकि पता नहीं वो कहीं चले गए थे शायद। अगर आप लोग फ़ोन लगा रहे हैं तो बस कुछ बातों का ख्याल रखिए। सबसे पहले तो आप देखिए, कॉल अगर लगा रहे हैं तो रेडियो से थोड़ा दूरी बना लें। दूसरी बात, आप फ़ोन के आसपास ही रहें प्लीज़, और जहां पूरा नेटवर्क मिले वहीं पर आके कॉल करिए, ताकि हमारे लिए थोड़ा सा कन्वीनियंट हो जाए। वक्त हुआ है 3:21, आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट प्रोग्राम हेलो फरमाइश, मैं हूँ आपका दोस्त आनंद। एंड अगर आप भी कोई गाना सुनना चाहते हैं अपनी पसंद का, या किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं आज की इस खूबसूरत दोपहर में, तो आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ, एफएम मुरादाबाद पे कॉल कर सकते हैं 9837896896 पर।

आकाश जी का कॉल लगा था और हमारे लकी कॉलर भी हैं क्योंकि पहली बार वो हमसे जुड़े और उन्होंने एक गाने की रिक्वेस्ट की है हमारे पास कॉल करके, तो डेफिनेटली उनका ये गाना हम प्ले करेंगे। बाकी आप भी अगर ऐसा कुछ सुनना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। 9837896896 पर हमें कॉल करके हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं आज की दोपहर। बाकी ढेर सारी कॉल्स हमारे पास आ रहे हैं और जिन लोगों ने कल कॉल किया था प्लीज़ वो तो आज कॉल मत करो भाई, ताकि नए लिसनर्स को भी थोड़ा सा मौका मिले, है ना। ये बहुत ज़रूरी है, जब नए नए लिसनर्स को मौका मिलता है तो अच्छा लगता है ना, उनसे बातचीत होती है। तो फिलहाल ये गाना जिंदगी की ना टूटे लड़ी प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी, बहुत ही खूबसूरत ट्रैक, सुनते हैं इस गाने को।

0: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
1: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का थ्रिल, तो स्वागत है देवशांत जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
2: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।
3: बसंती, इनके सामने मत नाचना।
4: अरे भैया, नाचना है तो एफएम मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना।

0: श्रोताओं एक बार फिर से आपका स्वागत है। आपने ट्यून इन किया है एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज पे आरजे आनंद को। फोन इन प्रोग्राम चल रहा है आपका फेवरेट हेलो फरमाइश। मैं हूँ आपका दोस्त आनंद। आइए बात करते हैं हमारे अगले श्रोता से। हेलो फरमाइश।
1: हेलो
0: जी, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, कैसे हैं प्रमोद जी?
1: नमस्कार जी।
0: बताएं कहाँ से फोन मिलाया है इस वक्त आपने?
1: हाँ,
0: बिल्कुल हेलो फरमाइश में आपका फोन लगा है साहब, लेकिन आप कहाँ रहते हैं हम आपसे ये पूछ रहे हैं। अच्छा, एकता कॉलोनी लाइन पर। ओके, अच्छा बहुत बढ़िया। प्रमोद जी क्या करते हैं बताएं थोड़ा सा अपने बारे में हमारे सुनने वालों को।
1: ये सर मैं ड्यूटी कर रहा हूँ।
0: अच्छा बहुत बढ़िया। तो आप ऐसे में भी रेडियो सुन लेते हैं, आपको समय मिल जाता है रेडियो सुनने का? बहुत बढ़िया। कैसे लगते हैं आपको हमारे स्टेशन के प्रोग्राम? क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और बताइए कामकाज कैसा चल रहा है? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। प्रमोद जी कामकाज कैसा चल रहा है आपका ये बताएं। चलिए बहुत अच्छी बात है, बस बढ़िया ही चलता रहना चाहिए। तो आप कितने बजे से रेडियो सुनना शुरू करते हैं प्रमोद जी?
1: रेडियो सुनते।
0: अच्छा, 20-25 सालों से आप रेडियो सुन रहे हैं, मतलब इतने पुराने श्रोता हैं आप।
1: जब तक नजियाबाद, रामपुर, रोहतक।
0: अच्छा, आप मतलब आकाशवाणी में काफी कॉल्स करते हैं, राइट? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो और प्रमोद जी, अब मुरादाबाद में भी आपका रेडियो आ गया है। मुरादाबाद काफी समय से आप लोग जुड़े हुए हैं, तो हमें भी अच्छा लगता है, आपको भी अच्छा लगता होगा उम्मीद करते हैं हम। बहुत बढ़िया। और हमारे स्टेशन से जो गीत संगीत प्रसारित होते हैं वो कैसे लगते हैं? आपका पसंदीदा प्रोग्राम कौन सा है जो आपको बहुत अच्छा लगता है हमारे यहाँ का प्रोग्राम? बहुत बढ़िया प्रमोद जी, बहुत अच्छा लगा। देखिए हम भी इसीलिए कोशिश और मेहनत करते हैं ताकि प्रोग्राम्स में और जो है चार चांद लगाए जाएं।
1: मेहनत भी आप करते, बहुत मेहनत करते हो, सारे मतलब किरदार के जो भी है मतलब सारे अच्छे लगते हैं।
0: बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो प्रमोद जी खाना पीना हो गया आपका?
1: खाना।
0: चलिए बहुत अच्छी बात है। तो अब आप
1: अच्छा, दो बजे तक।
0: बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, मतलब कहीं ना कहीं आप आम जनता की भी सेवा करते हैं, है ना? ये तो बहुत अच्छी बात है। बहुत बढ़िया, बहुत ही सही बहुत ही सही। देखो यार, जीवन में ना सर कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए, कुछ ना कुछ
1: करो और ईमानदारी रहो तो सबसे बड़ा सबूत है।
0: बिल्कुल सही कहा आपने प्रमोद जी, बहुत अच्छा लगा। तमाम लोग आपकी बात को सुन रहे हैं और इस बात से लोग एक कनेक्शन भी फील कर रहे हैं कि ये बहुत जरूरी है, ईमानदारी तो सबसे ज्यादा जरूरी है। देखिए कोई देखे ना देखे ऊपर वाला जरूर देखता है साहब।
1: बिल्कुल देता है, सर सबूत सबको देने वाला ऊपर वाला है।
0: बिल्कुल जी बिल्कुल बिल्कुल। इसी बात पे बताइए सर, बड़ी अच्छी बातें करते हैं, क्या सुनवा दें आज आपको प्रोग्राम में?
1: बस गाना।
0: हाँ हाँ, कौन सा गाना आज आप सुनना चाहेंगे, कौन सा गीत लेकर आए हैं आज आप? प्रेम रोग का कौन सा गीत सुनना चाहते हैं प्रमोद? अरे वाह, बड़ा खूबसूरत गाना है। चलिए आपकी पसंद का गाना सुनवाते हैं। किसी का नाम शामिल करेंगे आप प्रोग्राम में?
1: बस आप और हम दोनों।
0: मेरा नाम तो बताओ फिर आप, मेरा नाम बताओ फिर आप। अरे वाह, आनंद भैया ही बोल रहा हूँ साहब, मैं आनंद ही बोल रहा हूँ।
1: जी जी,
0: ये देखिए आप नाम भी जानते हैं और आवाज भी नहीं पहचान रहे, ये तो बड़ी गलत बात है। चलिए बहुत अच्छा लगा प्रमोद जी, अपना ढेर सारा ख्याल रखें और ऐसे ही। जी जी, अरे बहुत बहुत बहुत बहुत बहुत बहुत धन्यवाद साहब। अब इतनी ज्यादा तारीफ करोगे तो मैं ऑफिस छोड़ के बाहर भाग जाऊंगा। अच्छा जी, बहुत बढ़िया। चलिए प्रमोद जी अपना खूब सारा ख्याल रखिए और ऐसे ही हमारे प्रोग्राम से जुड़े रहिए साहब। नमस्कार नमस्कार नमस्कार जी, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। ये जुड़े थे हमारे प्यारे से श्रोता प्रमोद जी और इन्होंने एकता कॉलोनी मुरादाबाद से कॉल किया था। श्रोताओं आपका भी नंबर डेफिनेटली लगेगा, आप ट्राई करते रहिए। नंबर बहुत आसान है, 9837896896 पे आप जुड़ सकते हैं।

चलिए दोस्तों, अभी एक खूबसूरत गीत जो हमारे प्यारे से श्रोता प्रमोद जी ने रिक्वेस्ट की थी हमसे, इस गाने को हमने निकाल दिया है आपके रेडियो सेट पर, और आप भी अपनी पसंद का गीत सुन सकते हैं यहाँ पर कॉल करके 9837896896 पर। प्रेम रोग फिल्म का ट्रैक सुरेश वाडेकर और लता मंगेशकर जी ने गाया है, बहुत ही खूबसूरत गीत है, इसी को सुनते हैं और प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। बाकी आप भी हमारे साथ ज़रूर जुड़ सकते हैं हमारे नंबर के जरिए 9837896896। इतनी बार तो आपको नंबर बताते हैं, अब तक तो आपका दोस्त हो जाना चाहिए नंबर। इस गीत को म्यूज़िक दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने, बहुत ही खूबसूरत गीत है, चलिए सुनते हैं।

खूबसूरत गीत, बहुत ही प्यारे लिखे हुए गीत के बोल हैं। देखिए, भवरे ने खिलाया फूल, फूल तो ले गया राजकुंवर। बहुत ही प्यारा गीत, मुझे सुन के बहुत अच्छा लगा। प्रेम रोग फिल्म का गाना, श्री श्वारिकर लता मंगेशकर की आवाज़ों में अभी आप एंजॉय कर रहे थे इस गीत को। एंड अभी पता है आपको क्या करना है ना, आपको सिर्फ मेरे साथ कनेक्टेड रहना है। एक बार फिर से श्रोताओं, आप सभी का स्वागत अभिनंदन है। इस वक्त हमारे स्टेशन की घड़ी में वक्त हुआ है 3:41। आप सुन रहे हैं आपका फोन इन प्रोग्राम हेलो फरमाइश। मैं हूं आपका दोस्त आनंद और आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6 MHz पे आपका अपना कम्युनिटी रेडियो। कुछ कहना चाहते हो, कोई गाना सुनना चाहते हैं तो बेशक आप हमें फ़ोन कर सकते हैं जी 9837-896-896 पे। आप जो भी काम काज कर रहे हैं प्लीज़ थोड़ी देर के लिए रोक दीजिए जनाब, क्योंकि मौका बार बार नहीं मिलता है। हाँ जी, चलिए फोन मिलाइए फटाफट।

0: और इसी बीच हमारे पास एक कॉल भी पहुंच चुका है, आइए बिना किसी देरी के जुड़ते हैं अपने अगले श्रोता के साथ। हेलो फरमाइश। हेलो फरमाइश, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो फरमाइश। हेलो।
1: हेलो
0: जी, नमस्कार, अपना नाम बताएं, स्वागत है आपका।
1: जी, मैं मोहम्मद उस्मान रामपुर दुराहे से।
0: जी मोहम्मद उस्मान रामपुर दुराहे से जुड़े हैं। उस्मान जी बताएं, कैसे मिजाज हैं, हालचाल कैसे हैं?
1: मेरे मिजाज अच्छे हैं, आप बताएं सर, आप कैसे हैं?
0: हम भी बहुत बढ़िया हैं, बहुत मजे में हैं दोस्त। और बताइए, कहाँ से फोन किया है आपने इस वक्त?
1: सर मैंने रामपुर दुराहे से फोन किया।
0: रामपुर दुराहे से कॉल कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। और बताइए उस्मान जी, क्या करते हैं असल जिंदगी में, ये बताएं थोड़ा।
1: सर मैं गाड़ी चलाता हूँ।
0: बहुत बढ़िया यार, ये तो बड़ी अच्छी बात है। तो मतलब किस कैसे आप चलाते हैं, बुकिंग पर जाते हैं या पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाली गाड़ी चलाते हैं?
1: सर पहले तो मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाली चलाता था, ट्रक चलाता था, अभी मैं फैमिली चला रहा हूँ।
0: अच्छा अच्छा, फैमिली, जैसे मतलब किसी को कहीं बुकिंग वगैरह पे जाना हो उस टाइप से आप चलाते हैं, राइट?
1: जी।
0: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो कहाँ कहाँ जो है सफर कराते हैं आप लोगों को?
1: मैं कश्मीर, मनाली, नैनीताल,
0: बहुत बढ़िया,
1: लखनऊ वगैरह, दिल्ली वगैरह,
0: बहुत बढ़िया,
1: सब जगह पर कराता हूँ।
0: बहुत बढ़िया। तो उस्मान जी ये बहुत अच्छी चीज़ है कि देखिए आप भी इस बहाने से जो है नई नई हसीन वादियों में घूम लेते हैं और साथ में आपके साथ चार लोग और घूम के आ जाते हैं, है ना? एक माहौल भी बन जाता है, एक मौका, दस्तूर, सब कुछ एक साथ मिल जाता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और बताइए उस्मान जी, सब बढ़िया चल रहा है घर में, सब ठीक है, सब फैमिली में बढ़िया खैरियत?
1: सब बढ़िया है।
0: बहुत अच्छी बात है। आप कब से रेडियो से जुड़े हैं जरा ये बताएं मुझे?
1: सर मैं 2004 से रेडियो से जुड़ा हूँ।
0: अरे वाह, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। तो आप तो काफी पुराने मतलब श्रोता हैं यार।
1: जी सर।
0: बहुत बढ़िया। और हमारे मुरादाबाद स्टेशन के प्रोग्राम्स कैसे लगते हैं आपको?
1: बहुत बढ़िया लगते हैं।
0: बहुत बढ़िया। तो कितने बजे से आपको रेडियो सुनने का समय मिल जाता है उस्मान भाई?
1: मैं 11 बजे सुनता हूँ आपका रेडियो।
0: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा एक बात बताओ उस्मान भाई, आपकी आवाज में इतना मैजिक ठहराव है या आप अभी सिर्फ रेडियो पे ही बात कर रहे हैं ऐसे?
1: नहीं, मैं तो नॉर्मली बात कर रहा हूँ।
0: नहीं, ये नॉर्मली बात करने का लहजा बहुत अच्छा है ना, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। बिकॉज क्या होता है ना कि कुछ आवाजें बड़ी शांत वाली होती हैं, तो सुनने में अच्छी लगती है यार।
1: जी थैंक यू सर।
0: बहुत बढ़िया। और आपको पूरा शहर सुन रहा है, कुछ कहना चाहेंगे आज हेलो फरमाइश में? गाना तो हम आपका बजाएंगे ही जरूर। उस्मान जी, आप अभी ड्राइव तो नहीं कर रहे हैं?
1: नहीं नहीं, बैठा था मैं।
0: अच्छा अच्छा, ये बताइए जब आप गाड़ी चलाते हैं तो कौन कौन सी बातों का जो है ख्याल रखते हैं गाड़ी चलाते वक्त? तमाम लोग आपको सुन रहे हैं।
1: गाड़ी चलाते समय मैं तो ड्राइव पे ध्यान रखता हूँ ज्यादातर।
0: बहुत बढ़िया।
1: लोग तो साइड से गाड़ी चलती है, उनका भी ध्यान रखना पड़ता है, किसी का कोई भरोसा नहीं रहता है कहाँ जा जाए।
0: इसीलिए। और सीट बेल्ट लगाते हैं आप?
1: जी सीट बेल्ट तो पहले लगाता हूँ मैं, स्टार्ट करने से पहले सीट बेल्ट लगाता हूँ।
0: बहुत बढ़िया। और कभी कभी जहाँ रोकने की आवश्यकता होती है वहाँ रुकना भी चाहिए, और कहीं कहीं पे लिखा होता है कि यहाँ धीरे चलें, आगे स्कूल्स हैं या कोई भी चीज़ है, तो वहाँ हमें हल्की कर लेनी चाहिए वैसे कायदे में तो।
1: जी जी बिल्कुल,
0: है ना। बहुत अच्छा लगा उस्मान जी आपसे बातचीत करके, और आज प्रोग्राम में आपका कॉल शामिल हुआ है। क्या सुनेंगे आज आप?
1: तेरे नाम का टाइटल सुन रहा
0: है। अरे बाप रे, ये तो मेरे बैकग्राउंड म्यूजिक भी यही चल रही है आज। इसीलिए आपने गाना चुना है क्या? अच्छा लग रहा है आपको सुनने
1: में? नहीं, मुझे उसका ध्यान ही नहीं था, वो सुना ही नहीं मुझे, काफी समय से बैठा था मैं, नंबर ट्राई कर रहा था तो।
0: अच्छा अच्छा, ओके ओके, चलिए उस्मान बहुत अच्छी बात है आपका नंबर लगा भाई, इसी बात पे आपका गाना सुनवाएंगे। किसी का नाम लोगे जाते जाते?
1: बस आप और हम।
0: बहुत बढ़िया, चलिए बहुत अच्छा लगा उस्मान जी बात करके। ऑल द बेस्ट, ऐसे ही घूमते रहिए, घुमाते रहिए लोगों को, और लाइफ में मस्त रहिए भाई, और हमारे साथ जुड़े रहिए। चलिए बाय बाय, थैंक यू भाई। ओके जी, उस्मान जी जुड़े थे रामपुर दोराहा से हमारे साथ। अगला कॉल आपका हो सकता है, आप भी हमें फ़ोन कर सकते हैं 9837896896 पे कॉल करके हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं जी आज की दोपहर। देखिए हमारे जो आज की बैकग्राउंड ये जो म्यूजिक है वो भी यही है, और इसी का टाइटल ट्रैक सुनने की रिक्वेस्ट डाली है भाई ने। तो बिना किसी देरी के चलिए गाना हम आप तक पहुंचाएंगे इसी स्टेशन ऑफ द नेशन पे, आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं श्रोताओं। और अभी आगे बढ़ते हैं, और हम सिर्फ इतना ही कहना चाहते हैं कि अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो बिल्कुल गाड़ी पर अपना ध्यान रखिए, और अगर आप रेडियो पर कॉल करना चाह रहे हैं तो बिल्कुल आप करिए। थोड़ा सा जो है आपको मेहनत डबल करनी पड़ सकती है, मतलब थोड़ी सी आपको मशक्कत ज़्यादा करनी पड़ सकती है, क्योंकि कई बार जब लाइव फोन इन प्रोग्राम होते हैं तो इस दौरान लाइनें काफी बिजी होती हैं, लेकिन आप ट्राई करते रहिए, आपका नंबर जरूर लगेगा।
2: Hey, you're tuning to FM Muradabad 89.6 FM.
0: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
3: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
4: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 705-07-0552।
5: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का थ्रिल, तो स्वागत है देवशांत जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
6: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।
7: बसंती इनके सामने मत नाचना।
8: अरे भैया नाचना है तो FM मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना।

0: देखिए हमने भी अपना नाम जो है रेडियो से जोड़ लिया है। बिल्कुल, आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद। हम हैं रेडियो के मस्त मस्त आनंद, जहां पर आनंदित वाली बातें होती हैं आपके साथ। 3 से 5, 3:52 का समय हो गया है हमारे स्टेशन की घड़ी में। आप जुड़ चुके हैं RJ आनंद के साथ, सुन रहे हैं आपका फेवरेट फोन इन प्रोग्राम जिसका नाम है हेलो फरमाइश। एंड ढेर सारी कॉल्स हमारे पास आ रहे हैं, बट प्रॉब्लम इज दैट कि यार थोड़े से ना अनफॉर्चुनेटली नेटवर्क इशू के कारण कुछ कॉल डिस्कनेक्ट भी हो जा रहे हैं। और जिन लोगों का कॉल अभी रिसेंटली लगा है प्लीज़ वो कॉल ना करें, और जो लोग रेडियो नहीं सुन रहे हैं उनसे भी गुजारिश है प्लीज कॉल मत कीजिए ना। अब आप सुन ही रहे तो आपको ये बात भी शायद पता नहीं चलेगी, लेकिन आपके दोस्तों आप तक ये मैसेज डेफिनेटली कन्वे करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप रेडियो नहीं सुन रहे तो प्लीज कॉल मत कीजिए। जो लोग सुन रहे हैं, एक्चुअली जो जेन्युइनली मुझे सुन रहे हैं, जो अपनी पसंद का गाना सुनना चाहते हैं, मैं चाहूंगा कि वो लोग ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट करें। अगर आप दिल्ली रोड पे हैं, आप कांच रोड पे हैं, आप स्टेशन रोड पे हैं, आप गुरहट्टी पे हैं, आप पीली कोठी पे हैं, आप रामपुर दुराहे पर हैं, आप जहां भी मुझे सुन रहे हैं, प्लीज यू हैव टू कॉल मी ऑन माई नंबर 9837896896। दिस इज माई नंबर, आई एम वेटिंग फॉर यू कॉल। कॉल कर सकते हैं आप, ढेर सारी कॉल्स हमारे पास बैक टू बैक आ रहे हैं। अभी मुझे गिनी का फोन आया, इस वक्त वो ऑन द वे है फ्रॉम कांच रोड, एंड बट वही है ना कि थोड़ा सा नेटवर्क इशू हो रहा है। वेल, थैंक यू फॉर कॉलिंग गिनी मैम, एंड आपने गाने की रिक्वेस्ट डाली थी, मैं डेफिनेटली ट्राई करूंगा कि गाना आप तक पहुंचाऊं। बड़ा अच्छा से गाना आपने रिक्वेस्ट किया है, पर अगर आपका फोन दोबारा आ जाए तो मजा आएगा एंड आपसे एक बार फिर से बात हो जाएगी ऑन एयर। बाकी श्रोताओं, आप भी हमें फोन कर सकते हैं 9837896896 पे आप हमें कॉल कर सकते हैं और अपनी पसंद का गाना सुन सकते हैं। कोई भी गाना अगर आप सुनना चाहते हैं, कोई भी बात अगर आप शेयर करना चाहते हैं, तो प्लीज आप मुझे इमीडिएटली फोन कर सकते हैं। दिस इज माई फोनिंग नंबर 9837896896 पे। आइए बात करते हैं हमारे अगले श्रोता से। हेलो फरमाइश, स्वागत है, नमस्कार।
1: हेलो फरमाइश,
0: बहुत बहुत स्वागत है साहब, नाम बताएं।
1: नाम तो नरेंद्र सिंह नाम है, कॉल डिस्कनेक्ट हो गई थी।
0: कोई बात नहीं नरेंद्र जी, कोई बात नहीं। आप कहां से फोन कर रहे हैं इस वक्त ये बताएं।
1: इस टाइम आपके डॉक्टर के करीब से फोन कर रहा है, डॉक्टर नीता ने सिंह के नंबर लगवाया
0: आज। जी कहां से फोन किया है आपने सर?
1: साई हॉस्पिटल।
0: अच्छा, फोन किसने लगवाया है आपको?
1: गाना बताया था।
0: हाँ जी हाँ जी, लेकिन आपने आपने बोला ना डॉक्टर निदा नसीम की यहाँ से कॉल कर रहे हैं करके।
1: नहीं, उनके क्लिनिक के बाहर बैठे हुए हैं।
0: अच्छा अच्छा, निदा मैम के। अच्छा, मैं जानता हूँ, उनका इंटरव्यू हुआ है हमारे रेडियो पे। हाँ हाँ, बहुत
1: बढ़िया। तो आपने बताया था?
0: हाँ हाँ, बहुत बहुत बढ़िया।
1: बहुत बृहस्पतिवार को कैंप लग रहा, तो हमने सोचा हम भी कुछ फायदा उठाने आपके जरिए।
0: अच्छा अच्छा, इसीलिए आप आए हुए हैं कैंप के बाहर। अच्छा अच्छा अच्छा,
1: हॉस्पिटल में बैठे हुए हैं।
0: चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और आप रेडियो भी सुन रहे हैं? अरे वाह,
1: रेडियो भी सुनना है और गाना बताया था खाना।
0: जी जी, वो कॉल बीच में आपका डिस्कनेक्ट हुआ था साहब। कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं। चलिए नरेंद्र जी, नरेंद्र जी आपका गाना कौन सा था एक बार बता दें आप। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपने फोन किया, और अपना ख्याल रखिए जनाब, ठीक है? जी नमस्कार, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। ये नरेंद्र जी हैं, बहुत अच्छा लगा इनसे बातचीत करके। श्रोताओं, आप भी बात कर सकते हैं हमसे, आप भी हमें फ़ोन मिला सकते हैं। फ़ोन लाइन हमारी खुली हुई है 9837896896। स्टूडियो का नंबर बहुत आसान है, एक बार आसान शब्दों में बता देता हूँ, आपके लिए कन्वीनियंट हो जाएगा नंबर लगाना 9837896896। ये नंबर है, इस नंबर को प्लीज़ डायल कीजिए। अगर आपको लग रहा है कि फ़ोन बिजी जा रहा है, तो थोड़ा सा वेट करके आप ट्राई करते रहिए। 5 बजे तक आपके साथ हैं, आपको डेफिनेटली इसका रिजल्ट मिलेगा। मैं आपको गारंटेड बोल रहा हूँ, 100% श्योरिटी नहीं है, बट डेफिनेटली आपको कॉल लग जाएगा। दिल से लगाइए ना यार, सुनते रहिए ऐसे ही FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। आनंद के साथ सुन रहे हैं आप हेलो फरमाइश। गुड आफ्टरनून।

0: Hey, you're tuned into FM Moradabad 89.6 FM.
1: सिर दर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
2: स्किन एलर्जी, मस्त से नाखून बालों की समस्या, टैटू हटाना, कार्बन लेजर फेशियल के लिए संपर्क करें डॉक्टर ऋचा गर्ग। यूनिवर्सल नेत्र एवं चर्म रोग, Z19 आशियाना 2, निकट विवेकानंद अस्पताल मुरादाबाद, 7983153386।

0: श्रोताओं, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं, आप सभी का इस्तकबाल है। एक बार फिर से आपका फेवरेट फोन इन प्रोग्राम आप सुन रहे हैं हलो फरमाइश, आपके फेवरेट रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़ पे। और इस समय स्टूडियो की घड़ी में वक्त हो रहा है शाम के 4:02। और आप जुड़ चुके हैं आरजे आनंद के साथ, आपका फेवरेट फोन इन प्रोग्राम हलो फरमाइश सुन रहे हैं आप। अभी एक घंटे का सफर और बाकी है मेरा और आपका, तो आप इस बीच भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, कॉल कर सकते हैं हमें। कैसे बताऊंगा, थोड़ी देर में ही कॉलर जुड़े हैं, इनसे बात करते हैं। हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश,
0: बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में, नाम बताएं साहब।
1: सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर, आज हमारा नंबर लग गया सर ये।
0: अरे वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आवाज काफी जानी पहचानी लग रही है मेरे को।
1: जी सर, आपके स्टूडियो में आ चुका हूँ सर।
0: जी जी, अपने नाम तो बता दीजिए जनाब।
1: मैं बोल रहा हूँ सर, ग्राम गोविंद खुर्द से वाजिद अली मिस्त्री बोल रहा हूँ। अच्छा। जो आशियाना बनाते हैं।
0: बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आशियाना आप बनाते हैं, लोगों के ख्वाबों का घर बनाते हैं वाजिद अली साहब। बहुत जी, बहुत आपका इस्तकबाल करते हैं अपने कार्यक्रम में, बताइए।
1: बढ़िया छत डालते हैं सर, छत में कोई कमी नहीं रहती, ना पसे मार देती छत ना कुछ।
0: बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, चलिए जल्दी से दुआएं कीजिए, हम भी एक अच्छी सी छत बनाए और फिर आपको बुलाएं। अरे वाह, बहुत बढ़िया, आप मुरादाबाद से पहाड़ों पे कब पहुँचे? अच्छा, कब कब पहाड़ों पे पहुँच गए जनाब?
1: जी जी सर, मैं कल परसों आया था सर।
0: अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया। तो कैसा मौसम हो रहा है इस वक्त लाइव?
1: बहुत लाजवाब मौसम हो रहा है सर, बिल्कुल बेहतरीन मौसम हो रहा है, ठंडा गर्म नहीं हो रहा, दूर एकता हो रहा है बिल्कुल ठंडा।
0: बहुत बढ़िया बहुत। तो इस वक्त मतलब आप मुरादाबाद में नहीं है, कहाँ बताया आपने, कहाँ पर है?
1: नई टीवी जो चंबा से ऊपर पड़ता है ये।
0: अच्छा, ऋषिकेश के ऊपर जाकर भी पड़ता है।
1: जी जी जी जी सर, जी सर,
0: बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया।
1: और सर आज गाना सुनवा दीजिए हमें, इस तरह का जो पहाड़ों से मिलता जुलता गाना हो और सुनने वाले श्रोता है अपने।
0: जी जी, नाम बताएं दोस्तों के।
1: ये राजुल मिस्त्री है, बारिश अली मिस्त्री है, और सर ये है क्या नाम है, फौजी है हमारे, फौजी माता बोले गोविंदपुर के अंदर।
0: अच्छा जी,
1: रही फौजी, और ये है लईक भाई और साहिद भाई।
0: चलिए चलिए, आपके सभी दोस्तों के साथ आपको गीत सुनवाते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आप जुड़े हमारे साथ इस प्रोग्राम में। थैंक यू सर, ओके जी, नमस्कार सर। तो दोस्तों, आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, फोन कर सकते हैं हमें 9837896896 पे। और ये पहाड़ों में है और इतना अच्छा माहौल बना हुआ है वहाँ पर, तो एक बढ़िया सा गाना हमने सोचा इनके लिए हम निकाल देते हैं अपने स्टेशन से। तो चलिए, एक खूबसूरत गीत निकाल रहे हैं, आप इंजॉय कीजिए, और मुझे उम्मीद है गाना आपको ज़रूर पसंद आएगा वाजिद साहब, आपके दोस्तों को भी और बाकी सुनने वालों को भी ज़रूर पसंद आएगा। आप भी हमें फ़ोन लगाते रहिए 9837896896 पर।

0: अरे भैया कुछ लोग पहाड़ों में पहुंच गए और हम आ गए हैं आपके रेडियो पर। वी ज़ारा फिल्म का गाना भी आपने एंजॉय किया, ये हम आ गए हैं कहाँ। लता मंगेशकर, उदित साहब ने गाया, बहुत ही खूबसूरत आवाजों में इस गीत को आप सुन रहे थे। आनंद के साथ सुन रहे हैं आपका पसंदीदा प्रोग्राम जिसका नाम है हेलो फरमाइश। चलिए आइए जुड़ते हैं, हमारे एक और कॉलर, हमारे एक और श्रोता साथी जुड़े हैं। हेलो फरमाइश। सर देखिए, रेडियो की वॉल्यूम प्लीज कम कीजिए। सबसे पहले तो अगर आप गाड़ी में हैं तो रेडियो की वॉल्यूम ऑफ कीजिए ताकि हम आपकी आवाज को अच्छे से सुन पाए। हेलो फरमाइश।
1: हेलो
0: जी, बहुत बहुत स्वागत है, नाम बताएं।
1: सर मैं कई महीनों से सालों से आपको नंबर ट्राई कर रहा था लेकिन आज मेरा नंबर लगा है, मैंने मिलाया था।
0: अच्छा अच्छा, ओहो कितने सालों महीनों से आप ट्राई कर रहे हैं, तो पहली बार जुड़े हैं आप?
1: पहली बार।
0: अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो बताइए पहले तो अपने बारे में, आप क्या करते हैं, फिर आपसे जरूर बातचीत करेंगे।
1: सर मैं गाड़ी चलाता हूँ, ड्राइविंग करता हूँ।
0: अच्छा अच्छा, मुरादाबाद में कहाँ रहते हैं विकी भाई?
1: मैं मुरादाबाद से रहता हूँ, काशीराम नगर त्रिपुरी बोर्ड के पास।
0: अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया। तो आप रेडियो कब से सुन रहे हैं ये बताएं।
1: सर मैं सुन तो काफी सालों से रहा हूँ।
0: अच्छा बहुत बढ़िया, तो आपको अच्छे लगते हैं प्रोग्राम्स?
1: बहुत बढ़िया लगते हैं।
0: चलिए बहुत अच्छी बात है। तो अभी इस वक्त कहाँ है? अच्छा अच्छा, मतलब इधर अपना कांट रोड।
1: जी जी।
0: बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए बहुत अच्छा लगा, आज आपका फोन पहली बार लगाया, कैसे लग रहा है विकी जी ये बताओ?
1: बढ़िया लग रहा है सर, बहुत बढ़िया।
0: चलिए बहुत अच्छी बात है,
1: पहली बार लगाया।
0: अरे वाह, आपकी आवाज़ पूरा मुरादाबाद सुन रहा है, उसके बाहर भी हमारा रेडियो जाता है, तमाम लोग आपकी आवाज़ सुन रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको ये बताओ?
1: मैं सुनता हूँ सर बहुत, मैं दिल्ली भी सुनता हूँ उसको, बरेली भी सुनता हूँ।
0: बहुत बढ़िया, बहुत
1: लुधियाना भी लगता है कभी कभी, रेंज कम आती है इसमें थोड़ी।
0: बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ विकी भाई, देखिए कहते हैं ना जब आप सही मन से काम करते हैं तो वो एक ना एक दिन सफल हो जाता है। तमाम सारे लोग की शिकायत होती है हमारा कॉल नहीं लगता, आज आपका कॉल लगा है तो आप क्या कहना चाहोगे?
1: बहुत बढ़िया लगा सर, बहुत अच्छा लगा।
0: मतलब बाकी लोगों को भी ट्राई करना चाहिए, उनका नंबर भी जरूर लगेगा, क्यों नहीं?
1: हाँ जी बिल्कुल, लगाना चाहिए, ट्राई करना चाहिए, हिम्मत नहीं आनी चाहिए सर।
0: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। चलिए बहुत अच्छा लगा विकी भाई, आज कौन सा गीत सुनेंगे? आपका कॉल पहली बार लगा है तो ये बताएं आप।
1: और वो लड़की नहीं जिंदगी है मेरी,
0: वो लड़की नहीं जिंदगी है मेरी, उसका नाम बताओ कौन है वो जिंदगी। अच्छा तो मजाक कर रहे हैं मजाक कर रहे हैं। गाना आप सुनना चाहेंगे, किसी दोस्त का नाम लेना चाहोगे विकी भाई?
1: नहीं सर मैं अकेला ही हूं सर, अभी तो गाड़ी में बैठा
0: हूं। अच्छा अच्छा, चलिए बहुत अच्छी बात है। चलो फिर आपका गाना सुनवाते हैं, ऐसे ही आगे भी ट्राई करते रहिएगा, आपका फोन जरूर लगेगा।
1: जी सर ट्राई करते रहेंगे।
0: बिल्कुल, चलो विकी भाई थैंक यू, ध्यान रखो अपना। ओके
1: ओके सर,
0: बाय बाय।
1: Bye, sir, bye.

चलिए विक्की भाई का गाना निकल गया है रेडियो सेट पे, 4:11 हो गए हैं स्टेशन क्लॉक में। साथियों आप भी हमें फ़ोन कर सकते हैं 9837896896 पे हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं और ढेर सारे गाने सुन सकते हैं। अलका याग्निक बाबुल सुप्रियो की आवाज़ में सुनते हैं इस गीत को, ये गाना आपको बनाएगा और भी दीवाना। वैसे भी इस गाने में काफ़ी दीवानियत है, स्कूल टाइम में बहुत सुना है भाई हमने भी। आप भी सुनिए अपनी पसंद का कोई गाना, अगर आप सुनना चाहते हैं तो आप हमें कॉल करिए

0: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
1: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशांत जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
2: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।
3: बसंती, इनके सामने मत नाचना।
4: अरे भैया, नाचना है तो एफएम मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना।

0: एक बार फिर से स्वागत अभिनंदन है। आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट प्रोग्राम हेलो फरमाइश। मैं हूं आपका दोस्त आनंद और ढेर सारे आपके कॉल्स आ रहे हैं। लगातार हमारे श्रोता साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। श्रोताओं, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं 9837896896 के माध्यम से। वक्त हुआ है 4:18। आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट फोन इन प्रोग्राम हेलो फरमाइश। जुड़ते हैं हमारे अगले श्रोता से। हेलो फरमाइश। हेलो फरमाइश जी, बहुत बहुत स्वागत है, नमस्कार। नाम बताए अपना जनाब।
1: जी मोहम्मद रिजवान बात कर रहा हूँ, जिला मुरादाबाद, ग्राम चौहान नंगला जादी पीछे बात करी थी बाजीर मिस्त्री ने, उन्हीं का भाई बोल रहे हो खलेरा।
0: अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया जी। बताएं रिजवान जी, कैसे हाल चाल है, सब बढ़िया है?
1: जी सब बढ़िया है, अच्छे हैं, आप सुनवाएं?
0: बस बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और बताइएगा सर, क्या चल रहा है जीवन में, क्या करते हैं वैसे आप?
1: आशियाने बनाते हैं।
0: अच्छा, आप भी आशियाने बनाते हैं, बहुत खूब बहुत खूब, बहुत अच्छी बात है। तो एक बहुत ही खूबसूरत काम है, मेहनत थोड़ी ज्यादा है लेकिन सच देखा जाए तो काम बहुत बेहतरीन है।
1: मेहनत तो है ही, गर्मी में भी ठंडी में भी हर मौसम हर समय के मौसम में करना पड़ता है ना।
0: बिल्कुल बिल्कुल, और ये काम भी थोड़ा कठिन वाला है, ऐसी बात तो नहीं है। खैर जनाब, बहुत बढ़िया। तो रिजवान जी, रेडियो किस समय से सुन रहे हैं आप?
1: मैं रेडियो सुन रहा हूँ कम से कम भी ना तो 30-32 साल से मैं रेडियो सुन रहा हूँ।
0: मतलब काफी पुराने श्रोता हैं आप, है ना?
1: बहुत पुराने, कभी उस जमाने में जैसे कि विविध भारती था, नजीबाबाद था, रामपुर केंद्र था, आकाशवाणी केंद्र था, जब उस टाइम से मैं रेडियो लेता था जब से मैं सुनता था।
0: अरे वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छी बात है। आजकल तो खैर रेडियो बहुत कम देखने को मिलते हैं, लेकिन आजकल मोबाइल में और गाड़ियों में लोग ज्यादा इस्तेमाल करते हैं रेडियो का।
1: हाँ जी जी, मोबाइलों में अपने FM बजा के, गाड़ियों में, रेडियो तो आप ऐसे मान लो बहुत कम है, ज्यादातर ऑनलाइन मोबाइलों पे ही सुन रहे हैं।
0: मोबाइल पे ही सुन रहे हैं, वही वही वही, और वो भी जो मोबाइल पे रेडियो सुनने के शौकीन है वही लोग सुनते हैं। देखिए जनाब, बहुत बढ़िया। तो रिजवान जी, आज कौन सा गीत आप सुनेंगे इस प्रोग्राम में, आपका कॉल शामिल हुआ है तो?
1: गाना सुनना है हमें राजा हिंदुस्तानी मूवी का गाना है, आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके।
0: अरे वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए आपका गाना निकल गया, किसी का नाम लेना चाहेंगे चलते चलते रिजवान जी?
1: साथ में सुनने वाले सोता है मेरे, हमारे दोस्त हैं
0: जी
1: जी, मतलब एक कयूम भाई है, राशद भाई है हमारे साथ में, जितने भी सेट पर काम कर रहे हैं ये सभी सुनने वाले हैं, और आप लोगों के साथ में, सभी सुनने वाले श्रोताओं के साथ में।
0: चलिए सभी के साथ आपको इस गीत का जो है आनंद उठवाते हैं, आप भी आनंद उठाइए, हम भी सुनते हैं मिलकर के। बहुत बहुत धन्यवाद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया फोन करने के लिए। रिजवान खान हमारे साथ जुड़े थे, रिजवान साहब, और अगला कॉल आपका हो सकता है, आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं 9837896896 पर। और अपनी पसंद का गाना सुनने के लिए बस आपको फोन लगाना है जनाब। फिलहाल ये गाना सुनते हैं रिजवान जी की रिक्वेस्ट पर।

0: You're tuning to FM Muradabad 89.6 FM.
1: सीने में दर्द, सांस फूलना या तेज धड़कन को बिल्कुल नजरअंदाज ना करें। श्री साई हॉस्पिटल में डॉक्टर अखिल कौशिक टीएम कार्डियोलॉजी द्वारा एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर एवं अत्याधुनिक कार्डियक कैथ लैब की सुविधा उपलब्ध है। मुफ्त किफायती रेट्स पर स्वस्थ दिल, सुरक्षित जीवन। आज ही अपॉइंटमेंट ले। श्री साई हॉस्पिटल, दिल्ली रोड, मुरादाबाद। कॉल करें 7060022430।

0: एक बार फिर से दोस्तों आप सभी का स्वागत करते हैं आपके फेवरेट रेडियो स्टेशन पर। आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6 आनंद के साथ, और आइए जुड़ते हैं अपने एक और कॉलर के साथ। कहां से कौन जुड़े हैं, आइए इनसे बात करते हैं। हेलो फरमाइश
1: जी। हेलो फरमाइश
0: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रोग्राम में। नाम बताएं जनाब।
1: धन्यवाद सर। मैं कहना चाहूंगा कि कॉल हेलो फरमाइश में आज शामिल हो रही है हमारी जी ने, आज का दिन का नजारा भी है बड़ा ही प्यारा।
0: वाह,
1: तो आनंद सर आपकी शान में कबूल हो मोहब्बत भरा आदाब हमारा।
0: अरे वाह, क्या कहना है जी, आपको भी हमारा मोहब्बत भरा आदाब, और आपका आदाब तो भैया हमने कबूल किया। जरा अपना नाम बताएं जनाब।
1: मैं जिला रामपुरी ग्राम खेड से वसीम अकरम बात कर रहा हूँ आपसे।
0: बहुत बढ़िया वसीम भाई, काफी लंबे समय के बाद मेरी आपकी बातचीत हो रही है भाई।
1: जी सर, एक लंबे अंतराल बाद बात हो रही है आपसे हेलो फरमाइश कार्यक्रम में, वो काफी खुशी महसूस हो रही है। तमन्ना थी कि आनंद भाई से लगभग 7-8 महीने पहले बात हुई थी, आज वो तमन्ना भी पूरी हो गई हेलो फरमाइश कार्यक्रम में बात करके, तो काफी खुशी महसूस हो रही है।
0: बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाई, और हमें भी अच्छा लगता है जब काफी लंबे समय के बाद अपने पुराने भाई लोगों से बातचीत करते हैं, अपने लिसनर्स से बात करते हैं, तो अच्छा लगता है यार। और सब खैरियत घर परिवार में?
1: जी अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है, और आपकी दुआएं हैं। मैं जानना चाहूंगा कि आपकी फैमिली में और स्टूडियो में सभी लोग कैसे हैं?
0: सब एकदम मजे में है, चकाचक है, सब एकदम फर्स्ट क्लास है यार। बाकी सब ऊपर वाले का आशीर्वाद है, सब बढ़िया चल रहा है यार। जब ऊपर वाले की खुदा की रहमत होती है तो सब बढ़िया ही होता है।
1: देखिए सर, सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे, हम तो यही कामना करते हैं कि एफएम मुरादाबाद सुनते रहे और रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे।
0: सब कुछ तो यार आप ही ने बोल दिया, लगता है मेरी जॉब भी आप ही ले लोगे अब आजकल में है।
1: नहीं नहीं सर, ये आपकी मोहब्बत है, रेडियो से काफी पुराना नाता है, और रेडियो के ही माध्यम से सब कुछ ये सीखा है, बहुत कुछ सीख मिली है रेडियो के माध्यम से। जैसे बहुत सारी ज्ञानवर्धक बातें होती है, समाचार वगैरह, मनोरंजन वगैरह होता है रेडियो के माध्यम से, तो काफी अच्छा लगता है सर।
0: बहुत बढ़िया। अच्छा वसीम भाई, आपने एक बड़ी अच्छी बात कही है कि रेडियो से काफी कुछ सीखा है और बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो आजकल के जो जमाने के बच्चे हैं, जो थोड़ी सी दूरी बना रहे हैं, जिनको लगता है सब टेक्नोलॉजी सब कुछ है, आपको क्या लगता है आज के जमाने में भी रेडियो वैसे काम करता है जैसे आप कह रहे हैं कि बहुत कुछ सीखने को मिलता है?
1: देखिए सर, रेडियो में तो ऐसा है, जैसे युवा भाई है हमारे, युवा भाइयों के लिए दैनिक कार्यक्रम होता है, युवाड़ी है, और किसान भाइयों के लिए कृषि जगत कार्यक्रम होता है, किसान संबंधित जानकारी मिलती है सर उससे, और ऐसे एक बढ़िया जानकारी मिलती है सर रेडियो का माध्यम। ऐसा है कि किसी चैनल पे नहीं है, और रेडियो को सर सभी को सुनना चाहिए।
0: एग्जैक्टली, बहुत अच्छी बात आपने बोली यार, और मैं तो बस यही कहूंगा वसीम भाई कि आप जिसको जिस नजर से देखते हो ना, वो चीज आपको वैसे दिखाई देती है, वैसे सुनाई देती है ना?
1: जी जी सर, क्योंकि सर मोबाइल से तो गाने सुन सकते हैं, आज के समय में ऐसे रील देख सकते हैं, टाइम वेस्ट करते हैं सर मोबाइल से, जो सर आंखों की रोशनी भी खराब हो जाती है, और बात करें तो छोटे छोटे बच्चे हम सोशल मीडिया पे वीडियो देखते हैं सर, इतने छोटे छोटे बच्चे रील बना रहे हैं, और कुछ लोग हादसे भी हो जाते हैं सर रील बनाने के चक्कर में।
0: बिल्कुल, और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है कि भैया चश्मे भी आजकल बच्चों को बहुत लग रहे हैं, इसी वजह से भी
1: सर इन चीजों से सावधानी बरतनी चाहिए। और मैं कहना संदेश देना चाहूंगा चलते चलते सर, बाइक चलाते समय या कार चलाते समय सीट बेल्ट का प्रयोग अवश्य करें और हेलमेट लगाएं, क्योंकि सर सावधानी हटी और दुर्घटना घटी।
0: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने।
1: सर आपकी जिंदगी का सर आप तो परिवार वाले याद करते हैं, जब आप घर से निकलते हैं और वापस लौटते हैं तो सर काफी दुख होता है कि हमारा बच्चा या हमारा भाई बाइक में सब सही निकले थे खैर सलामत, इससे यह सर हेलमेट से जो सर थोड़ी जान बच सकती है इंसान की।
0: बिल्कुल, बहुत अच्छा मैसेज दिया आपने, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई। आज क्या सुनेंगे प्रोग्राम में?
1: सर देखिए, जब जिला रामपुर से कॉल शामिल हो रही है तो मूवी का नाम है प्यार कोई खेल नहीं, और उसमें सॉन्ग तेरे गालों की चांदनी देखे तो दिल हो गए मेरा बेमान, कुछ इस टाइप के बोले।
0: ओके ओके चलिए।
1: जी जी जी आनंद भैया आपके लिए दुआ लाएं, कहना चाहूंगा कि काश की मिल जाए मुझे मुकद्दर की शाही और कलम, काश की मिल जाए मुझे मुकद्दर की शाही और कलम, आनंद सर आपकी जिंदगी के लिए हर खुशी लिख दूं।
0: बहुत बढ़िया यार, हमारी तरफ से भी सेम अल्फाज, बहुत बहुत शुक्रिया भाईजान, अपना और अपने को ख्याल रखिए और ऐसे जुड़े रहिए हमारे साथ, ऐसी कॉल करते रहिए।
1: मेरे साथ में मेरा कुछ फ्रेंड है।
0: बिल्कुल भाई, नाम लो यार।
1: ग्राम खेड से मेरे दोस्त है मोहम्मद कामिल, मोहम्मद तालिब परवेज, और जितने भी सर हेलो फरमाइश कार्यक्रम सुन रहे हैं सभी के लिए सॉन्ग सुनवाना चाहूंगा, और मैं चलते चलते कहना चाहूंगा कि गुलशन बाकी रहे तो गुल खिलेंगे, गुलशन बाकी रहे तो गुल खिलेंगे, और जिंदगी बाकी रही तो हेलो फरमाइश में आपसे फिर करी बात करेंगे।
0: क्या बात है यार, इसी बात के साथ अपना ख्याल रखिए, चलिए नमस्कार भाईजान, बाय बाय।
2: देखे तो होवे हर दिल बेईमान।
0: बड़ा खूबसूरत गाना है यार।
2: तो होवे हर दिल बेईमान।
0: उदित साहब की आवाज।
2: हाथों में मेहंदी पियागी तो रंग तेरा लूट ले जहां।
0: यार कुछ गाने इतने प्यारे हैं ना जिनको हमने कभी सुना ही नहीं होगा, पहली बार जब सुनते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। और ये गाना मैं पहली बार सुन रहा हूँ, बहुत ही खूबसूरत ट्रैक है एंड म्यूजिक इतना अच्छा है, गाने की लिरिक्स इतने वंडरफुल है। आप भी इंजॉय कीजिए, यही तो फरमाइशी प्रोग्राम का मैजिक है। कुछ ऐसे गाने सुनने को मिलते हैं ना जो आपने नहीं भी सुने श्रोताओं की रिक्वेस्ट पर, वो दिल को छू जाते हैं यार। आप भी फोन कर सकते हैं अपनी पसंद के गीत के साथ 9837896896 पे मुझे कॉल करिए। इंतजार कर रहा हूँ आपकी फोन कॉल्स का। श्रोताओं वक्त हुआ है 4:32, आप सुन रहे हैं आनंद को, ये है हेलो फरमाइश।

0: हाय
1: हाय अमनिशा, उस दिन वाली शालू जनाब।
2: बसंती, इनके सामने मत नाचना।
3: अरे भैया, नाचना है तो एफएम मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना।
4: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.

0: श्रोताओं एक बार फिर से स्वागत है आपका। आप सुन रहे हैं हेलो फरमाइश, आपका पसंदीदा प्रोग्राम 3 से 5 खुशी आपके साथ होती है। लेकिन आज खुशी नहीं, आज आनंद आपके साथ है। देखिए खुशी और आनंद, जहां खुशी वहां आनंद, जहां आनंद वहां खुशी होती है। एंड ऑफ कोर्स आप हमें कॉल कर सकते हैं 9837896896 पे, आपका फेवरेट रेडियो स्टेशन है FM मुरादाबाद 89.6, जहां बातें होती हैं दिल से दिल तक। मेरे दोस्त वक्त हुआ है 4:40। अगर आप शाम की चाय बना रहे हैं तो एक काम कीजिए यार, मुझे भी उस चाय पे बुला लो। अरे आई एम जस्ट किडिंग यार, जोक सपाट चल रहा है। आप डेफिनेटली चाय पे जाएं, किसी को लेके जा रहे हैं तो बिल्कुल लेके जाएं, लेकिन हाँ मुझे फोन जरूर लगाएं यार 9837896896 पे। कोई गाना सुनना चाहते हैं तो प्लीज यू हैव टू कॉल मी। अभी कॉलर जुड़ी है, आइए उनसे बात करते हैं। कौन कहाँ से जुड़ी है? हेलो फरमाइश में आपका स्वागत है जी, नाम बताएं। हेलो निशा जी, कैसे हैं आप? हेलो फरमाइश में स्वागत है, बहुत समय के बाद मेरी आपकी बातचीत हो रही है, शायद मुझे ऐसा लग रहा है।
1: कम से कम हमारी बात 3 महीने के बाद हो रही है।
0: बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि मैं बहुत कम आ पाता हूँ ना फोन इन प्रोग्राम में, इस वजह से शायद। हाँ
1: जी सर, बहुत मतलब आते भी हैं लेकिन मैं ज्यादा कुछ परेशानी आ गई थी, मैं कॉल कर नहीं पाई थी।
0: अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं मैम, देखिए जिंदगी है तो परेशानियों का आना जाना तो लगा रहता है ना। वो जिंदगी क्या जिसमें परेशानियाँ ना हो, है ना। परेशानियों में इंसान बहुत कुछ सीख जाता है, ये बात भी सच है निशा जी। और बताइए आपकी फैमिली में सब खैरियत, सब बढ़िया?
1: जी सर हमारी फैमिली में सब बढ़िया है।
0: चलिए बहुत बढ़िया। और
1: बढ़िया,
0: बस सब एकदम बढ़िया है, आपकी दुआएं हैं ऊपर वाले की, एकदम जो है रहमत बरस रही, सब अच्छा चल रहा है चकाचक। और बताइएगा रेडियो मुरादाबाद आप सुन रही है, कौन कौन से प्रोग्राम आपको अच्छे लगते हैं निशा मैम?
1: मॉर्निंग मसाला, हेलो फरमाइश,
0: मतलब सारे नाम रट के रखे हैं भाई इन्होंने। अगर इनको एक अच्छा गिफ्ट देने का मौका मिले तो आप मुझे लग रहा है पूरा जीत के भाग जाओगी।
1: नहीं सर ऐसी कोई बात नहीं,
0: नहीं आपको आपको सारे नाम पता है ना, मतलब ऐसे लग रहा है कि आप काफी ध्यान से और काफी शिद्दत से रेडियो सुनती हैं।
1: रेडियो को मुरादाबाद में जब से 3 साल होने हो गए, रेडियो को मतलब जब से मैं सुनती हूँ, इसलिए मुझे बिंदास मॉर्निंग सबसे ज्यादा अच्छा लगता है, जो आपका सो जाता।
0: अच्छा अच्छा, अरे वाह। लेकिन

0: उसमें पार्टिसिपेट नहीं करती, बड़ी गलत बात है। नींद में होती हूँ क्या?
1: करती हूँ, काफी बार करा है।
0: अच्छा ओके ओके, शायद मेरी, क्योंकि पता है क्या होता है मैम, आपके उधर के जो एरिया के लोग हैं ना, सबकी आवाजें एक जैसी लगती है मेरे को, तो पता नहीं क्यों। हाँ ये मेरे को कंफ्यूजन में डाल देती अभी भी, मतलब कुछ कुछ हमारी जो फीमेल लिसनर हैं उधर की साइड की, तो उनकी कुछ कुछ कह सकते हैं अल्फाज बड़े मैच करते हैं, बड़ी आवाज़ की टोन सेम सेम रहती है। कई बार ये तो मेरा सर ही चकरा जाता है, भाई ये कहीं मैं गलत नाम ना बोल दूँ इनका। जी निशा जी, और बताइए सब बढ़िया चल रहा है?
1: जी सर सब बढ़िया चल रहा है।
0: चलिए बहुत अच्छी बात है। आज आपका फोन लगा है, कौन सा गीत आप लेकर आई हैं अपनी पसंद का इस कार्यक्रम में?
1: मूवी का नाम है वीरजारा, गाने के बोल कुछ ऐसी हैं, तुम थे या मिला था कोई नया जहां।
0: अच्छा वीरजारा फिल्म का ये कौन सा गाना है जो मैंने नहीं सुना है भाई?
1: है गाना लेकिन मुझे सुदेश से उसके बोल याद नहीं है।
0: अच्छा अब ये देखिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में आपने डाल दिया है, जो अब शुरू का जो है वो अब लिरिक्स ही याद नहीं है, तो मैं कहीं ऐसा ना हो दूसरा बजा दूं। अच्छा ओके ओके ओके, याद आया, तेरे लिए गाना है जो आपने लिरिक्स गाए हैं, लता जी ने गाया है, समझ गया मैं, समझ
1: गया लता जी की आवाज़।
0: हाँ, मिल गया, मेरे को ध्यान में था थोड़ा सा, मैंने क्योंकि रात दिन गानों में बैठते हैं तो कुछ तो दिमाग में आ ही जाता है ना, सडन क्लिक कर जाता है।
1: जी सर
0: जी जी जी, निशा जी बहुत अच्छा लगा आपने फोन किया, कुछ कहना चाहेंगी? तमाम लोग आपकी आवाज़ सुन रहे हैं हेलो फरमाइश के जरिए रेडियो पर।
1: जी सर कुछ नहीं, बस इतने कहना चाहेंगे किसी के साथ में गलत मत करो, क्योंकि हमारी भी फैमिली है, क्या पता हमारे साथ में भी कोई कब गलत कर दे।
0: बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए सबके साथ अच्छा करो और कोशिश करो किसी के लिए गलत सोचो भी मत।
1: बस सही है
0: ना। बाकी बहुत अच्छा लगा निशा जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना ढेर सारा ख्याल रखिए और ऐसी दुआओं में याद रखिए।
1: थैंक यू सर।
0: ओके जी चलिए, खुदा हाफिज, बाय बाय। श्रोताओं आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं आज की शाम 4:43, वीरजारा फिल्म का बड़ा खूबसूरत गाना आपके रेडियो सेट पे निकल चुका है। आप हमें फोन कर सकते हैं 9837896896 पर, इंतजार कर रहा है आपका रेडियो वाला दोस्त आनंद। आप सुन रहे हैं हेलो फरमाइश इसी स्टेशन ऑफ द नेशन में, जिसका नाम है एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो। बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। मदन मोहन एंड लता मंगेशकर जी की आवाजों का अमेजिंग

0: मदन मोहन एंड लता मंगेशकर जी की आवाजों में अभी आप ही गाना एंजॉय कर रहे थे फ्रॉम द फिल्म वीर ज़ारा, और इस गाने को निशा जी ने सुनना चाहा था। और अगला गाना आपकी पसंद का हो सकता है, लेकिन ज़रा वक्त मिलाइए, 4:48 हो रहे हैं स्टेशन की घड़ी में, और अभी वक्त है कुछ एड ब्रेक का। यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
1: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
0: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ, मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट, दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552। सीने में दर्द, सांस फूलना या तेज धड़कन को बिल्कुल नजरअंदाज ना करें। श्री साई हॉस्पिटल में डॉक्टर अखिल कौशिक टीएम कार्डियोलॉजी द्वारा एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टिक, पेसमेकर एवं अत्याधुनिक कार्डियक कैथ लैब की सुविधा उपलब्ध है। वो भी किफायती रेट्स पर। स्वस्थ दिल, सुरक्षित जीवन। आज ही अपॉइंटमेंट ले श्री साई हॉस्पिटल, दिल्ली रोड, मुरादाबाद। कॉल करें 7060002430।
2: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल, जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन, मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
3: You're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.

0: एक बार फिर से स्वागत है आपका। आपने ट्यून इन किया है एफएम मुरादाबाद 89.6। आरजे आनंद के साथ आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट प्रोग्राम हेलो फरमाइश। और इस वक्त हमारे साथ एक और हमारे श्रोता साथी जुड़े हैं, बड़ी देर से इंतजार कर रहे हैं अपनी टर्न का, आइए उनसे बात करते हैं। हेलो फरमाइश, हेलो फरमाइश, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो,
1: कैसे हाल चाल आपके?
0: बहुत बढ़िया हाल चाल है साहब। अपना नाम बताएं, कौन साहब बात कर रहे हैं, कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: मेरा नाम नहीं बोला खराब, सुषमा राय से बात कर रहे हूँ। और ये हमारे आसिफ भाई दोस्त हैं, बेस्ट फ्रेंड है, ये आपसे बात करना चाह रहे हैं। बहुत मतलब बेकरार है, आपसे बात करने के लिए ताना लगे हैं, बात कर रहे हैं आप इनसे।
0: अच्छा जी, अच्छा जी, चलिए अपने बेकरार दोस्त से जरा बातचीत करवा दीजिएगा। हेलो,
2: हेलो सर, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल सर।
0: जी जी, आपको भी वालेकुम सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल, कैसे हाल चाल है हुजूर, बताएं अपने बारे में।
2: कैसे हाल चाल है आपके?
0: बस बहुत बेहतरीन, एकदम बढ़िया है, आप बताएं। मेरे तो हाल चाल अच्छे हैं जनाब।
2: सर हम तो आपको बड़ी बेताबी से सुन रहे हैं सर, बड़े टाइम बाद आपसे बात हो पा रही सर।
0: अरे वाह, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। और बताइएगा, सब बढ़िया है? आपकी लाइफ में क्या चल रहा है?
2: जी जी जी सर, आपकी लाइफ में कैसा चल रहा है, स्टूडियो में सब कुछ?
0: सब बहुत बढ़िया चल रहा है, बस डेली आपके लिए अच्छी अच्छी प्रेजेंटेशन लेकर आते हैं, अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स, अच्छे अच्छे गाने।
2: जी जी सर, जी सर, हम सुनते रहते हैं आपका स्टूडियो।
0: बहुत बढ़िया, कैसे लगते हैं आपको प्रोग्राम?
2: अरे सर, आपके और खुशी जी के बाद दिल से फैन है सर।
0: अरे बाप रे, अच्छा ऐसा क्या करते हैं हम लोग जो आपको इतना अच्छा लगता है और आप इतना मतलब प्यार दिखाते
2: हैं? हम मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं, फर्नीचर वगैरह बनाते हैं। अच्छा। तो वो ही सुनते रहते हैं पूरा दिन।
0: अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब रेडियो भी चलता रहता है, कामकाज भी होता रहता है साथ?
2: बिल्कुल, हर पार्ट टाइम ऑन रहते हैं हम, हर वक्त।
0: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, तो आपको हमारे प्रोग्राम्स अच्छे लगते हैं?
2: जी सर, बहुत अच्छे लगते हैं, और आपसे बात करके और भी अच्छे हो जाते हैं।
0: क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आसिफ जी मुझे बताइए, कौन सा आपका पसंद का प्रोग्राम है जो आप सुनते हैं हमारे रेडियो पर, जो आपको बहुत अच्छा?
2: हमारे पसंद का जो प्रोग्राम है सर, हम सुनना चाहेंगे मेरा कर्मा तू मेरा धर्मा तू।
0: अच्छा, वो तो गाना हो गया, आपको प्रोग्राम कौन से अच्छे लगते हैं, कौन सा शो है रेडियो पे जो आता है जो आपको बहुत अच्छा लगता है?
2: ज्यादा देखते हैं हम सर
0: जी,
2: बिग बॉस।
0: अब रेडियो पे तो बिग बॉस नहीं आता है, मैं आपसे रेडियो की बात कर रहा हूँ आसिफ भाई। रेडियो पे कौन कौन से प्रोग्राम आपको सुनाई देते हैं, वो कौन से अच्छे लगते हैं?
2: सर सभी अच्छे लगते हैं, आप जब जो भी लोग फरमाइश करते हैं।
0: अच्छा अच्छा, ओके ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आसिफ जी, आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा, और ये गाना हम जरूर सुनवाएंगे। किसी का नाम लेना चाहेंगे आप चलते चलते प्रोग्राम में?
2: जी सर, मेरे साथ में नईमुल अकरम
0: जी, जी
2: दुकानदार सखावत भाई, रजब भाई और अनस, और साथ में है फरमान।
0: चलिए चलिए, बहुत अच्छा लगा आप लोगों ने फोन किया आसिफ जी, ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए और ऐसे ही हमारे स्टेशन को सुनते रहिए साहब।
2: जी सर जी,
0: नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों देखिए, चलने का समय हो गया है, 4:54 हो गए हैं, फिर भी कोशिश करेंगे एक और कॉल हम फटाफट से ले रहे हैं आपके लिए।

नायमुल जी और अकरम जी ने हमें कॉल किया, उनको एक गाना सुनना था, बहुत अच्छा लगा हमें आप लोगों ने कॉल किया, एंड आप लोग आगे भी हमारे साथ ऐसे ही कनेक्ट हो सकते हैं और अपने पसंद के गाने सुन सकते हैं। ये प्रोग्राम आपके लिए आता रहता है इस स्टेशन ऑफ द नेशन पर, जहाँ बातें होती हैं दिल से दिल तक। फ़ोन इन प्रोग्राम है हेलो फरमाइश और ये चलता है 3 से 5। आप ऐसे ही हमारे साथ जुड़ सकते हैं हर दोपहर, मंगल में भी आता है, बुध में भी आता है, सोमवार से लेके मतलब शनिवार तक जो है आप इस प्रोग्राम को सुन सकते हैं और आप ऐसे ही अपनी पसंद के गाने सुन सकते हैं। चलिए फिलहाल अभी उनकी पसंद का एक गाना सुन लेते हैं और थोड़ी देर में वापस मिलेंगे इसी स्टेशन ऑफ द नेशन पर। आप कहीं मत जाइए, रेडियो की सुई बिल्कुल मत घुमाइए, ऐसे ही स्टे ट्यून रहिए और बाकी कुछ आपके दिल में भी है तो आप डेफिनेटली हमारे साथ हो सकते हैं अपने प्यारे प्यारे गानों के साथ। वक्त हुआ है 4:55, एक खूबसूरत गीत निकाल रहा हूं मैं भी उनके लिए, उन्हीं के रिक्वेस्ट पर। फिलहाल

0: आखिरी कॉलर से बात करते हैं, कहाँ से हैं और क्या है उनकी फरमाइश, फिर हम लेंगे आपसे जाने की इजाज़त। 5 बज चुके हैं, रीना जी स्टूडियो में आ चुकी हैं। हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश, नमस्कार जी।
0: आपको भी नमस्कार जी। नमस्कार, अपना नाम बताएं सर। चलते चलते समय थोड़ा सा कम है लेकिन फिर भी हमने आपका कॉल ले लिया, चलते चलते बताएं सर।
1: मैं टेम्पल सैनी बात कर रहा हूँ, हनुमान नगर से।
0: जी बताइए सर, कैसा चल रहा है काम काज?
1: काम बढ़िया चल रहा है भाई साहब, बिल्कुल फर्स्ट क्लास।
0: बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। क्या करते हैं वैसे आप?
1: हम सिलाई का काम करते हैं, टेलर की दुकान है मेरी अपनी।
0: चलिए बहुत अच्छी बात है साहब। क्या नाम बताया आपने अपना?
1: खेमपाल सैनी।
0: खेमपाल सैनी, चलिए साहब बहुत अच्छा लगा। कभी आए हनुमान मूर्ति पे तो पहचान लीजिएगा आप भी।
1: बिल्कुल पहचान लेंगे बिल्कुल।
0: चलिए साहब, चलते चलते कौन सा गीत सुनेंगे प्रोग्राम में?
1: गाना हमें वो सुनना है, दुश्मन से वो तूने दिल मेरा तोड़ा कहीं गाना छोड़ा सनम बेवफा।
0: चलिए चलिए सुनवाते हैं सनम बेवफा का ये सॉन्ग। आपने कॉल किया उसके लिए शुक्रिया मेरे भाई।
1: नमस्कार
0: नमस्कार। चलिए दोस्तों अब हम भी लेते हैं आपसे इजाजत, यानी कि मैं भी लेता हूँ आपसे जाने की अनुमति। होगी मेरी आपकी मुलाकात कल सुबह सवेरे ठीक 8 बजे। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। बाय बाय।

हेलो जी, गुड वाली इवनिंग है आर्जेरीना के साथ। भैया समय की बात करूं तो देखिए 5:11 हो चुके हैं और इवनिंग मस्ती शो यानी कि शुरू हो चुका है। अगले 2 घंटे तक आप सभी के साथ रहने वाले हैं, करेंगे हम ढेर सारी बातें। फिलहाल आप सभी से यही कहेंगे कि अगर आप ऑन द वे हैं या फिर घर पर हैं और चाय का इंतज़ार कर रहे हैं कि बस एक कप अदरक वाली कड़क वाली चाय मिल जाए तो शाम और सुहानी हो जाती है ना। लेकिन साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ आज के टेम्परेचर की तो भैया 31 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है आज मुरादाबाद का, क्योंकि गर्मी ताबड़तोड़ वाली है। लेकिन अब कहा जाए तो मौसम में बदलाव भी आ रहा है, तो इस टाइम आपने क्या करना है, थोड़ा सा संभल के रहना है। अगर आप संभल कर नहीं रहेंगे तो तबीयत खराब हो सकती है, क्योंकि मौसम ने करवटें ले ली है। भले ही दिन में आपको ठंड क्यों ना लगती हो, लेकिन सुबह के टाइम रात को टाइम जो टेम्परेचर रहता है तो वो थोड़ा डाउन हो जाता है। तो यहीं से पता चलता है कि मौसम ने अब करवट ले ली है। और फिलहाल हम भी आप सभी के साथ कनेक्ट हो गए हैं, करेंगे लोकल की बातें, देश दुनिया की बातें और कड़क सवाल के साथ ढेर सारी बातें करेंगे। और साथ ही साथ आप 7 अजूबे पार्क में घूमना चाहते हैं, फ्री में एंट्री चाहते हैं, तो आज का जो कड़क सवाल होएगा, अगर आप राइट आंसर सबसे पहले देते हैं तो आपको 7 अजूबे पार्क में देखिए घूमने का मौका मिलेगा। अपने दोस्त के साथ जा सकते हैं, एक विनर बनेंगे और एक अपने दोस्त के साथ आप लेकर जा सकते हैं। क्योंकि अकेले कहीं जाओ ना तो एक तो मन नहीं करता है जहाँ जाने का, क्योंकि दो साथ में हो ना तो कब सफ़र भी निकल जाता है पता ही नहीं चलता कि कब समय निकल जाता है। तो हम करेंगे ढेर सारी बातें, फिलहाल के लिए गाना सुनते हैं, उसके बाद कनेक्ट होते हैं।

0: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
1: क्या आप एक ही जगह पर दुनिया की सैर और जबरदस्त रोमांच का मजा लेना चाहते हैं? तो चले आइए सात अजूबे पार्क। यहाँ शानदार अजूबों के दीदार के साथ आपको मिलेगा तीरंदाजी और मैकेनिकल बुल राइड जैसी एक्टिविटीज का फुल ऑन थ्रिल। तो पूरे परिवार के साथ आ जाइए सात अजूबे पार्क, न्यू मुरादाबाद।
2: न्यू मुरादाबाद कितना अच्छा ना, न्यू मुरादाबाद। अगर आप चाहते हैं सात अजूबे पार्क जाने के लिए, घूमने के लिए, एंजॉय करने के लिए, अपने दोस्तों के साथ मौज मस्ती करने के लिए, तो आप बिल्कुल अच्छे प्लेटफॉर्म पर कनेक्ट हैं, क्योंकि यहाँ पर मैं आप सभी के लिए लेकर आने वाली हूँ कड़क सवाल। अगर आप पहले आंसर देते तो आप होते विनर। फिलहाल इवनिंग मस्ती शो है वो शुरू हो चुका है, और समय की बात करूँ तो 5:18 हो चुके हैं श्रोताओं। और अब हम बात कर लेते हैं, थोड़ा सा ट्रैफिक की बात कर लेते हैं, क्योंकि देखिए शाम होते ही ऑफिस से हर कोई जल्दबाजी में होते हैं ना, कि भैया आप कुछ भी हो जाए बस घर पहुंच जाए, कुछ नहीं करना है, बस सीधा हम घर पहुंचना है। और इसे जल्दबाजी में क्या करते हैं, कभी कभी हेलमेट और सीट बेल्ट नहीं लगाते हैं, और पता चलता है कि आप कैमरे के निगरानी में साफ साफ है, और कब आपके पॉकेट मनी से बैंक बैलेंस आपका थोड़ा सा कम हो जाता है, आपको बाद में मैसेज देकर पता चलता है ओहो चालान कट गया मेरा। तो इसीलिए जब भी आप ऑफिस से निकले तो पेशेंस के साथ, क्यों देखिए आपको घर ही जाना है, ये तो है नहीं कि दोबारा आपने ऑफिस जाना है और बॉस की डांट सुननी है, इसीलिए आराम से निकालिए, हेलमेट और सीट बेल्ट लगाइए, साथ ही साथ जो भी आपकी ज़रूरतमंद चीज़ें हैं, चार्जर, लैपटॉप, उसको भी अपने साथ लेकर जाइए। पता चले कि आप घर जा रहे हैं और फिर याद आता है कि ओहो मेरा जो चार्जर है वो आज तो ऑफिस में ही रह गया, तो हर चीज़ को देख कर संभल कर निकलिए अपने घर के लिए। और साथ ही साथ यही कहना चाहेंगे कि आप आरजेरीना के साथ कनेक्ट रहिए, ओनली ऑन एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। एक और शानदार गाना सुनेंगे और इसी के साथ और भी ढेर सारी बातें करेंगे, यानी कि आज 24 सितंबर है और 24 सितंबर का स्पेशल डे क्या मनाया जाता है उसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले एक गाना सुनते हैं और उसके बाद मैं लौट कर आती हूँ आप सभी के साथ, करेंगे ढेर सारी बातें।
3: अच्छा

0: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
1: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
2: स्वच्छता ही सेवा 2026 अभियान के साथ अब बदलेगा हमारे प्रदेश का परिवेश, जिसका संकल्प है स्वच्छता में सहभाग। स्वच्छ भारत, विकसित भारत।
3: स्वच्छता से समृद्धि और जन भागीदारी। हमारे सफाई मित्रों के लिए सुरक्षा एवं सम्मान शिविर तथा युवाओं के लिए स्वच्छ पाठशाला अभियान इस जन आंदोलन के मुख्य आधार हैं।
2: 1 अक्टूबर 2026 को विशेष श्रमदान, एक दिन एक घंटा एक साथ स्वच्छता का हिस्सा बनिए तथा www.swachhatahiseva.gov.in पर पार्टनर साइन अप कर सफाई के सच्चे भागीदार बनिए।
3: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा जारी।

हेलो जी, गुड वाली इवनिंग है आर्जरीना के साथ आप कनेक्टेड श्रोताओं, और समय की बात करो तो 5:32 हो चुके हैं और बहुत ही शानदार वाला आपने गाना एंजॉय किया है। और समय की अगर मैं बात करूँ, 5:33 और आज की तारीख यानी कि 24 सितंबर, और 24 सितंबर को मनाया जाता है बहुत ही खास डे। आज मनाया जाता है इंटरनेशनल सर्विस स्कीम डे मनाया जाता है। लेकिन अब सवाल ये है कि आखिरकार ये डे क्यों मनाया जाता है। 24 सितंबर 1969 में NSS की शुरुआत की गई थी। इसका उद्देश्य युवाओं और विद्यार्थियों को सिर्फ पढ़ाई तक सीमित ना रखे जाते हुए उन्हें समाज और देश की सेवा से जोड़ा जाना चाहिए। यानी कि जो स्कीम है नेशनल सर्विस स्कीम, ये डे इसलिए मनाया जाता है कि देश की सेवा के लिए भी उन्हें जोड़ना चाहिए, उनके साथ अपने देश के बारे में बात करना चाहिए, उनको जागरूकता फैलाना चाहिए कि, और साथ ही साथ छात्र सफाई अभियान, रक्तदान, जागरूकता कार्यक्रम और पर्यावरण संरक्षण और जरूरतमंदों की मदद जैसे गतिविधियों में हिस्सा ले। इसीलिए NSS युवाओं को यानी कि नेशनल सर्विस स्कीम डे मनाया जाता है। ये समाज के लिए कुछ करना है तो शुरुआत अपने छोटे से कदम से कीजिए, क्योंकि ये शुरुआत अगर छोटी छोटी चीज़ों से आप करेंगे तभी जो स्कीम है वो आगे बढ़ेगी, अदरवाइज नहीं आगे बढ़ेगी। क्योंकि बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ समाज सेवा, अपने से बड़ों की इज्जत करना, रिस्पेक्ट करना, हमें हर चीज़ बच्चों को सिखाना चाहिए। आज कल अगर बच्चे, अगर मैं बात करूँ, इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते हैं, हर कोई प्राइवेट स्कूल में पढ़ने लगे हैं बच्चे, तो उनको अगर पूछ लिया जाए, उनसे 24 भी पूछो तो उसमें भी बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उनको सीधा 24 पता है, 24 नहीं पता है। तो मुझे लगता है कि हिंदी इंग्लिश हर चीज़ को इक्वल लेके हमें चलना चाहिए। अदरवाइज जब बच्चे दुकान पर जाते हैं, बहुतों के साथ ऐसा होता भी है कि उनसे बोल दिया जाता है 65 रुपीज़ यानी कि 65 रुपीज़ देने हैं आपको, तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको समझ नहीं आता होता है कि ये 65 रुपये आखिरकार क्या होता है। अब देखिए, बच्चे स्कूल में जो पढ़ रहे हैं ठीक है, लेकिन घर पर आके जो पेरेंट्स है वो थोड़ा सा उनके ऊपर ध्यान दे, लेकिन बच्चों के ऊपर ज़्यादा दबाव भी नहीं आपने देना है, क्योंकि बच्चे प्यार प्यार से बहुत कुछ सीख जाते हैं।

0: और दबाव जब आप देंगे तो वो कुछ नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आजकल बच्चों के ऊपर प्रेशर भी बहुत ज़्यादा है, तो इस चीज़ का भी आपने ध्यान रखना है। चलिए फिलहाल एक गाना सुनते हैं, उसके बाद कनेक्ट होते हैं और करेंगे और भी ढेर सारे।
1: जिंदा जिंदा जिंदा जिंदा जिंदा जिंदा जिंदा जिंदा जिंदा जिंदा जिंदा जिंदा जिंदा जिंदा जिंदा जिंदा जिंदा जिंदा जिंदा जिंदा जिंदा जिंदा जिंदा जिंदा जिंदा जिंदा जिंदा जिंदा जिंदा जिंदा जिंदा जिंदा जिंदा जिंदा जिंदा जिंदा जिंदा जिंदा जिंदा जिंदा जिंदा जिंदा जिंदा जिंदा जिंदा जिंदा जिंदा जिंदा जिंदा जिंदा जिंदा जिंदा जिंदा जिंदा जिंदा जिंदा जिंदा जिंदा जिंदा जिंदा जिंदा जिंदा जिंदा जिंदा जिंदा जिंदा जिंदा जिंदा जिंदा जिंदा जिंदा जिंदा जिंदा जिंदा जिंदा जिं

0: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
1: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
2: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
1: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
2: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरो सर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार, फेज 2, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
3: कॉल 7500153841। DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद, शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन, मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।

हेलो जी, गुड वाली इवनिंग है श्रोताओं। और समय की बात करूं तो 5:45 हो चुके हैं और आज की तारीख यानी कि 24 सितंबर, और आप सभी आई नो कि ऑन द वे हैं। और आज मुरादाबाद का टेम्परेचर की अगर मैं बात करूं तो 31 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। और भैया आज सच बताऊं तो गली मोहल्लों में ना बस डीजे की ही आवाज़ आ रही है। वो डीजे की आवाज़ इसलिए आ रही है कि आज बहुत जगह गणेश जी विसर्जित हुए हैं और कल लास्ट डे है। तो अभी तक आपने कोई भी गलती की हो ना तो पप्पा के आगे क्षमा मांग लीजिएगा, माफ़ी मांग लीजिएगा, क्योंकि विघ्न हरता है वो। और हर परेशानी जो भी है आपके लाइफ में वो सब ठीक कर देते हैं। लेकिन सच्चे दिल से उनको पुकारिएगा, जरूर सुनते हैं। और भगवान जी अपने घर लौट रहे हैं, और साथ ही साथ देखिए भगवान लौट तो घर अपने जा रहे हैं लेकिन वो रहते हैं हमारे साथ ही, अपने भक्तों के साथ वो हमेशा रहते हैं। ये तो एक परंपरा है जिसका हम फॉलो करते हैं और आगे भी ऐसे ही करते रहेंगे। और साथ ही साथ अगर मैं वेदर की बात करूँ तो देखिए अभी तो फ़िलहाल गर्मी बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये कहा जा रहा है मुरादाबाद की अगर मैं वेदर की बात करूँ तो बारिश यानी कि शनिवार और संडे को बारिश बताई जा रही है कि मुरादाबाद में बारिश आने की पूरी संभावना है। कल भी बताया जा रहा है कि हल्का फुल्की अगर बूंदाबांदी हो सकती है तो ठीक है, अदरवाइज शनिवार और संडे को तो बताया जा रहा है कि बारिश आने की पूरी पूरी संभावना है। थोड़ा सा फिर से मौसम में चेंजेस आएंगे और फिर से वैसा ही मौसम। और देखिए यही मौसम है, इसमें हमें अपना ध्यान रखना है, मच्छरों से खासकर बचकर रहना है। और बारिश में अगर आप गीले हुए तो कोशिश करिए कि तुरंत घर पहुंचकर कपड़े चेंज करें, क्योंकि भैया इस बारिश में अगर आप भीग गए तो समझ लीजिए लेने के देने पड़ जाएंगे, यानी कि बीमार पड़ सकते हैं बहुत ज़्यादा। क्योंकि जब मौसम चेंज होता है ना तो हर देखा जाए तो हर घर में एक ना एक मरीज़ आपको दिख ही जाता है। इसीलिए पहले ही अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए, और जब आप अपना ख्याल रखेंगे तो फैमिली वालों का ख्याल रखिए, और सब सुरक्षित तो फैमिली हैप्पी रहती है। तो बस एंजॉय करते रहिए। और दिवाली के मौके पर कुछ चीज़ें सस्ती होंगी तो कुछ चीज़ें महंगी भी होंगी। चलिए फिलहाल हम बात करते हैं, आप सभी के प्यारे मैसेज आए हैं वो भी ज़रा शामिल करना बहुत ज़रूरी है। तो मैसेज की अगर मैं बात करूँ तो रीना जी, रेडियो का सर्वर डाउन है अभी भी। सर कैसा, अगर आप बता सकते हैं मुझे मैसेज करके कि आवाज़ अब ठीक आ रही है नहीं आ रही है। एंड ये बोलते हैं हेलो रीना जी, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे हैं जी, आप बताइए कैसे हैं? विक्की सागर जी कनेक्ट होते हैं और रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे रीना जी के साथ, और आपका दोस्त विक्की सागर, थैंक यू जी। अगले मैसेज की बात करूँ तो मोहम्मद सफ़ी जी हमारे साथ कनेक्ट होते हैं, गुड इवनिंग रीना जी, क्या हाल है आपके? बहुत अच्छी, उम्मीद है कि हाँ जी हाँ जी मैं एकदम फैंटास्टिक, बहुत अच्छी हूँ, आप बताइए। उम्मीद करती हूँ कि आप भी बहुत अच्छे होंगे, बहुत प्यारे प्यारे मैसेज करते हैं आप, और इनका कहना है कि उम्मीद है कि आज भी प्यारी प्यारी बातों के साथ तड़कता भड़कता गाना और तड़क भड़क वाला क्वेश्चन मिलेगा सुनने के लिए। और इनका कहना है कि आज हम भी कोशिश करेंगे आंसर दे उसका, बिल्कुल अच्छी बात है जी, थोड़ा सा सोचेंगे तो आंसर आप अच्छे से दे पाएंगे। और आपकी प्यारी सी बातों के साथ यूं ही शाम और भी हसीन और मज़ेदार बनने वाली है। हाँ जी ये तो है, और सभी FM परिवार को ये दिल से तहे दिल से शुक्रिया करना चाहते हैं। इनका कहना है कि आप सभी के वजह से ही हमारा दिन बहुत अच्छा जाता है, क्योंकि हम रेडियो सुनते रहते हैं, एंजॉय करते रहते हैं, बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच सर। और अगले मैसेज की बात करूँ तो दीपक जी हमारे साथ मुरादाबाद से कनेक्ट होते हैं, गुड इवनिंग पहुँचाते हैं, और इनका कहना है कि मैडम गर्मी हो रही है। जी बिल्कुल सही कहा आपने, गर्मी तो हो रही है लेकिन थोड़ा सा मौसम में फिर चेंजेस आएंगे और उसके बाद और भी चेंजेस आ जाएंगे, क्योंकि बस एक दो महीने की बात है फिर तो ठंड की शुरुआत होने ही वाली है। मतलब समझ नहीं आता ना कितने जल्दी ये साल चला गया, हर एक तारीख आते ही ऐसा लगता है कि यार अभी तो एक तारीख की बात कर रहे थे, इतनी जल्दी दूसरा एक तारीख आ गया। मतलब समझ नहीं आ रहा भाई, ये जो 2026 है ना कितनी जल्दी निकला है ना, बिल्कुल भी अंदाजा भी नहीं लगा सकते।
अभी लग रहा है कि अभी ठंड खत्म हुई थी, फिर से दोबारा ठंड आ गई है, आने वाली है। तो समय का पहिया है, बस एंजॉय करते रहिए और अपने कोशिश करिए कि अपनी लाइफ में किसी को हम कुछ गलत ना बोले, अपशब्द ना बोले, और यूं ही अपनी ज़िंदगी मौज में रहिए और रेडियो सुनते रहिए। इतना सारा आप सभी मैसेज करते हैं, प्यार देते हैं रेडियो को, उसके लिए तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए फिलहाल एक गाना सुनते हैं।

0: लेकिन सेवा परमो धर्म इस भाव को लेकर आगे बढ़ेंगे।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि पीएम किसान और पीएम सूर्य घर योजना जैसी अनेक योजनाओं की पहचान अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने वाली सेवाओं के रूप में बनी है। उन्होंने विकसित भारत के निर्माण में युवाओं की भूमिका को बढ़ाने का आह्वान किया। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल एनएस राजासुब्रमणि ने युद्ध के बदलते स्वरूप के अनुरूप भारत की रक्षा अधिग्रहण प्रणाली तेजी से अनुकूलित करने की आवश्यकता पर बल दिया है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में जनरल सुब्रमणि ने रक्षा इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए प्रौद्योगिकी, डेटा और उद्योग के एकीकरण के महत्व का उल्लेख किया। उन्होंने युद्ध क्षेत्र में हथियारों के रखरखाव और मरम्मत के साधनों की आवश्यकता पर बल दिया। जनरल सुब्रमणि ने कहा कि युद्ध की अर्थव्यवस्था बदल रही है। सरकार ने घरेलू खाद्य तेलों की कीमतों को नियंत्रित

0: परिषद में स्थायी और अस्थायी दोनों श्रेणियों में विस्तार सुधार का मुख्य हिस्सा है। घरेलू शेयर बाजार में आज 1.5% से अधिक की गिरावट दर्ज की गई। सेंसेक्स 1248 अंक गिरकर 73581 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 384 अंक की गिरावट से 23063 पर दर्ज हुआ। जापान एशियाई खेलों में आज अनंत जीत सिंह और पारिनाज धालीवाल ने निशानेबाजी के मिक्स टीम स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। रोशिबिना देवी ने वुशु के 60 किलो सांडा स्पर्धा में रजत पदक हासिल किया। सतनाम सिंह और सलमान खान ने नौकायन की डबल स्कल्स स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। एथलेटिक्स में जय कुमार, अंशा बाबू, मानु टीएस और रशदीप कौर की मिक्स टीम ने 4x400 के फाइनल में और अनिमेश कुजूर और गुरिंदर वीर सिंह ने 100 मीटर दौड़ के सेमीफाइनल में जगह बनाई। भारतीय पुरुष और महिला कबड्डी टीम ने सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। वहीं हॉकी में भारतीय पुरुष टीम ने क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। स्क्वाश में अभय सिंह और वीर चोटरानी पुरुष सिंगल्स, तन्वी खन्ना और अनाहत सिंह महिला सिंगल्स, जोशना चिनप्पा और विलावन सेंथिल कुमार मिक्स डबल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। टेबल टेनिस में मानुष शाह पुरुष सिंगल्स, श्रीजा अकुला और सिंड्रेला दास महिला सिंगल्स और दिया चिताले तथा यशस्विनी घोरपड़े महिला डबल्स क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर गए हैं। पदक तालिका में भारत 1 स्वर्ण, 6 रजत और 8 कांस्य सहित कुल 15 पदकों के साथ 14वें स्थान पर है। पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश के तटवर्ती क्षेत्रों और उड़ीसा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट है। बिहार, झारखंड, विदर्भ, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी आज तेज वर्षा का अनुमान है। गोवा और महाराष्ट्र सहित रायलसीमा में अगले 3 दिन तूफान की भी आशंका है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, असम, मेघालय, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, केरल और माहे और मराठवाड़ा में भी तेज वर्षा हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: Hey, you're tuned into FM Moradabad 89.6 FM।
2: आवश्यक सूचना, 400 केवी बरेली मुरादाबाद पारेषण लाइन NH24 बाईपास यूपी कॉरपोरेशन के मझोला 400 केवी उपकेंद्र तक जा रही है। पारेषण लाइन के निकट प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के साथ पतंगबाजी की जा रही है। पतंग का धागा तार को छूने पर तेज धमाके के साथ आग की चिंगारी निकलने से विद्युत आपूर्ति बाधित होती है। अगर कोई जानलेवा घटना होती है तो उसका उत्तरदायित्व पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का नहीं होगा। किसी भी जानलेवा घटना से बचाने के लिए पतंग उड़ाने से रोकें। निवेदक पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, बरेली।
3: सुनो ना, मुझे ज्वेलरी खरीदनी है।
4: तो चलो फिर, इतना सोचना क्यों है, शहर चलते हैं ना ज्वेलरी लेने।
3: नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, वहाँ पर बहुत ट्रैफिक रहता है और शोर भी बहुत होता है।
4: अरे नहीं,
5: अब ट्रैफिक की चिंता छोड़ो, क्योंकि बाबूराम सर्राफ का नया ज्वेलरी शोरूम ओपन हो गया है,
4: वो भी सिविल लाइंस में। ना ट्रैफिक की चिंता, ना शोर की, और हाँ, वहाँ ज्वेलरी खरीदने पर गोल्ड कॉइन जीतने का मौका भी है।
3: अच्छा?
5: हाँ, आपका वही पुराना एवं विश्वसनीय शोरूम बाबूराम सर्राफ, पता जैन मंदिर रोड, सिविल लाइंस, मुरादाबाद।

हेलो जी, गट वाली इवनिंग है अर्जुरीना के साथ। और देखिए, दूसरे घंटे की शुरुआत हो गई भैया, यानी कि 6:07 हो चुके हैं और अर्जुरीना आप सभी के साथ कनेक्ट हो गई है। लेकिन अब बात ये है कि देखिए, जिनका डेली का रूटीन है, यानी कि डेली का जो काम है, बैंक में जाने के लिए बैंक में जाते हैं, वो 3 दिन कैसे सर्वाइव कर पाएंगे? पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन मैं इसलिए आपको कह रही हूँ क्योंकि 3 दिन बैंक बंद रहने वाले हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, यानी कि 28, 29, 30 तारीख तक, यानी कि 28 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक बैंक बंद रहने वाले हैं। और ये कहा जा रहा है कि 27 सितंबर को पड़ रहा है संडे, और संडे को बैंक खुले रहेंगे। मोस्टली आपने देखा होगा कि संडे को बैंक बंद रहता है, लेकिन हड़ताल की वजह से संडे को, वो भी संभावना बताई जा रही है कि अगर खुल सकती हैं संडे को, आप ये मत सोचिए खुलेगी खुलेगी, बहुत जगह नहीं भी खुलेगी, बहुत जगह खुल

भी सकती हैं। तो बैंक बंद रहने वाले हैं और ये सिर्फ छुट्टियों को लेकर ऐसा हो रहा है और बाकी कुछ नहीं कह सकते। बाकी आपका जो भी काम है बैंक से रिलेटेड कुछ, तो आप चाहते हैं कि भैया अगर ज़्यादा ही कुछ काम है तो अभी ख़त्म कर लीजिए, संडे तक आपके पास टाइम है, अदरवाइज 3 दिन तक आप कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए और अपने काम पर फोकस करिए और यूं ही अपना रेडियो, अपने शहर का रेडियो सुनते रहिए, FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। और साथ ही साथ आप गाड़ी में हैं, ऑटो चला रहे हैं, ई रिक्शा चला रहे हैं और हमारा रेडियो सुन रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। एंड साथ ही साथ यही बात करना चाहूँगी कि आप कहीं भी ट्रैफिक में हैं तो आप मुझे बेधड़क बिंदास होकर चाहे वॉइस मैसेज पहुँचाना चाहे या फिर टेक्स्ट मैसेज करना चाहे या व्हाट्सएप मैसेज करना चाहे बिल्कुल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9823789698 पर मैसेज करके आपने बताना है, क्योंकि जो भी उस रूट से अगर जा रहे हैं तो थोड़ा सा संभल के और अपने सही समय पर घर पहुंच सके, उनको भी किसी भी प्रॉब्लम का फेस ना करना पड़े, इसलिए आप मैसेज करके बता सकते हैं। लेकिन PSC की तरफ से, दिल्ली रोड की तरफ से आप जब भी जाएंगे ना, रेलवे स्टेशन की तरफ से आप जब भी जाएंगे ना, बहुत ट्रैफिक मिलता है भैया, बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक मिलता है। चलिए फिलहाल गाना सुनते हैं और लौट कर आते हैं।

0: Hey, you're tuning to FM Muradabad 89.6 FM.
1: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशांत जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
2: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।
3: स्वच्छता ही सेवा 2026 अभियान के साथ अब बदलेगा हमारे प्रदेश का परिवेश, जिसका संकल्प है स्वच्छता में सहभाग, स्वच्छ भारत विकसित भारत।
4: स्वच्छता से समृद्धि और जन भागीदारी, हमारे सफाई मित्रों के लिए सुरक्षा एवं सम्मान शिविर तथा युवाओं के लिए स्वच्छ पाठशाला अभियान इस जन आंदोलन के मुख्य आधार हैं।
3: 1 अक्टूबर 2026 को विशेष श्रमदान एक दिन एक घंटा एक साथ स्वच्छता का हिस्सा बनिए तथा www.swachhatahiseva.gov.in पर पार्टनर साइन अप कर सफाई के सच्चे भागीदार बनिए।
4: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी।

क्या बात है जी, बहुत ही शानदार वाला आपने गाना एंजॉय किया है। ताकि ताकि ताकि ताकि रे, जब से तू आंख में झाकी। लेकिन फिलहाल आंख में मत झाकी, बॉडी पर झाकी, क्योंकि आपकी बॉडी से ज्यादा, आपकी सेहत से ज्यादा जरूरी और कुछ नहीं है। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है आपकी सेहत। अगर आपकी सेहत सही है तो दौलत शोहरत हर चीज आप कमा लेंगे। अगर बॉडी ही आपकी सही नहीं है तो कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अक्सर हम दिन रात कमाने के चक्कर में लगे रहते हैं, लेकिन जब बात आती है अपनी सेहत की, खाने के लिए, तो सोचना पड़ जाता है कि महंगाई बहुत ज़्यादा है। देखिए, अगर आप ठीक है तभी कल को कमा पाएंगे, अगर आज आप ठीक नहीं है तो कुछ नहीं कर पाएंगे। इसीलिए सेहत पर ध्यान दीजिए, अच्छी चीज़ें खाइए, और बाहर की जो जंक फूड है, ऑयली जो खाना है वो मत खाइए, क्योंकि आज के टाइम में भैया वैसे भी हर चीज़ खाद के ऊपर है। तो इसीलिए इस टाइम अपनी सेहत पर ध्यान देना भी बहुत ज़रूरी है। और आप आरजे रीना के साथ कनेक्ट है इवनिंग मस्ती शो में। समय की बात करूँ तो 6:19 हो चुके हैं, और अब हम बात कर लेते हैं, यानी कि बॉलीवुड के गलियों में चलते हैं ना, क्योंकि बहुत से भाई अगर थिएटर में नहीं जा पाए, मूवी नहीं देख पाए, तो उनके लिए गोल्डन चांस है। अब वो चांस क्या है, आप सोचेंगे कि गोल्डन चांस क्या हो सकता है हमारे लिए। आपके पास है गोल्डन चांस। भाई हनुमान अंश की बात मत करिए, जो हनुमान अंश मूवी है ना, वो नेक्स्ट लेवल वाली चल रही है। और जो गाना है उनमें, यानी कि हनुमान जी का नैया पार करा देंगे, वो अब गाना विदेशों तक फेमस हो रहा है, यानी कि विदेश में भी इस गाने को गाया जा रहा है। तो हनुमान जी के जो चर्चे है, जो पावर है भैया, हर जगह अपना जलवा बिखेर रही है मूवी हनुमान अंश। तो बहुत ही शानदार जो ये गाना है हनुमान जी का। और साथ ही साथ जैसे कि मैंने आपको बताई है मूवी के बारे में, आखिरकार कौन सी मूवी है जो आप घर बैठे अभी देख सकते हैं, उसे के बात करेंगे उसके बारे में भी। लेकिन उससे लेते हैं एक म्यूजिकल ब्रेक, और म्यूजिकल ब्रेक के बाद फिर से कनेक्ट होंगे। और ये कहा जाता है चावल की मांड अगर पिए, पहले के टाइम में बहुत पीते थे, अगर वो पहले के टाइम में क्यों पीते थे, किस लिए पीते थे,

क्या बात है जी, बहुत ही अलका याग्निक जी की आवाज़ में बड़ा ही खूबसूरत आपने गाना एंजॉय किया है। लाल दुपट्टा उड़ गया तेरे हवा के झोंके से। सच बताओ, ये गाने ना पहले जब भी आप किसी भी गली से निकलते ना तो ये गाना आपको ज़रूर सुनाई देता था, लेकिन फिलहाल ये गाने, मतलब सच बताऊँ तो गाने कभी पुराने नहीं होते, भले ही वो दौर चला जाए 70s, 80s, 90s, लेकिन गाने हमेशा ओल्ड यानी कि न्यू रहते हैं। आज भी पुराने जो गाने होते हैं ना, कितने पसंद किए जाते हैं, क्योंकि उन गानों को आप कितनी बार भी सुन लो ना तभी मन नहीं भरता है, बस दिल से एक ही आवाज़ आती है, यार सुन लेते हैं, कितना प्यारा गाना है ना। तो गाने हमेशा सदाबहार होते हैं, आप जितनों, मतलब वही है ना, जब आप गाना सुन रहे तो फील के साथ उस गाने को सुनिए, शब्द क्या बयां करते हैं उस गाने के, तभी आपको गाने के आनंद आएंगे और मज़ा आएगा आपको। तो साथ ही साथ अब हम, जैसे कि मैंने आपको बताया ही था, मार्ड चावल जब बनाते हैं तो मार्ड का क्या करते हैं, हम फेंक देते हैं, है ना। लेकिन पहले के टाइम में जब बड़े बुजुर्ग कहा करते हैं ना, घर के नुस्खे बहुत ही कमाल के होते थे, तो पहले के टाइम में ना चावल का जो मांड होता था उसको फेंका नहीं जाता था, बल्कि जब भी चावल घर में बनती थी ना सुबह के टाइम, तो हर किसी के हाथ में एक गिलास मांड देखा जाता था। तो ये कहा जाता है अगर चावल की मांड अगर आप रोज पीते हैं तो अच्छी क्रीम और अच्छी दवाइयों की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक गिलास मांड में थोड़ा सा नमक और काली मिर्च पाउडर डालकर हर रोज पिए तो आपका चेहरा खिलेगा, हड्डियां मजबूत होगी और बाल लंबे और मजबूत होंगे।

मैं बात करूँ मूवी की, टॉक्सिक मूवी है यानी कि ओटीटी पर, यानी कि कल रिलीज हो जाएंगी। तो अगर अभी तक आपने ये मूवी नहीं देखी, थिएटर नहीं जा पाए हैं, तो कोई बात नहीं, अब यह मूवी घर बैठे देख सकते हैं। यानी कि ओटीटी पर टॉक्सिक जो मूवी है वो आ चुकी है, रिलीज हो जाएंगी कल। तो आप इस मूवी को ज़रूर देखिएगा और इंजॉय करिएगा। साथ ही साथ हमारे पास कुछ मैसेज है, और मैसेज के बाद मैं आप सभी के लिए लेकर आने वाली हूँ एक कड़क क्वेश्चन, जिसको थोड़ा सा दिमाग आपने लगाना पड़ेगा। आइए, हमारे साथ कनेक्ट होती हैं बबली अंजान जी, गीता कश्यप जी, लक्ष्मी कश्यप जी, प्यारी वाली गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग जी। और इनका कहना है कि अगर आप हमारा मैसेज नहीं पढ़ना चाहती, अरे अरे बाबा, मैम देखिए पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप पेशेंस नहीं रखेंगे और आप सोचेंगे कि आप जैसे मैसेज करती हैं मैं थोड़ा उनको शामिल करूं, तो ऐसा नहीं होता है ना। बस थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ता है। जब आप इतनी मेहनत से मैसेज करते हैं तो हम उस मैसेज को शामिल भी करेंगे, ऐसा नहीं है कि उस मैसेज को शामिल नहीं करेंगे। अगर मैं शो में आऊँ और मैसेज ना शामिल करूँ, ऐसा हो ही नहीं सकता है। बस थोड़ा सा पेशेंस बना करके सभी के मैसेज में शामिल करती हूँ, ठीक है।

अगले मैसेज की बात करूं तो विक्की सागर जी कहते हैं, अच्छा रीना जी, अब समझा मैं कि आपके बाल इतने लंबे क्यों हैं, क्योंकि आप मांड पीती है। नहीं नहीं नहीं सर, मैं मांड नहीं पीती हूँ। मैं सच बताऊं, जो केमिकल वाले ऑयल होते हैं मैं नहीं लगाती हूँ। मैं सिर्फ घर का सरसों का तेल, मैं बचपन से वही लगाती हूँ अपने बालों में। जब भी संडे वाले दिन मुझे मौका मिलता है तो अपने बालों की चंपिंग करती हूँ, वो भी सरसों के तेल से। ये बाहर के जो अदाम बादाम वाले जो ऑयल आ गए हैं ना आजकल, वो मैं बिल्कुल भी यूज़ नहीं करती। इसलिए मेरे बाल घने हैं, प्यारे हैं, क्योंकि मेरी मम्मी ने भी बहुत केयर करा है इसका। और भैया अगले मैसेज की बात करूं तो ये कनेक्ट होते हैं। तो हमारे पास मैसेज आता है मंसूरी कॉलोनी मुरादाबाद से, इरशाद हुसैन जी कनेक्ट होते हैं, इनके दोस्त हैं शैयर शारिक अली जी, मिराज अंसारी, बाबू अंसारी। गुड इवनिंग रीना जी, कैसी हैं आप? बहुत अच्छे हैं जी, आपका शो इवनिंग मस्ती सुन रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, साथ ही साथ गाने बहुत अच्छे प्ले करती हैं, थैंक यू जी। और भी थोड़ी और अभी थोड़ी देर पहले आपने सेहत के बारे में बहुत अच्छी बातें बताई कि सेहत कितना ज़रूरी है। अगर इंसान की सेहत स्वस्थ, अगर उसका सही, उसका स्वास्थ्य अगर सही नहीं है तो वे कुछ भी नहीं कर सकता है। और साथ ही साथ अगर सेहत सही है तो सब कुछ आप काम कर सकते हैं। आजकल की भाग दौड़ की जिंदगी में ना उससे भी टक्कर ले सकता है। बिल्कुल जी, सही कहा आपने, अगर सेहत सही है तो आज के टाइम में कितनी भाग दौड़ होती है, टक्कर ले सकता है, लेकिन आप अपनी सेहत का ध्यान रखेंगे तब। जिंदगी में सेहत अगर है तो सब कुछ है, सेहत नहीं है तो कुछ भी नहीं है। बहुत ही अच्छी जानकारी आपने दी, सुनकर बहुत अच्छा लगा और हमें भी बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच सर। मुझे लगता है कि देखिए, सेहत अगर ठीक है तो हर चीज़ ठीक है, अदरवाइज कुछ भी नहीं कर पाएंगे आप। थोड़ा सा भी देखिए, अगर खांसी, अगर मैं अभी बात करूँ, मेरी खुद की गला अभी, मतलब मैं बोलने की, मतलब इतनी बोलने का मन नहीं कर रहा है, फिर भी मैं बोल रही हूँ आप सभी के साथ, क्योंकि मुझे आपसे बात करना है और जो न्यूज़ है, अपडेट है, वो पहुँचानी है। तो इसीलिए जब तक आपका सेहत ठीक नहीं है ना, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। इसीलिए पहली मतलब मुझे लगता है कि अपने आप को, अपने ऊपर ध्यान दीजिए, तब कोई काम पे ऊपर ध्यान दीजिए, क्योंकि आप ठीक है तो हर काम अच्छे से आप कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। इसी के बीच मैं आप सभी के लिए लेकर आ गई हूँ एक कड़क क्वेश्चन, और कड़क क्वेश्चन भैया सच बताओ तो बहुत ही आसान है। अगर आप राइट आंसर हमारे पास पहुँचाते हैं तो 7 अजूबे पार्क में जाने के लिए आप रेडी हो जाइए। फ्री में एंट्री आपको यहाँ से, हमारे रेडियो के यहाँ से कार्ड मिलेगा, आपको आना पड़ेगा, कार्ड मिलेगा और कार्ड लेकर आप 7 अजूबे पार्क जा सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं दोस्तों के साथ। तो अगर मैं बात करूं, आज तो मैं सच बता रही, बहुत कंफ्यूज होंगे आप, क्योंकि क्वेश्चन ही मैं इतनी कड़क वाली लेकर आई हूं आप सभी के लिए। आपको बताना है कि पानी से पतला कौन सा चीज होता है, ऐसी कौन सी चीज है जो पानी से पतला है, सोचिए और मैसेज करिए। नंबर है 9803789689। जो यूं बहकर चला जाता है और हम सभी के बीच से वो डेली बहता है, तो आपने बताना है पानी से पतला कौन सी चीज है, ऐसी जो पानी से भी पतली है, सोचिए और मैसेज करिए। फिलहाल के लिए खार गाना आप सभी के बीच।

0: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
1: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशाद जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंकवेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
2: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।
3: 25 से 29 सितंबर तक ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में सजेगा यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का महामंच।
4: जापान, रूस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम की साझेदारी से यूपी के कारोबार को मिलेगा वैश्विक बाजार, जिसमें होगी इंटरनेशनल बायर्स के साथ साथ देश के B2B और B2C खरीदारों की भागीदारी। डिफेंस, एरोस्पेस, AI और इलेक्ट्रॉनिक्स पर खास फोकस के साथ 27 से ज्यादा सेक्टर होंगे शामिल।
3: UPITSF बेहद खास, पूरी दुनिया अब यूपी के साथ।
4: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी।

हाँ जी, गुड वाली इवनिंग है अर्जुरीना के साथ आप कनेक्टेड श्रोताओं, और समय यानी कि 6:42 हो चुके हैं और बहुत ही शानदार वाले प्यारे प्यारे आप सभी के मैसेज भी आ गए हैं मेरे पास।

बहुत ही प्यारा और बहुत ही कड़क वाला अपडेट है जी। बिल्कुल, आप भी सुनेंगे तो बोलेंगे वाओ, क्या ऐसा होने वाला है? बिल्कुल होने वाला है। अब ये कहा जा रहा है कि जैसे राष्ट्रीय गान हम गाते हैं ना, वैसे ही वंदे मातरम नहीं गाने वाले को सजा नहीं बल्कि

0: जो कि पहले ये कहा जाता था ना कि अगर कोई वंदे मातरम नहीं गाता है तो उसको सजा मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं है। यानी कि मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने ये जारी कर दिया है कि देखिए किसी पर कोई दबाव नहीं डाल सकते हैं, ये बोल दिया गया है। तो पहले ही आपने काफी दिन पहले ये सुना था कि वंदे मातरम अगर कोई नहीं गाता है तो उसको सजा मिलने वाली, लेकिन अब ऐसा नहीं है कि किसी के ऊपर प्रेशर नहीं डाल सकते हैं कि तुम्हें नहीं ये गाना ही है, अगर तुम नहीं गाते तो मैं सजा दूंगा, ऐसा नहीं है। तो भाई वंदे मातरम है जैसे राष्ट्रीय गान है वैसे ही वंदे मातरम है, आपकी मर्जी है आप गाइए ना गाइए, कोई आपको सजा नहीं देने वाला है। तो इस चीज का ध्यान रखिए। और साथ ही साथ आज का कड़क सवाल जो मैंने पूछा है, पानी से पतला ऐसी कौन सी चीज है जो होती है, वो मैसेज करके आपने बताना है। और कहाँ बताना है आपने, हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9837896896 पर आपने जाना है और मैसेज कर देना है। अगर आप नहीं बोल पाएंगे तो टेक्स्ट मैसेज करिए, अगर आप टाइपिंग ना करके बोलने में कंफर्टेबल फील करते हैं तो आप वॉइस मैसेज भेज सकते हैं, कोई प्रेशर वाली बात नहीं है। बस बिंदास बेधड़क होकर आप मैसेज कर सकते हैं अगर आपको इसका राइट आंसर पता है तो, कि पानी से ऐसी कौन सी, पानी देखा होगा कि बहुत पतली होती है, जिस तरह बहाव बह जाती है, तो वैसे ही आपने आज का राइट आंसर पहुंचाना है। पानी से पतला ऐसी कौन सी चीज़ है जो होती है, सोचिए और मैसेज करिए। फिलहाल के लिए अभी कुछ कमर्शियल एड ब्रेक का टाइम हो गया है, उसके बाद मैं आप सभी के साथ कनेक्ट होती हूँ। श्रोताओं
1: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM। सिरदर्द, लकवा, ये रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।

गुड वाली इवनिंग है आज और समय की बात करूं श्रोताओं तो समय हो चुका है यहाँ पर यानी कि 6:51 हो चुके हैं और अभी ये कहा जा रहा है देखिए कैंसर के जो केसेस है ना बहुत देखने को मिलते हैं आज के टाइम में और ये एक ऐसा बीमारी है जब एक बार हो जाता है ना तो समझ ली बहुत ही रेयरली कम चांसेस होते हैं कि इंसान बच पाता है। और अब वही क्योंकि इसके इलाज भी बहुत महंगे होते हैं और दवाइयों की बात करूँ तो हर दवाई बहुत महंगी आती है। अब ये कहा जा रहा है कि जो कैंसर की मेडिसिन है वो यानी कि 2,700 रुपये में मिलती है लेकिन अगर अस्पतालों में या कहीं और जाकर आप लेते हैं मतलब हर अस्पताल में इसके जो इसकी दवा की जो रेट है वो बहुत बढ़ चढ़ कर लिया जा रहा है यानी कि बताया जा रहा है कि अगर आप हॉस्पिटल में या कहीं से भी आप हॉस्पिटल से लेते हैं तो जो मेडिसिन यानी कि 2,700 रुपये में मिलता है वो मेडिसिन आपको 27,000 रुपये में मिलती है। तो अब इसीलिए सरकार अब हर अस्पताल में हर जाकर देख रही है कि कहाँ पर क्या कौन सी जो मेडिसिन है उसका रेट है वो कितने रेट में आम जनता तक पहुँचती है क्योंकि देखिए हर किसी के अंदर इतना भाई कोई नहीं ले सकता इतनी महंगी महंगी दवाइयाँ। तो अब यही देख रही है और दवाई इंसान कैसे भी करके करता है अपना इलाज और इसी चक्कर में उसकी ज़मीन कर्ज के चक्कर में डूब जाते हैं। तो अब सरकार ने ये फैसला लिया है कि अब हर अस्पताल में जाकर ये देखा जाएगा कि मेडिसिन जिस रेट से आगे की आगे बोला जा रहा है कि इसी रेट में भेजना है अगर उससे ज़्यादा अगर कोई आपको देता है तो उनके ऊपर अब कार्रवाई की जाएगी। तो इस चीज़ को ध्यान रखिए और साथ ही साथ आज का कड़क सवाल मैंने बहुत ही सिंपल वाला आप सभी से पूछा था कि पानी से पतला ऐसी कौन सी चीज़ है जो होती है। तो चलिए अब देखते हैं यानी कि आप सभी की मैसेज की बारी है देखना ये है कि किनका हमारे पास

0: कंपनियां का बॉस।
1: हाँ,
0: लगता है बॉस हमें टॉस करने वाला है। अब क्या करें?
1: जो भी करेंगे एक साथ करेंगे।

पीएम सूर्य घर योजना जैसी अनेक योजनाओं की पहचान अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने वाली सेवाओं के रूप में बनी है। उन्होंने विकसित भारत के निर्माण में युवाओं की भूमिका को बढ़ाने का आह्वान किया। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल एनएस राजा सुब्रमणि ने युद्ध के बदलते स्वरूप के अनुरूप भारत की रक्षा अधिग्रहण प्रणाली तेजी से अनुकूलित करने की आवश्यकता पर बल दिया है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में जनरल सुब्रमणि ने रक्षा इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए प्रौद्योगिकी, डेटा और उद्योग के एकीकरण के महत्व का उल्लेख किया। उन्होंने युद्ध क्षेत्र में हथियारों के रखरखाव और मरम्मत के साधनों की आवश्यकता पर बल दिया। जनरल सुब्रमणि ने कहा कि युद्ध की अर्थव्यवस्था बदल रही है। सरकार ने घरेलू खाद्य तेलों की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए प्रमुख आयातित कच्चे खाद्य तेलों पर मूल सीमा शुल्क घटा दिया है। कच्चे सूरजमुखी तेल पर सीमा शुल्क घटाकर शून्य कर दिया गया है, जबकि कच्चे सोयाबीन तेल और कच्चे ताड़ के तेल पर सीमा शुल्क 10% से घटाकर 5% कर दिया गया है। नीट पीजी 2026 का परिणाम घोषित कर दिया गया है। 30 अगस्त को देश भर में आयोजित परीक्षा में लगभग 2,66,000 उम्मीदवार शामिल हुए थे। उम्मीदवार 1 अक्टूबर या उसके बाद आधिकारिक वेबसाइट से अपना स्कोर कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।

0: भारत, ब्राजील, जर्मनी और जापान के विदेश मंत्रियों ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जल्द सुधार की आवश्यकता पर बल दिया है। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र से अलग G4 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई। इसमें विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर के साथ अन्य तीनों देशों के विदेश मंत्री शामिल हुए। संयुक्त बयान में कहा गया है कि सुरक्षा परिषद में स्थायी और अस्थायी दोनों श्रेणियों में विस्तार सुधार का मुख्य हिस्सा है। जेनेवा में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के सत्र में पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में मानवाधिकारों के उल्लंघन और सामाजिक आर्थिक अभाव का मुद्दा उठाया गया। कार्यकर्ताओं ने क्षेत्र में प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई की स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय जांच की मांग की। उन्होंने कहा कि इन शांतिपूर्ण प्रदर्शनों को अत्यधिक बल प्रयोग, मनमानी गिरफ्तारियों, संचार अवरोध और शांतिपूर्ण समूहों के खिलाफ आतंकवाद विरोधी कानूनों के इस्तेमाल से दबाया जा रहा है। घरेलू शेयर बाजार में आज 1.5% से अधिक की गिरावट दर्ज की गई। सेंसेक्स 1248 अंक गिरकर 73581 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 384 अंक की गिरावट के साथ 23063 पर दर्ज हुआ। जापान एशियाई खेलों में आज भारतीय एथलीट सीमा ने महिलाओं की 10,000 मीटर दौड़ के फाइनल में कांस्य पदक जीत लिया है। अनंतजीत सिंह और पारिनाज धालीवाल ने निशानेबाजी के मिक्स्ड टीम स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है। रोशिबीना देवी ने वुशु के 60 किलो सांडा स्पर्धा में रजत पदक हासिल किया। सतनाम सिंह और सलमान खान ने नौकायान की डबल स्कल स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। जयकुमार, अंशा बाबू, मानू टीएस और रशदीप कौर की मिक्स्ड टीम ने 4x400 के फाइनल में और अनिमेश कुजूर और गुरिंदर वीर सिंह ने 100 मीटर दौड़ के सेमीफाइनल में जगह बनाई। भारतीय पुरुष और महिला कबड्डी टीम ने सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। हॉकी में भारतीय पुरुष टीम ने क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। वहीं परवीन ने 65 किलोग्राम मुक्केबाजी वर्ग के क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: डीएमआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें डीएमआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
2: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
3: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
2: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
3: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरोसर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार फेज 2 दिल्ली रोड मुरादाबाद।
1: कॉल 7500153841।

0: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आपके अपने शहर का सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफ एम मुरादाबाद 89.6 और मैं हूँ आपके साथ आपकी खुशी लेकर हाजिर हूँ आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश, जहाँ हम आपको मिलवाते हैं उत्तर प्रदेश के उन खास पहचान से जो परंपरा, स्वाद और विकास का अनोखा संगम है।
1: और मैं हूँ आपके साथ आपकी आरजे रीना। आज लेकर आई हूँ एक ऐसे स्वाद की कहानी जो दशकों से लोगों की जुबान पर राज कर रही है। एक ऐसा स्वाद जिसके बिना मुरादाबाद की पहचान अधूरी मानी जाती है।
0: जी हाँ दोस्तों, जब भी मुरादाबाद का नाम आता है तो सबसे पहले याद आती है पीतल नगरी। दुनिया भर में अपने पीतल के बर्तनों और हस्तशिल्प के लिए मशहूर मुरादाबाद आज एक और खास पहचान बना चुका है।
1: बिल्कुल, अब मुरादाबाद सिर्फ पीतल के लिए नहीं बल्कि अपनी मशहूर मूंग दाल के लिए पूरे देश में जाना जाता है।

0: है। सुबह की हलचल, बाजारों में लोगों की चहल पहल और दुकानों से उठती गर्मा गर्म मूंग दाल की खुशबू, आय हाय हाय।
1: ऐसा लगता है जैसे हर गली कह रही हो, मुरादाबाद आए हो तो मूंग दाल चखे बिना मत जाइए।
0: यही कारण है कि आज देश के अलग अलग राज्यों से आने वाले लोग यहाँ की मूंग दाल का स्वाद लेने जरूर पहुँचते हैं।
1: और अब उत्तर प्रदेश सरकार के प्रयासों से इस पारंपरिक स्वाद को राष्ट्रीय ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय पहचान भी मिल रही है।
0: मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में स्थानीय खान पान और पारंपरिक व्यंजनों को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं
1: और इन्हीं प्रयासों का हिस्सा है एक जिला एक व्यंजन यानी ODOC योजना, जिसके तहत मुरादाबाद की मूंग दाल को विशेष पहचान दी जा रही है।
0: दोस्तों, आखिर क्या खास है मुरादाबाद की मूंग दाल में?
1: इसका राज छुपा है इसी की पारंपरिक विधि और बेहतरीन मसालों में।
0: सबसे पहले चुनी जाती है उच्च गुणवत्ता वाली धुली हुई मूंग दाल, फिर उसे साफ करके खास तरीके से भिगोया जाता है।
1: इसके बाद धीमी आंच पर दाल को इस तरह पकाया जाता है कि उसका हर दाना मुलायम रहे लेकिन टूटे नहीं।
0: पर शुरू होता है असली जादू।
1: देसी घी या शुद्ध तेल में जीरा, हींग, हरी मिर्च, अदरक और खास मसालों का तड़का लगाया जाता है।
0: जब यह तड़का दाल में मिलता है तो उसकी खुशबू दूर दूर तक फैल जाती है।
1: ऊपर से डाला जाता है हरा धनिया, नींबू का रस और कभी कभी हल्की सी देसी घी की धार।
0: बस यही बनाती है मुरादाबाद की मूंग दाल को सबसे अलग।
1: कहते हैं कि जिसने एक बार इसका स्वाद चख लिया वह दोबारा मुरादाबाद आए बिना रह नहीं पाता।
0: खास बात यह है कि यहाँ की मूंग दाल सिर्फ स्वादिष्ट ही नहीं बल्कि पौष्टिक भी होती है।
1: इसमें प्रोटीन, फाइबर और कई जरूरी पोषक तत्व भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, इसीलिए यह स्वाद के साथ साथ सेहत का भी ख्याल रखती है।
0: मुरादाबाद की कई पुरानी दुकानें पिछले 50 से 70 वर्षों से इसी पारंपरिक स्वाद को बनाए हुए हैं।
1: पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है यह कला, आज भी उसी मेहनत और ईमानदारी से आगे बढ़ रही है।
0: सुबह के नाश्ते से लेकर शाम की हल्की भूख तक मूंग दाल हर समय लोगों की पहली पसंद बनी रहती है।
1: कई लोग इसे कुरकुरी नमकीन के रूप में पसंद करते हैं, तो कई लोग गर्मा गर्म मसालेदार दाल के रूप में।
0: यही विविधता इसे हर उम्र के लोगों का पसंदीदा व्यंजन बनाती है।
1: दोस्तों, किसी भी पारंपरिक व्यंजन को आगे बढ़ाने के लिए सिर्फ स्वाद नहीं बल्कि सही पहचान भी जरूरी होती है।
0: उत्तर प्रदेश सरकार की ODOC योजना का उद्देश्य यही है कि हर जिले के प्रसिद्ध व्यंजन को नई पहचान मिले।
1: इसी के तहत स्थानीय उद्यमियों, महिला स्वयं सहायता समूहों और छोटे कारोबारियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है।
0: आधुनिक पैकेजिंग, ब्रांडिंग, फूड सेफ्टी मानकों और डिजिटल मार्केटिंग की जानकारी भी दी जा रही है।
1: अब मुरादाबाद की मशहूर मूंग दाल सिर्फ स्थानीय बाजारों तक सीमित नहीं रहेगी बल्कि देश और विदेश के ग्राहकों तक पहुंचेगी।
0: इससे स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलेगा, छोटे व्यापारियों की आय बढ़ेगी और महिलाओं के लिए भी नए अवसर तैयार होंगे। सोशल मीडिया पर भी अब हैशटैग मुरादाबाद दाल तेजी से लोकप्रिय हो रही है।
1: लोग इसकी तस्वीरें, वीडियो और स्वाद का अनुभव साझा कर रहे हैं।
0: एक समय था जब मुरादाबाद को सिर्फ पीतल नगरी के नाम से जाना जाता था,
1: लेकिन आज यह शहर अपने पारंपरिक स्वाद, संस्कृति और स्थानीय व्यंजनों के कारण भी नई पहचान बना रहा है।
0: तो दोस्तों, अगली बार जब आप मुरादाबाद आएं,
1: वहाँ के शानदार पीतल उद्योग को जरूर देखिए,
0: शहर की ऐतिहासिक विरासत को जानिए
1: और सबसे जरूरी
0: मुरादाबाद की मशहूर मूंग दाल का स्वाद जरूर चखिए,
1: क्योंकि यह सिर्फ एक व्यंजन नहीं
0: बल्कि मुरादाबाद की मेहनत, परंपरा और मेहमान नवाजी की पहचान है।
1: और जब स्थानीय स्वाद को विकास का साथ मिलता है
0: तो एक जिले की पहचान पूरे देश की शान बन जाता है।
1: विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश।
0: सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

0: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
1: सुनो ना, मुझे ज्वेलरी खरीदनी है।
2: तो चलो फिर, इतना सोचना क्यों है, शहर चलते हैं ना ज्वेलरी लेने।
1: नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, वहां पर बहुत ट्रैफिक रहता है और शोर भी बहुत होता है।
2: अरे नहीं,
3: अब ट्रैफिक की चिंता छोड़ो, क्योंकि बाबूराम सर्राफ का नया ज्वेलरी शोरूम ओपन हो गया है,
2: वो भी सिविल लाइंस में। ना ट्रैफिक की चिंता, ना शोर की, और हाँ, वहाँ ज्वेलरी खरीदने पर गोल्ड कॉइन जीतने का मौका भी है।
1: अच्छा?
3: हाँ, आपका वही पुराना एवं विश्वसनीय शोरूम बाबूराम सर्राफ, पता चैन मंदिर रोड, सिविल लाइंस, मुरादाबाद।

0: सी सुविधा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो के चौथे संस्करण का करेंगे उद्घाटन। जापान, सिंगापुर और रूस समेत 6 देश पार्टनर कंट्री के रूप में होंगे शामिल। ग्रेटर नोएडा में स्लीपर बस में आग लगने से 9 यात्रियों की मौत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री ने जताया हादसे पर दुख। मृतकों के परिजनों के लिए अनुग्रह राशि का किया ऐलान। और एशियाई खेलों में चमकी अमेठी के सलमान खान और सतनाम सिंह की जोड़ी। रोइंग की पुरुष डबल स्कल्स में जीता कांस्य पदक। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं शैलेंद्र, और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ विकास प्राधिकरण की वरुण विहार और नैमिष नगर आवासीय योजनाओं का भूमि पूजन किया और भूखंडों के पंजीकरण का शुभारंभ किया। ये परियोजना आगरा एक्सप्रेसवे के समीप 12,000 करोड़ रुपए से 10,680 एकड़ में विकसित की जा रही है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने 2,166 करोड़ रुपए से प्रस्तावित 5 बहुमंजिला अपार्टमेंट का शिलान्यास भी किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि वरुण विहार 6,500 एकड़ से अधिक क्षेत्रफल में विकसित होगा, जहां 6,00,000 से अधिक लोगों के लिए आवासीय सुविधा होगी। नैमिष नगर 4,100 एकड़ में विकसित होगा और 4,00,000 से अधिक लोग इसका लाभ ले सकेंगे। उन्होंने कहा कि लखनऊ को केवल महानगर और जनपद तक सीमित न रखकर स्टेट कैपिटल रीजन के रूप में व्यवस्थित विकास किया जा रहा है। लखनऊ आज विभिन्न क्षेत्रों में अपनी पहचान बना रहा है।
1: ये आज की बढ़ती हुई आबादी की आवश्यकता को प्लांड वे में अर्बन डेवलपमेंट के इंटीग्रेटेड प्लान को आगे बढ़ाने की दृष्टि से ये अत्यंत आवश्यक था। एक जगह पर सभी प्रकार की सुविधा प्राप्त हो। आज के समय में जब एजुकेशन के हब के रूप में लखनऊ आगे बढ़ा है, हेल्थ केयर के नए हब के रूप में लखनऊ को नई पहचान मिली है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी के एक नए केंद्र के रूप में लखनऊ आगे बढ़ा है।
0: इससे पहले मुख्यमंत्री ने श्री गोरखनाथ मंदिर में ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ की 57वीं और ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ की 12वीं पुण्यतिथि पर आयोजित समारोह को संबोधित किया। उन्होंने भारतीय ज्ञान परंपरा को आधुनिक तकनीक से जोड़कर नई पीढ़ी तक पहुंचाने का आह्वान किया। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह कल गौतम बुद्ध नगर में उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो के चौथे संस्करण का उद्घाटन करेंगे। स्ट्रीट शो का आयोजन इंडिया एक्सपो मार्ट में 25 से 29 सितंबर तक किया जाएगा। पेश है एक रिपोर्ट।
2: ट्रेड शो में वियतनाम, जापान, सिंगापुर, रूस, ऑस्ट्रिया और बेलारूस को पार्टनर कंट्री के रूप में शामिल किया गया है। इस आयोजन में 72 देशों और केंद्र शासित प्रदेशों से करीब 600 अंतर्राष्ट्रीय खरीदारों के पहुंचने की संभावना है। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र चौधरी ने आज एक प्रेस वार्ता में कहा कि इंटरनेशनल ट्रेड शो के माध्यम से उत्तर प्रदेश के स्थानीय उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार उपलब्ध कराने के साथ ही प्रदेश के एमएसएमई सेक्टर को नई पहचान दिलाने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि स्टेट शो के समापन समारोह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शामिल होंगे। समाचार कक्ष से तनवीर फातिमा।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। उनकी यात्रा जनसेवा से देश सेवा के संकल्प और निरंतर जनसेवा की भावना से प्रेरित रही है। इसी सेवा और सुशासन की सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए लोगों के जीवन में बदलाव लाने का प्रयास किया जा रहा है। हमारी विशेष श्रृंखला में आज हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि स्टार्टअप इंडिया जैसी पहल ने इस सोच को किस तरह धरातल पर उतारा है। पेश है एक रिपोर्ट।
3: 2016 में शुरू हुई स्टार्टअप इंडिया पहल ने भारत की उद्यमिता संस्कृति में बड़ा बदलाव किया है। करीब 400 सर्टिफाइड स्टार्टअप से शुरू हुआ यह सफर मार्च 2026 तक 2,00,000 से अधिक सर्टिफाइड स्टार्टअप और 23,00,000 से ज्यादा प्रत्यक्ष रोजगार तक पहुंच गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आने वाले 10 साल में देश नए स्टार्टअप्स में दुनिया का नेतृत्व करे, ये हमारा प्रयास होना चाहिए।
4: पिछले 10 वर्षों ने देश की क्षमताओं को साबित किया है। हमारा लक्ष्य होना चाहिए आने वाले 10 वर्षों में भारत नए स्टार्टअप ट्रेंड्स और टेक्नोलॉजी में दुनिया का नेतृत्व करे।
3: सरकारी स्कूलों में तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने की दिशा में काम करने वाले मेरठ के स्टार्टअप के फाउंडर आशुतोष वशिष्ठ ने बताया कि सरकार से उन्हें काफी प्रोत्साहन मिला।
0: बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा माननीय प्रधानमंत्री जी को कि उन्होंने स्टार्टअप इंडिया योजना के तहत काफी सारा सपोर्ट इकोसिस्टम जो स्टार्टअप्स के लिए डेवलप कराया है, वो स्टार्टअप का एक बोन है जो कि उसको आने वाले टाइम में काफी स्ट्रोंगर करेगा।
3: सरकार के प्रयासों का नतीजा यह है कि देश में करीब 50% स्टार्टअप टीयर 2 और टीयर 3 शहरों से सामने आए हैं। संगीता श्रीवास्तव, आकाशवाणी समाचार, मेरठ।
0: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। राष्ट्रीय चिकित्सा विज्ञान परीक्षा बोर्ड ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर नीट पीजी 2026 का परिणाम घोषित कर दिया है। वर्ष 2026-27 के प्रवेश सत्र के विभिन्न 6 वर्षीय पाठ्यक्रमों और पीजी मेडिकल डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए 30 अगस्त को देश भर में परीक्षा आयोजित की गई थी। बोर्ड ने बताया कि उम्मीदवार 1 अक्टूबर या उसके बाद आधिकारिक वेबसाइट से अपना स्कोर कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही उत्तर कुंजी 1 अक्टूबर को बोर्ड की वेबसाइट पर प्रकाशित होने की उम्मीद है। ग्रेटर नोएडा में यमुना एक्सप्रेसवे पर कल देर रात एक स्लीपर बस में आग लगने से 9 यात्रियों की मौत हो गई। कई अन्य यात्रियों ने खिड़कियों से कूदकर अपनी जान बचाई। बिहार में पंजीकृत स्लीपर बस दिल्ली के कश्मीरी गेट से महोबा जा रही थी और उसमें करीब 35 यात्री सवार थे। ग्रेटर नोएडा के मुख्य अग्निशमन अधिकारी प्रदीप कुमार ने बताया कि आग बस के इंजन से शुरू हुई और तेजी से बस के अन्य हिस्सों में फैल गई। बस के चालक और कंडक्टर को हिरासत में ले लिया गया है। जेवर पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। प्रदेश के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने कहा कि बस ड्राइवर का लाइसेंस निरस्त कर दिया गया है। प्रारंभिक जांच में आग का कारण शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है।
5: प्रारंभिक जांच में वो बस महोबा जा रही थी दिल्ली से और नेशनल परमिट की बस थी, बिहार में रजिस्टर्ड है। ड्राइवर का लाइसेंस निरस्त कर दिया गया है। शॉर्ट सर्किट से आग लगी थी, इमरजेंसी गेट नहीं खुला जिसके कारण सभी लोगों को नहीं बचाया जा सका। इसकी जांच कराई जा रही है और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटना पर दुख जताया है। हादसे में जान गंवाने वाले यात्रियों के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की गई है। मुख्यमंत्री ने भी मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि देने के निर्देश दिए हैं। एशियाई खेल 2026 में अमेठी के सलमान खान ने रोइंग की पुरुष डबल्स स्कल्स में भारत के लिए कांस्य पदक जीतकर प्रदेश का मान बढ़ाया है। सलमान और सतनाम सिंह की जोड़ी फाइनल में तीसरे स्थान पर रही। भारतीय जोड़ी स्वर्ण पदक विजेता चीन से 3.48 सेकंड और रजत पदक विजेता उज्बेकिस्तान से 2.76 सेकंड पीछे रही। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विजेताओं को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में मुख्यमंत्री ने कहा कि दृढ़ प्रयास ने इस जोड़ी को पोडियम पर एक सुयोग्य स्थान दिलाया है। पदक तालिका में भारत के कुल पदक की संख्या 15 हो गई है। इसमें 1 स्वर्ण, 6 रजत और 8 कांस्य पदक शामिल हैं। राजधानी लखनऊ, बलरामपुर, जौनपुर समेत कई अन्य जनपदों में कल से रुक रुक कर हो रही बारिश से मौसम सुहावना हो गया है। मौसम विभाग के मुताबिक 27 सितंबर तक प्रदेश में तेज हवाओं के साथ भारी वर्षा का अनुमान है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में एलडीए की वरुण विहार और नैमिष नगर योजनाओं का किया शुभारंभ। कहा 10 लाख से अधिक लोगों को मिलेगी आवासीय सुविधा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो के 4th संस्करण का करेंगे उद्घाटन। जापान, सिंगापुर और रूस समेत 6 देश पार्टनर कंट्री के रूप में होंगे शामिल। ग्रेटर नोएडा में स्लीपर बस में आग लगने से 9 यात्रियों की मौत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री ने जताया हादसे पर दुख। मृतकों के परिजनों के लिए अनुग्रह राशि का किया ऐलान। और एशियाई खेलों में चमकी अमेठी के सलमान खान और सतनाम सिंह की जोड़ी रोइंग की पुरुष डबल स्कल्स में जीता कांस्य पदक। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशांत जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर नैनीताल में, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
1: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।
2: स्वच्छता ही सेवा 2026 अभियान के साथ अब बदलेगा हमारे प्रदेश का परिवेश, जिसका संकल्प है स्वच्छता में सहभाग, स्वच्छ भारत विकसित भारत।
3: स्वच्छता से समृद्धि और जन भागीदारी, हमारे सफाई मित्रों के लिए सुरक्षा एवं सम्मान शिविर तथा युवाओं के लिए स्वच्छ पाठशाला अभियान इस जन आंदोलन के मुख्य आधार है।
2: 1 अक्टूबर 2026 को विशेष श्रमदान एक दिन एक घंटा एक साथ स्वच्छता का हिस्सा बनिए तथा www.swachhatahiseva.gov.in पर पार्टनर साइन अप कर सफाई के सच्चे भागीदार बनिए।
3: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी।
4: नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आपकी आरजे रीना, एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। कहते हैं ना श्रोताओं, एक घर एक परिवार, जहां कभी एक ही थाली में खाना खाया जाता था, एक दूसरे की खुशियों में मुस्कुराया जाता था, लेकिन जैसे ही माँ बाप की उम्र ढलती है और बात जमीन जायदाद की आती है, वही अपने ही लोग आपस में लड़ने लगते हैं। कई बार माँ बाप पूरी जिंदगी मेहनत करके घर जमीन और संपत्ति बनाते हैं, उनकी बस एक ही इच्छा होती है कि उनके जाने के बाद परिवार प्यार से रहे, लेकिन अफसोस कई घरों में सबसे पहले सवाल यह उठता है कि किसके हिस्से में आएगा संपत्ति। यही से शुरू होती है वसीयत की अहमियत। वसीयत सिर्फ कागज का एक टुकड़ा नहीं होती, बल्कि माता पिता की आखिरी इच्छा होती है कि अगर समय रहते सही तरीके से वसीयत बना दी जाए तो कई पारिवारिक झगड़े, कोर्ट कचहरी के चक्कर और रिश्तों में आने वाली दरारें रोकी जा सकती हैं। तो आइए आज हम बात करेंगे वसीयत क्या होती है, इसे कैसे बनाया जाता है, क्या यह जरूरी है और इससे परिवार को क्या फायदा मिलता है। इन्हीं सभी सवालों का जवाब देने के लिए मेरे साथ आज एडवोकेट अनिरुद्ध अरोरा जी कनेक्ट है। सर, आपका बहुत बहुत वेलकम है हमारे स्टूडियो में, और आप बताइए कि हमारे स्टूडियो में आकर आपको कैसा लगता है, जरा हमारे श्रोताओं को बताइए आप।
5: नहीं, मैं तो वेट करता हूँ हर वीकेंड्स पे कि आप कोई अच्छी सी नई सीरीज लेके आओगे लीगल टॉक्स में अपने प्रोग्राम में, अवेयरनेस प्रोग्राम की, जिससे हमारे जितने भी लिसनर्स हैं कम्युनिटी रेडियो को, उनको कुछ नया जानने को मिलेगा।
4: पर अब की बार आपने वेट ज्यादा करवा दिया सर।
5: देखिए, कुछ होती है, कुछ प्रायोरिटीज होती है, तो मैं माफी चाहूंगा अपने रेडियो के लिसनर्स से भी, कम्युनिटी रेडियो के, कि मैं टाइम नहीं दे पाया था, लेकिन अब मैं कंटिन्यू रहूंगा आपके साथ में और आपकी सारी जितनी भी क्वेरीज है मैं उसको आंसर करने की कोशिश करूंगा। और आप बने रहिए अपने रेडियो कम्युनिटी सेंटर से, आपका मुरादाबाद कम्युनिटी जो 89.6 रेडियो है। शुरू करते हैं आज का।
4: जी बिल्कुल सर। तो श्रोताओं, आज का हमारा ये शो बहुत ही खास होने वाला है। कहते हैं इंसान अपने बच्चों के लिए पूरी जिंदगी मेहनत करता है, दिन रात की कमाई से घर बनाता है, जमीन खरीदता है ताकि उसके बाद भी परिवार खुशहाल रहे, लेकिन कई बार वही घर और वही जमीन अपनों के बीच दूरियों की वजह बन जाती है। प्यार की जगह हिस्सों की बातें होने लगती है और रिश्ते अदालतों तक पहुंच जाते हैं। ऐसे में एक समझदारी भरा फैसला न सिर्फ संपत्ति का सही बंटवारा तय करता है, बल्कि परिवार के रिश्तों को भी सुरक्षित रखता है। मुझे लगता है कि इसके बारे में बात होना बहुत जरूरी है।
5: ये बहुत छोटा सा वर्ड है वसीयत, लेकिन इम्पैक्ट बहुत अच्छा है इसका।
4: कहते हैं ना सर, छोटा पैकेट बड़ा धमाल।
5: टॉपिक बहुत आज का जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से सुनिएगा अपने लिसनर से मैं बोलूंगा।
4: बिल्कुल। तो सर, यानी कि आज हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, वसीयत होता क्या है?
5: देखिए, वसीयत जिसको हम हिंदी में विल बोलते हैं, वसीयत एक तरीके का एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है, कानूनी दस्तावेज होता है, जिसमें कोई व्यक्ति ये लिखता है कि इसकी मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति जो है, उसकी एसेट्स जो है, किसको देनी है, कितने रेशो में देनी है और उसको डिवाइड कैसे करना है। तो ये सारी जानकारी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो एक अपनी विल के माध्यम से उसको जो है वो डिक्लेयर करता है कि मेरे ना होने के बाद ताकि मेरे जो चिल्ड्रंस है या जो भी मेरे जो और जो मेरे रिलेटिव्स हैं उनके बीच में लड़ाई झगड़ा ना हो या कोई डिस्प्यूट पैदा ना हो, तो उससे प्रिवेंटिव होने के लिए वो एक डिक्लेरेशन देता है। उसी डिक्लेरेशन को उसको हम विल बोलते हैं, उसको हम लीगल डॉक्यूमेंट होता है वो एक, तो उसको ही वसीयत बोलते हैं।
4: मतलब फैमिली वालों का नाम मेंशन होता है उसमें।
5: हाँ, उसे जो भी उसकी कमाई हुई एसेट्स है, जो भी उसके पास जो संपत्ति है, उसका डाइवर्सिफिकेशन या डिवाइड उसको कैसे करना है, तो उसके बारे में वो सारी डिटेल्स खोल देता है। उसको अपने जीते जी वो जो है सब उसको डिक्लेयर कर देता है कि कल को उसके जाने के बाद इस दुनिया से कि कोई भी कंट्रोवर्सी उसके रिलेटिव्स में या उसके बच्चों में क्रिएट ना हो।
4: बिल्कुल बिल्कुल। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्या हर व्यक्ति वसीयत बना सकता है?
5: हाँ बिल्कुल बना सकता है, अगर आप 18 वर्ष के हैं या उससे अधिक आयु के हैं और आप मानसिक रूप से स्वस्थ हैं एकदम, आप बिल्कुल साउंड माइंड से जो है बिल्कुल होश और आवास में अगर कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, तो आप अपनी वसीयत अपनी विल आप अनाउंस कर सकते हैं। अपने लीगल जो भी आपके कंसल्टेंट है या एडवोकेट है उनसे आप मिलके आप अपनी वसीयत बना सकते हैं और उसको आप जो है आने वाले फ्यूचर के लिए कोई भी अगर लगता है आपको कोई कॉन्ट्रोवर्सी आ रही है तो उसको आप पहले ही उसे प्रिवेंट कर सकते हैं।
4: मतलब इसके लिए एज क्या होना चाहिए सर?
5: एज देखिए 18 वर्ष हो या उससे ऊपर होनी चाहिए।
4: अच्छा,
5: एटलीस्ट आपको बालिग होना जरूरी होता है।
4: क्या वसीयत बनाने के लिए वकील की आवश्यकता होती है?
5: देखिए अनिवार्य तो नहीं है ये, लेकिन कई एक ऐसी कानूनी पेचीदगियां होती हैं उसमें, कानूनी लैंग्वेज आपको नहीं पता होती है तो आपको एक जो एडवोकेट है वो हायर जरूर करना चाहिए, जिससे कोई भी आपको अगर कोई लीगल वर्ड है या लीगल टर्म है जिसका आपको मीनिंग समझ में नहीं आ रहा है, तो कोई अगर देखिए आप प्रोफेशनल हायर करेंगे तो निश्चित तौर पर आप ही के लिए अच्छा है। तो मेरा सजेशन है कि आपको अपने जो भी लीगल कंसल्टेंट है या लॉयर्स हैं उनसे कंसल्ट करके ही आपको वसीयत बनवानी चाहिए।
4: सो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्या वसीयत स्टाम्प पेपर पर ही बनानी आवश्यकता होती है?
5: देखिए साधारण कागज पे भी आप कोई अगर अपनी विल करना चाहे तो कर सकते हैं और स्टाम्प पेपर भी कर सकते हैं, साधारण कागज पर भी वैध वसीयत बनाई जा सकती है।
4: क्या वसीयत का रजिस्ट्रेशन जरूरी है?
5: जरूरी नहीं है, लेकिन रजिस्ट्रेशन कराने से उसकी विश्वसनीयता बढ़ जाती है और अगर कोई विवाद ने कोई आगे फ्यूचर आने वाला होता तो उसकी संभावना कम हो जाती है उससे।
4: और क्या सर वसीयत में दो गवाह होना आवश्यक है?
5: हाँ, वसीयत में विटनेस जरूर चाहिए होती है, ऑर्डिनरी तौर पे दो एटलीस्ट दो विटनेस तो मैंडेटरी हैं, दो गवाह बिल्कुल होने चाहिए। बिल्कुल।
4: क्या वसीयत को कभी भी बदला जा सकता है?
5: हाँ, वसीयत अगर आपने कोई भी करी हुई है और आपको लग रहा है कि भाई मैं अपना माइंड आपका चेंज हो गया या आपको लगता है कि मैं वसीयत मैंने अपने जो है अब चेंज करना है या मुझे अपना ये हिस्सा बढ़ा के इतना देना है या कम करना है या नहीं देना, तो आपका राइट बनता है, आप अपने जीते जी अपनी वसीयत जो है आपकी वो अपने लाइफ में अपने जीवन काल में कभी भी रद्द कर सकते हैं, उसको कैंसिल भी कर सकते हैं या उसको बदल भी सकते हैं आप।
4: यदि किसी व्यक्ति ने वसीयत नहीं बनाई तो उसकी संपत्ति का क्या होगा?
5: देखिए ये प्रॉब्लम्स बहुत आती हैं आज की डेट में, लोग इतना डीप में सोचते नहीं है, वो सोचते हैं कि भाई चलो ठीक है वसीयत की क्या जरूरत है, लेकिन कॉमन देखिए लाइफ जो है हमारी जो है सबको पता है कि लाइफ का कोई भरोसा नहीं होता है ना, तो कभी भी कुछ मिस हैपनिंग हो सकती है, तो वसीयत तो एटलीस्ट कम से कम सबको करनी ही चाहिए। और अगर वसीयत नहीं बनाई होती है तो उस केसेस में प्रॉब्लम्स ये आती हैं, जो उसके लीगल हायर्स हैं, जो उसके रिलेटिव्स हैं, जो चिल्ड्रंस हैं, उसमें आपस में थोड़ा कॉन्ट्रोवर्सी या डिस्प्यूट्स होने की संभावना रहती है और फिर वो जो भी डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट हो जाता है सब्जेक्ट, हो आप कोर्ट के सू के माध्यम से ही उसको आप फिर चैलेंज कर सकते हैं। कोर्ट जो डिसीजन सुनाएगा जैसा भी कोर्ट को ठीक लगेगा, ऑन रिकॉर्ड क्या चीजें हैं और जो पार्टीज अपना अपना जो है पक्ष रखती हैं, तो उसके अकॉर्डिंग जो कोर्ट डिसाइड करेगा उसी रेशियो में सबको जो है प्रॉपर्टी मिल पाती है। फिर
4: उत्तराधिकार का क्या अर्थ है?
5: देखिए उत्तराधिकार एक तरीके का सक्सेशन होता है, सक्सेशन मतलब अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई है तो मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति उसके कानूनी वारिसों को मिलने की प्रक्रिया को हम उत्तराधिकार कहते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति है उसने जो है वसीयत कोई अपनी करी हुई है और उसकी डेथ हो जाती है तो उसके बाद जो संपत्ति मिलती है उसके उत्तराधिकारी को मिलती है, यानी जिसको उसने सक्सेशन किया है, जिसको उसने ऐसे।
4: एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है सर जो कि हर किसी के मन में घूमता रहता है, ये तो क्या बेटी को भी पिता की संपत्ति में बराबर का अधिकार होता है?
5: देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और मुझे लगता है कि मोस्टली लड़कियों को इसका आंसर नहीं पता होगा, वो सोचती हैं बचपन से ही उन्हें ये पता है कि मुझे तो शादी होकर घर चले आना है, बस बात खत्म। तो ना वो कभी संपत्ति के लिए अपने हिस्से के लिए कभी कहती हैं अपने घर में और ना ही कभी उनको मिलता भी होगा तो बहुत ही कम मैंने देखे हैं केसेस कि लोग अपनी बेटी को शादी के बाद भी अगर हिस्सा देते हों, लेकिन हाँ वर्तमान में कानून के अनुसार बेटी को भी बेटे के समान अधिकार प्राप्त है। हर लड़की का हर बेटी का अपने परिवार में अपने फादर की संपत्ति में उसका अधिकार है, उनके बाद में वो अधिकार के लिए अपनी संपत्ति में हिस्से के लिए वो कोर्ट में सू कर सकती है, उसे राइट मिलता है।
4: क्या बात है, तो सुन लिया भाई लड़कियों बहुतों को नहीं पता था सर, सच में एक्चुअल में नहीं पता होता है, क्योंकि उनको बचपन से यही कहा जाता है कि ये अभी तुम्हारा घर है, शादी के बाद तो वो हमारा अगला घर हो जाता है।
5: संपत्ति में जो है बेटी का भी अधिकार बनता है, बराबर का हिस्सा है, जितना बेटे का हिस्सा है उतना बेटी का हिस्सा।
4: सर एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्या शादी के बाद बेटी का संपत्ति पर अधिकार समाप्त हो जाता है, यानी कि शादी हो जाने के बाद?
5: ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही भ्रांतियां फैली हुई हैं कि इस भाई लड़की की शादी हो गई अब तो उसका हिस्सा नहीं मिल सकता। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, शादी के बाद भी बेटी का संपत्ति पर, पैतृक संपत्ति पर अधिकार हमेशा बना रहता है, ये उसका लीगल राइट।
4: पैतृक संपत्ति और स्वयं अर्जित संपत्ति में क्या अंतर है?
5: देखिए, स्वयं अर्जित संपत्ति वह संपत्ति होती है जिसे व्यक्ति ने अपने परिश्रम से अर्जित किया है, अपना खुद उसने कमाया है, जबकि पैतृक संपत्ति वो होती है जैसे पीढ़ियों से कोई बाबा के या दादा के जमाने से कोई पीढ़ियों से चली आ रही कोई संपत्ति होती है, तो उसको हम पैतृक संपत्ति बोलते।
4: क्या बात है श्रोताओं, बस यहाँ पर लेते हैं एक म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद आप सभी के बीच कनेक्ट होते हैं। आपने कितने नहीं जाने जी, रेडियो किसी बिल्कुल भी नहीं घुमानी यार, जो रीना के साथ कनेक्ट रही ऑल न्यू ऑन एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे गुनगुन।

0: सीने में दर्द, सांस फूलना या तेज धड़कन को बिल्कुल नजरअंदाज ना करें। श्री साई हॉस्पिटल में डॉक्टर अखिल कौशिक टीएम कार्डियोलॉजी द्वारा एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टिक, पेसमेकर एवं अत्याधुनिक कार्डियक कैथ लैब की सुविधा उपलब्ध है। वो भी किफायती रेट्स पर। स्वस्थ दिल, सुरक्षित जीवन। आज ही अपॉइंटमेंट ले। श्री साई हॉस्पिटल, दिल्ली रोड, मुरादाबाद। कॉल करें 7060022430।
1: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
2: पोषण माह और सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत आयोजित आंगन का मिलन कार्यक्रम में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने बताया कि दिल्ली में लगभग 10,870 आंगनवाड़ी केंद्र हैं और इनमें कार्यरत आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ साथ पालना केंद्रों से जुड़ी कार्यकर्ताओं को भी इस सम्मान पहल में शामिल किया जा रहा है। श्रीमती रेखा गुप्ता ने कहा कि आंगनवाड़ी बहनें बच्चों की देखभाल, गर्भवती महिलाओं तक सेवाएं पहुंचाने, टीकाकरण में सहयोग और जरूरतमंद परिवारों तक सरकारी सेवाएं पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार अगले 2 वर्षों में आंगनवाड़ी केंद्रों को बेहतर और स्थायी भवनों में विकसित करने पर काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में बढ़ोतरी और उनकी कार्य परिस्थितियों में सुधार का भी आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि सरकार आंगनवाड़ी बहनों के सम्मान, सशक्तिकरण और उन्हें बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है।
3: आने वाले 2 साल में हमारी जितनी आंगनवाड़ी है वो हमारी पक्की खुद की बिल्डिंगों में होगी। पहले चरण में हमारे जितने स्कूल थे नगर निगम के, हमने अपनी आंगनवाड़ी को वहाँ शिफ्ट करना शुरू, बाकी की आंगनवाड़ियों को भी हम इसी तरीके से बेहतर जगह पे, नई कंस्ट्रक्शन करनी पड़ी तो नई कंस्ट्रक्शन करेंगे और हर सुविधा को देंगे।
2: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत हैदरपुर स्थित आयुर्वेदिक अस्पताल में निशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का शुभारंभ किया। शिविर में क्षेत्रवासियों के लिए विभिन्न स्वास्थ्य जांच, विशेषज्ञ चिकित्सकों की सलाह और स्वास्थ्य संबंधी मार्गदर्शन की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है।
4: इस दौरान मुख्यमंत्री ने क्षेत्र के विकास के लिए कई योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि हैदरपुर में लगभग 5,000 गज भूमि पर 12वीं तक के नए स्कूल बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा क्षेत्र में सामुदायिक भवन और छठ घाट का निर्माण भी किया जा रहा है। साथ ही क्षेत्र में निरोग धाम विकसित करने की दिशा में भी काम किया जाएगा, जहाँ आयुर्वेदिक और एलोपैथिक दोनों पद्धतियों से जुड़ी स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध होंगी। उन्होंने बताया कि पहले चरण में हैदरपुर क्षेत्र के AU ब्लॉक और AO ब्लॉक की झुग्गियों के लिए आवास निर्माण से संबंधित टेंडर की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। वहीं दूसरे चरण में आयुर्वेदिक अस्पताल क्षेत्र की झुग्गियों को शामिल किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने झुग्गी वासियों को आश्वासन दिया कि क्षेत्र की एक भी झुग्गी नहीं तोड़ी जाएगी और दिल्ली सरकार का उद्देश्य किसी को हटाना नहीं बल्कि लोगों के जीवन को बेहतर बनाना है। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि उनकी सरकार का प्रयास है कि स्वास्थ्य सेवाएं केवल अस्पतालों तक सीमित न रहे बल्कि उन्हें नागरिकों के करीब लाया जाए ताकि उन्हें समय पर जांच और उचित उपचार मिल सके। उन्होंने कहा कि स्वस्थ नागरिक ही सशक्त दिल्ली की नींव है। आरजू के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए शिवांग मिश्रा।
2: दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने आज हरिजन सेवक संघ गांधी आश्रम में आयोजित सद्भावना सम्मेलन को संबोधित किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि सच्ची स्वतंत्रता सामाजिक सुधार से अलग नहीं हो सकती। उपराज्यपाल ने कहा कि महात्मा गांधी, डॉ BR अम्बेडकर, पंडित मदन मोहन मालवीय और सरदार तेजा सिंह समुद्री ने अपने अपने तरीके से जातिगत भेदभाव और अस्पृश्यता के खिलाफ मजबूती से आवाज उठाई। इसके अलावा उपराज्यपाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के न्याय, सद्भाव और मानव सेवा पर आधारित भारत के आह्वान को दोहराया। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय के अनुसार विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के अंतर्गत 30 सितंबर तक दावे और आपत्तियां दर्ज की जा सकती हैं। 31 अगस्त से 23 सितंबर के बीच फॉर्म 6 के 1,14,073, फॉर्म 6A के 216, फॉर्म 7 के 1,960 और फॉर्म 8 के 41,897 आवेदन प्राप्त हुए हैं। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने बताया कि मतदाताओं की सुविधा के लिए रविवार को सभी मतदान केंद्रों पर विशेष शिविर लगाए जाएंगे। दावों और आपत्तियों का निपटारा 29 अक्टूबर तक किया जाएगा। वहीं अंतिम मतदाता सूची 4 नवंबर को प्रकाशित होगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं।
5: और ज्यादा खबरों के लिए @AIRNews हिंदी को फॉलो करें और यूट्यूब पर न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें।
2: दिल्ली राज्य कैंसर संस्थान में जरूरी दवाओं की उपलब्धता के बारे में हाल ही में प्रकाशित मीडिया रिपोर्टों का खंडन करते हुए बताया गया है कि सभी जरूरी दवाएं पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। संस्थान ने बताया कि लगभग 90% दवाएं उपलब्ध हैं और स्टॉक की लगातार निगरानी की जा रही है। विभाग ने स्पष्ट किया कि मीडिया रिपोर्ट में संस्थान में दवाओं की उपलब्धता की पूरी और वर्तमान स्थिति को सही तरह से प्रकाशित नहीं किया गया है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर पंकज कुमार सिंह ने कहा कि दिल्ली सरकार DSCI के साथ ही राजधानी के सभी सरकारी अस्पतालों में दवाओं की उपलब्धता पर लगातार बारीकी से नजर रख रही है। दिल्ली नगर निगम में नेता सदन और स्थायी समिति सदस्य जय भगवान यादव ने आज उत्तरी क्षेत्र स्थित राजन बाबू अस्पताल का निरीक्षण किया। उन्होंने मरीजों से बातचीत कर इलाज और अस्पताल में उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी ली। श्री यादव ने ब्रोंकोस्कोपी, अल्ट्रासाउंड कक्ष और लैब का भी जायजा लिया। उन्होंने अस्पताल में सफाई व्यवस्था सुधारने, बिजली के लटकते तार ठीक करने और पेड़ों की छंटाई के निर्देश दिए। साथ ही अस्पताल के कामकाज को सुचारू बनाने के लिए पर्याप्त मिनिस्ट्रियल स्टाफ की तैनाती के भी निर्देश दिए गए। दिल्ली के महापौर प्रवेश वाही ने आज हिंदू राव अस्पताल का निरीक्षण कर स्वास्थ्य सुविधाओं और अस्पताल की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने मरीजों से बातचीत कर दवाइयों की उपलब्धता और उपचार व्यवस्था की जानकारी ली तथा सफाई, प्रकाश और सड़क की व्यवस्था बेहतर करने के निर्देश दिए।
6: ICU में 8 बेडेड है, इसको 18 किया जाने का प्रावधान। इसके साथ साथ जो एक रेजिडेंस ब्लॉक है वहाँ पे 200 से अधिक बेड का नया एक ब्लॉक बनाया जाएगा, जिसमें इसकी हमारे पेशेंट को और सुविधाएं मिलेगी, आसपास के लोगों को, दिल्ली के लोगों को।
2: श्री वाही ने लेबर रूम, बाल चिकित्सा, आपातकालीन ब्लॉक और अन्य वार्ड का भी निरीक्षण कर उनके उन्नयन और मरम्मत कार्य समयबद्ध तरीके से पूरे करने के निर्देश दिए। श्री वाही ने कहा कि हिंदूराव अस्पताल जैसे प्रमुख अस्पताल में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के साथ मरीजों के लिए स्वच्छ, सुरक्षित और सुविधाजनक वातावरण उपलब्ध कराना भी निगम की प्राथमिकता है। दिल्ली नगर निगम ने स्वच्छता ही सेवा अभियान के अंतर्गत आज दिल्ली गेट स्थित बाल भवन में नया रिड्यूस, रियूज और रिसाइकल केंद्र शुरू किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में निगम ने बताया कि केंद्र पर जरूरतमंद लोगों के लिए दोबारा इस्तेमाल किए जा सकने वाले कपड़े, किताबें, खिलौने और बर्तन एकत्र किए जाएंगे। इसका उद्देश्य उपयोगी वस्तुओं के पुनः इस्तेमाल को बढ़ावा देना और कचरे को कम करना है। दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने आज राजधानी में विकेंद्रीकृत ठोस कचरा प्रबंधन और राजधानी को कचरा मुक्त बनाने पर चर्चा करने के लिए विशेषज्ञों के साथ बैठक की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री संधू ने बताया कि इस दौरान कचरा पैदा करने वाले बड़े संस्थानों द्वारा कचरे को स्रोत पर ही 100% अलग करने, वार्ड स्तर पर प्रोसेसिंग करने और नियमों का सख्ती से पालन करने पर बल दिया गया। दिल्ली नगर निगम के दिल्ली को कूड़े से आजादी अभियान के अंतर्गत आज सूरजमल विहार में विशेष सफाई अभियान चलाया गया। उपमहापौर डॉक्टर मोनिका पंत ने सफाई व्यवस्था का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि दिल्ली को कूड़े से आजादी केवल एक अभियान नहीं बल्कि स्वच्छ दिल्ली के निर्माण के लिए जन भागीदारी से जुड़ा संकल्प है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं।
7: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी expert@AIRNewsHindi और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
2: भारतीय रेलवे ने कानपुर सेंट्रल और आनंद विहार टर्मिनल के बीच एक नई दैनिक रेल सेवा शुरू करने की मंजूरी दी है। कानपुर सेंट्रल से आनंद विहार टर्मिनल जाने वाली रेलगाड़ी संख्या 14153 कानपुर सेंट्रल से रात 8:40 पर प्रस्थान करेगी। ये गाड़ी अगले दिन सवेरे 4:50 पर आनंद विहार पहुंचेगी। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में यमुना एक्सप्रेसवे पर कल रात एक स्लीपर बस में आग लगने से 9 यात्रियों की मौत हो गई। पुलिस के अनुसार ये घटना आधी रात के करीब जेवर पुलिस थाना क्षेत्र के दयानाथपुर गांव के निकट हुई। बस नोएडा से आगरा जा रही थी और इसमें करीब 35 यात्री सवार थे। जेवर पुलिस ने मामले की प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बस दुर्घटना में हुई जान माल की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने प्रत्येक मृतक के परिजन को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि हिंदुत्व किसी के खिलाफ नहीं है बल्कि ये सबको साथ लेकर चलता है। उन्होंने आज नई दिल्ली में विश्व संचार हिंदुत्व का नाम की किताब जारी करने के बाद ये बात कही। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति ने युवाओं से भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को पढ़ने, उस पर सवाल करने और उसे समझने का आह्वान किया। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा कल नई दिल्ली में आयोजित होने वाले आरोग्य मंथन 2026 में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के 8 वर्ष और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के 5 वर्ष पूरे होने का उत्सव मनाएंगे। कार्यक्रम में स्वास्थ्य सुरक्षा और डिजिटल स्वास्थ्य के प्रमुख पहलुओं पर केंद्रित विषयों पर विचार विमर्श होगा। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग स्वच्छता और सुशासन सुनिश्चित करने के लिए विशेष अभियान 6.0 चलाएगा। इसका उद्देश्य कार्यस्थलों पर स्वच्छता को बढ़ावा देना, लंबित मामलों का तेजी से निपटारा करना और शासन में सुधार करना है। यह अभियान 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक चलेगा। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल एनएस राजा सुब्रमणी ने युद्ध के बदलते स्वरूप के अनुरूप भारत की रक्षा अधिग्रहण प्रणाली तेजी से अनुकूलित करने की आवश्यकता पर बल दिया है। एक रिपोर्ट।
8: नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में जनरल सुब्रमणी ने रक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए प्रौद्योगिकी, डेटा और उद्योग के एकीकरण के महत्व का उल्लेख किया। उन्होंने युद्ध क्षेत्र में हथियारों के रखरखाव और मरम्मत के साधनों की आवश्यकता पर बल दिया। जनरल सुब्रमणी ने कहा कि युद्ध की अर्थव्यवस्था भी बदल रही है। उन्होंने नई अर्थव्यवस्था के 3C यानी कम्प्यूट, कम्पेटेबिलिटी और कोलेबोरेशन का उल्लेख किया। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष ने कहा कि स्टार्टअप, विश्वविद्यालय, इंजीनियर, विद्यार्थी और प्रौद्योगिकी कंपनियां देश की आत्मनिर्भरता और रक्षा विनिर्माण में योगदान दे सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में उन्होंने कहा कि इसके वास्तविक मूल्य का खुफिया जानकारी विश्लेषण, मिशन योजना, रसद, युद्धाभ्यास और निर्णय समर्थन में इसके उपयोग से पता चलता है। प्रादेशिक समाचार के लिए समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
2: राजधानी दिल्ली में आज दोपहर में तेज धूप रही। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 36.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। न्यूनतम तापमान 25.9 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विभाग ने बताया है कि कल हल्के बादल छाए रहने की संभावना है। कल का अधिकतम तापमान 33 से 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 22 से 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एशियाई खेल 2026 में रजत पदक जीतने वाली वुशु खिलाड़ी रोशिबीना देवी और कांस्य पदक विजेता भारतीय रोइंग जोड़ी सतनाम सिंह और सलमान खान को बधाई दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्रीमती रेखा गुप्ता ने महिलाओं की सांडा 60 किलोग्राम स्पर्धा में रजत पदक जीतने वाली रोशिबीना देवी के लगातार प्रदर्शन, साहस और जुझारूपन की सराहना की। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत आंगन का मिलन कार्यक्रम में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने हैदरपुर के अस्पताल में निशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का शुभारंभ किया। उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने हरिजन सेवक संघ गांधी आश्रम में सद्भावना सम्मेलन में न्याय, सद्भाव और मानव सेवा पर आधारित भारत का आह्वान दोहराया। दिल्ली नगर निगम ने स्वच्छता ही सेवा अभियान के अंतर्गत बाल भवन में नया रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल केंद्र शुरू किया और दिल्ली नगर निगम ने कूड़े से आजादी अभियान के अंतर्गत सूरजमल विहार में विशेष सफाई अभियान चलाया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
9: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
10: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
9: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
1: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह न्यूरो सर्जन पे आरुष नर्सिंग होम पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार फेज 2 दिल्ली रोड मुरादाबाद।
10: कॉल 7500153841।

0: सिर दर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरो सर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
1: अगर आप अपने खास मौकों के लिए ढूंढ रहे हैं कुछ बेहतरीन गहने, तो आज ही आइए उत्सव ज्वेलर्स। यहाँ आपको मिलेंगे खूबसूरत कुंदन, पोल की नक्काशी और नागरी पर विशेष छूट।
2: हमारे यहाँ 25% डिस्काउंट डायमंड पर और 100% हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ पुराने सोने पर 100% वापसी भी की जाती है।
1: पता लाइन पार्क, प्रकाश नगर चौराहा, मुरादाबाद। मोबाइल नंबर 7055070552।
3: एक बार फिर से स्वागत है आपका श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आपका अपना फेवरेट प्रोग्राम, जहां पर ढेर सारी बातें होती हैं, शेरो शायरी की बातें होती हैं। ये वो शाम होती है जहां आप अपने थक के ऑफिस से घर आते हो और हम आपकी शाम को थोड़ा सा खुशनुमा बनाते हैं कुछ अच्छी बातों से और कुछ अच्छी लोकल आवाजें आप तक पहुंचाते हैं, और कुछ ऐसी आवाजें जो आपके बीच में ही रहती हैं, शायद आप में से बहुत लोग उन्हें जानते भी हैं। और आज एक बार फिर से उन्हीं आवाजों को आपके बीच में रूबरू कराने आपसे और उनके साथ ढेर सारी गुफ्तगू करने हम स्टूडियो में आ गए हैं। आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद, RJ आनंद और अखिल भाई के साथ, और हमारे बीच में दो और बड़े प्यारे मेहमान आफ्टर लॉन्ग टाइम एक बार फिर से पधारे हैं। बहुत दिनों के बाद इनसे आज फिर से हम जो है वार्तालाप करने वाले हैं, तो सब कुछ मैं ही बोल दूंगा तो मेरे पैसे नहीं बढ़ेंगे।
4: पिछली बार आनंद, पिछली बार तुमने मेरी बहुत खिंचाई करी है, और आज मैं पूरा बदला लूंगा तुमसे। देख
3: बिल्कुल, इसीलिए मैंने कहा ना, अगर सब कुछ मैं ही बोल दूंगा तो मेरे पैसे तो बढ़ेंगे नहीं, इसलिए मैं आपसे तो बुलवाई लूं, है ना।
4: तुम्हारे पैसे
3: देखिए, हमारे गेस्ट को हमने वेलकम भी नहीं किया, वो बीच में ही बोल गए, क्या बात है, बहुत बढ़िया। शायद उनकी आवाज पहचान तो नहीं होंगे लिसनर?
4: नहीं नहीं पहचान गए होंगे, 100% पहचान।
3: चलिए कोई बात नहीं, अभी उनका जो है इस्तकबाल कर लेते हैं। एक बार फिर से सर बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से FM के स्टूडियो में। हमारे साथ कमल जी एक बार फिर से हैं, और साथ में उनके जोड़ीदार चमचमाती हुई स्माइल के साथ पहुंच गए इंजीनियर राशिद हुसैन साहब। बहुत बहुत इस्तकबाल,
4: स्वागत है आपका। और आप आज, मुझे पता है कि पूरे दिन आपका भी भाग दौड़ वाला रहा होगा, तो कैसा रहा आज आपका दिन?
3: राशिद जी और कमल जी से पूछा,
4: दोनों से ही पूछा जा रहा है, दोनों ही सोच रहे हैं अभी कि क्या बताओ यार,
3: पूरा दिन तो वही होता है,
4: भागा दौड़ी वाली रही है।
3: वैसे राशिद जी,
5: वैसे तो दिन में थोड़ी रहती है
3: जी जी,
5: बट आज डबल हुई है,
4: डबल हो गई है,
5: क्योंकि जी ने शाम को दौड़ा दिया।
3: अब इनसे हम आप एक्स्ट्रा चाय पिलवाएंगे आपको, कड़क, आप चिंता ना। अच्छा तो कमल जी, आप प्रोफेशनली आप जो है हमारे बहुत सारे नए श्रोता भी जुड़े हैं, आप क्या करते हैं जरा ये बताइए हमारे मुरादाबाद की जनता।
5: जॉनसन जॉनसन सर्जिकल सेल्स डिविजन में काम करता हूँ।
3: अच्छा,
5: मतलब ये लगाइए कि जहाँ सर्जरी है वहाँ हमें।
3: और आप कब से मुरादाबाद में, मतलब इसमें हैं, शेरो शायरी में कब से आए हैं आप?
5: शेरो शायरी में ज्यादा लंबा एक्सपोजर तो नहीं है, पिछले लगभग 3-4 साल से।
3: 3-4 साल से, ओके। और इतना उम्दा जोश, इतना उत्साह है आपके अंदर उस चीज को लेकर, मतलब वो अलग ही निकल के आता है।
5: देखिए ना, मेरे पड़ोस में कौन बैठा हुआ है।
3: अच्छा, मैं उनसे भी पूछूंगा फिर यही सेम सवाल, वो फिर आपको बोलेंगे।
5: अरे वाह, कुछ लिख देता हूँ आपको सुना देता हूँ।
3: बहुत बढ़िया। अब मुरादाबाद में कहाँ रहते हैं कमल साहब? चंदन नगर। अरे हाँ, मेरे बड़े प्यारे लिसनर रहते हैं वहाँ, बहुत सारे लिसनर है चंदन नगर, यही ना अपना लोगो शीट के पुल के नीचे जाके, कभी गया नहीं हूँ लेकिन पता है मुझे अखिल जी। चलिए अब हम दूसरे अपने जो गेस्ट हैं उनका स्वागत करेंगे। हमारे बीच में इंजीनियर राशिद हुसैन साहब हैं। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, खैर मकदम करते हैं अपने स्टूडियो में, बताइए कैसे मिजाज हैं आप?
6: बस अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है।
3: चलिए इंशाल्लाह सब अच्छा ही रहना चाहिए, और हमारे श्रोतागण भी आपको सुनने के लिए बेकरार हैं, तो आज की शाम हमने आपको परेशान किया उसके लिए तो माफी चाहेंगे।
4: तो शुरुआत सर से ही की जाए, सर एक इसी भागा दौड़ी वाली जिंदगी पे कुछ सुना दिया जाए।
3: हाँ हाँ,
6: भागा दौड़ी वाली जिंदगी तो कमल साहब की है। अच्छा। मैं तो आराम से हूँ। अच्छा। सुबह होती है, शाम होती है, जिंदगी ही तमाम होती है, किसी साहब का शेर है, रिपीट कर दिया। लेकिन जब बात चाय की आ रही थी, हाँ
3: हाँ।
6: चाय पी लेंगे तो थकन उतर जाएगी। हाँ, चाय का कड़क चाहिए, चाय आपने जिक्र किया तो चाय।
3: चलिए अखिल जी, आप चाय ऑर्डर करके आइए, तब तक मैं जो है इनको संभालता हूँ। अखिल जी कह रहे हैं आस पास में कोई चाय वाला ही नहीं है, कोई बात नहीं, मैं निकलता हूँ, मैं बना के ले आता हूँ।
4: मुझे मुझे थोड़ा सा जुकाम हो रहा है ना,
3: आपके जुकाम ने ऐसा माहौल बना दिया है ना,
4: तब से जुकाम रुका नहीं है मेरा, पिछले शो से काम रुका ही नहीं है।
3: अच्छा चलिए, मैं इसको रोकूंगा भी, चिंता मत करो आप, मेरे पास क्या इलाज है। तो वेल आगे बढ़ते हैं, और कमल साहब और
5: चाय से मेरे को एक और चीज ध्यान आई।
3: जी जी,
5: आज या शायद कल इंटरनेशनल टी डे था।
3: हाँ हाँ
6: अच्छा,
3: हाँ, नहीं वो मैं आपको बताता हूँ, रिसेंटली हमने उसको 21 सितंबर को हम मनाते हैं राष्ट्रीय चाय दिवस, नेशनल टी डे होता है, तो हमने अभी हाल ही में सेलिब्रेट किया, अभी जो सितंबर में चल रहा है ये नेशनल वाला है, राष्ट्रीय वाला चाय दिवस है। आजकल तो नए नए आ गए हैं सरकार, तो लेकिन आपने ये बात क्यों करी, आप मतलब स्पेशल कुछ करते हैं?
5: चाय बात को जोर पड़ जाए, चाय जल्दी आ जाए।
3: अच्छा, चाय तभी आएगी जब अखिल जी चाहेंगे, राशिद जी तो सिर्फ बोल सकते हैं।
6: चाय तो जरूर पियेंगे, हमारा धन्यवाद यही है कि हम चाय पियेंगे।
3: अच्छा, तो
6: और पिछली बार जब हम आए थे तो कितना मजा आया था हमारा। अखिल जी की तबीयत उस दिन शायद ठीक थी, आज शायद
3: थोड़ी सी नशाद है। हाँ हाँ, चलिए हम दुआएं करेंगे,
6: हम दुआ करेंगे कि वो जल्दी सही हो। लेकिन पिछली बार भी इतना मजा आया था, आज भी लग रहा है कि ज्यादा मजा आने वाला।
3: चलिए काम करते हैं, हम लोग 5 मिनट से बोल रहे हैं, लिसनर कह रहे होंगे गाने नहीं चला रहे, सिर्फ बातें हो जा रही है। तो अभी हमें गाना सुनवाते हैं, उसके बाद लौट कर आते हैं। तब तक अखिल जी क्या करेंगे ना, हमारे दो मेहमानों को पानी की बॉटल पकड़ाते हैं, और हम भी पानी की बॉटल पकड़ाने में थोड़ा बिजी हो जाते हैं, जरा उनकी खातिरदारी करके आते हैं। भाई हमारे दो स्पेशल मेहमान आए, आप ये गाना सुनिए, वापस आ रहे हैं।
7: ये रातें

0: श्रोताओं, एक छोटा सा ब्रेक, उसके बाद एक बार फिर से हाजिर हो गए हम आपके रेडियो सेट पे। आप प्लीज थोड़ी वॉल्यूम बढ़ा लीजिए और हाँ, रेडियो के सेट के पास जरा अपना कान ले आओ। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, ऐसे सुनना है आपने। और अभी तो फिलहाल शुरुआत हुई है, हमारे बीच में कमल जी है और इंजीनियर राशिद हुसैन साहब जो है एक बार फिर से हमारे स्टूडियो में आए हैं एफएम मुरादाबाद के। सर, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आप शुरुआत करेंगे, अब मेरी बारी होती है यहाँ पर बंद और आप लोगों की शुरू, तो कौन पहले सुनाएगा आप लोग डिसाइड कर लें, क्योंकि मैं बड़ा कंफ्यूज हूँ, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे से इतने ज्यादा क्लोज हैं। ये वो सुनाए तो उनको बड़ा प्यार आता है, वो सुनाए तो उनको प्यार, तो मैं सोच रहा हूँ मैं किसको पहले बोलूँ। तो सर, ये लोग आप डिसाइड करें, ये कमल जी बताएंगे पहले उनको सुनना है या राशिद जी बताएंगे पहले उनको सुनना है।
1: आपके श्रोता क्या कह रहे हैं?
0: हाँ, श्रोता तो ये कह रहे हैं कि भैया दोनों को ही सुनना है।
1: दोनों को सुनेंगे, खिचड़ी बन जाएगी।
0: खिचड़ी नहीं बनेगी, दोनों की अपनी अपनी अलग है भाई, बोलने का तरीका दोनों का, अपने अपने शेरो शायरी अलग है, अंदाज अलग है, नो डाउट। कहते हैं ना राशिद जी, हर इंसान में एक अलग यूनिक चीज होती है ना, हर इंसान की पहचान अपने काम से होती है, किसी की तैयारी, हर किसी का स्टाइल अलग है। जी कमल सर, जब तक राशिद जी कुछ गाने में लगे, मैं चाहूंगा आप ही शुरुआत कर दें। चलिए, मैंने आपके ऊपर ही छोड़ दिया पूरा मुद्दा।
1: चलिए पेश करता हूँ फिर, कि उभर रहे हैं भाव जो मन में, उभर रहे हैं भाव जो मन में, उन भावों को कहने दे। उभर रहे हैं भाव जो मन में, उन भावों को कहने दे, बाकी बीच में क्या तलखी है, बाकी बीच में क्या तलखी है, आज की खातिर रहने दे।
0: हाय हाय हाय, क्या बात,
1: बाकी बीच में क्या तलखी है, आज की खातिर रहने दे। यूं तो सच्चे प्यार का देखो वैसे कोई मोल नहीं, यूं तो सच्चे प्यार का देखो वैसे कोई मोल नहीं, पर सबकी औकात नहीं कि लाकर महंगे गहने दे, बाकी बीच में क्या तलखी है, आज की खातिर रहने दे।
0: क्या बात है,
1: सावन का मौसम है इसमें अक्सर बारिश होती है, सावन का मौसम है इसमें अक्सर बारिश होती है, असमंजस की दीवारें अगर ढहती हैं तो ढहने दे, बाकी बीच में क्या तलखी है, आज की खातिर रहने दे। सुना है थोड़ा रोने से, सुना है थोड़ा रोने से कुछ मन का कुछ मन हल्का हो जाता है, सुना है थोड़ा रोने से कुछ मन हल्का हो जाता है, आंखों के मोती आंखों से बहते हैं तो बहने दे, बाकी बीच में क्या तलखी है, आज की खातिर रहने।
0: क्या बात है, क्या बात है,
2: क्या बात,
0: बहुत ही शानदार, बहुत मजा आ गया सर सुनते रहे।
1: आपने अभी शुरुआत जब प्रोग्राम की करी तो आपने पूछा था कि जो नए लिखने वाले उनके लिए क्या इंस्पिरेशन है, तो सबसे बड़ी इंस्पिरेशन है उनके लिए सब्जेक्ट,
0: सब्जेक्ट
1: पढ़ने के लिए आपको 10 सब्जेक्ट मिल जाएंगे,
0: 10 सब्जेक्ट मिल जाएंगे,
1: आपके आसपास जो घट रहा है ना घटना है वो सब सब्जेक्ट है आपके लिए,
0: वो ऑब्जर्व करने की होनी चाहिए ना।
1: अब आपको सब्जेक्ट में घुसना है, उसको आगे थोड़ा बढ़ाना है और उसको शब्दों में बदलना है।
0: क्या बात है, कुछ नया सा कुछ करना है, मतलब बहुत बढ़िया, सब कुछ हमारे घटित घटनाओं से रिलेटेड होती है,
1: नकल करने से बचना है।
0: हाँ,
1: नया अपना निकालिए, आप दिमाग लगाइए, नए शब्द खोजिए, बनाइए उसको अपनी भाषा, अपने अपने अपनी अपनी लैंग्वेज आपसे बदलिए उसे,
0: अपना स्टाइल दीजिए, मतलब एक नया है ना,
1: एक नई चीज निकल के सामने।
0: बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर मैसेज भी आपने दे दिया है। और देखिए, साहित्य में तो वैसे सीखने के लिए बहुत कुछ, और मुझे भी लग रहा है कि थोड़ा थोड़ा घुस जाना चाहिए, हालांकि मैं रेडियो वाला हूँ, और लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि आप जितनी नई चीज एक्सपीरियंस करो वो आपको कहीं ना कहीं यूज में आती है, काम में आती है ना। और मुझे लगता है कि एक जो एक शब्दावली है वो भी कहीं ना कहीं कनेक्टेड है आपके इसमें, है ना। बहुत सारे मैंने काव्य पाठ सुने हैं रेडियो पे, मैं बहुत रेडियो में सुनता था काव्य पाठ, बहुत सारी ऐसी शब्दावली होती है, तो कहीं ना कहीं नई नई चीजें सीखने को मिलती है आपके साहित्य में। आप जब बातें करते हैं शेरो शायरी गजल, उसमें भी कुछ ना कुछ नए नए अल्फाज निकल कर आते हैं राशिद साहब, तो कहीं ना कहीं जब हम और हम लोग जिस प्रोफेशन में, इसमें हमें हर दिन नए शब्द चाहिए होते हैं, है ना, हर सेकंड में हमें एक नया अल्फाज चाहिए, तो जब हम आप लोगों को सुनते हैं तो उसमें बहुत सारे ऐसे शब्द आते हैं जो हम सुन लेते हैं और सीख जाते हैं कि हाँ आज ये नया सीखा मैंने, तो बहुत अच्छा लगता है। और ऐसे ही हम चाहेंगे राशिद जी से भी कि वो भी कुछ नए शब्दों से, कुछ नई बातों से रूबरू कराएं अपने आप को यहाँ पर।
2: अभी कमल साहब ने बड़ी अच्छी बात कही,
0: जी जी,
2: कि सब्जेक्ट हमारे आसपास है, एक अच्छे लेखक के लिए वो जितना ज्यादा समाज में रहेगा, जितना ज्यादा घूमेगा उतना अच्छा लिख सकता है,
0: अच्छा लिख सकता
2: है, ये एक हकीकत है और ये मेरा तजुर्बा भी है।
0: अरे वाह, क्या बात,
2: इस बात पे ताहिद करता हूँ उनकी। और एक चीज और है, कुछ लोग, मैं युवाओं से कहना चाहूंगा, जो लिसनर से
0: जी,
2: जो भी लिखने की इच्छुक है, लिखना चाहते हैं,
0: शौकीन है,
2: शौकीन है, वो जबरदस्ती ना लिखे,
0: मतलब दिल से आए मन से आए,
2: जबरदस्ती ना लिखे,
0: ठीक है,
2: कि नहीं खूब लिखना है, नहीं खूब ना लिखे,
0: ओके,
2: जबरदस्ती ना लिखे कि आज लिखना है, नहीं आज ना लिखे, जब ऑटोमेटिक आपके दिमाग में आएगा, एक कुदरती आपके दिमाग में कि ये शब्द आएंगे, एक मिसरा आएगा, एक लाइन आएगी, जब आपका दिमाग शब्दों से भर जाएगा, दिल से वाके नहीं, अब वो टाइम रात का 1 बजे का भी हो सकता है, वो रात का 2 बजे का भी हो सकता है, वो रात का 3 बजे का भी, सुबह सहर भी हो सकती है, वो कभी कभी आप काम के टाइम में लंच भी हो सकता है, कभी आप अपने किसी काम पर बैठे वो टाइम भी हो सकता है, उस टाइम का कोई टाइम नहीं है, तभी आप पन्ना उठाएं, एक कागज उठाए, कलम उठाए, उन लफ्जों को लिख दे, उन पंक्तियों को लिख दे, उसके बाद में फिर उसको बाद में ठीक करें, क्योंकि शायरी के लिए जैसे कि कविता के लिए छंद और क्या होता है वो सब एक फार्मूला होता है। जैसे मैथमेटिक्स के सवाल आप गणित में, गणित के मैथमेटिक्स के सवाल आप एक फार्मूले के तहत हल किए जाते हैं, इसी तरीके से शायरी के भी एक फार्मूला होते हैं, बहर जिन्हें बोलते हैं बहर, उस बहर में आपको रखने होते हैं अपने हर मिसरे को, तब आप उसमें मतलब एक अच्छी शायरी बन सकते हैं। फिलहाल आपने कहा कि कुछ सुनाना है, तो एक ये चार मिसरे आपकी नजर फिर मैं कर रहा हूँ, आपकी मोहब्बतों के
0: जी जी इरशाद हुजूर,
2: अखिल साहब से भी तवज्जो चाहूंगा
0: जी जी,
2: चार मिसरे पे आपकी तवज्जो
3: जरूर साहब, जरूर जरूर,
0: आप जरा गौर कीजिए, जरा ध्यान से सुनिए,
2: तो आपकी आपकी मोहब्बतों के हवाले, और ये हमारे मित्र, हमारे बड़े परम मित्र हैं हमारे कमल, कमल साहब, ये मैं जो समझ जाएंगे मैं क्या बोल रहा हूँ, क्योंकि एक शायर का मन एक शायर बड़ी अच्छी से समझ जाता है कि कश्ती को साहिलों पे मुझे छोड़ना पड़ा,
3: क्या बात,
2: कश्ती को साहिलों पे मुझे छोड़ना पड़ा, मुंह मोड़ना कठिन था मगर मोड़ना पड़ा, कश्ती को साहिलों पे मुझे छोड़ना पड़ा, मुंह मोड़ना कठिन था मगर मोड़ना पड़ा, और राशिद गवाह बनने लगा था वो दर्द का,
3: क्या बात है,
2: राशिद गवाह बनने लगा था वो दर्द का, आईना इसलिए भी मुझे तोड़ना पड़ा, आईना इसलिए भी मुझे तोड़ना पड़ा। बहुत शुक्रिया, आपने मेरे शेर आपने पसंद फरमाया, मैं इसके लिए बड़ी आपका शुक्रगुजार हूँ, और मैं चाहूंगा कि थोड़ा मौका आप कमल भाई को एक बार,
0: जरूर जरूर, हम उससे पहले लिसनर को एक गाने का मौका देते हैं, मतलब एक गाना सुनाते हैं, और मैं तो बड़ी हैरत में हूँ कि इतनी सुंदर सुंदर खूबसूरत बातें, मतलब क्या कमाल की चीजें मतलब लेकर आए कमल साहब और राशिद साहब। चलिए अभी ये लोग हमारे बीच में रहेंगे श्रोताओं, बाकी अभी हम आपके लिए छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद हम वापस आते हैं, फिर थोड़ा सा कुछ और सुनेंगे,
3: उसके बाद जो है ना, मैं अल्फाज तो मेरे होंगे मगर जो अंदर दिल की बातें होंगी वो आनंद जी की होगी,
0: क्या बात है, रिचार्ज होकर आए हैं अखिल भाई, तो इनका रिचार्ज का जो बैलेंस है वो बिगाड़ के आता हूँ, आप कहीं मत जाइए, गाना सुनिए।

0: एक बार फिर से श्रोताओं स्वागत है आपका। आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज पे आपका फेवरेट प्रोग्राम जहां शेर व शायरी की महफिल सजती है और यह है आपके शहर का अपना कम्युनिटी रेडियो। अखिल और आनंद के साथ बने हुए प्रोग्राम में अखिल भाई कुछ शिरकत करना चाह रहे हैं हमारे प्रोग्राम में।
1: मोहब्बत नाम है जिसका वो एहसास बन जाए।
0: क्या कहने,
1: किसी की एक मुस्कान से पूरा दिन खास बन जाए।
0: वेरी नाइस।
1: ना हो सामने फिर भी दिल के पास रहे। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो बिना बोले भी खास रहे। तो जैसे कमल जी का रिश्ता है
0: राशिद जी के साथ।
1: बिल्कुल सही,
0: मैं समझ गया हूँ।
1: तो कुछ रिश्ते होते हैं ऐसे कि बिना बोले भी खास बन जाए।
0: बिल्कुल, और मैं देख रहा हूँ कमल जी जो है अपनी पोटली खोल चुके हैं और कुछ सुनाने के लिए जो है वो बिल्कुल तैयार हैं।
1: हम तो बहुत देर से वेट कर रहे हैं,
0: हमें बस करना है एक्शन।
1: कब उनकी पोटली से रोटी निकले, अचार निकले।
0: भाई रोटी अचार के लिए घर जाना पड़ेगा, यहाँ ये बातें नहीं होंगी। जी कमल जी, आप अपनी शेरो शायरी का जो फलसफा है वो शुरू कीजिए।
1: पिछली बार आपने भिंडी की सब्जी खाई थी, नहीं खाई थी ये बताइए।
2: खाई थी
0: वो आपको जरूर खिलाएंगे, लेकिन थोड़ा वक्त
1: क्या पता भाभी जी शाही पनीर बना रही हूँ सुनते के साथ ही भिंडी बन गई।
0: जी जी कमल जी प्लीज।
2: कुछ लिखा है उनके लिए जो एकदम शॉर्टकट से ऊपर जाना चाहते हैं।
0: हाँ, अरे वाह क्या बात है। ऐसे बहुत सारे लोग मेरे कांटेक्ट में भी हैं जिनको रातों रात अमीर बनने और रातों रात उन्हें कामयाबी चाहिए।
2: अखिल जी की तरफ क्यों?
0: नहीं नहीं, अखिल जी की तरफ नहीं। अखिल भाई बहुत मेहनती हैं, वो शॉर्टकट जिंदगी में बहुत जल्दी अपनाना चाहते हैं लेकिन अपना नहीं पाते हैं।
1: नहीं, हमें अपनाना भी नहीं है,
0: हमें
1: सीखा भी नहीं है शॉर्टकट अपनाना।
0: बहुत बढ़िया, ये तो बड़ी अच्छी बात है। खैर ये बिल्कुल सच बोला इन्होंने। इससे जोक सपाट जी
2: लिखा उस पर वर्ड आएगा
0: ज्वार भाटा। एक बार समझा दीजिए सर, हम नादान है थोड़े।
2: थोड़ी नजर डालिए ज्वार भाटे पर।
3: ज्वार भाटा जैसे
1: वॉल्केनो कहना चाह रहे हैं।
2: हाँ,
0: अच्छा ओके
3: लहरें वगैरह।
0: हाँ वो अखिल भाई ने उसका पार्ट पढ़ाया था मुझे, किसी कंट्री में दिखाया था। हाँ, समझ गया मैं।
1: समझ गया आप?
0: हाँ जी जी,
1: देर से समझते हैं मगर समझ जाते हैं।
2: उसी पंक्ति में एक बड़ी बात कहने की कोशिश करिए राशि साहब।
3: जी बिल्कुल।
2: नींद क्या ख्वाबों का केवल दोष था।
0: हाँ,
2: नींद क्या ख्वाबों का केवल दोष था, हैसियत को देख कर बांटे गए। हैसियत को देखकर बांटे गए और अर्श तक जाने का जिनको शौक था।
0: होई होई।
2: अर्श तक जाने का जिनको शौक था, पेड़ बस पहले वही काटे गए।
1: होई होई होई होई।
2: पेड़ बस पहले वही काटे गए और ज्वार की तासीर थी जिनकी उन्हें। ज्वार की तासीर थी जिनकी उन्हें, रोकने में कितने ही भाटे गए। रोकने में कितने ही भाटे गए और थे बताते खुद को मनसद साहिब। थे बताते खुद को मनसद साहिबे। दाल संग जूते में वो बांटे गए।
3: बहुत बढ़िया।
2: दाल संग जूते में वो बांटे।
1: बहुत ही बढ़िया।
2: क्या खाबों का केवल दोष था, हैसियत को देखकर बांटे गए।
0: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, दिल को छू गई ये बात। और इससे एक मैसेज भी जाता है कहीं ना कहीं कमल जी की जिंदगी में शॉर्टकट हमेशा इंसान को नहीं अपनाना चाहिए।
1: बिल्कुल।
0: और पहली बात तो अपनाना ही नहीं चाहिए शॉर्टकट, है ना। देर से ही सही लेकिन अपना अच्छा रास्ता चुनो जो आपको आपकी सफलता पर लेके भी जाए और आपको अच्छा भी फील कराए। फिर कमल जी कहेंगे आनंद जी देखिए मैं तो साहित्य की नजरों से देखता हूँ तो आप उसको जरा डीपली में ना लेकर जाए। उनका अपना अपना एक तरीका है, मतलब साहित्यकार लोग जो होते हैं वो सिर्फ उनको एक शब्द चाहिए होता है जो आज मैंने सीखा है। हुजूर सही कह रहा हूँ ना मैं? तो राशिद जी मैं आपकी तरफ भी आना चाहूंगा, आप भी अपनी पोटली खोल लीजिए और अब वक्त है आपकी पोटली की पन्नों से कुछ बाहर निकल आए। तब तक अखिल जी आप कुछ सुना दो इमीडिएटली, तब तक हमारे राशिद जी लगे हुए हैं।
1: ये मैं फिर से अपने श्रोताओं से बोलूंगा कि अल्फाज मेरे हैं।
0: हाँ,
1: मगर जो दर्द है
0: मुझे हो रहा है।
1: हाँ,
0: अल्फाज आपके हैं।
1: हाँ, तुमसे बात हो तो दिन अच्छा लगता है। तुम्हारी आवाज सुनकर दिल बच्चा लगता है।
0: क्या कहना,
1: पता नहीं क्या रिश्ता है तुमसे मेरा, पर तुम्हारा नाम सुनकर दिल सच्चा लगता है।
0: इतनी बच्ची शायरी सुनाई, मुझे नींद आ रही है दोस्तों। मैं गाना सुन के आता हूँ, सच बता रहा हूँ अखिल भाई।
1: मुझे पता था तुम नहीं दिल से।
0: नहीं अखिल भाई आपने दिल से,
1: अभी तुम्हारी शादी नहीं हुई है ना, अभी तुम अभी उस फेस में हो जिस फेस में ये।
0: अखिल जी मैं चाह रहा हूँ कि एक दिल वाला गाना बजा देता हूँ। एक गाना है ना
1: दिल
0: जो भी है
1: ना,
2: परदेश
1: है ये दिल।
0: अच्छा परदेश फिल्म का गाना सुनवाया आपको। दिल
1: ओके,
0: ठीक है। दिल वाला गाना सुनाते हैं और आपको एक कप चाय पिलाते हैं। चलिए अभी वापस आते हैं।

0: श्रोताओं एक बार फिर से स्वागत है आपका, और ये जो स्वागत रहेगा ये बस अलविदा वाला स्वागत होगा क्योंकि जाने का समय भी हो रहा है। लेकिन जाने से पहले हम राशिद जी को जरूर सुनेंगे और कमल जी को हमने सुना और बाकी हम लोग भी आपसे इजाजत लेंगे, लेकिन समय को बिल्कुल ध्यान में रखते हुए हम राशिद जी की तरफ बढ़ेंगे। तो राशिद हुसैन साहब, आप चार मिश्रे रखना चाह रहे थे हमारे लिसनर के समक्ष, तो स्वागत है आपका।
1: जी बहुत शुक्रिया आनंद जी।
0: जी
1: ये मैं अपने चार मिश्रे आपकी नजर रखना चाहता हूँ।
0: जी जी।
1: कर जो पाबंदियाँ हैं होने दो, घर जो पाबंदियाँ हैं होने दो, गम के मारे हुए हैं रोने दो।
2: क्या बात है।
1: घर जो पाबंदियाँ हैं होने दो, गम के मारे हुए हैं रोने दो,
2: बहुत खूब।
1: और एक दिन छोड़ देंगे दुनिया को आनंद जी,
0: मैं सुन रहा हूं।
1: एक दिन छोड़ देंगे दुनिया को, अपना दामन जरा भिगोने दो, अपना दामन जरा भिगोने दो।
0: क्या बात है राशिद साहब, कमाल कर दिया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जी कमल सर, आप कुछ कहना चाहेंगे?
3: नहीं,
0: इसी बात पे
3: मैं तो चुप हो
0: क्या बात, क्या बात है राशिद जी,
3: मैं पहले ही बहुत बोल चुका हूँ।
0: हाँ, अब हम भी राशिद जी को सुन लेते हैं, चलते चलते हैं। क्या सुनाना चाहेंगे सर? तो क्या कह रहे हैं कि कलमों की किताब में अभी फिलहाल इतना ही?
2: क्या
0: सर कह रहे हैं कि पंडों की किताब में अभी इतना ही?
3: नहीं है,
2: अभी है सर, सुना है, पूरा कर रहे हैं।
1: लेकिन लेकिन समय रेडियो का समय भी तो देखना है। अगर हमें, हम तो सुनाए जाएंगे लेकिन हमें अपना समय को भी तो ध्यान रखना है, हमें फिर अगली बार नहीं बुलाएंगे।
0: बहुत अच्छा लगा राशिद जी, कमल जी, कमल सर, थैंक यू सो मच। आपकी वजह से एक नायाब हीरा और हमें मिला हमारे रेडियो को, बहुत बहुत धन्यवाद। और मतलब सच में कमाल कर दिया, धोती फाड़ के रुमाल कर दिया, वो वाला था आज का ये सीन, बहुत मजा आया। और अखिल भाई, आप कुछ कहना चाहेंगे हमारे आज के स्पेशल मेहमानों को? चाय आपने बनवाई ली होगी, मुझे पूरी पूरी उम्मीद है, और जो लिसनर हमारे सुन रहे हैं वो भी अब इस बात पे चाय बनाने जा रहे हैं कि भाई बहुत चाय चाय हो गई आज।
2: चाय जो मेरे हाथ की चाय है ना, वो हर किसी के,
0: आपके हाथ की चाय हम मान ही नहीं सकते, आप तो हिली नहीं है यहाँ से, हम कैसे
1: मान। अदरक वाली चाय पियेंगे, पिछली बार आपने बिना अदरक की पिलाई थी, आज मौसम जरा थोड़ा अच्छा है तो।
2: हाँ हाँ, क्यों नहीं क्यों नहीं, अदरक वाली ही चाय मिलेगी आपको, वो बात अलग है, अदरक आपको ढूंढना पड़ेगा।
0: अच्छा, ऐसा भी है क्या?
3: अखिल भाई का जो बैकग्राउंड रहा है ना, वहाँ चाय तो ठीक है, या की जगह कुछ और चीज होती थी, या की जगह पा होता था।
0: पा सर, एक्चुअली मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, आप अगर थोड़ा बता दें स्पष्ट हो जाएगा, हमारे लिसनर को भी तो पता चल जाएगा।
3: वो समझ गए, बताएंगे वो?
0: अच्छा चलिए,
2: चाप कहना चाह रहे हैं, चाप
0: चाप। अच्छा, ओ
3: ग्रिल्स।
0: हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। क्या
2: कहना बहुत है कुछ तुमसे,
0: हाँ
2: कहना बहुत है कुछ तुमसे, मगर शब्द कम पड़ जाते हैं।
0: आय हाय,
2: जब तुम सामने आते हो हम खुद ही तुम्हें देखकर मुस्कुरा जाते हैं।
0: क्या बात,
2: तो बहुत ही अच्छा। मैं तो अपने दोनों,
0: जी
2: मैं अपने दोनों जो हमारे मेहमान और आज की जो रौनक बड़ी है, मतलब कहते हैं ना, पिछली बार भी मैंने तुमसे ये बात बोली थी आनंद कि वक्त का पता नहीं चलेगा, और सेम ऐसे ही हुआ कि आज जब दोबारा इतनी गुफ्तगू हुई और इतना हमने समय निकाला तो ये समय भी हमें कम लगने लगा।
0: क्या बात है, सच में बिल्कुल सही बात कही। और दोस्तों चलिए मैं भी चलता हूँ, और मेरा भी जो है समय हो रहा है जाने का, जल्दी आपसे फिर मिलेंगे रूबरू स्टेशन ऑफ द नेशन पे। बहुत बहुत धन्यवाद साहब आप लोगों का एफएम मुरादाबाद, और हम आपका दिल से शुक्राना करते हैं, और उम्मीद करते हैं आप आगे भी हमारे बीच में ऐसे ही शिरकत लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद साहब, बहुत बहुत नमस्कार। और दोस्तों मैं भी चलता हूँ, चलने से पहले बस इतना ही कहना चाहूंगा, दिल जवा तो बेवसी कैसी, दिल जवा तो बेवसी कैसी, और आजकल बच्चों के सफेद बालों की ऐसी की तैसी, कोई इलाज नहीं है उसका मेरे पास भी ना आपके पास। फिलहाल इस पे बात करने के लिए जल्दी के एक्सपर्ट को लेकर आ रहे हैं, आज के लिए बहुत कॉमन समस्या हो गई, आज नहीं फिर किसी और दिन बात करेंगे, अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, रखिए अपना ढेर सारा ख्याल, रेडियो बजाते रहिए
2: और गुनगुनाते रहिए।

0: सिर दर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
1: सीने में दर्द, सांस फूलना या तेज धड़कन को बिल्कुल नजरअंदाज ना करें। श्री साई हॉस्पिटल में डॉक्टर अखिल कौशिक डीएम कार्डियोलॉजी द्वारा एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टिक, पेसमेकर एवं अत्याधुनिक कार्डियक कैथ लैब की सुविधा उपलब्ध है, वो भी किफायती रेट्स पर। स्वस्थ दिल, सुरक्षित जीवन। आज ही अपॉइंटमेंट ले। श्री साई हॉस्पिटल, दिल्ली रोड, मुरादाबाद। कॉल करें 7060002430।
2: हेलो दोस्तों, नमस्कार, कैसे हाल चाल है? आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6, आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो है। और आज की शाम फिर से हम आपकी शाम को और शानदार बनाने के लिए और आपकी इस महफिल को और भी खुशनुमा बनाने के लिए आ गए हैं आपके रेडियो सेट पर। और आज इस प्रोग्राम को खूबसूरत बनाने के लिए मैं अकेला स्टूडियो में नहीं हूँ, मेरे साथ अखिल भैया भी साथ दे रहे हैं और साथ में कुछ और भी साथी हैं, उनसे आपको धीरे धीरे मिलवाएंगे। लेकिन पहले अखिल जी से मिलते हैं। जी सर, कैसे हैं आप? स्वागत है आपका।
3: मैं बहुत बढ़िया हूँ आनंद, और आप बताइए कैसे हैं, क्या करा आज आपने पूरे दिन?
2: बस पूरे दिन तो भैया वही था, रोजमर्रा की लाइफ डेली वही करते हैं, जो कल किया वही आज किया, थोड़ा सा नया था आज, हर दिन कुछ ना कुछ सीखते ही हैं। वैसे आज कुछ नया सीखा, आप बताओ, काफी चिकने चुपड़े होके बैठे हो, आज क्या चक्कर है?
3: नहीं, चिकने चुपड़े तो आज जरा डांट वाट पिट गई थी, घरवाली कह रही है।
2: अच्छा अच्छा, घरवाली
3: जो है पहले से ही बुढ़े नजर आ रहे हो।
2: तो मैंने शादी बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अच्छा, हमारे लिसनर सोच रहे होंगे कि यार ये जिनको लाते हैं उनसे बात नहीं करते, अपनी में लग जाते हैं, ये क्या चक्कर है?
3: आज बता, जब हमारे लिसनर्स, हमारे इन दोनों हमारे जो गेस्ट हैं, ये आज जो खास मेहमान है, तो उनकी जब आवाज सुनेंगे तो वो खुद ही कहेंगे यार क्या बात है, कमाल, मतलब कहां
2: थे। कुछ लोगों को तो पहले ये लगेगा पुराना ही चल रहा होगा, लेकिन हम इसमें कुछ नया ऐड करेंगे तो उनको समझ आ जाएगा कि नहीं, ये पुराना नहीं, नया है ना।
3: तो अब बस आने वाला जो अभी जो पल है वो दोनों के साथ बहुत ही बढ़िया होने वाला है।
2: चलिए,
3: ये जो वक्त है, मैं पूरी गारंटी देता हूँ आनंद कि हमें इस वक्त का पता ही नहीं चलेगा।
2: बहुत अच्छी बात है, और हमारे श्रोताओं को भी नहीं चलेगा, ये बात भी बिल्कुल फैक्ट है। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की शाम को और खूबसूरत बनाते हैं, और हम स्वागत करते हैं अपने स्टूडियो में हमारे दो जो स्पेशल मेहमान है उनका। लेकिन उससे पहले अखिल जी कुछ कहना चाहते हैं शायद, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है। जी सर, इंट्यूशन आ रही है।
3: मैं बस थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करने से पहले शायरी, हल्का सा शायरी से शुरुआत करना चाहूंगा।
2: जी माहौल ही बनेगा तभी, बताइए आप और आपकी शायरी का स्वागत करता हूँ मैं।
3: कुछ रिश्ते अल्फाज से नहीं,
2: हाँ,
3: खामोशी से समझ आते हैं।
2: क्या बात है,
3: कुछ लोग दूर होकर भी दिल के सबसे करीब नजर आते हैं।
2: क्या बात है जी, बहुत बढ़िया, दिल के तो सभी करीब हैं, इसीलिए तो हम यहाँ बैठे हैं, है ना। चलिए आज की शाम को और खुशनुमा बनाते हैं, बात है हमारे खास मेहमानों की। तो सबसे पहले हम सर का स्वागत करेंगे, उन्हीं की आवाज में हम सुनेंगे, उनका अंदाज में उन्हीं का परिचय, हम उनका नाम क्यों बनाए, हम तो उन्हीं से सुनेंगे, तभी तो कुछ नया होगा। जी सर, आप प्लीज अपने बारे में थोड़ा सा हमारे लिसनर्स को बताइए। आप काफी रेड टी शर्ट में चमक रहे हैं आज, हर बार की भांति आज भी कुछ नए लग रहे हैं आप, हर बार नए रूप में आते हैं
4: आपके लिसनर्स, लगता है मुझे भूल गए हैं, क्योंकि आपने काफी समय बुलाया मुझे।
2: नहीं, भूले नहीं है, हमने अभी रिसेंटली आपकी आवाज चला दी थी, आपको नहीं बताई, वो बात अलग है, है ना। आप हमारे बीच में, लिसनर के बीच में एक्टिव रहते हैं, आप नहीं सुनते हुजूर, तो इसमें हम
4: नहीं, ऐसी बात नहीं, सुनता रहता हूं।
3: नहीं तो वो कहां कहां सुने, किस किस की सुने, वो
4: ये बात भी है।
2: हाँ ये बात भी है, बातें तो हमारी चलती रहेंगी। लेकिन उससे पहले सर का जरा तारुफ करा देते हैं अपने लिसनर्स के सामने, उनको रूबरू करा देते हैं। सर प्लीज थोड़ा सा आप बताइए अपने बारे में।
4: वही आपका पुराना साथी कमल, अपने कुछ पुरानी
2: कमल, मुझे एकदम लोटस से एकदम वो खिली खिली वाइब आने लगती है।
3: तुम तो बिल्कुल एकदम पॉलिटिकली हो जाते हो।
2: नहीं नहीं भाई, पॉलिटिकल का कोई मतलब नहीं है, ये लोटस जो है अमीरी की निशानी है।
4: तो वही आपका पुराना साथी कमल एक बार दोबारा से आपके FM 89.6 मुरादाबाद पर। और सही कहूँ तो आज मैं अकेला नहीं हूँ,
3: हाँ, बस यही हमें बात पता
4: है, साहित्यिक हस्ती मेरे साथ हैं, मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं।
2: मतलब आज लिसनर को लग रहा है वो अब दोबारा कमल जी को झेलना पड़ेगा, उनको लग रहा होगा नहीं नहीं अब कमल जी को झेलेंगे नहीं, अच्छे से सुनेंगे उनके साथ। एक बार
4: देखा जाए तो 36 के साथ 24 फ्री होता है, आज 36 के साथ 48 फ्री है।
2: अरे वाह क्या बात है, वेरी नाइस, फिर तो मतलब और भी मजा आने वाला है कमल जी। और
4: आपके जो लिसनर्स हैं उनको निराश नहीं करूंगा, मेरे साथ आज मेरे साहित्यिक मित्र, बहुत अच्छे मित्र मेरे उपस्थित हैं, राशिद भाई, राशिद हुसैन साहब।
2: अभी लिसनर को कंफ्यूजन हो रहा होगा, फिर राशिद जी दो तीन दिन पहले तो आए थे, ये दूसरे वाले राशिद,
3: ये जो राशिद जी है ना, बस इनका अलग ही।
2: अच्छा तो वो अभी हम उनसे बात करते हैं ना, पहले हम जरा कमल सर का पूरा सुन लेते हैं। जी सर, आप प्लीज पूरा करिए अपना वाक्य।
4: वाक्य मैं इस तरह से पूरा करता हूँ कि मैं अपने मित्र राशिद भाई के लिए चार पंक्तियाँ प्रस्तुत करूँ।
2: अरे वाह,
3: क्या बात है,
4: और मैं नहीं बोलूंगा उस पर, राशिद भाई होंगे
2: पक्का
3: पक्का,
4: आप होंगे और अखिल भाई,
2: और आपको हम जाने नहीं देंगे, आप ये भी ध्यान,
4: मैंने जाना भी नहीं।
2: ठीक है, आप अपनी प्लीज जरा पंक्तियाँ रखिए, हम सुनने के लिए बैठे हुए हैं जनाब।
4: ये गौर फरमाइएगा रशीद भाई के लिए
2: जी,
4: कि जीवन में वो लोग भी ऐसे चंद हुआ करते हैं।
2: अरे वाह,
4: जीवन में वो लोग भी ऐसे चंद हुआ करते हैं जो खुद में ही दोहा मुक्तक छंद हुआ करते हैं।
2: अरे वाह, क्या कहने,
4: जो खुद में ही दोहा मुक्तक छंद हुआ करते हैं, जिनसे भी मिल जाते हैं उन जैसे बन जाते हैं।
2: क्या कहने,
4: वैसे भी मिल जाते हैं उन जैसे बन जाते हैं, बिना आईने के भी एक प्रतिबिंब हुआ करते हैं।
2: अरे वाह, वेरी नाइस, क्या बात है, जोरदार तालियां, मजा आ गया सर।
4: अब अगली आवाज जो आपके लिसनर्स को सुनाई देगी वो है राशिद साहब की, राशिद हुसैन साहब।
2: राशिद जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, सबसे पहले तो आपका इस्तकबाल करते हैं अपने स्टूडियो में, पूरी दिल की गहराइयों से एफएम मुरादाबाद के स्टूडियो में आपका स्वागत है। आप पहली बार आए हैं तो बहुत बहुत अभिनंदन, और मैं चाहूंगा कि हमारे लिसनर्स को अब आप भी कुछ अच्छी सी अपनी आवाज में बताएं, कुछ अपने बारे में बताएं।
5: बहुत शुक्रिया आनंद साहब, अजीत साहब, वैसे तो परिचय इन्होंने दे दिया, ये बात तो ये सच बोल रहे थे कि बहुत अच्छे मित्र हैं, लेकिन जो इन्होंने तारीफ कर दी वो ज्यादा कर दी, मैं इस लायक नहीं हूँ, मैं तो धूल मट्टी छापने वाला थोड़ा सा इंसान हूँ। और
2: जो काबिल लोग होते हैं ना वो अपने आपको ऐसे ही बोलते हैं।
5: साहित्य का छोटा सा एक छात्र हूँ, ये कमल भाई की मोहब्बत है कि वो मुझे इतना समझते हैं। और मेरा नाम इंजीनियर राशिद हुसैन के नाम से मैं साहित्य लिखता हूँ, जो भी गजल लिया मंच पे कहीं पर भी।
4: राशिद भाई हीरा जो था कोयले की खान से निकलता।
5: अरे नहीं नहीं नहीं, ये आपकी मोहब्बत है, हीरा कहाँ है,
2: मुझे लगता है अखिल भाई हमें चलना पड़ेगा, ये लोग आपस में तारीफ करते रहेंगे।
5: आपने बुलाया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एफएम मुरादाबाद 89.6 में आज मुझे आने का मौका मिला, मैं अपने आपको सौभाग्यशाली मानता हूँ
2: जी जी जी।
5: और आपसे मिलकर तो और भी अच्छा लगा आनंद जी, आपका तो मजा आ गया आपके बात करके।
2: अरे राशिद जी अभी तो मजा बाकी है, ये तो शुरुआत है, अभी तो सिर्फ ट्रेलर था, पिक्चर तो अभी आपके साथ शुरू होगी हमारी,
5: लेकिन फिर अब जब बात हो ही रही है तो
3: अरे बनता है सर उसी
5: के तना होकर यार कहाँ तन्हा हूँ मैं।
2: अरे वाह,
5: तना होकर यार कहाँ तन्हा हूँ मैं, तेरी यादें साथ लिए फिरता हूँ,
2: क्या बात है,
5: यादें साथ लिए फिरता हूँ मैं। और एक शेर और
2: जी जी,
5: मैं आपकी अपने श्रोता रखना चाहूंगा कि शाम ढले तो सारे परिंदे घर जाते हैं।
2: अरे वाह,
5: शाम ढले तो सारे परिंदे घर जाते हैं, जाए कहाँ वो जिनके टूटे नाते हैं, जाए कहाँ वो जिनके टूटे नाते हैं। और मैं चाहूंगा कि मैं अगर सुनाना शुरू कर दूंगा तो फिर कमल भाई कहेंगे कि राशिद भाई ये तो आज आप ही कर दो,
2: ये बात तो मैं
5: चाहता कमल भाई भी सुना,
2: ये बात तुम्हें,
5: लेकिन एक एक मतलब शेर और।
2: हाँ, प्लीज प्लीज।
5: कि तेरी यादें मिटा रहा हूँ, तेरी यादें मिटा रहा हूँ मैं, दिल से तुझको भुला रहा हूँ मैं।
2: क्या बात है, क्या कहने,
5: तेरी यादें मिटा रहा हूँ मैं, दिल से तुझको भुला रहा हूँ मैं, और रूह कैसे अलग बदन से करूँ, रूह कैसे अलग बदन से करूं, सोच कर मुस्कुरा रहा हूं मैं।
2: क्या कह रहा,
5: सोच कर मुस्कुरा रहा हूं मैं।
2: बहुत खूब, बहुत खूब सुना,
5: बहुत शुक्रिया।
3: अरे राशिद जी ये तो एक एक अलग ही हुनर है, ये आप मुझे ये बताइए कि कैसे आप ऐसी प्रोफाइल में है, कंस्ट्रक्शन की प्रोफाइल में है, आपका प्रोफेशन इतना मतलब कहते हैं ना हेक्टिक और इतना पूरे दिन की भागदौड़ वाला है, उस बीच आप ऐसी ये इतनी बढ़िया बढ़िया जो जज्बात और शायरी है कैसे निकाल लेते हैं।
5: कहा ना है कि अगर शायरी को अच्छा करना है तो मोहब्बत कर लीजिए, और मोहब्बत में जब टूटेगा तो दिल, वो बात अल्फाज दिल से ही निकलेंगे, तो शायद ऐसा हुआ हो मेरे साथ। और अखिल जी वैसे तो मुझे शौक है इसका, लिखने का शौक तो मुझे, मैं जब ट्वेल्थ में था सेकंड स्टैंडर्ड में, तभी से मैंने पहला थोड़ा थोड़ा लिखना शुरू कर दिया था, लेकिन बीच में फिर बीच में काफी गैप रहा, अपनी मसरूफियात होती है जैसे कि कारोबारी और एजुकेशनल, और तो लेकिन मुझे अगर मैं लिखता भी था तो रख लेता था, कोई मंच नहीं था मेरे पास, कोई उस्ताद नहीं थे। उसके बाद में फिर मैंने दोबारा लिखना शुरू किया, और मेरा कई जगह जब अखबारात में छपा और मुझे तारीफें मिली तो मेरी थोड़ी हौसला अफजाई हुई, मुझे हिम्मत आई मेरे अंदर से, और मैं फिर मैंने उस्ताद अपने बनाए, जनाब तहसीन अहमद मुरादाबादी साहब मेरे शायरी के उस्ताद हैं। तो उसके बाद में फिर मैं अपने लिखता रहा, लेकिन ये आपकी मोहब्बत की वजह से आज मैं आपके सामने हूँ।
3: नहीं नहीं, ये तो
2: बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात है। कह रहा हूँ कमल जी, आज नायाब हीरा को पकड़ के लाए हैं।
3: मैं मतलब मैं बात करते करते खो रहा हूँ।
2: हाँ, मुझे भी मजा आ रहा है, लेकिन कमल जी आपकी शेर व शायरी भी हम जरूर सुनना चाहेंगे।
4: और इससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है।
2: हाँ सर प्लीज।
4: राशिद भाई, एक वो शेर सुना दीजिए, नए बने हैं और पुराने टूट रहे हैं।
5: अच्छा, अरे
2: अरे वाह, क्या बात है। ये मतलब कॉन्सेप्ट भी बहुत प्यारा लग रहा है सुनने
4: में। देखिएगा उसके अंदर जो शेर में है, और वो इनकी आवाज में जचेगा,
2: क्या
4: खारे जंग की आवाज में, वो उसी आवाज में जचेगा।
5: मैं तो उससे अच्छा कुछ सुनाना चाह रहा था
4: ना। मेरा तो जब से पहला तारुफ आपसे हुआ है, वो शेर मेरे दिमाग में।
2: एक काम करते हैं, इन सारे शेरों से पहले गाना लेते हैं हम। ये शेर व शायरी तो चलती रहेंगी, हमारे लिसनर्स को थोड़ा एंटरटेनमेंट भी जरूरी है साहब। तब तक हम इनसे जरा और मुद्दे की बात करके आते हैं और आपको एक गाना सुनवाते हैं। शेर व शायरी की बात चली, गाना है मैं शायर तो नहीं, शायद आप लोगों ने सुना होगा, बहुत प्यारा गाना है,
5: बहुत अच्छा गाना। हाँ,
2: तो उसी से करते हैं आज के सफर का आगाज। क्यों अखिल भाई?
3: बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक लेके फिर से
2: बिल्कुल
3: ज्वाइन करते हैं।
2: वैसे गाना कह रहा है मैं शायर तो नहीं, लेकिन यहाँ जो दो लोग बैठे हैं वो सच में शायर हैं, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। और अखिल भाई तो बनी रहे आजकल प्रैक्टिस में है वो।
3: मैं तो मेरे साथ तो आनंद जी, जब से मैं आनंद जी के उसमें आया हूँ, टच में आया हूँ, तो
2: मैं भी शायर बनने की कोशिश में,
3: मैं भी आधे से आधा शायर बनी गया।
2: चलिए मैं चैट जीपीटी से कुछ पूछ के आता हूँ।

0: बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस्तकबाल है, खैर मकदम करेंगे आप सभी का स्टूडियो में। हमारे बीच में अखिल जी हैं, कमल जी हैं और हमारे राशिद साहब भी स्टूडियो में मौजूद हैं। और इस वक्त आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़ पे आपका प्रोग्राम, जहां पर शेरो शायरी की महफिल सजती है। और आज की महफिल तो हमारे दो खूबसूरत जनाब सजा ही रहे हैं, तो बिना किसी देरी के उनकी तरफ रुख करेंगे। लेकिन अखिल भाई से जरा कुछ सुनना चाहेंगे, शुरुआत इनसे होती है तो मजा ही आ जाता है।
1: सारी शुरुआत पहले से मेरे से करवा दो।
0: अरे बिल्कुल भाई जी,
1: एक प्यारी सी स्माइल दे दो कि यार अखिल भाई चालू हो जाओ फटाफट।
0: हाँ, बिल्कुल आपकी शायरी सुनती तो स्टार्ट होता है इंजन हमारी गाड़ी का।
1: हाँ बिल्कुल सही है। दोस्ती नाम है सुख दुख की कहानी का।
0: क्या बात
1: आज
0: है?
1: जैसे मेरे सामने जो दो दोस्त बैठे हैं, दोनों ही अपने मतलब इस फन में एकदम कहते ना, अगर हमें ही कुछ जहन में चाहिए होता है कि अगर मुरादाबाद में हमें किसी को सुनना है तो हम चाहते हैं कि भैया कमल जी कहाँ है और राशिद जी कहाँ है।
0: बिल्कुल।
1: तो इनकी दोस्ती देख के मुझे ऐसा लगा, दोस्ती नाम है सुख दुख की कहानी का, दोस्ती राज है सदा मुस्कुराने का।
0: अरे वाह,
1: ये कोई पल भर की पहचान नहीं, दोस्ती नाम है उम्र भर साथ निभाने का।
0: आजकल दोस्ती की उम्र भर की बात करते हो, लेकिन जब कमल जी से बात करते हो तो कहते हैं दोस्ती के ऊपर शायरी है का? शायरी तो प्यार के ऊपर लिखी जाती है, और खुद इतने अच्छा दोस्त लेके घूम रहे हैं साथ में।
2: तो आप शायर तो खाली विषय का भूखा होता है, विषय दे दो।
1: बिल्कुल सही,
0: क्या बात है, बहुत खूबसूरत।
1: तो आपकी दोनों की दोस्ती कैसे शुरुआत हुई?
0: अच्छा, आप पहले दोस्ती का इंटरव्यू लो, अब हम शायरी बाद में सुनेंगे।
1: नहीं नहीं, शायराना अंदाज में ही लेंगे। राशिद जी से पूछना चाहेंगे, राशिद
0: जी मैं सुनना चाहता हूँ ना, क्योंकि आजकल तो दोस्ती नहीं है, तो जरा हम भी कुछ सीखने को मिलेगा ना। जी सर बताइए थोड़ा सा।
2: बस मेरा भी सही कहूँ तो बैकग्राउंड को ज्यादा पुराना नहीं है साहित्य क्षेत्र के अंदर, शायद पिछले 3-4 साल में ही थोड़ा ऐसा बना है, कुछ लिखना शुरू किया है। और बस इन्हीं जो साहित्यिक गोष्ठी होती रहती है, मासिक गोष्ठी या अलग अलग संस्थाओं
0: गेट टूगेदर हो जाती है, जैसे
2: राशिद भाई से मुलाकात हुई एक दो बार, ऐसी बस आमना सामना हुआ, धीरे धीरे बातचीत शुरू हुई। और अब तो ये सिलसिला है कि बस अक्सर कभी इनका फोन आ जाता है, कभी मेरा फोन आ जाता है,
0: कभी दूसरे को सुनाने लगते हो कॉल पे। मेरे को लगा कि पूछ तो लूं कभी
2: ऐसे, खैर मकदम एक तरह से पूछा जाता है, कभी इन्होंने कुछ लिखा तो इन्होंने डाला, मैंने कुछ लिखा तो मैंने इनको भेजा, इसी तरह से थोड़ा चलता रहता।
0: बस एक दूसरे का सहानुभूति अपनी बढ़ा रहे हैं, तो ये अच्छा है ना।
2: मतलब एटलीस्ट मैं अपने साथ और ये अपने साथ एक ऐसा बंदा लेके चल रहे हैं कि हाँ ये जरूर लाइक करेगा।
0: एक बार बताऊं सर, अपने ग्रुप में बंदा ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि आजकल ना मुझे ऐसा लगता है कि जिनसे उम्मीद होती है ना वही तोड़ के भागते हैं। बट कोई बंदा अगर एक ऐसा भी होता है जो हमारी कला को थोड़ा सा मतलब हमारा सहयोग कर रहा है, हमारा आत्मविश्वास बढ़ा रहे, तो बहुत अच्छा लगता है, हौसला अफजाई जिसे हम कह सकते हैं। जी राशिद जी कुछ कहना चाह रहे हैं मुस्कुराते हुए? मुझे लगता है वो अपनी दोस्ती का ही कुछ जिक्र करने वाले हैं।
3: दोस्ती की जब बात चल रही थी, हाँ, तो एक्चुअली हम जब बात करते हैं, इन्होंने गलत कहा कि हम शायरी की बात करते हैं, जब हम आपस में बात करते हैं हम तो फिर शायरी बहुत पीछे रहते हैं, फिर मोहब्बत की दोस्ती की बात होती है, हम बात शायरी की नहीं करते।
0: मैं वही तो जानना चाह रहा था,
3: हम फिर अपने दिल की बात करते हैं, क्योंकि मित्रता में फिर शायरी अलग हो गई,
0: वो कॉन्सेप्ट ही अलग हो गया,
3: कॉन्सेप्ट अलग। इन्होंने थोड़ी सी बात गलत बता दी, तो मैंने सोचा कि थोड़ा बीच में मैं
0: कमल जी थोड़ा सा शर्मा रहे हैं कि अब ये सच्चाई ना कर दे।
3: सच्चाई है, बात कुछ और भी होती
1: है। कमल जी जो है यहीं पे सब ज्यादा मुस्कुराते हैं, घर पे भी मुस्कुराते हैं?
0: ये तो देखिए आप, पता होगा आप शादीशुदा लोगों की कहानी आप ही लोग जाने, मैं तो अभी सीधा साधा बच्चा हूँ। खैर हम सर से कुछ सुनना चाहेंगे। राशिद जी आप मुस्कुराइए, क्योंकि आप एफएम मुरादाबाद में हैं, लखनऊ तो नहीं कह सकते अभी हम।
3: बिल्कुल,
0: आप अभी थोड़ी देर ब्रेक पे जाने से बिल्कुल सुनाने वाले हैं अच्छा सा, तो मैं वो सुनना चाहता हूँ। आपने
2: एक मुकम्मल गजल,
0: आपने कमल जी इनको एक हिंट दिया था ना, पुराने छूट रहे हैं नए,
3: आपके सामने रखता हूँ
0: जी,
3: क्योंकि कमल जी को बहुत ज्यादा पसंद है।
0: अब हमें भी पसंद आएगा।
3: मैं तो कुछ और सुनाने वाला था, लेकिन
0: सर वो भी सुनेंगे, हम जाने नहीं देंगे, आज सुनेंगे आपसे।
3: मैं कमल जी की मोहब्बतों के हवाले शेर, एक शेर के, नए बने हैं और पुराने टूट रहे हैं, नए बने हैं और पुराने
0: टूट रहे हैं,
3: हर रिश्ते के ताने बाने।
0: क्या बात,
3: नए बने हैं और पुराने टूट रहे हैं, हर रिश्ते के ताने बाने टूट रहे हैं, और रस्म मोहब्बत तेरे आंगन सूने हो।
0: क्या बात है,
3: रस्म मोहब्बत तेरे आंगन सूने हो गए, शान और शौकत के वो घराने टूट रहे हैं, शान और शौकत के वो घराने टूट रहे हैं। ये कमल जी को बहुत पसंद है मेरा, ये एक जो मैंने लिखा था, ये मैं चाहूंगा जब एक मतलब एक शेर और मैं आपकी नजर करना चाहूंगा।
1: जरूर जरूर,
3: कि आज का जो माहौल है, मैं मानता हूँ कि लोग कहते हैं कि भाई वो मालदार आदमी है, वो रईस आदमी है, वो रईस आदमी, तो मैं एक फर्क होता है, रईस अलग होता है, मालदार अलग होता है। मालदार तो सब है, रईस हर आदमी नहीं होता।
1: क्या बात कर रहे
0: हैं, बड़ी बात, बड़ी कमाल की है जनाब।
3: तो मैंने छोटी सी चार मिसरे इस पे भी मैंने लिखे हैं, मैं कहूंगा कि सजाने की बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती।
0: क्या बात है,
3: सजाने की बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, बड़ा खुद को दिखाने की जरूरत ही नहीं पड़ती।
0: क्या बात है,
3: बड़ा खुद को दिखा

0: आने की जरूरत ही नहीं पड़ती और लबो लहजे से पहचाने गए हैं खानदानी लोग। लबो लहजे से पहचाने गए हैं खानदानी लोग। जमाने को जताने की जरूरत ही नहीं पड़ती।
1: क्या बात,
0: जमाने को जताने की जरूरत ही नहीं पड़ती।
1: गजब।
0: आज क्योंकि एट रैंडम इनका फोन आया भाई का कि नहीं आज ही जाना है, तो आज थोड़ा सा गला 2-3 दिन से मेरा ऐसा हो रहा था, अगर मुझे पहले से पता होता तो शायद मैं थोड़ा सा गरारे वगैरह कर गया था, इसलिए माफी चाहूंगा।
1: नहीं आज इस समय राशिद जी मौसम भी ऐसी चल रहा है, मैं भी 3 दिन से
0: डिस्टर्ब है
1: डॉक्टर से मिल मिल के पैसे।
0: बदलता हुआ मौसम और बदलते हुए मौसम में हम बचपन से अपने पेरेंट्स से सुनते आए कि नहीं बदलते मौसम में तबीयत खराब हो जाती है,
2: लेकिन ऐसी बात नहीं है। आवाज इंशाल्लाह अभी भी बहुत बेहतरीन आ रही है आपकी।
0: बहुत शुक्रिया आपका, बहुत
1: अमिताभ बच्चन याद आ गए हैं
0: तो आप, क्योंकि कमल भाई ने कहा कि एक मुकम्मल गजल, तो मुकम्मल तो गजल तो कभी मुकम्मल नहीं होती, बस चंद अशआर होते हैं
2: जी,
0: लेकिन वो मैं पहले बाद में, पहले कमल भाई हमारे अपनी मोहब्बत का कुछ।
1: अरे कमल जी तो मोहब्बत का जरूर सुनाएंगे। खाना जल्दी खाना है ना घर में, भिंडी की सब्जी पसंद है कमल जी? नहीं, भिंडी की
3: बिल्कुल
1: तो सही है।
2: दोस्तों मैं तो आपसे यही कहना चाहता हूँ कि देखिए शेरो शायरी का जो ये माहौल है, जो एक बना हुआ है जिसे कह सकते हैं पूरी वाइब सेट हो गई है यहाँ पर अभी फिलहाल, एंड ये वाइब आपकी गाड़ियों में सेट है, आप इस वक्त घरों में सुन रहे हैं, कुछ लोग बिस्तर पे लेट चुके हैं, काम करके आए हैं बेचारे थक गए, वो अब आराम से आपकी शेरो शायरी सुन रहे हैं, हो सकता है कमल जी भी अभी सुन रहे हो, है ना, यहाँ लाइव तो सुन ही रहे हैं, क्या पता घर बैठ के भी सुन रहे हो, ऐसा भी हो सकता है।
1: घर बैठ के
2: राशिद जी अपने घर बैठ के सुन रहे होंगे हमें, और आप तो स्टूडियो में बैठ के सुनते हैं, खैर इसमें तो कोई शक नहीं है। तो दोस्तों मैं तो बस यही कहना चाहता हूँ कि देखो जो शेरो शायरी का ये माहौल है ना, ये माहौल एक्चुअली बनता ही उसी इंसान से जो एक्चुअल में खुद से अपने पन्नों पे अपने दिल की बात उतारता है, राइट?
1: बिल्कुल।
2: मुझे ऐसा लगता है साहब लिखी हुई कॉपी पेस्ट करते जाओ उसमें वो मजेदारी नहीं है। अभी राशिद जी ने जो सुनाया वो मुझे काफी मतलब ऐसा लगा कि हाँ कुछ नया है, वो उनके दिल के जज्बात थे जो उन्होंने पन्ने पे उतारे वो हमारे श्रोताओं तक पहुंचाए, और शायद ऐसा ही कुछ आप भी सुनाने वाले, मैं आपसे उम्मीद करता हूँ।
3: हर पहेली का मैं पहले हल लिखूंगा।
2: हाँ
3: राशिद साहब
0: जी,
3: कि हर पहेली का मैं पहले हल लिखूंगा
2: जी,
3: आज बस रहने दे तुझको कल लिख,
2: क्या कहने,
3: आज बस रहने दे तुझको कल लिखूंगा, खुद के हिस्से मैं लिखूंगा जहर सारे, खुद के हिस्से मैं लिखूंगा जहर सारे और तुझको पाक गंगा जल लिखूंगा,
0: क्या बात,
3: आज बस रहने दे तुझको कल लिखूंगा।
2: बहुत ही सही, बहुत ही शानदार, बहुत ही बढ़िया, मजेदार। और
0: कमल साहब की शायरी में भी कहीं ना कहीं कुछ होता है।
2: अरे बहुत, तभी तो हम इनको इनसे इतना प्रेम करते हैं, इसीलिए तो बुलाते हैं हम इनको,
1: इनकी शाही शायरी है।
3: अगर मैं आगे बढ़ा दूं, नेकी और अपकार का खाता बनाकर, नेकी और अपकार का खाता बनाकर, खुद के कर्मों का मैं पहले फल लिखूंगा, आज बस रहने दे तुझको कल लिखूंगा,
2: क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। चलिए इसी बात पे एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक लेते हैं इस प्रोग्राम में, और वापस आते हैं फिर और कुछ बेहतरीन शेरो शायरी के साथ, और कुछ बेहतरीन बातचीत भी इनसे जानने का प्रयास करेंगे, इतने दिग्गज लोग हैं तो इनसे जानेंगे ये लिखने की कला कैसे उत्पन्न हुई, इनके अंदर कहां से आई, किसी को अगर ये चीज करनी है उसे भी अपने जज्बात दिल के पन्नों से कॉपी के पन्नों पे उतारना, तो वो कैसे उतार सकता है, तो ये चीज जो है राशिद जी और कमल जी से हम जानेंगे। काफी पुराने खिलाड़ी लग रहे हैं मुझे, ऐसी बात नहीं है, और आप लोग को भी पता है कमल जी हमेशा आते रहते हैं हमारे बीच में अपनी अच्छी अच्छी प्रस्तुतियां लेकर, अच्छी अच्छी बातें लेकर। तो अभी फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, वापस आएंगे और तब तक अखिल जी भी कुछ बढ़िया सुनाएंगे, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए।

0: श्रोताओं, एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप बने हुए हैं एफएम मुरादाबाद पर आनंद और अखिल जी के साथ, और हमारे बीच में दो और खास दिग्गज पर्सनालिटी हैं, जिसमें कमल जी और राशिद जी स्टूडियो में हैं और आज ढेर सारी आपके साथ बातचीत कर रहे हैं, अपने दिल की शेरो शायरी आप तक पहुंचा रहे हैं। और हमेशा हमारी कोशिश होती है अपने रेडियो के माध्यम से गीत संगीत के साथ साथ जो लोकल हमारे कलाकार हैं, जो हमारे लोकल, इसको भी एक मौका दें, क्योंकि देखिए टैलेंट तो सब में होता है अखिल जी, आपको भी पता है, लेकिन मंच हर किसी को नहीं मिल पाता है ना। और वो मंच कौन देता है? एफएम मुरादाबाद, है ना, क्योंकि हम करते हैं लोकल फॉर वोकल, क्योंकि लोकल को जब लोकल की आवाज मिलती है तो और मजा आता है ना?
1: अपने मुरादाबाद में वो हुनर है, हाँ, तो फिर हम क्यों इधर उधर भटके।
0: और हमारे मुरादाबाद में राशिद जैसे, कमल जैसे दिग्गज लोग थे, मुझे तो नहीं पता था भाई दिग्गज पर्सनालिटी, अब जब इनसे रूबरू हुए हैं तो पता लग रहा है कि इतने फैंटास्टिक कलाकार भी हैं। जी अखिल जी, कुछ कहने के लिए बेकरार
1: हैं? मैं अपने श्रोताओं से कहना चाहूंगा कि भले ही आवाज मिली
0: है, अपने श्रोताओं से कहते हैं, बाकी तीन लोगों से नहीं कह रहे हैं, तो कमल जी अपने कानों में जो है हाथ रख के सुनेंगे। हाँ बताइए सर।
1: मैं ये कहूंगा कि भले ही अल्फाज मेरे हैं, मगर जो अंदर से भावना है वो आनंद जी की है।
0: अरे वाह, क्या बात है, लपेटना कोई आपसे सीखे, मैं लपेटने के लिए तैयार हूँ, आप बोलिए सर।
1: तुम पे आज ना चरखी कम पड़ जाएगी, मगर मैं तब भी बता देता हूँ।
0: बताइए जी।
1: इश्क में अक्सर लोग परेशान होते हैं, इश्क में अक्सर लोग परेशान होते हैं, कुछ खुश होते हैं, कुछ हैरान होते हैं, और सबसे ज्यादा परेशान वो होते हैं जिनके पास गर्लफ्रेंड हो लेकिन पैसे कम होते हैं।
0: हाय हाय, मैं कल से पैसों पे काम करूंगा भाई, गर्लफ्रेंड का तो पता नहीं, पैसे होंगे तो सही रहेगा मेरे पास, क्योंकि आजकल पैसों से दुनिया चलती है, मुझे ऐसा लग रहा है। कमल सर, क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? है ना,
2: सब चीजें चाहिए, सिर्फ पैसा ही नहीं, सभी चीजें चाहिए, सभी चीजें, रिश्ते,
0: हाँ। लेकिन आजकल तो रिश्ते भी पैसों से होते हैं ना, मुझे ऐसा लगता है अभी, मतलब
2: कह सकते।
0: देखिए मैंने वो बात पूछी ली, अखिल जी आप मत बताओ, देखियो मेरे सामने लेजेंड लोग बैठे हैं। तो देखिए वार्तालाप चल रही है, अब मेरी और अखिल जी की बहुत बातें होगी, और हमारे बीच में इंजीनियर राशिद हुसैन साहब हैं, उनसे बड़ी सारी हम वार्तालाप कर रहे हैं, कमल साहब से हम वार्तालाप कर रहे हैं। तो कमल सर, आप दोनों के बीच में हम कॉम्पिटिशन तो नहीं लड़ाएंगे, लेकिन अभी हमने ब्रेक पे जाने से पहले पूछा था कि मान लीजिए बहुत सारे ऐसे युवा पीढ़ी है जो आप लोग को सुन के उनका भी मन करता है हम भी लिखें भाई, जैसे सर आपने बताया राशिद साहब कि आपने ट्वेल्थ में ही जो है शुरुआत कर दी थी लिखने की, तो ऐसे बहुत सारे यूथ है जिनको मन होता है अखिल भाई, क्रेज होता है लिखने का, कभी कभी अखिल भाई भी सोचते तो हैं लेकिन वो लिख नहीं पाते क्योंकि समझ में नहीं आता कहाँ से शुरुआत करूँ। तो आप थोड़ा सा हमें बताइए, तो हम कहाँ से शुरुआत करें?
3: तो मैंने तो कहा था ना
0: जी
3: कि मोहब्बत कर लीजिए, हाँ, शुरू हो जाएगा।
0: अरे वाह अखिल भाई, ये मैं काट दूंगा, भाभी तक नहीं पहुंचेगा, आप बेफिक्र रहिए, मोहब्बत आपको करनी आप करिए।
1: तो मैं क्या मोहब्बत नहीं कर सकता क्या?
0: नहीं, अब ये मुझे नहीं पता है, देखिए इसमें मेरा कोई रोल नहीं है भाभी जी। हाँ सर बताइए आप।
3: बस ये है कि अगर युवा इसमें आना चाहते हैं तो हम लोग मुरादाबाद में बहुत सारे लोग हैं, कहीं ना कहीं जिसको शौक होता है, जो कहते हैं ना कि ढूंढने से तो खुदा भी मिल जाता है, तो हम लोग हैं और हर वक्त अवेलेबल है, मिले हमसे, सीखें, अपनी रचनाएं हमें दें, अपनी गजलें, हाँ। अपनी जो भी कुछ है तो हम उसको एडिट करेंगे, उनको पूरा सहयोग करेंगे। हमारे मुरादाबाद में एक साहित्यिक शौचालय भी है जिसके डॉक्टर मनोज रस्तोगी साहब संस्थापक है, और वहाँ पे मैं समझता हूँ 100-100 से 150-150 साल पुरानी वहाँ पे बुक्स किताबें, और वो मुरादाबाद की उनकी एक खास बात मैंने मनोज रस्तोगी साहब की जो मैंने देखी,
0: नाम मैंने सुना है,
3: मैंने भी 4 या 5 साल मेरा उनसे परिचय है।
0: अच्छा,
3: इन 5 सालों में जो मैंने उनकी खास बात देखी वो आज तक किसी इंसान में नहीं देखी मैंने, वो शख्स है कि लाइन में खड़े हुए सबसे पीछे वाले आदमी का हाथ पकड़ के अपने बाजू में लाके खड़ा, और मेरे साथ उन्होंने वो किया है।
0: क्या बात,
3: मेरी पहचान अगर साहित्यिक दुनिया में पहचान रही है तो डॉक्टर मनोज रस्तोगी साहब।
0: देखिए उन्होंने आपको वो मंच दिया ना, तभी आप आज वो हम यहाँ पर तो नहीं है, लेकिन आप उनका जिक्र क्यों कर रहे हैं?
3: और वो मुझसे बेपना मोहब्बत करते हैं, मेरे घर भी आ चुके हैं, मैं भी उनके घर जाता रहता हूँ, वो बहुत
1: कहाँ उन्होंने संग्रहालय किधर है
3: ये उनका जलाल स्ट्रीट मंडी चौक मुरादाबाद।
0: अच्छा, मंडी
3: जलाल स्ट्रीट में, और बहुत अच्छे आदमी है, बहुत बड़े आदमी। नहीं, खास बात यही मुझे उनकी लगती है कि लाइन में सबसे पीछे खड़े हुए इंसान का हाथ पकड़ के अपने बाजू में लाके खड़ा, अपने कंधे से कंधे मिला के लगा करने, और वो उन्होंने मैंने अपने लिए ये फील किया है, मैं समझता हूँ कि वो सभी के नहीं है ऐसे, हाँ। तो ये इसी तरीके का कोई युवा है, मैंने भी उनको खोजा, मैं किसी ना किसी से मैंने कहा कि मुझे मिल कोई ऐसी हस्ती मिले जिसके मैं मुझे वो मिले
0: संपर्क में, संपर्क में हो,
3: तो जो अगर लिखना चाहे तो हम उनके लिए, हम है कमल भाई और भी बहुत लोग हैं,
0: हाँ।
3: कोई हमें इसमें कोई बुराई नहीं, हमारे लिए अच्छा है,
0: सही बात है, हम साहित्य के लिए को आगे बढ़ा रहे हैं।
3: आकर हम देख रहे हैं एक सोशल मीडिया के दौर में एक जो युवा है वो साहित्य से बहुत हटते जा रहे हैं, हम चाह रहे हैं साहित्य जिंदा रहे, और जिंदा रहने के लिए हमें नए युवा आगे आएंगे तो हम उनको पूरे तरीके से सपोर्ट करेंगे, जिससे कि हमें साहित्य जिंदा रहना चाहिए। आज हमारा मुरादाबाद, आप एक बहुत छोटी सी बात मैं आपको बता रहा हूँ, और बहुत आप शायद जानते भी होंगे, जो हमने अपने बुजुर्गों से सुनी है कि अगर मुरादाबाद में पीतल का काम ना होता, जो आज पीतल के नाम सुना जाता है, तो शायद जिगर मुरादाबादी के नाम से जाना जाता कि जिगर साहब का शहर है। और आज भी मंच से कहीं पर भी कि जिगर, हम जिगर मुरादाबाद जिगर वाले, मुरादाबाद जिगर वाले से आए हैं, अगर हम कहीं अपने शहर से बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए तो जिगर का मुरादाबाद कहलाया जाता। तो ऐसा नहीं है, साहित्य में आना चाहिए नौजवानों को। और क्योंकि साहित्य कैसा होता है, जब आदमी साहित्यकार बन जाता है ना, तो वो लड़ाई झगड़े, उसका दिल बड़ा मर्म हो जाता है, बड़ा नर्म हो जाता है उसका दिल,
1: वो दुनिया से थोड़ा सा,
3: हाँ वो बहुत, मतलब फिर अदब भी साहित्य के अंदर है, अपने पेरेंट्स की, अपने रिलेटिव्स की, अपने फ्रेंड्स की, एक सादगी, एक अदब आता है, एक स्टैंडर्ड आता है, वो साहित्य में है।
0: बहुत बढ़िया राशिद जी, आपने बहुत अच्छे से इसको जो है बताया हमारे श्रोताओं को, मुझे अच्छा लगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि कहते हैं ना, जहाँ चाहा है वही रहा है, है ना। आपके अंदर वो क्यूरियोसिटी थी, कुछ आपको करना है, और वो कहते हैं ना, जब आप किसी चीज को दिल से चाहो तो वो पूरा पूरी कायनात उसे मिलाने में लग जाती है ना। तो वो चीज आप में भी है, और ऐसी बात नहीं कि सिर्फ आप बात ही अच्छी कर रहे हैं, आपकी आवाज में भी बहुत अच्छी खनक है, इसका क्या राज है?
3: आवाज तो, ये तो कुदरत की बात है।
0: नहीं सच में, मतलब काफी अच्छी,
3: शुक्र मैं अटा करूंगा इसमें, मेरा
0: हर किसी की आवाज में
1: क्वालिटी हो जाए।
0: हाँ जी राशिद जी, लेकिन मैं चाहूंगा राशिद जी की शायरी से पहले मैं जरा कमल सर की तरफ रुख करना चाहूंगा, बड़े इनोसेंट होके बैठे हैं, तो जरा उनसे कुछ सुन लेते हैं।
1: वो आज मैंने जब
0: वो कह रहे हैं कि आज मैंने अपने दोस्त को चेयर दे दिया, आनंद जी आज मुझे मत टच करना।
1: वो ये कह रहे नहीं अखिल जी,
2: मैं खुद ये चाह रहा हूँ की आप तो मैं इनको सुन पाऊँ।
0: अच्छा तो हम राशिद जी को सुने?
2: बिल्कुल।
0: अच्छा तो हम आपको कब सुनेंगे? राशिद जी को तो हम सुन ही रहे हैं,
2: तो मैं भी उनको सुनना चाहता हूँ।
0: है मतलब आज इनकी भी ख्वाहिश है कि मैं भी आज लिसनर बन के सुनूं।
2: बड़ी बड़ी मुश्किल से तो आज फुर्सत से मिले हैं मुझे।
0: क्या बात है, तो राशिद जी इसी बात पे इरशाद।
3: नहीं बात ऐसी नहीं है कि फुर्सत से मिले, मैं इनके लिए हर वक्त फुर्सत
0: हुई, इनका प्यार है। अरे वाह,
3: अगर पर्सनली हर वक्त, हाँ इस काम के लिए थोड़ा सा इन्होंने, ऐसा नहीं है, मेरा भी मन था कि नहीं मैं FM जाऊंगा, मेरी बड़ी, मुझे बहुत अच्छा लगा, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे बुलाया। और ये कमल भाई मुझे सुनना चाह रहे हैं, कमल भाई मुझे सुनना चाह रहे हैं, मेरे लिए बड़ी फख्र की बात है, बड़ी मोहब्बत की बात है।
0: हमें भी बहुत फख्र हो रहा है कि हम आपको सुन पा रहे हैं।
3: जब इनकी मोहब्बत है तो फिर एक गजल के चंद अशआर में आपके सामने
0: जरूर जरूर,
3: लेकिन उसके बाद फिर कमल साहब
0: जरूर जरूर।
3: एक गजल मैंने पिछले साल लिखी थी, और हर गजल के पीछे कुछ न कुछ तो होता है। उस वक्त की जो ये कहानी थी जो मेरे ऊपर गुजर रही थी, मैं वहीं से उस गजल को उठा रहा हूँ, उसी उस कहानी के ऊपर ही जो मेरा था मामला, तभी मैंने ये गजल के चंद अशआर लिखे थे कि गजल का मतलब समाप्त फरमा लें कि मोहब्बत की दुनिया बसाने से पहले, मोहब्बत की दुनिया बसाने से पहले कोई गम न था तेरे आने से पहले।
0: क्या बात है,
3: मोहब्बत की दुनिया बसाने से पहले कोई गम न था तेरे आने से पहले। और गजल का अगला शेर है जो हकीकती हकीकी शेर में कहूंगा कि कहीं ना कहीं गजल के एक शेर में बड़ी मैंने बड़ी दिल से अपने लिखा है, और बाकी तो श्रोताओं को पसंद आए तभी मेरी उसकी कामयाबी है, अदरवाइज तो लिखते रहे।
0: सर बहुत अच्छी कर रहे हैं आप, सबको पसंद।
3: बिछड़ने की इतनी कहानी है, बिछड़ने की इतनी कहानी है अपनी, खफा वो हुए आजमाने से पहले, खफा वो हुए आजमाने से पहले। और कमल जी आपको नजर करता हूँ कि खुशी इस कदर कोशिशों से मिली, खुशी इस कदर कोशिशों से मिली थी कि हम रो पड़े मुस्कुराने से पहले, कि हम रो पड़े मुस्कुराने से पहले। और आनंद जी आपके नजर एक शेर कर रहा हूँ कि ना रह पाए हम लब हिलाने के काबिल, ना रह पाए हम लब हिलाने के काबिल, उन्हें हाल दिल सुनाने से पहले, उन्हें हाल दिल का सुनाने से पहले, उन्हें हाल दिल का सुनाने से पहले। और एक गजल का बड़ा मेरे लिए बड़ा पसंदीदा शेर है, शायद मैं उम्मीद करता हूँ आपको भी पसंद आएगा, और डांट चाहूंगा कि हमें उम्र भर की मिलेगी जुदाई।
0: क्या बात है,
3: हमें उम्र भर की मिलेगी जुदाई, ये सोचा ना था दिल लगाने से पहले, ये सोचा ना था दिल लगाने से पहले। और मनाने का हमको तरीका बता दे सनम बेसबब रूठ जाने से पहले, सनम बेसबब रूठ जाने से पहले। और इस शेर पे मैं आपकी तवज्जो चाहूंगा अखिल साहब, के तुम्हारी भी आंखों में आंसू बहे, तुम्हारी भी आंखों में आंसू बहेंगे मेरी हर निशानी मिटाने से पहले, मेरी हर निशानी मिटाने से पहले। और तड़पता न दिल इस तरह मेरा हमदम, तड़पता न दिल इस तरह मेरा हमदम, बताते तो कुछ दूर जाने से पहले, बताते तो कुछ दूर जाने से पहले। और गजल का मक्ता समाप्त फरमा ले, और मैं कमल भाई आपने बड़ी तारीफें कर दी, आज मुझे बांध दिया है और आज आपने बस मैं क्या बताऊं, मैं इस लायक ही नहीं था जितना आपने मुझे बांध दिया और मुझे मजबूर कर दिया है कि नहीं आप मैं इतना कहां हूं इस लायक, मोहब्बत है और कुछ नहीं है। और आनंद भाई हमारे इतनी बढ़िया, मैं तो ताजुब आज देख रहा हूं तो मुझे लग रहा है कि आनंद इतने अच्छे, मतलब नहीं बहुत अच्छे आरजे हैं और मैं इनकी भविष्य के लिए एक उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूं और मैं भगवान से
0: बहुत बहुत इनको आपका दिल से आभार साधुवाद। और
3: नहीं नहीं बाकी आप कमाल, बहुत कमाल, जवाब नहीं। और हमारे अखिल भाई तो माशाल्लाह बीच बीच में शायरी करते हैं तो ऐसा लगता है कि अपने भाई है। हमारे जितने भी भाई शायर हैं साहित्यकार सब अपना परिवार मानते
0: जी। वैसे मैं आपको राशिद हुसैन साहब मैं बता दूं ये शायर नहीं है तो इन्हें अपनी उसमें मत जोड़िएगा बिल्कुल भी फील्ड में।
1: नहीं नहीं नहीं आज मैंने सीख लिया मुझे मोहब्बत करनी है
0: राशिद हुसैन साहब से कि आपको मोहब्बत किससे करनी है, वो क्लैरिटी जरूरी है।
1: अभी एक साल पहले इन्होंने मोहब्बत किससे करी थी जो अब ये मुझे बताएंगे।
0: नहीं उन्होंने कमल जी से की है।
2: अच्छा
3: गले मुड़ते कोई नहीं उखड़ेंगे
2: तो वो शांति से पड़े रहेंगे ना
3: क्योंकि सभी को घर जाना है, मुझे तो खैर कोई बात नहीं।
0: इंजीनियर राशिद हुसैन साहब हमारे स्टूडियो में हैं कमल जी के साथ।
3: गजल का मक्ता समाप्त फरमाने के मुझे आ दबोचा अंधेरों ने, मुझे आ दबोचा अंधेरों ने राशिद, मेरी जिंदगी जगमगाने से पहले,
0: क्या बात,
3: मेरी जिंदगी जगमगाने से पहले। बहुत शुक्रिया, ये गजल मेरे बड़े दिल की अजीज थी और इसके चंद अशआर मैंने आपके सामने रखे, आप मैं उम्मीद करता हूँ पसंद आएंगे, पसंद आए होंगे। और अब मैं चाहूंगा कि कमल भाई अब मुझे थोड़ा सा पानी पीने दें।
0: जब तक ये लोग पानी शानी पीते हैं हम इनको पानी पिलाकर और पीकर आते हैं और एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक लेंगे, आप कहीं मत जाइए। और ये इंजीनियर राशिद हुसैन साहब ने जो कमाल की गजलों के बीच से लाइनें हम तक पहुंचाई है, मतलब दिल को छू गई कमल भाई, मजा आ गया। और मैं चाहूंगा कि अगली श्रृंखला में आप भी तैयार रहें, हमारे जो श्रोता साथी हैं वो सुनने के लिए बेकरार हैं। कमल जी और राशिद जी की जोड़ी वाकई में कमाल की, अब तो हम आपको अकेले बुलाना भी नहीं चाहिए, हम चाह रहे हैं कि एक बार दोबारा जब भी आए तो इनको लेकर आप जरूर
1: आए। अब तो ये पैकेज इनका बुक हो गया
0: सच में। चलिए बहुत अच्छा लगा। और गाइस आप कहीं मत जाइए, रेडियो की सुई बिल्कुल मत घुमाइए, हम वापस आते हैं जरा सी देर में अखिल जी के साथ। बाकी हमारे जो मित्र हैं स्टूडियो में उनको आप सुन ही रहे हैं, कमल जी हैं साथ में, हमारे इंजीनियर राशिद हुसैन साहब हैं, बहुत ही अच्छी जो है शेर व शायरी कर रहे हैं और आज का ये जो माहौल है वो और भी खूबसूरत बना रहे हैं। तो अखिल जी कुछ सुनाना चाहोगे आप भी जाते जाते ब्रेक पे जा रहे हैं, थोड़ा सा माहौल और अच्छा कर दीजिए, माहौल तो ऑलरेडी बहुत अच्छा है।
1: अकेले हो तो मुस्कुरा लिया करो,
0: मैं रोज मुस्कुराता हूँ, शीशा नहीं मिल रहा है लेकिन आजकल आप बोलो।
1: श्रोताओं ये जो मैं अल्फाज बोल रहा हूँ ना, ये
0: जी जी
1: ये अल्फाज मेरे हैं मगर जो इसके अंदर की जो भावनाएं हैं
0: वो भाभी जी की हैं,
1: आनंद जी की है, आनंद की। अकेले तुम मुझे नहीं चाहते कि मैं घर जाऊं और सीधा एक सिंगल पीस में जाके बैठा हूं दिखूं तुम।
0: नहीं दो बच्चे भी हैं ना, उनका भी ख्याल रखना है, मैं सारा भंडा फोड़ूंगा, आप बोलो तो सही, आप बोलो आगे।
1: मैं भूल गया जो बोल।
0: चलिए आप गाना सुन लेते हैं, नहीं तो मैं गाना भूल जाऊंगा।

0: काफी आनंद आया इसको सुनने के बाद, और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है, एक बार फिर से इस्तकबाल करते हैं। आप सुन रहे हैं आपका अपना फेवरेट प्रोग्राम आनंद के साथ, साथ में अखिल भैया भी हैं, और आज के जो हमारे स्पेशल मेहमान हैं उनको सुन के ना मतलब मजा आ गया, दिल गार्डन गार्डन हो गया, मन प्रफुल्लित हो गया है उनकी शोर व शायरी सुन के।
1: सही कहा तुमने।
0: और अब जो है चलने का भी समय हो रहा है, क्योंकि वो लोग भी बेचारे जाने की जल्दी में होंगे कि यार हमें तो पकड़ के बिठा देते हैं अखिल जी ये लोग, हाँ जाने नहीं देते हैं।
1: इसी के ऊपर कुछ बातें याद आ रही है
0: जी, आपकी बातें पीछे छूट गई थी, अच्छा बात हैंगवर्ड याद आ
1: गया, नाम ही ऐसा ले लिया था, मैं क्या कहता।
0: चलिए चलिए आप प्लीज।
1: अकेले हो तुम मुस्कुरा लिया करो, अकेले हो तुम मुस्कुरा लिया करो, कभी कभी खुद से भी मिला करो।
0: क्या बात है,
1: जिंदगी बहुत छोटी है दोस्तों, बेवजह टेंशन लेना बंद किया करो।
0: क्या बात है, बहुत बढ़िया, एक मैसेज है, एक मीनिंगफुल है, आज कमाल की बात करी। मुझे लग रहा है कमल जी की बातों का असर हो रहा है अखिल जी आप पर।
1: मैं
0: जी
2: संगत का असर हो रहा है,
1: आसपास जो मेरे पास वाइब्स आ रही है ना, इनका जो ऑरा है राशिद जी का और कमल जी का इस समय, तो जो इनका ऑरा है वो आ रहा है ऊपर धीरे धीरे, और थोड़े से निखार आ रहा है मेरी शायरी में।
0: बहुत बढ़िया, तो देखिए राशिद जी से हम सुनी रहे थे, मैं चाहूंगा थोड़ा सा कमल जी से भी सुनने चलते चलते। सर कुछ मिश्रे या चंद लाइनें जो आप रखना चाहें, दोबारा तो आपको बुलाने का मौका हम जरूर देंगे आपको, और हम भी आपसे चाहेंगे कि आप भी पधारें। क्यों अखिल जी?
1: बिल्कुल सही कहा।
2: चलिए पेश करता हूँ, कल ही लिखा है और बाकी अब ये क्या है क्या नहीं है ये राशि भर बताएंगे सुनने के बाद। कि दिल में है उम्मीद की ये हाल बदले, दिल में है उम्मीद की ये हाल बदले,
3: क्या बात
2: हो नया दिन रात बदले साल बदले।
3: बहुत
1: क्या बात है,
2: हो नया दिन रात बदले साल बदले, पाई है तकदीर तो चमकेगी एक दिन, पाई है तकदीर तो चमकेगी एक दिन, कर रहे कोशिश की अपना भाल बदले।
1: क्या बात है,
2: कर रहे कोशिश की अपना भाल बदले, और मुफलिसी ने भूख को जिंदा ही रखा, मुफलिसी ने भूख को जिंदा ही रखा, बच्चे ने कितनी दफा ही थाल बदले।
1: क्या बात है,
2: बच्चे ने कितनी दफा ही थाल बदले,
3: क्या बात,
2: था तो वो सयाद, था तो वो सयाद पर शातिर नहीं था, था तो वो सयाद पर
1: शातिर
2: नहीं था, सैद ने आकर कहा कि जाल बदले।
1: बहुत बहुत
3: क्या बात,
2: सैद ने आकर कहा कि जाल बदले,
3: बहुत खूब बहुत खूब,
2: और वो हवेली भी मुनासिब बन ना पाई, वो हवेली भी मुनासिब बन ना पाई, सीख है मेमार को अब माल बदले।
0: क्या बात,
2: मेमार मतलब जो चिनाई,
3: चिनाई
2: सीख है मेमार को कि माल बदले, और बीच सागर नाव गोते खा रही है, बीच सागर नाव गोते खा रही है, ना खुदा को चाहिए कि चाल बदले, ना खुदा को चाहिए कि चाल बदले।
1: क्या बात है,
2: और आगे देखिएगा कि हंस रहे पर गालों में गड्ढे नहीं है, हंस रहे पर गालों में गड्ढे नहीं है, अब कमल देखे उमरिया गाल बदले।
3: क्या बात है,
1: क्या बात कही,
0: बहुत बढ़िया।
1: कल मुझे पूरा पूरी पूरी उम्मीद है, कल पूरे दिन बिजली आई है कमल भैया के, एकदम भक्ति हुई, एकदम भड़कती हुई शायरी लिखी है सब, एकदम
0: बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। लेकिन वही है कि चलते चलते उन्होंने सबको जो है जगा दिया, हाउ द जोश है ना, बहुत बढ़िया,
2: सब आपकी संगत का असर है।
0: बहुत बढ़िया, चलिए अच्छी बात है, कुछ हम आपसे सीख रहे हैं कुछ, और कुछ आपका माहौल भी बदल रहा है रेडियो में।
1: मैंने तुमसे स्टार्टिंग में कहा था कि तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि ये एक पल कैसा निकल जाएगा।
0: बहुत बढ़िया, और कमल सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए इंजीनियर राशिद हुसैन साहब बैठे हुए हैं हमारे बीच में, अब आप सोच रहे होंगे दोस्तों ये आनंद बार बार इंजीनियर इंजीनियर क्यों कर रहा है, तो राशिद जी एक बार जरा फिर से, कुछ लोगों ने जस्ट रेडियो अभी ट्यून इन किया है तो उनको भी अपना तारुफ करा दीजिए चलते चलते। आज हमारे साथ आप हमारे ऑफिस में, आप तशरीफ कहाँ से लेकर आए, कहाँ रहते हैं इधर?
3: मैं मुरादाबाद से।
0: मुरादाबाद से, अच्छा
3: सही हूँ, और क्योंकि सिविल से इंजीनियर हूँ,
0: अच्छा अच्छा
3: उसी का प्रोफेशन।
0: बहुत बढ़िया,
3: बाकी साहित्य गजल लिखना कुछ कलम, मेरा शौक है कलम लिखना, और आज आपने मुझे बुलाया FM मुरादाबाद ने, मुझे बहुत धन्यवाद देता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि FM मुरादाबाद जिस तरीके से आप इसको गूगल पे सर्च करें, लाइव FM मुरादाबाद 89.6 डालें, तो आपको लाइव प्रोग्राम मिलेंगे, बड़े अच्छे प्रोग्राम यहाँ पर होते हैं, और
0: राशिद जी
3: मैं सुनता हूँ अक्सर और बहुत अच्छा लगता है।
0: बहुत बढ़िया राशिद जी, चलते चलते आप क्या कहना चाहेंगे, तमाम श्रोता गण आपको सुन रहे हैं हमारे स्टूडियो से लाइव,
1: कोई एक मैसेज उनके लिए,
0: एक संदेश कुछ कहना चाहेंगे आज की युवा पीढ़ी के लिए आप?
3: बस युवा पीढ़ी के लिए ये संदेश है कि प्रेम जगाइए, प्रेम ही से बड़ी बड़ी जगह प्रेम से जीती जाती है, जंग से कभी कोई जीत नहीं आज तक जीत पाया है, प्रेम से सब जीते हैं, जंग लड़ने से कभी कोई आज तक नहीं जीता, जंग लड़ने से आप जमीन जीत सकते हैं, दिल से प्रेम से जीत सकते हैं,
1: बिल्कुल सही,
3: दिल से प्रेम से जीत पाए, बहुत जंग से नहीं लड़ते।
1: इन्होंने इतनी बार प्रेम का नाम लिया है तो मुझे सलमान खान याद आ गए, वो हर मूवी में उनके करेक्टर का नाम प्रेम रहता है, तो वैसे ही प्रेम आपके अंदर रहे।
0: बहुत अच्छा मैसेज दिया। और राशिद जी, आप तो फर्स्ट टाइम पधारे हैं हमारे मुरादाबाद के स्टूडियो में, तो हमारे श्रोताओं को क्या एक्सपीरियंस कुछ शेयर करना चाहेंगे, कैसा लगा? कमल जी तो हमारे स्टूडियो में काफी बार आ ही चुके हैं, आज फर्स्ट टाइम आप आए, कैसा लगा इन भाई चार दीवारों में बैठ?
3: मुझे इतना अच्छा लगा है कि मैं लफ्जों में बयान नहीं कर सकता। हाँ। और वाकई मुझे ऐसा लगा कि आपसे आज पहली मुलाकात है, अखिल जी से भी और आनंद जी आपसे भी
0: जी।
3: और मुझे लग ही नहीं रहा कि मैं आज आपके साथ पहली बार बोल रहा हूँ, मुझे तो ऐसा लग रहा है फ्रेंड्स के साथ बैठ के बिल्कुल बातचीत चल रही है,
1: हमें भी बिल्कुल
3: मुझे ऐसा महसूस ही नहीं हुआ। और मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा एटमोसफियर, और मैं समझता हूँ कि मुझे मेरा दिल चाहेगा कि बार बार यहाँ
1: जरूर जरूर। आपका दिल चाहे ना चाहे मगर हम तो बुलाएंगे आपको।
0: बिल्कुल बहुत अच्छा लगा राशिद जी, थैंक यू सो मच। कमल सर आप से भी बहुत अच्छा लगा मिलकर, और हम आपसे भी गुफ्तगू करते रहेंगे, बीच बीच में आपको बुलाते रहेंगे ऐसे ही। वो थोड़ा सा माना कि मुश्किल है इनकी अपॉइंटमेंट लेना, क्योंकि कभी कभी मुश्किलें थोड़ी ज्यादा हो जाती है ना, बहुत बार बुक करना पड़ता है सर
1: इन्हें। इनका अपॉइंटमेंट लेने का मतलब है पहले ये भी तो कहीं से अपॉइंटमेंट लेते हैं ना।
0: ओहो वो मुझे पता नहीं था। खैर बाकी श्रोताओं बहुत अच्छा लगा होगा आपको भी आज का ये कार्यक्रम, मुझे उम्मीद है, और डेफिनेटली ऐसे कार्यक्रम एफ एम मुरादाबाद आपके लिए लेकर आता रहेगा। और अखिल जी आप चलते चलते क्या कहेंगे हमारे तमाम श्रोताओं को?
1: मैं चलते चलते यही बात बोलूंगा कि जी आनंद तुम थोड़ा सा समय दिया करो।
0: देखिए समय यहाँ नहीं दे सकते ना, रेडियो की घड़ी हमें इशारा कर रही है कि बेटा निकलो या प्यार से निकाल दो, तो इससे बेहतर यही हम खुद ही निकल जाएं। जी
1: मैं चलते चलते बस सभी श्रोताओं से यही कहूंगा कि हमेशा आप ये चीज जरूर याद रखें कि महफिल वही खूबसूरत होती है जहां चेहरे कम और मुस्कुराहटें ज्यादा होती हैं।
0: बहुत
1: तो आज का दिन सच में, आज का समय, ये समय हमें बिल्कुल पता नहीं चला जब हमारे साथ इंजीनियर राशिद जी और कमल जी हमारे साथ जुड़े, तो इस पल का तो सच में पता ही नहीं चला कि हमने वो कैसा बीत गया। और आनंद जी ने जो चटकारे लिए हैं आज मेरे साथ और मेरे शायरी के ऊपर,
0: बहुत
1: धन्यवाद कहना चाहूंगा। बाद में इस शो के बाद तुमसे अलग भी धन्यवाद।
0: बिल्कुल बिल्कुल। चलिए तो श्रोताओं फिलहाल जाने का समय हो गया है, कुछ अच्छे गीत आपके लिए छोड़ के जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद राशिद साहब, बहुत बहुत धन्यवाद कमल साहब, आप लोग पधारे और ऐसे ही आप लोग आते रहिए और एफएम का साथ निभाते रहिए। नमस्कार साहब, थैंक यू। दोस्तों आपको भी हमारी तरफ से ढेर सारा प्यार, ऐसे ही सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो,
1: बजाते रहो गुनगुनाते रहो।
0: बाय बाय श्रोताओं,
1: बाय बाय।
4: ये रात

0: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
1: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
0: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
1: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरोसर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार, फेज 2, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
2: कॉल 7500153841।
3: सीने में दर्द, सांस फूलना या तेज धड़कन को बिल्कुल नजरअंदाज ना करें। श्री साई हॉस्पिटल में डॉक्टर अखिल कौशिक TM कार्डियोलॉजी द्वारा एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टिक, पेसमेकर एवं अत्याधुनिक कार्डियक कैथ लैब की सुविधा उपलब्ध है, वो भी किफायती रेट्स पर। स्वस्थ दिल, सुरक्षित जीवन। आज ही अपॉइंटमेंट ले, श्री साई हॉस्पिटल, दिल्ली रोड, मुरादाबाद। कॉल करें 7060022430।

DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।

0: स्वच्छता ही सेवा 2026 अभियान के साथ अब बदलेगा हमारे प्रदेश का परिवेश, जिसका संकल्प है स्वच्छता में सहभाग। स्वच्छ भारत, विकसित भारत।
1: स्वच्छता से समृद्धि और जन भागीदारी। हमारे सफाई मित्रों के लिए सुरक्षा एवं सम्मान शिविर तथा युवाओं के लिए स्वच्छ पाठशाला अभियान इस जन आंदोलन के मुख्य आधार है।
0: 1 अक्टूबर 2026 को विशेष श्रम दान, एक दिन एक घंटा एक साथ स्वच्छता का हिस्सा बनिए तथा www.swachhatahiseva.gov.in पर पार्टनर साइन अप कर सफाई के सच्चे भागीदार बनिए।
1: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा जारी।

0: सुनो ना, मुझे ज्वेलरी खरीदनी है।
1: तो चलो फिर, इतना सोचना क्यों है, शहर चलते हैं ना ज्वेलरी लेने।
0: नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, वहाँ पर बहुत ट्रैफिक रहता है और शोर भी बहुत होता है।
1: अरे नहीं,
2: अब ट्रैफिक की चिंता छोड़ो, क्योंकि बाबूराम सर्राफ का नया ज्वेलरी शोरूम ओपन हो गया है,
1: वो भी सिविल लाइंस में। ना ट्रैफिक की चिंता, ना शोर की, और हाँ, वहाँ ज्वेलरी खरीदने पर गोल्ड क्वेन जीतने का मौका भी है।
0: अच्छा?
2: हाँ, आपका वही पुराना एवं विश्वसनीय शोरूम बाबूराम सर्राफ, पता चैन मंदिर रोड, सिविल लाइंस, मुरादाबाद।

अच्छे ऐसा कि मैं बाकी सब लड़कियों के बारे में सोचना छोड़ रहा हूँ। माना कि थोड़ा बिजी हूँ, तेरी मेरी शादी के लिए मैं पैसे जोड़ रहा हूँ। कब से करूँ तुझको मैं चेस बेबी, दिल में मुझे दे दे थोड़ी स्पेस बेबी, ना मुझ पे कोई चीटिंग वाला केस बेबी, शरीफ हूँ मैं।

0: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशाह जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर नैनीताल में, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
1: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।

0: सुनो ना, मुझे ज्वेलरी खरीदनी है।
1: तो चलो फिर, इतना सोचना क्यों है, शहर चलते हैं ना ज्वेलरी लेने।
0: नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, वहाँ पर बहुत ट्रैफिक रहता है और शोर भी बहुत होता है।
1: अरे नहीं,
2: अब ट्रैफिक की चिंता छोड़ो, क्योंकि बाबूराम सर्राफ का नया ज्वेलरी शोरूम ओपन हो गया है,
1: वो भी सिविल लाइंस में। ना ट्रैफिक की चिंता, ना शोर की, और हाँ, वहाँ ज्वेलरी खरीदने पर गोल्ड कॉइन जीतने का मौका भी है।
0: अच्छा।
1: हाँ, आप

0: आवश्यक सूचना 400 केवी बरेली मुरादाबाद पारेषण लाइन NH24 बाईपास यूपी कॉरपोरेशन के मझोला 400 केवी उपकेंद्र तक जा रही है। पारेषण लाइन के निकट प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के साथ पतंगबाजी की जा रही है। पतंग का धागा तार को छूने पर तेज धमाके के साथ आग की चिंगारी निकलने से विद्युत आपूर्ति बाधित होती है। अगर कोई जानलेवा घटना होती है तो उसका उत्तरदायित्व पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का नहीं होगा। किसी भी जानलेवा घटना से बचाने के लिए पतंग उड़ाने से रोकें। निवेदक पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बरेली।
1: Abra los ojos, open your eyes.
2: Oye, Holly, que David.

0: सुनो ना, मुझे ज्वेलरी खरीदनी है।
1: तो चलो फिर, इतना सोचना क्यों है, शहर चलते हैं ना ज्वेलरी लेने।
0: नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, वहाँ पर बहुत ट्रैफिक रहता है और शोर भी बहुत होता है।
1: अरे नहीं,
2: अब ट्रैफिक की चिंता छोड़ो, क्योंकि बाबूराम सर्राफ का नया ज्वेलरी शोरूम ओपन हो गया है,
1: वो भी सिविल लाइंस में। ना ट्रैफिक की चिंता, ना शोर की, और हाँ, वहाँ ज्वेलरी खरीदने पर गोल्ड कॉइन जीतने का मौका भी है।
0: अच्छा?
2: हाँ, आपका वही पुराना एवं विश्वसनीय शोरूम बाबूराम सर्राफ, पता जैन मंदिर रोड, सिविल लाइंस, मुरादाबाद।
0: गुड इवनिंग एवरीवन, आप सुन रहे हैं फिर मुरादाबाद 89.6 और मैं आपके साथ आपकी दोस्त आरजे खुशी। दोस्तों, एक ऐसी चीज जो बहुत अहम लाइफ में, अगर वो ना हो तो लाइफ अधूरी लगती है। जी हाँ, पैसा आते ही कहाँ चला जा रहा है। और देखिए, अब पैसों की बात हुई है, शाम का समय भी है, मुझे पता है आप ऑफिस से घर जा रहे हैं, और आज की बात ये बहुत ही ज्यादा मोस्ट है, तो मैंने कहा क्यों ना आज इसी पर चर्चा की जाए। दोस्तों, जिसके बिना ना जिंदगी चलना बहुत मुश्किल हो जाता है, और वो है पैसा। अब कमाई हर किसी की अलग अलग होती है, जरूरतें अलग अलग हैं और खर्च भी अलग अलग हैं, लेकिन एक बात शायद सबके साथ कॉमन है, पैसा हाथ में आते ही कुछ ना कुछ खर्च होने लगता है। कभी घर का सामान, कभी बाहर का खाना, कभी शॉपिंग, और कभी कोई अचानक आई जरूरत। और फिर महीने की आखिर में हम सोचते हैं कि आखिर पैसे गए कहाँ। तो आज की शाम इसी इंटरेस्टिंग बात के साथ हम आपके साथ कनेक्ट हैं, और मेरे साथ में यहाँ पर रीना भी है। हाय रीना, वेलकम है आपका एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। कैसे आने बता दो मुझे।
3: मैं बहुत बढ़िया हूँ, लेकिन तुम ये बताओ, अभी तो तुम गई थी स्टूडियो से, फिर आ गई हो, क्या बात
0: अरे
3: है?
0: क्या करूँ मैं, मेरा मन नहीं लगता ना हमारे श्रोताओं के बिना।
3: अच्छा अच्छा, देखो मैं तो यही हूँ, लेकिन ये दोबारा आ गई है, तो हम चलिए बहुत अच्छी बातें भी करेंगे, यानी कि पैसा आते ही कहाँ चला जाता है। महीने की सैलरी आने का इंतजार शायद हर नौकरी करने वाला करता है। सैलरी आते ही मन में कई सारे प्लान्स बनने लगते हैं, ये खरीदना है, वहाँ जाना है, घर के लिए ये सामान लेना है, और थोड़ा पैसा बचाना भी है। लेकिन जैसे जैसे महीने का दिन गुजरते हैं, सैलरी भी धीरे धीरे कम हो जाती है। फिर महीने के आखिरी दिनों में हम अपने खर्चे का हिसाब लगाने लगते हैं। क्या आपके साथ भी ऐसा ही होता है? सैलरी आते ही आप सबसे पहले क्या करते हैं? घर का खर्चा निकालते हैं, शॉपिंग करते हैं, या धीरे कुछ पैसा सेविंग में डाल देते हैं? आज इस खास मुद्दे पर हम बात करेंगे, मैं और जी। तो बस बने रहिए आरजे रीना के साथ।
0: अच्छा रीना, मैं देखो, आप हमारी श्रोताओं को बता रहे हो कि सबसे पहले पैसे आते हैं, तो आप क्या करते हो? शॉपिंग करते हो, घर का सामान लाते हो? मैं आपसे जानना चाहती हूँ, आप क्या करती हो जब आपको सैलरी मिलती है सबसे पहले? बताओ बताओ, इतना मत मुस्कुराओ।
3: रूम रेंट।
0: हाय, ये तो मेरे साथ भी है यार, कॉमन है।
3: अक्सर जो घर से बाहर रहता है ना, उसके जहन में एक ही बात आती है, सबसे पहले रूम रेंट देना है,
0: लाइट
3: बिजली बिल देना है,
0: और बाकी शॉपिंग एंड घर के खर्चे, वो तो दूर है, लेकिन ये दो चीज बहुत अहम होती है।
3: शॉपिंग तो मैं इतनी नहीं करती हूँ, लेकिन जो घर के सामान खत्म हो ही होते हैं, वो लेकर जरूर आते हैं।
0: हाँ, और पता है, अब आपको जरूरत और शौक, ये भी लाइफ में बहुत
3: इम्पोर्टेंट है।
0: हाँ, मोस्ट है। अब एक जरूरी सवाल, हम जो सामान खरीदते हैं उनमें से कितनी चीजें वास्तव में हमारी जरूरत होती है, और कितनी सिर्फ हमारी शौक। मान लीजिए आपका फोन बिल्कुल ठीक चल रहा है, लेकिन बाजार में नया मॉडल आया, अब मन करता है कि पुराना फोन छोड़कर नया ले लेते हैं। इस तरह कपड़े, जूते या फिर घर का सामान भी हम कई बार जरूरत से ज्यादा खरीद लेते हैं। इसमें कुछ गलत नहीं है, आखिर अपनी कमाई से अपनी पसंद पूरी करना भी जरूरी है, लेकिन अगर हर चाहत को जरूरत बना लिया जाए तो सेविंग मुश्किल हो जाती है। आपकी ऐसी कौन सी चीज है जिस पर आप जरूरत से ज्यादा खर्च कर देते हैं? हाँ, बताइएगा जरूर। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9837896896, और अभी सुनते हैं एक ब्यूटीफुल ट्रैक, उसके बाद लौट कर आते हैं, फिर करते हैं आपसे ढेर सारी बातें।

0: रीना तुम्हें पता है आजकल ना शॉपिंग के लिए बाजार जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। मोबाइल उठाओ, एप्लीकेशन खोलो और कुछ ही में शॉपिंग शुरू। सबसे मजेदार बात तो तब होती है जब सामने लिखा आता है सेल डिस्काउंट लिमिटेड ऑफर। हमें लगता है कि अगर अभी नहीं खरीदा तो बहुत बड़ा नुकसान होगा, लेकिन कई बार हम वो सामान भी खरीद लेते हैं जिसकी हमें जरूरत नहीं होती है। डिलीवरी आने के बाद सामान देख कर खुशी तो होती है, लेकिन महीने का बजट देख कर थोड़ा अफसोस भी होता है। तो बताइए, ऑनलाइन शॉपिंग ने आपकी सेविंग बढ़ाई है या फिर खर्च किया है? हाँ हाँ बताओ बताओ। देखो, ऑनलाइन शॉपिंग बात अगर आई है ना, तो रीना का मुझे बहुत बार कॉल आता है। स्टूडियो में होती हूँ और ये कभी कभी बिजी होती है, तो मुझे बोलती है कि खुशी मेरा ना पार्सल आया है, प्लीज आप ले लेना बाहर से। भैया, लड़की इतने ऑनलाइन शॉपिंग करती है ना कि मैं इसके ऑर्डर ले लेके थक जाती हूँ। कभी तो मेरा दिल करता है कि मैं ही रख लेती हूँ, पर अफसोस वो मेरे काम का नहीं है, क्योंकि जो ये प्रोडक्ट यूज करती है ना वो मैं नहीं करती हूँ, और जो मैं करती हूँ वो ये यूज नहीं करती है।
1: ये होता है हर किसी का, बहुत ही रेयर होता है कि एक साथ अगर मैच हो जाए, अदरवाइज हर किसी का प्रोडक्ट अलग होता है। और बात की जाए चाय और छोटे छोटे खर्चे, देखो पैसे ज्यादा ना, मुझे नहीं लगता है कि हम बड़े सामान खरीदते उसमें खर्चे होते हैं, ये छोटी चीजों में ही बहुत ज्यादा पैसे खर्च हो जाते हैं,
0: पता ही नहीं चलता यार।
1: हाँ, उसमें नहीं पता चलता है। एक तो आप हिसाब भी नहीं लगा पाते हो, 10 रुपए के 20 रुपए के, यार उसमें हिसाब लगाएगा तो कोई लगाएगा कैसे? मान लो दुकान से हमने 2000 का सामान लिया तो वो तो हमें याद रहता है,
0: पता रहता है
1: कि हमने 2000 का सामान लिया है, लेकिन ये छोटे मोटे खर्चे इतना कौन याद रखेगा? लेकिन ये छोटे मोटे खर्चे ना बड़े खर्चे से ज्यादा खर्चे होते हैं। तो हम बात करेंगे, अक्सर बड़े खर्चे का हिसाब रखते हैं लेकिन छोटे छोटे खर्चों का नजरअंदाज कर देते हैं। सुबह की चाय, शाम का स्नैक, बाहर का खाना, छोटी शॉपिंग या रास्ते में कुछ खरीद लेना हर बार छोटी लगती है, लेकिन अगर महीने भर के इन छोटे खर्चों को जोड़े तो शायद हमें पता चले कि काफी पैसा इन पर चला गया। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि छोटी खुशियां छोड़ देना चाहिए, बात सिर्फ इतनी है कि हमें अपने खर्च का अंदाजा होना चाहिए। आज शाम एक काम कर लीजिए, सोचिए पिछले कुछ दिनों में आपने सबसे ज्यादा पैसा किस छोटे खर्चे पर लगाया है। अगर ये आपने हिसाब लगाना शुरू कर दिया तो आपको ये छोटे छोटे खर्चे ना बड़े खर्चों से ज्यादा लगेंगे। अब बात आती है घर घर की।
0: घर चलाना अपने आप में ना किसी मतलब मैनेजमेंट से कम नहीं है। महीने की शुरुआत में सैलरी आती है और उसके साथ शुरू होता है पूरा हिसाब, राशन, बिजली, पानी, बच्चों की पढ़ाई, ट्रैवल, घर का सामान और बाकी जरूरतें। कई बार बजट बनाकर चलने के बावजूद अचानक कोई ऐसा खर्च आ जाता है जिसकी प्लानिंग नहीं होती है, ऐसे में सेविंग पीछे रह जाती है। इसीलिए घर का बजट बनाना सिर्फ खर्च कम करने के लिए नहीं, बल्कि ये समझने के लिए भी जरूरी है कि पैसा कहाँ और कितना जा रहा है। आपके घर में बजट कौन बनाता है और आप सबसे ज्यादा खर्च किस चीज पर करते हैं?
1: छोटे छोटे सामान लाने में मुझे याद है,
0: सब्जियां शॉपिंग करने में मैं बहुत पैसा खर्च करती हूँ। जब मैं सब्जी खरीदने जाती हूँ ना, तो मैं बता नहीं सकती एवरीवन आपको,
1: मतलब मैं बताती हूँ इसकी रियलिटी क्या है।
0: अगर मैं 200-300 भी लेकर जाऊंगी ना, तो उसमें से सिर्फ
1: कि इसकी आदत क्या है, ये एक बार सामान नहीं लेती है, कभी भी नहीं लेती है, छोटे छोटे सामान लेती रहती है। एक बार नहीं, नहीं कि एक बार हम बजट पूरा कर लेते हैं, नहीं, मैं तो आज अगर खाऊंगी तो आज ही लेके आऊंगी।
0: हाँ, मैं ये करती हूँ यार, पर ये चीजें मुझे अभी अपनी ठीक करनी है।
1: हाँ, ये ठीक करनी भी चाहिए, क्योंकि देखो एक बार अगर हम सामान खरीद लेते हैं ना तो हमारा मान लो महीने भर चल जाता है,
0: महीने भर चल जाता है,
1: लेकिन हम नहीं खरीदते तो महीने से डबल पैसे खर्च हो जाते हैं
0: और फिर ना उसे ना हमारा बजट भी नहीं बन पाता है। हमारी चीजें हमें नहीं पता कितना खर्च हो रहा है। अगर हम, आपने जैसे कहा कि एक बार अगर हम इकट्ठा सामान लेकर आ जाते हैं तो उसमें हमें पता चलता है कि अच्छा इतना महीने का हमारा राशन चल रहा है।
1: बिल्कुल, और तुम्हें पता भी चलता है कि इस महीने हमने 5000 खर्च करे हैं तो अगले महीने भी हमें 5000, मतलब हर महीने 5000 खर्च होंगे हमारे सामान।
0: हाँ, बिल्कुल,
1: एक वो हिसाब बन जाता है,
0: बन जाता है।
1: लेकिन जब आप छोटे छोटे सामान लाते हो तो आप मैनेज नहीं कर पाते हो।
0: हाँ, तो अब एवरीवन, रीना कुल मिलाकर ये कहना चाहती हैं आपसे कि अगर आप भी छोटा छोटा सामान लेकर आते हैं ना, तो आप ऐसा ना करें, एक लिस्ट बना लीजिए जो आपको लगता है कि ये मेरी डेली बेस की काम आने वाली चीजें हैं, तो उसको आप इकट्ठा लेकर आ जाएं, राइट?
1: हाँ, और ये सिर्फ गर्ल्स के लिए नहीं है भैया, जो लड़के हैं, जो हमारे फादर साहब है,
0: वो भी तो ऐसे ही करते हैं ना।
1: हाँ,
0: वो बार बार सामान नहीं लाते, गुस्सा करने लग जाते, बोलो अरे पापा ये भूल गई थी, तो पहले याद नहीं रखा जाना था तुम्हें क्या लाना है क्या नहीं लाना है, अब मैं नहीं लेके आऊंगा जाओ तुम लेके आओ।
1: बताना चाहूंगी जैसे आजकल यू नो बॉय की बात अगर आपने की है, तो बाहर हॉस्टल में स्टडी की वजह से रहते हैं है ना, एंड कुछ जॉब की वजह से रहते हैं,
0: तो और बहुतों के पास जिम्मेदारियां रहती है,
1: रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, एग्जैक्टली, तो सारी चीजें होती हैं। और
0: एक बात तो है, बड़े बुजुर्ग जो है वो कभी भी हिसाब में कंफ्यूज नहीं होते हैं, क्योंकि वो अपने पास डायरी रखते हैं, वो चाहे 10 रुपए का भी सामान लेकर आते हैं ना तो अपने डायरी में नोट करते हैं,
1: और ये सबसे अच्छी बात है।
0: हाँ, तो उनको पता चलता है कि अच्छा इस बार महीने का खर्चा इतना हुआ है, अगली बार शायद इससे ज्यादा हो सकता है।
1: हाँ,
0: देखिए हम ये नहीं कहते कि छोटी छोटी जरूरतें पूरा ना करें, लेकिन उनको आप
1: अपने बजट के अनुसार करें।
0: हाँ बिल्कुल, ज्यादा खर्चे ना करें।
1: अभी क्या कई बार ऐसा भी होता है रीना कि जैसे हम शॉप मार्केट गए शॉपिंग करने के लिए या कुछ भी लेने के लिए, हम खरीदने के लिए गए तो हमें कुछ चीज पसंद आ गई, जबकि वो हमें पता है कि हमारे काम की नहीं आने वाली है, फिर भी हम खरीद लेते हैं कि चलो कम पैसे में मिल रही ले लेते हैं,
0: और वो पछतावा होता है फिर,
1: और फिर बाद में पछताते हैं कि यार हमने क्यों खरीद लिया।
0: ये रियलिटी है। तो चलिए फिलहाल हम बात करेंगे हम पहली कमाई, आज हर किसी को अपनी पहली कमाई याद आने वाली है।
1: बिल्कुल।
0: तो हम बात करेंगे पहली कमाई के बारे में।
1: जब आपकी आपको फर्स्ट सैलरी मिली थी तो आपने उस फर्स्ट सैलरी में से क्या किया था?
0: हाँ
1: याद है आपको, हम याद दिलाने के लिए आए हैं।
0: पहली कमाई की खुशी शायद जिंदगी की सबसे खूबसूरत फाइनेंशियल मेमोरीज में से एक होती है। रकम छोटा हो या बड़ी, जब पहली बार आपने मेहनत के पैसे हाथ में आते हैं तो गर्व महसूस होता है।
1: हाँ।
0: किसी ने पहली सैलरी से माता पिता के लिए कुछ खरीदा, किसी ने दोस्तों को पार्टी दी और किसी ने पैसे संभाल कर रखा। आपकी पहली कमाई से जुड़ी कोई भी यादें जरूरी होगी। आज शाम पुराने दिनों को याद करते हुए हमें बताइए आपकी पहली कमाई कितनी थी और आपने उस पैसे का सबसे इस्तेमाल किस चीज के लिए किया।
1: तो यही हम आपसे शुरुआत कर लेते हैं, अपने श्रोताओं से पूछ रहे हैं, तुम भी बताओ भाई तुमने अपनी फर्स्ट सैलरी में से क्या किया था। मैं अगर मेरी फर्स्ट सैलरी की बात करूँ तो पहले मैं ऑनलाइन वर्क किया करती थी, तो वहाँ पर मेरे को फर्स्ट सैलरी मिली और वो फर्स्ट सैलरी थी मेरी 58,000 मेरी सैलरी थी, और जो कि मैंने सोचा भी नहीं था, मुझे बिलीव नहीं होता है अभी भी कि मेरी सैलरी इतनी थी। और तो जब मेरे को फर्स्ट सैलरी मेरी अकाउंट में आई तो सबसे पहले मैंने मम्मी को बताया, और उसके बाद आई थिंक 2-3 दिन के बाद मैंने कहा कि मम्मा मेरे को फर्स्ट सैलरी मिली है और मैं आपके लिए कुछ यूनिक से लेकर आती हूँ। तो उस पैसों से मैंने मम्मा के लिए एक सिल्वर चेन बनवाई, उसमें राधे कृष्ण जी, हाँ बहुत सुंदर सी वो चित्र था उसके अंदर, मतलब उन्होंने डिजाइन करके बनाया हुआ था, तो मुझे वो पसंद आया और मैंने मम्मी को वो गिफ्ट किया।
0: और मैं अपनी मम्मी को बालाजी सालासर घुमाने के लिए लेके गई।
1: अरे वाह क्या बात। हाँ। है सुपर।
0: तो मतलब उस टाइम मेरे पापा बिजी थे, तो मतलब कुछ काम था, तो मैंने बोला कि चलो मैं लेके चलती, तो मैं लेके गई थी उन्हें मम्मी को सालासर बालाजी।
1: वो मेमोरेबल टाइम देखो अभी भी हमें याद आ रहा है तो कितना हैप्पी हो रहे हैं। और सोचो रीना जो हमारी ऑडियंस है उनको भी अपनी फर्स्ट सैलरी याद आ गई है कि हमने अपनी फर्स्ट सैलरी से क्या किया था, तो वो भी बड़ा खुश हो रहे हैं कि देखिए आपकी बातों से हमारी भी यादें पुरानी ताजा हो गई है। दोस्तों यही तो होता है रेडियो का प्यार जो दिल से दिल पहुंच ही जाता है।
0: और इसके लिए आपको क्या करना है, देखिए कंजूसी नहीं करनी है, मैसेज करके बताना है आपने पहली सैलरी आपने कहाँ खर्च किया था। हमारा नंबर है 9837896896 पर मैसेज करके बताना है, दिल पर हाथ रख के मैसेज करिएगा।
1: पर वो गाना मुझे याद आ रहा है,
0: क्या
1: हाथ रख दे दिल पे जरा। चलो दिल पे हाथ रखते हैं,
0: चलो ये गाना प्ले कर देते हैं।
1: दिल तो बड़ी तेज से जोरों से धड़क रहा है भैया, हटा लेते हैं हाथ।
0: नहीं ये वो पता क्या बोले लगे 440 वोल्ट
1: छूने से तेरे। अरे वाह।
0: तो गाइज आप बताइएगा कि आपको इन दोनों में से कौन से गाने सुनना है।
1: हाँ।
0: बाकी हम यहाँ पर म्यूजिकल ब्रेक लेते हैं।

0: तो ये शानदार से गाना हमने अभी आपको सुनवाया और हमने भी इंजॉय किया, आपने भी इंजॉय किया। देखिए शाम को शानदार बनाना खुशी और रीना का काम है, वो हम ही रहे हैं अपनी पूरी अपना पूरा 100% शिद्दत से दे रहे हैं। कहते हैं ना कि अगर आप किसी चीज को पूरी शिद्दत से चाहो ना तो पूरी कायनात उसको मिलाने में लग जाती है। और अब हम बात करने वाले हैं रीना इमरजेंसी सेविंग की। दोस्तों बचत सिर्फ भविष्य के सपनों के लिए नहीं होती है बल्कि अचानक आने वाली जरूरतों के लिए भी बहुत काम आती है जिंदगी में ना। कई बार दोस्तों ऐसी चीजें सामने आ जाती हैं जो हमने सोची भी नहीं होती हैं। पता नहीं चलता घर में अचानक कोई जरूरी सामान लेना पड़ जाए, यात्रा करनी पड़ जाए या कोई ऐसा खर्च आ जाए जिसकी हमने प्लानिंग नहीं की होती है। और अगर थोड़ी सेविंग अलग रखी हो तो ऐसे समय में परेशानी कम हो सकती है, इसीलिए सेविंग का एक हिस्सा इमरजेंसी के लिए रखना समझदारी हो सकता है। आपके हिसाब से हर महीने थोड़ी इमरजेंसी सेविंग रखना कितना जरूरी है? क्यों रीना, अभी देखो भगवान ना करे कभी कोई प्रॉब्लम हो जाए, कोई हमारी हेल्थ इश्यू हो जाए, अगर हमारे पास पैसा रहेगा तभी तो हम राइट टाइम पे अपना इलाज ट्रीटमेंट करवा पाएंगे।
1: बिल्कुल ये तो सही है। देखिए हम अगर हम 10 रुपए भी कमा रहे हैं तो 5 रुपए सेविंग करिए, 5 रुपए खर्च करिए।
0: हाँ,
1: कहने का मतलब है 10,000 भी अगर आप कमाते हैं तो 5,000 खर्च करिए, 5,000 अपने अकाउंट में रखिए, सेविंग रखिए उसको। सेविंग रखना बहुत जरूरी है आज के टाइम में, क्या पता कब किस चीज के लिए आपको जरूरत पड़ जाए। और दूसरों से लेने से बजाय है कि जो आपके पास सेविंग है आप उसे यूज कर सकते हैं। फिलहाल हम बात करने वाले हैं श्रोताओं दिखावे के खर्चे। आजकल ये बहुत ट्रेंड पर है, दिखावे के खर्चे बहुत ज्यादा चालू हो गए भैया। दिखावे के खर्चे इतने होते हैं ना कि अगर इतने 2,500 का सामान लिया है तो मैं इसे दुगना सामान लेने वाली हूँ। कई बार खर्च हमारी जरूरत से नहीं बल्कि दूसरों को देख कर तय होता है। किसी के पास नया फोन आया है तो हमें भी चाहिए, कोई महंगे कपड़े पहन रहा है तो हमारा भी मन करता है, किसी ने नया बाइक लिया तो हमें भी लगता है कि नया बाइक ले ले। मतलब हर चीज है ना हम दूसरों को देख कर ले लेते हैं जो हमारे अनयूज के लिए होते हैं, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन हमें ये याद रखना चाहिए कि हर इंसान की इनकम, जरूरत और प्रॉपर्टीज अलग होती है। दूसरों की जिंदगी देख कर अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग तय करना सही नहीं है, इसीलिए अपनी कमाई के हिसाब से अपनी जिंदगी जीना जरूरी है। क्या आपने कभी सिर्फ किसी को देख कर कोई चीज खरीदी है? खुशी में तुमसे पूछना चाहूंगी, तुमने गलती की हो कि नहीं यार इसने ये ड्रेस लिया है या कोई भी सामान हो तो तुम्हारे मन में आया है?
0: नहीं, मैंने किसी को देखकर तो शॉपिंग नहीं की है कि उसने ये खरीदा तो मैं भी ये खरीदूंगी। पर हाँ एक बार ही ऐसा हुआ था, राखी फेस्टिवल था आई रिमेम्बर, तो मैं और मेरी बहन मार्केट गई शॉपिंग करने के लिए। नॉर्मल सामान हम खरीदने के लिए गए थे पर हमें एक ड्रेस इतनी पसंद आ गई कि हमने उसको ले लिया।
1: अच्छा,
0: दोनों ने कि चलो दोनों ले लेते हैं और ड्रेस ले लिया। लेकिन बाद में हमने सोचा कि यार अभी तो हमें इस हैवी ड्रेस की नीड ही नहीं थी क्योंकि कोई फंक्शन भी नहीं था, और आपको पता है कि हैवी ड्रेस ऐसे पहन भी नहीं सकते हैं, कोई पार्टी होती है कोई फंक्शन होता है तभी हम पहनते हैं। तब मुझे वहां पर बहुत अफसोस हुआ कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था।
1: मैं बचपन में ये चीजें करती थी।
0: ओके,
1: हाँ जब देखती थी ना अच्छा आज मैं ये ड्रेस पहन के तो मैं भी घर जाकर जिद करती थी
0: मम्मी मुझे ये वाला ड्रेस चाहिए।
1: लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ी हुई और खुद के पैरों पर मैं खड़ी हुई हूँ तो अब मुझे रियलाइज होता है कि उस टाइम की लाइफ और इस टाइम की लाइफ, अब मैं मतलब जो चीज मुझे जरूरत नहीं होती है मैं नहीं खरीदती हूँ चाहे कुछ भी हो जाए।
0: रीना कहते हैं ना कि शौक तो पापा के पैसों से ही पूरे होते हैं, अपने पैसों से तो सिर्फ जरूरत ही पूरी हो पाती है।
1: सही बात है। चलिए आगे भी हम बात करेंगे। अब
0: दोस्तों के साथ शाम बिताने का मजा ही अलग है, चाय हो, खाना हो, मूवी हो या फिर कहीं घूमने का प्लान, दोस्तों के साथ समय जल्दी गुजर जाता है, क्यों रीना?
1: ये तो बिल्कुल सही कहा।
0: हाँ, लेकिन कई बार इस मस्ती में ना बजट भी थोड़ा गड़बड़ा जाता है। दोस्त कहते हैं चल ना आज खर्च कर देते हैं और हम भी सोचते हैं कि एक दिन में क्या फर्क पड़ेगा। फर्क तो तब पता चलता है जब महीने का लास्ट डे आता है और जब हम बजट का हिसाब लगाते हैं। इसीलिए दोस्तों के साथ एंजॉय कीजिए लेकिन अपनी फाइनेंशियल लिमिट को भी ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों अगर आप कभी भी कहीं अब नेक्स्ट टाइम अगर आप अपने दोस्तों के साथ कहीं भी घूमने के लिए जा रहे हैं ना तो हम मना नहीं कर रहे हैं जाइए, लेकिन अपने बजट के अनुसार खर्च कीजिएगा। कई बार ऐसा होता है ना दोस्तों के साथ फ्लो में कि यार चल मैं तुझे उस रेस्टोरेंट में खाना खिला, चल मैं वहां तुझे लेकर चल, तो उस चक्कर में फिर हमारा जो बजट है ना वो गड़बड़ा जाता है। तो इन चीजों को ध्यान में रखो, बाकी लाइफ को एंजॉय करो यार, और क्या है जिंदगी में। लेकिन पैसा पैसा पैसा भी सेव करके रखना बहुत जरूरी है।
1: तो अब तुमने पैसों की बात करी ही है तो मैं पूछना चाहती हूँ पैसे बचाना क्यों मुश्किल है? कई लोग कहते हैं हम पैसा बचाना चाहते हैं लेकिन हो नहीं पाती। इसका एक कारण यह भी हो सकता है कि हम बचत को महीने के अंत में बची हुई रकम मान लेते हैं। पहले सारे खर्च होते हैं, फिर अगर कुछ बचा तो सेविंग, लेकिन अगर हम शुरुआत में ही अपनी इनकम का एक हिस्सा अलग रखने की कोशिश करें तो सेविंग की आदत बनना आसान हो सकता है। जरूरी नहीं है कि रकम बहुत बड़ी हो, शुरुआत छोटी हो सकती है, लेकिन लगातार ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आपके लिए सेविंग में सबसे बड़ी परेशानी क्या है? कम इनकम, ज्यादा खर्च या प्लानिंग की कमी? अक्सर ये सारा चीज आपने देखना होता है, तभी आप पैसे बचा पाएंगे, अदरवाइज पैसे बचाना बहुत मुश्किल होता है।
0: रीना, मुझे बचत से याद आया कि बचपन में ना हमारे पेरेंट्स भी हमें सिखाते थे कि पैसों को कैसे सेव करके रखना है, पैसों को कैसे जोड़कर आपको रखना है, बचत करनी है। छोटे थे ना बचपन में, तो हमारे पेरेंट्स ने हमें मिट्टी की गुल्लक लाकर दी थी, मेरे भाई को भी और मुझे भी। तो हम जब स्कूल जाया करते थे तो एवरीडे पापा जी हमें 10 रुपए दिया करते थे, बड़े भैया को भी और मेरे को भी। तो मैं 5 रुपए स्कूल लेकर जाया करती थी और 5 रुपए मैं अपने गुल्लक में जमा किया करती थी। तो और ऐसे करते करते काफी समय हो गया एंड मेरे पास बहुत सारे पैसे जमा हो गए और वहीं पर भैया की गुल्लक में बस 3-4 सिक्के ही। तो उस समय पे फिर मम्मा ने कहा कि अच्छा बच्चों, आज देखते हैं तुम्हारे गुल्लक में कितने पैसे हैं, देखते हैं तुमने कितने पैसे जोड़े हैं। तो मैंने कहा ठीक है मम्मी, मैं अपने गुल्लक लेकर आती हूँ उठाकर। तो मैं तो खुशी खुशी अपने गुल्लक लेकर आई, इतनी भारी। मम्मी कहती है अरे कब से पैसा जोड़ रही हो तुम। मैंने कहा मम्मी एक बार गुल्लक को जरा तोड़ो तो सही। और जब गुल्लक तोड़ी तो इतने सारे पैसे निकले, और मेरे बड़े ब्रदर के गुल्लक से सिर्फ कितने पैसे निकले थे आई रिमेम्बर, सिर्फ 200, और मेरी गुल्लक से निकले थे 1000। वो मैंने जोड़े थे पैसे और मेरे पापा मेरी मम्मा बहुत खुश हुए कि चलो हमारी बच्ची ने बहुत अच्छा काम किया है, पैसा जोड़ना सीख गई है। हाँ। लेकिन अब बड़े हो गए तो खर्च थोड़े ज्यादा हो गए हैं। लेकिन हाँ,
1: खर्चे ज्यादा करते, लेकिन गुल्लक अब देखने को बहुत कम मिलती है।
0: कम मिलती है हाँ।
1: अब हर कोई बैंक में सेविंग कर रहा है,
0: अब न्यू स्टाइल की गुल्लक आ गई है। और हाँ, हमने बच्चों की बात की है ना रीना, तो बच्चों की पैसों की वैल्यू ना, अगर बच्चे को हर जरूरत की चीजें तुरंत मिल रही है तो उसे पैसों की मेहनत समझना मुश्किल हो सकता है, मतलब उसको पैसों की वैल्यू समझ में नहीं आएगी। लेकिन अगर उसे छोटी रकम संभालने, जरूरत और इच्छा का फर्क समझाना और थोड़ा पैसा बचाना सिखाया जाए तो धीरे धीरे फाइनेंशियल डिसिप्लिन डेवलप हो सकता है। बच्चों को बचत सिखाने का मतलब उनकी हर इच्छा रोकना नहीं है, बल्कि उन्हें समझदारी से पैसे का इस्तेमाल करना सिखाना है। आपके घर में बच्चों को पैसों में बचाने की आदत आपने सिखाई है या नहीं? क्यों, बताओ बताओ। हाँ, तुम्हारे घर में भी तो वो छोटी गुड़िया है, बताओ उसको सिखाया है आपने या नहीं सिखाया है?
1: पैसे भैया कलेक्ट कर रखे उस लड़की ने।
0: अच्छा जी। अगर कोई रिलेशन वाले आते हैं, जैसे मेहमान आते हैं, तो वो भी पैसे देकर जाते हैं, है ना? और छोटे बच्चों को तो बहुत ज्यादा देते हैं।
1: मैं बोलती हूँ ना मेरे पास 100 रुपए, तो कहती हूँ 100 रुपए, मेरे पास 3000 है।
0: अरे बाप रे, क्या बात है यार।
1: वो बहुत सेविंग करती है, अभी छोटी है। बहुत से बच्चे बाहर के खाने के जिद करते हैं।
0: बहुत। दोस्तों, हम बस यही कहना चाहते हैं कि छोटे बच्चों को भी सिखाइए कि पैसा देके बहुत मेहनत से कमाया जाता है। और बच्चों को ना हर चीज, जैसे अगर आपने भी कहा रीना कि क्या होता है, कई बार बच्चे एक दूसरे को देखकर जिद करने लगते हैं कि मुझे भी यही चाहिए, सेम टू सेम यही चाहिए।
1: अगर तुम भी कुछ दोगे ना खाने के लिए तो बोलेंगे मैं नहीं लूंगी।
0: हाँ, तो मैं बोल रही हूँ वही कि बच्चे जैसे जिद करते हैं चीजों के लिए, वो चीजें तुरंत ना दें, क्योंकि उससे क्या होगा ना, फिर बच्चे को समझ में, वो बड़ा होगा तो उसकी आदत भी वही बन जाएगी। पैसा हो या ना हो, लेकिन उसको वो चीज चाहिए तो चाहिए। तो आप ऐसा मतलब ठीक है, जो जरूरत की चीजें हैं वो दिलाइए, मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन हर चीज बच्चा जिद कर रहा है तो उस पर थोड़ी सी आपको रोक लगानी चाहिए।
1: ये तो सही करा है तुमने। और अब हम बात करेंगे पैसे और रिश्ते।
0: ये तो सबसे जरूरी है, बहुत मोस्ट टॉपिक आपने लिया है यार, पैसे और रिश्ते।
1: पैसा सिर्फ हमारी जरूरतें से जुड़ी नहीं है, कई बार रिश्तों में भी इसकी भूमिका बहुत होती है। परिवार में खर्च को लेकर डिस्कशन हो सकता है, दोस्तों के बीच उधार का मामला आ सकता है, या किसी की मदद करते समय हमें अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन भी देखनी पड़ सकती है। किसी की मदद करना अच्छी बात, लेकिन अपनी क्षमता से बाहर जाकर खर्च करना बाद में परेशानी बन सकता है। इसीलिए पैसे के मामले में साफ बातचीत और समझदारी जरूरी है। आपके हिसाब से रिश्तों में पैसे को लेकर सबसे जरूरी चीज क्या है, भरोसा या अंडरस्टैंडिंग? क्योंकि मुझे लगता है कि दोनों चीज बहुत जरूरी है, भरोसा भी और समझदारी भी। अगर भरोसा भी है और समझदारी भी है तो मान लीजिए आपके रिश्ते बहुत अच्छे चलेंगे। कुछ रिश्ते होते हैं जो पैसों पे ही चलते हैं, कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं कि हमें पैसे से कोई लेना देना नहीं है, बस साथ रहो यही हमारे लिए सब कुछ है। और वहाँ पर फिर हम बचत और सपने भी देखने लग जाते हैं, है ना? हर किसी का कोई न कोई सपना होता है। किसी को अपना घर चाहिए, किसी को घूमने जाना है, किसी को नई चीज खरीदनी है और कोई अपने बच्चों के भविष्य के लिए पैसा जमा करना चाहता है। लेकिन सपने सिर्फ सोचने से पूरे नहीं होते हैं, उनके लिए प्लानिंग भी करनी पड़ती है। सेविंग

0: दोस्तों महीने का आखिरी हफ्ता आते ही लोगों का बजट ना थोड़ा टाइट होने लगता है। सैलरी आने में अभी कुछ ही दिन बाकी हैं और खर्च अभी भी जारी हैं। तब हमें अचानक याद आता है कि इस महीने शुरुआत में कुछ ज्यादा खर्च हो गया था। अगर हम पूरे महीने अपने खर्च पर नजर रखें और छोटे छोटे खर्चों को भी ध्यान में रखें तो महीने के आखिर में प्रेशर कम हो सकता है। तो सच सच बताओ, इसीलिए दोस्तों आप देखिए, आप चाहते हैं कि महीने की लास्ट में आपको टेंशन ना हो, आपका बजट भी सही रहे, तो उसके लिए आपको ना स्टार्टिंग जब आपकी सैलरी आती है तब उसी में से आप सारा बजट कैलकुलेट कीजिए, लिस्ट बनाइए, आपको जो जो जरूरत की चीजें हैं, जो सामान है वो आप ऐड कीजिए, बाकी पैसा आप अपना अकाउंट में सेव कर लीजिएगा। क्यों रीना? फिर उससे आपको इश्यू भी नहीं होगा कोई।
1: एक और टॉपिक है जो मुझे लगता है इस पर बात करना बहुत जरूरी है।
0: हाँ,
1: उधार लेना और देना।
0: उधार लेन देन जो होता है,
1: दोस्ती और रिश्तेदारों के बीच पैसों का लेन देन कभी कभी संवेदनशील विषय बन जाता है। जरूरत पड़ने पर किसी की मदद करना अच्छी बात है, लेकिन उधार देते या लेते समय दोनों तरफ की फाइनेंशियल सिचुएशन को समझना जरूरी है, क्योंकि कई बार छोटी रकम से शुरुआत हुई बात रिश्ते में तनाव तक पहुंच जाती है। इसीलिए पैसे के मामले में क्लियरिटी और जिम्मेदारी बहुत जरूरी है। अगर किसी को पैसे की जरूरत हो तो मदद करने से पहले अपनी कैपेसिटी जरूर ना चाहिए, तभी आप किसी को पैसे उधार दीजिए। अगर आपके पास लग रहा है कि मेरे पास पैसे नहीं है, तो देखिए मुझे लगता है कि क्लियरिटी बहुत जरूरी है। साफ मना कर दीजिए कि मेरे पास पैसे नहीं है। बहुत से सोचते हैं कि रिश्तों में खराबी आ जाएगी, दोस्तों में खराबी आ जाएगी, और इस चक्कर में वो किसी से लेकर दे देते हैं, लेकिन वो समय पर नहीं चुकाते हैं, तो इसका जो लेन देन है वो मुश्किल पड़ जाता है।

0: उसमें ना फिर उस सिचुएशन में क्या होता है ना, रीना रिश्ते ज्यादातर खराब भी होते हैं। दोस्तों देखिए अब हमारे जाने का समय हो गया है ना, और जाते जाते हम आपसे बस यही कहना चाहेंगे कि देखिए पैसा लाइफ में बहुत जरूरी है, अहम है, क्योंकि पैसों के बिना भी लाइफ अधूरी है, है ना। तो आप पैसा कमा रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप पैसा पूरा ही उड़ा देंगे। आप पैसा खर्च करो लेकिन अपने बजट के अनुसार बैलेंस बनाकर रखो दोनों चीजों में। आप पैसे शॉपिंग भी करो एंड घर के खर्च भी करो, लेकिन थोड़ा पैसा सेविंग भी करो, सेव करो, वो बहुत जरूरी है आने वाले भविष्य के लिए, क्योंकि हमें नहीं पता कल क्या प्रॉब्लम हो जाए, क्या लाइफ में इश्यू हो जाए। इसीलिए पैसा सेव करो, लाइफ को हैप्पीनेस के साथ जियो। ठीक है दोस्तों, बाकी मिलेंगे नई बातों के साथ नए एपिसोड में। तब तक के लिए हमें दीजिएगा जाने की अनुमति। नमस्कार, खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए, और हाँ सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल लिसनर्स।
1: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
2: सिर दर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरो सर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर, मुरादाबाद।
3: हेलो जी, गुड वाली इवनिंग है आरजे रीना के साथ और आरजे खुशी। मतलब देखिए, जब भी टाइम मिलता है शाम को भी शो करने का तो हम सोचते हैं कि क्यों आए जाते हैं शो करने के लिए, क्योंकि आप सभी से दूर तो हम भी नहीं रह पाते हैं। घर आने के बाद थोड़े बोर होने लग जाते हैं, फिर हम सोचते हैं कि चलो यार स्टूडियो चलते हैं, आप सभी के साथ कुछ गप्पे सप्पे लगाते हैं। फिलहाल आप ऑफिस से निकलने की तैयारियां में होंगे और बहुत सो तो अभी ऑफिस में ही होंगे, और क्योंकि उनकी टाइमिंग होती है 10 बजे तक भी होती है। तो फिलहाल खुशी तुम ये बताओ, अभी घर से भागी भागी आई हो, क्या हाल है तुम्हारे?
0: मेरे हाल चाल बहुत ही अच्छे हैं, और शाम की चाय, ओए होए होए,
3: मतलब तुम चाय पी के आ गई हो?
0: हाँ, मैं चाय पी कर आई हूँ। मम्मा ने गर्मा गर्म अदरक इलायची वाली चाय बनाई थी, तो उन्होंने कहा बेटा अब आप ऑफिस जा ही रहे तो क्यों ना एक कप मेरे हाथ की गर्मा गर्म चाय पी कर जाओ, आपका दर्द भी नहीं होगा और आप एनर्जेटिक फील करोगे। तो मैंने कहा चलिए, एनर्जी हाई लग रही है या नहीं लग रही है आपको बताओ मुझे?
3: नहीं, एनर्जी तुम हाई है क्योंकि तुम मम्मी के हाथ से चाय पी कर आई है ना, इसलिए।
0: हाँ, लड़की इशारा मेरा समझ गई है।
3: हाँ, और देखिए एक कप चाय मिल जाना तो आपकी थकान वैसे भी दूर हो ही जाती है, छूमंतर हो जाती है। तो फिलहाल हम इस इवनिंग शो में हम करने वाले हैं ऑफिस का मूड, यानी कि जब भी हम ऑफिस से घर के लिए निकलते हैं ना तो जल्दबाजी में कभी कभी हम कुछ चीजें ऑफिस में ही छोड़ जाते हैं।
0: मेरे साथ भी अक्सर ऐसा ही होता है यार। अभी देखो मैं ऑफिस से घर जाती हूँ तो कभी मैं अपना चार्जर भूल जाती हूँ, कभी मैं,
3: ये तो तुम डेली बोलती हो,
0: कभी मैं कुछ जो यू नो ऑनलाइन शॉपिंग करती हूँ, कुछ ऑर्डर मेरे आते हैं
3: वो भी बहुत टाइम तक रहते हैं तुम्हारे ऑफिस में,
0: एंड कोई मुझे गिफ्ट देकर जाता है तो वो भी मेरे यहीं पर रखे रहते हैं, और वो काम पहुंचाना रीना का होता है। रीना मेरे घर आती है, कहती है बहन आप अपनी ये जो चीजें हैं, जो गिफ्ट्स हैं, इनको संभालो वरना मैं रख लूंगी।
3: हाँ, एक्चुअली मैं शाम को ऐसा होता है कि जब मेरे को यहाँ मौका नहीं मिलता है तो मैं अकेली बोर होती हूँ, तो मैं इसके घर चलाती हूँ और देखती हूँ कि इसका सामान यही रखा है, तो मैंने कहा चलो यार पहुंचा देते हैं,
0: काम भी हो जाएगा, नाम भी हो जाएगा।
3: यही है ना, किसी घर खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, भले ही सामान आपका हो।
0: हाँ, एक तीर से दो निशाने, देख रहे हैं आप हमारे श्रोता, सुन रहे हो ना आप। चलो अभी हम कार्यक्रम को ना आगे बढ़ाते हैं, और आज हम बात करने वाले, जैसे अभी रीना ने कहा कि ऑफिस में ना हमारी कुछ ना कुछ चीजें छूट ही जाती हैं, है ना। अपने ऑफिस का आप काम पूरा किया, लैपटॉप बंद किया, बैग उठाया और सीधा घर की तरफ निकल गए, रास्ते में मूड एकदम अच्छा है, लेकिन घर पहुँच कर जैसे ही फोन निकालते हैं एंड बैटरी देखते हैं 8% होती है, और तभी याद आता है चार्जर, लेकिन चार्जर तो ऑफिस में ही रह गया जनाब। अब वापस ऑफिस जाने का मन भी नहीं है और फोन बंद होने का डर भी है। कई बार घर जाने की इतनी जल्दी होती है ना कि हम अब फोन का चार्जर, ईयरबड्स एंड बॉटल जैसी छोटी छोटी चीजें वहीं छोड़ आते हैं। और सबसे मजेदार बात पता है क्या है दोस्तों, अगली सुबह ऑफिस पहुंचते ही सबसे पहले वही चीज ढूंढते हैं जो हम शाम को भूल जाते हैं, है ना। आप भी ऐसा करते हो ना, मुझे पता है, तभी आप इतना मुस्कुरा रहे हो जनाब। देखिए सबके साथ ये होता है, कॉमन सी बात है। ऑफिस से जब हम पूरा दिन काम करके थक कर घर जाने का जो एक्साइटमेंट होता है ना, वो अलग ही लेवल का होता है।
3: और तुमने ऑफिस की बात करी तो मेरे को ना कॉलेज की बात एक याद आ गई।
0: हाँ हाँ, बिल्कुल बताइए।
3: मैंने जबकि मुझे पता था कि 10 दिन की छुट्टी पड़ने वाली है, और मैं लंच बॉक्स कॉलेज में भूल आई थी।
0: ओहो,
3: 10 दिन बाद गई तो सोचो मैं उस लंच खोलने के बाद। और मेरी मम्मी डेली सुनाती थी, पड़े होंगे ऐसे ही, ना तूने उसे धो के रखा होगा। अब जाएगी ना 10 दिन बाद, जब उसको खोलेगी अच्छी परफ्यूम वाली खुशबू आएगी तेरे को। तो वो दिन मेरे को याद ही रहते हैं। बाकी ऑफिस से जब हम निकलते हैं तो जल्दबाजी इतनी होती है कि कुछ चीजें हम ठीक जाते हैं।
0: और सुबह जब हम ना बड़े प्यार से ऑफिस निकलते हैं ना, तो मम्मी बड़े प्यार से ना जो लंच बॉक्स पैक करके देती हैं, दोपहर में खाना खाया और फिर काम में लग गए। शाम जब आती है ना तो घर जाने की जल्दी इतनी होती है कि बैग उठाया और निकल गए। घर पहुंचकर बैग खोला और अचानक याद आया, अरे यार लंच बॉक्स तो ऑफिस में ही रह गया। फिर दिमाग में पहला सवाल आता है, अब कल सुबह कौन लेकर आएगा? और दूसरा सवाल, क्या उसमें कुछ बचा भी है या ऐसे ही छोटी छोटी चीजें ऑफिस लाइफ का हिस्सा है? खासकर जब दिन भर काम ज्यादा हो और शाम को जल्दी निकलना हो तो दिमाग बस घर पहुंचने पर लगा रहता है। तो बताइए, आपने ऑफिस में अब तक सबसे अजीब चीज क्या छोड़ी है लंच बॉक्स में? हाँ बताओ, चार्ज लंच बॉक्स में क्या छोड़ा है, कुछ बचाया है या नहीं? बस पूरा टिफिन फिनिश कर लेते हैं आप। कभी कभी ऐसा होता है ना रीना, कि हम ना बाहर से कुछ ऑर्डर कर देते हैं या फिर दोस्त वगैरह ले आते हैं, हमारे जो क्लिक्स होते हैं, जो हमारे है ना फ्रेंड्स होते हैं, तो वो कुछ ले आते हैं तो हमारा लंच रखा रह जाता है। हाँ, चलो तो आज है। तो पेट भर गया, अब लंच खाने का भी मन नहीं करता है।
3: और पता जब घर जाते ना तो देखते मम्मी देख तो नहीं रही है लंच को, छुपके जो वो जो गाय के लिए खाना रखते हैं उसमें आराम से डालते हैं ताकि मम्मी को आवाज न जाए। अगर मम्मी के पास आवाज गई तो 70 लेक्चर सुनने को मिल जाते हैं। मैं तुम्हारे लिए सुबह उठती हूँ, तुम्हें ये नहीं दिखता है कि मैं तुम्हारे लिए सुबह उठ के लंच बनाती हूँ, यानी कि मुझे तो नींद आती नहीं है, तुम सबको ही नींद आती है, इसीलिए तुम लंच खाते नहीं हो, वापस ले आते हो। मतलब इतने ताने सुनने को मिल जाते हैं।
0: नहीं, वो ताने सुनाने का उनका पूरा राइट भी बनता है ना रीना। देखो ना, हमारी मम्मा सुबह 5 बजे उठ जाती है और इतनी मेहनत सबके लिए करती है ना, तो फिर थोड़ी सी तकलीफ तो होती है।
3: बिल्कुल, इसीलिए जब भी आप लंच लेकर जाए
0: तो उसको पूरा फिनिश करें,
3: करके ही लाए। अगर देखिए आप नहीं भी खा रहे, आपने सोचा कि हम बाहर से कुछ खा लेते हैं, तो कुछ जरूरतमंद को खाना आप दे दीजिए,
0: आप दे, हाँ उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिएगा, ये ज्यादा बेस्ट आइडिया है।
3: लेकिन हम मिलेंगे म्यूजिकल ब्रेक के बाद, वो भी बहुत जरूरी है।
0: अरे हाँ यार, चलो गाना सुनते हैं एक बड़ा प्यारा सा, उसके बाद लौट कर आएंगे, करेंगे आपसे और भी बातें। बने रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6 पर मजेदार गानों के साथ, बातों के साथ। दो कुड़ी इधर बैठी है जी।

0: तो श्रोताओं, बहुत ही शानदार वाला आपने गाना एंजॉय किया है। फिलहाल आप सभी को गुड वाली इवनिंग है। आई होप कि आप सभी ने भैया घर में पकवान है ना बना ली होंगी, है ना। खुशबू जो आ रही है मुझे यहाँ तक आ रही है, खुशबू तुम्हें आ रही है?
1: हाँ, मुझे खुशबू आ तो रही है,
0: सोंधी सोंधी सी।
1: मुझे ना आलू गोभी की खुशबू आ रही है।
0: ये लड़की आलू गोभी बहुत खाती है इसलिए इसको आलू गोभी याद आ रही है।
1: मुझे मिक्स वेज बहुत पसंद है, आलू गोभी मटर और भी उसमें बहुत सारी सब्जियां हूँ। और
0: बहन, ठंड का मौसम आने वाला है, मटर आलू मटर ही मिलेगा, टेंशन मत ले।
1: हाँ, आलू मटर फिर तो बस हर घर में यही
0: है, आलू मटर गोभी मटर।
1: कोई रिलेशन वालों को फोन आते हैं रिश्तेदारों का भी तो हाँ जी ठीक है, हाँ आज खाने में क्या बनाया है? गोभी आलू, आज बनाया है मटर आलू, आज क्या बनाया है? गाजर आलू।
0: मोस्टली यही सुनने को मिल जाता है। फिलहाल देखिए हम काम की बात पर आते हैं।
1: हाँ।
0: यानी कि घर से शॉपिंग लिस्ट, शाम को ऑफिस से निकलने की तैयारी कर रहे हैं और तभी घर से फोन आता है, आते हुए सब्जी ले आना और हाँ वो वाला सामान भी। अब वो वाला सामान तो पता नहीं कौन सा होता है। आज तक कोई भी पता नहीं लगा पाया इसका। और दूध भी। और आप बड़े कॉन्फिडेंस के साथ बोलते हैं, हाँ हाँ सब याद है, रहेगा, सब ले आऊंगा। फोन रखा और 2 मिनट बाद आधी लिस्ट गायब हो जाती है। रास्ते में ट्रैफिक मिला, फोन आया, किसी फ्रेंड से बात हुई और शॉपिंग वाला बात दिमाग से निकल गई। घर पहुंचते ही पहला सवाल, सामान लाए? और हम बैग की तरफ ऐसे देखते हैं जैसे शायद सामान खुद बैग में आ गया हो। तो आज शाम घर से अगर शॉपिंग लिस्ट मिले तो उसे याद रखने की कोशिश मत करना, फोन में लिख लेना और बताइए आपके घर में शाम को सबसे ज्यादा कौन सी चीज लाने की बोली जाती है, तुम बताओ।
1: मेरे घर में सबसे जब मैं घर की तरफ जाती हूँ तो मेरी मम्मा का मुझे कॉल आता है कि बेटा जब आप आओ ना तो उधर से दूध लेकर आना।
0: हाँ।
1: और कुछ सब्जियों लिस्ट वो बता दी को कॉल पे, ये सब्जी लेकर आनी है। तो मैं जब घर ऑफिस से घर जाती हूँ तो मैं सामान जरूर लेकर जाती हूँ। और कभी कभी ऐसा भी होता है जैसे अभी आपने बोला कि फ्रेंड का कॉल जाता है, तो मेरे साथ भी ऐसा होता है, कई बार मेरी दोस्तों का कॉल आ जाता है और आपको बताया कि जब लड़कियां बात करना शुरू करती है ना तो वो रुकने का नाम नहीं लेती। एग्जाम्पल हमारे दोनों का ही ले लीजिए। तो क्या होता है, मैं भूल गई एक बार ऐसा ही, तो मम्मी ने बोला बेटा मैंने आपको सामान लाने के लिए बोला था, कहाँ है? तो मैंने सोचा वो तो मैं भूल गई और मैंने मम्मी को मतलब बहाना दिया। मैंने बोला मम्मी वो ना रास्ते में एक आंटी जी मिल गई थी तो उनसे मैं बात कर रही थी और मैं भूल गई आपको सामान लेकर आना।
0: तो मम्मी बोलती है कि दोबारा जाओ, है ना।
1: हाँ, फिर मम्मी बोलती है अभी दोबारा जाओ सामान लेकर आओ, उसके बाद घर पे बैठना आराम से।
0: लेकिन पता है खुशी, ऑफिस से निकलने से पहले घर से कॉल भी आ जाता है, अरे कितनी मिनट में निकलना है, तो हम बोलते हैं बस 10 मिनट में निकल जाएंगे।
1: हाँ, बहुत कॉल आते हैं यार, मेरी फैमिली के तो बहुत ज्यादा कॉल आते हैं।
0: ऑफिस में शाम को एक लाइन बहुत बोली जाती है, बस ये काम खत्म कर लूं फिर निकल लूंगा, और बस और यही बस कभी कभी आधा घंटा खा जाता है। एक काम खत्म हुआ तो दूसरा सामने, दूसरा खत्म हुआ तो कोई और मैसेज आ गया, फिर अचानक लॉक देखते ही अरे इतना टाइम हो गया। घर पर भी बोल रखा है कि आज जल्दी ही आऊंगा, अब जल्दी निकलना है तो काम भी करना है और बैग भी पैक करना है। ऐसे में दिमाग की हालत ऐसी होती है जैसे एक साथ 5 ऐप चल रहे हो। तो बताइए आपके ऑफिस में बस 10 मिनट वाली बात सच में 10 मिनट रहती है या लंबी हो जाती है? मेरी लिस्ट तो हमेशा लंबी हो जाती है।
1: जब हम ऑफिस से घर की तरफ निकलते हैं ना तो हम सबसे कह देते हैं कि हाँ बस 10 मिनट लगेगा, लेकिन वो 10 मिनट ना कब 10-15 मिनट 20 मिनट में तब्दील हो जाते हैं, हमें भी नहीं पता चलता है। और ऑफिस से निकलते वक्त अपने लैपटॉप बंद किया, चार्जर निकाला, बैग उठाया, बाहर आ गए, लिफ्ट में पहुंचे, अचानक दिमाग में ना सवाल आता है लैपटॉप बंद किया था या नहीं यार, अब वापस डेस्क पर जाने की इच्छा भी नहीं होती है, है ना, लेकिन मन है कि मानता नहीं है। फिर किसी आप क्लिक को कॉल करते हैं, यार मेरे टेबल पे देखा लैपटॉप बंद था या नहीं, और अगर कोई बोले हाँ बंद है तब जाकर चैन मिलता है। सच में एवरीवन यही होता है जब दिमाग घर जाने की जल्दी में होता है, छोटी सी बात भी बड़ा डाउट बन जाती है ना, डाउट हो जाता है ना मन में दीना। कई बार मेरे मन में भी डाउट हो जाता है कि पता नहीं मैंने चीजें ठीक से ऑफ की है नहीं की है, फिर मैं तुम्हें कॉल करती हूँ तुम बोलती हो हाँ ठीक है, तब मुझे लगता है कि चलो थैंक गॉड सब चीजें अच्छे से हो गई हैं।
0: लेकिन मुझे इसकी टेंशन नहीं होती है क्योंकि मुझे पता है कि मेरे बाद भी कोई शो करने के लिए आने वाला है।
1: हाँ, फिर तो कोई इशू नहीं है, बट मेरे साथ होता है।
0: और मेरे साथ ऐसा कब होता है, जब मैं घर से निकलती हूँ ना तो ताला बार बार चेक करती हूँ, ये बंद हुआ या नहीं हुआ कभी? खुल तो नहीं रहेगा?
1: हाँ, मेरी फैमिली मेंबर्स भी ऐसे ही करते हैं, जब हमें कहीं जाना होता है घूमने के लिए या फिर कहीं भी रिलेशन में कहीं भी हम जाते हैं, मार्केट ही जाते हैं शॉपिंग करने के लिए, तो ऐसे ही मैं भी ताला चेक करती हूँ लॉक किया है ठीक से या नहीं। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है ना कि हमने सोचा कि हाँ लॉक कर दिया लेकिन वो होता नहीं है, इसलिए चेक करना पड़ता है।
0: ऑफिस से जब भी आप निकले तो एसी, लैपटॉप ये जरूर चेक करें कि बंद किया है या नहीं किया है। पता चले अगली बार आप अगले दिन ऑफिस जाए तो आपके बॉस बोले अहो बेटा ध्यान कहाँ रहता है, घर जाने के जल्दी में सब कुछ भूल जाते हो, ऐसे ही देख लो कुछ खराबी हुई ना तो सैलरी से पैसे काट लूंगा, ये बात जरूर सुनने को मिल जाती है। आप जरूर बताइएगा कि आपको मिलती है सुनने को या नहीं मिलती है। हमारा नंबर है 9837896896। फिलहाल बात करेंगे ट्रैफिक में सबको जल्दी क्यों लगती है। अब ऑफिस खत्म हुआ, शुरू हुआ घर पहुंचने का दूसरा चैलेंज। ट्रैफिक, पूरे दिन ऑफिस में बैठकर काम किया और अब लगता है कि बस जल्दी से घर पहुंच जाए, लेकिन सड़क पर निकलते ही हर किसी को जल्दी होती है। आगे वाली गाड़ी धीरे चल रही है, पीछे वाला हॉर्न बजा रहा है और साइड से कोई निकलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ट्रैफिक में हॉर्न बजाने से सड़क खाली होने वाली नहीं है। इसीलिए जितनी जल्दी घर जाने की हो उतनी ही जरूरी है पेशेंस रखें, क्योंकि घर पर कोई आपका इंतजार कर रहा है और उसकी जल्दी नहीं, आप बस सुरक्षित पहुंच जाइए। तो आप देखिए जब ऑफिस से निकलते हैं तो आपको जल्दबाजी रहती है या फिर सोचते हैं कि यार घर ही तो जाना है, कौन से मुझे बॉस का डांट सुनना है जो मैं इतने जल्दबाजी करूं। पेशेंस के साथ गाड़ी चलाइए जी, क्योंकि शाम के वक्त ना ट्रैफिक बहुत ज्यादा आपको मिल जाता है। लेकिन देखिए ट्रैफिक के साथ साथ हम आगे भी बढ़ेंगे।
1: अब बात कर लेते हैं हम सिग्नल पर जल्दी। आजकल ना पता है रीना क्या हो गया है ना, आज के टाइम में ना इंसान के अंदर धैर्य बहुत कम हो गया है। पेशेंस नाम सुना है ना, धैर्य।
0: बिल्कुल,
1: आजकल लोग सोचते हैं जैसे 5 मिनट में मैगी बन जाती है ना, वैसे ही कि सारी चीजें 5 में हो जाएंगी, बट ऐसा होता नहीं है। शाम को ट्रैफिक में सबसे ज्यादा टेम्पेशन कब होता है, जब रेड लाइट लगी हो और आपको लगता हो कि बस अभी निकल जाऊं तो 2 मिनट बच जाएंगे, लेकिन वही 2 मिनट कभी भी बहुत भारी पड़ सकते हैं। घर जाने की जल्दी में ट्रैफिक रूल

0: को भूलना बिल्कुल समझदारी नहीं है। रेड लाइट है तो रुकना है, हेलमेट है तो पहनना है, सीट बेल्ट है तो लगानी है, और ड्राइविंग करते समय फोन नहीं चलाना है, क्योंकि ऑफिस में आज का काम ना भी जरूरी क्यों ना हो, घर पहुंचने के बाद कल भी काम किया जा सकता है। लेकिन आपकी सेफ्टी का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, तो आज शाम घर निकलते समय एक प्रॉमिस करें, जल्दी होगी लेकिन रूल्स नहीं भूलेंगे।
1: ये तो बात तुमने बिल्कुल सही कही है, जल्दी हो लेकिन जल्दबाजी में जो ट्रैफिक रूल है उसको नहीं भूलना चाहिए। बस पहुंचने वाली हूँ, है ना, यही बोलते हैं। घर से फोन आया, कहाँ पहुंची, और जब जवाब बस 10 मिनट में, अब असली कहानी शुरू, 10 मिनट बाद फिर फोन, अब कहाँ हो, जवाब बस ट्रैफिक में हूँ, और 20 मिनट बाद फिर से वही ट्रैफिक। शाम के समय हम सबने कभी ना कभी ये 10 मिनट वाला झूठ बोला ही होगा, और शायद अभी भी आपने बोला होगा। मतलब झूठ नहीं, उम्मीद होती है कि सच में 10 मिनट में पहुंच जाएंगे, लेकिन ट्रैफिक वाली प्लानिंग से नहीं बचता। इसीलिए घर वालों को एग्जैक्ट टाइम बताने की बजाय थोड़ा सस्पेंस, मतलब देखिए, आप कभी भी घर से फोन आए तो ये मत बोलिए कि मैं 10 मिनट में पहुंच जाऊंगा, उनको बोलिए कि आधे घंटे में पहुंच जाऊंगा, तो इससे क्या होगा कि आपके पास कॉल भी आधे घंटे बाद ही आएगा। अगर आपने 5 मिनट बोला तो घड़ी में घर वाले ना टाइम देखते रहते हैं, भैया जैसे ही 5 मिनट 10 मिनट हुआ कॉल आ जाता है आपके पास, और अगर देर हो गई तो एक कॉल करके बता दे, आखिर घर पर कोई आपका इंतजार कर रहा होता है। और इसी इंतजार के साथ मैं लेती हूँ यहाँ पर म्यूजिकल ब्रेक, और फिर मिलेंगे आप सभी के साथ श्रोताओं, यही मिलने वाले, कहीं नहीं जाइएगा, ठीक है जी।

0: अरे वारीना, ये गाना कितना खूबसूरत है ना। हमारी शाम कितनी खूबसूरत हो गई और हमारे सुनने वाले श्रोताओं को भी ये गाना बहुत पसंद आया होगा, हम यही उम्मीद करते हैं। और दोस्तों, रास्ते में ना याद आया काम। ऑफिस से जब आधा रास्ता हम निकल चुके होते हैं ना, फिर अचानक याद आता है, अरे वो जरूरी फाइल तो मैं ऑफिस में ही भूल गई या भूल गया। जब मन में दो आवाजें कहती हैं वापस जाऊं, दूसरी आवाज कहती है कल देख लेंगे, काम जरूरी है तो वापस जाना पड़ेगा, और अगर जरूरी नहीं है तो पूरे रास्ते उसी के बारे में सोचते हुए निकल जाएगा। देखिए, जब आप ऑफिस से घर आते हैं ना, तो उससे पहले ना, घर आने से पहले ऑफिस में आप 5 मिनट ये चीजों चेक कर लीजिए, जो आपकी इम्पोर्टेंस फाइल हैं, जो मोस्ट फाइल्स हैं, कुछ काम है, कुछ चार्जेस वगैरह हैं, तो इनको पहले चेक कर लीजिएगा। एंड आपको शाम का ना, आपका जो शाम का आधा घंटे का स्ट्रेस है ना, वो बच जाएगा। ओके, तो इन चीजों को ध्यान में रखो, बाकी अपने सफर को एंजॉय करो। और आगे क्या बोलने वाले हो रीना, तुम क्या क्यों मुस्कुरा रही हूँ इतना? हाँ,
1: अरे मैं ये इसलिए मुस्कुरा रही हूँ कि घर पहुंचकर भी आराम नहीं मिलता है ना।
0: घर पहुंचकर आराम तो मिलता है, फोन चला। अच्छा चलो, अभी ये आराम की बात आपने की है तो मैं आपसे जानना चाहूंगी, जब आप ऑफिस से घर जाती हो तो सबसे पहले क्या करती हो आप ऑफिस से घर जाने के बाद?
1: देखिए, सबसे पहले मैं ऑफिस से घर जाती हूँ तो मेरा पहला काम यही होता है पूजा, क्योंकि यहाँ तो मेरी मम्मी पापा नहीं, मैं अकेली रहती हूँ ना, तो भाई पूजा टाइम पर होनी चाहिए। 7 बजे, 7 बजते ही घर में दीपक जलने स्टार्ट हो जाता है, 6 बजते ही।
0: जी जी जी,
1: लेकिन मैं तो लेट जाती हूँ, 7:30 भी हो जाते हैं, तो मेरे दिमाग में पहले पूजा ही क्या ख्याल आता है, उसके बाद फिर मैं किचन की तरफ बहुत सोच समझ।
0: पूजा का ख्याल आता है और दीपक का ख्याल नहीं आता है?
1: अरे पूजा दीपक एक ही साथ जल जाता है ना।
0: पूजा तो अलग होती है और दीपक अलग होता है।
1: नहीं, हम भगवान जी का नाम लेते हैं।
0: हाँ देखिए, पूजा करना और उसके बाद दीप जलाना, ये बहुत ही हाँ घर में एक पॉजिटिव वाइब आती है और अच्छा भी लगता है। अरे जब हम पूरा दिन ऑफिस से थक जाते हैं, जब हम भगवान के सामने मस्तक अपना झुकाते हैं और दिया जलाते हैं, तो मन को सुकून मिलता है।
1: हाँ, उनके सामने मतलब दिन भर की जो थकान होती है ना, मैं कभी कभी मतलब मैं परेशान भी होती हूँ ना, तो तुलसी के पौधे के पास जाकर बैठती
0: हूँ। अरे वाह क्या बात,
1: वहाँ जाकर मैं गुनगुनाती हूँ, कुछ मैं बातें कहती हूँ,
0: वहाँ पॉजिटिव वाइब फील होती है आपको?
1: मतलब मेरे अंदर जो भड़ास होती है ना, मैं सारी कहती हूँ वहाँ पे, आज मेरे साथ ये हुआ वो हुआ, मैं परेशान। अच्छा, मतलब मैं उनसे बात करने की कोशिश करती हूँ।
0: हाँ नहीं, कोशिश अच्छी बात है, अपनी ना दिल में ना कोई भी बात रखनी नहीं चाहिए। मुझे लगता है कि जो भी चीजें हैं वो उसको एक्सप्लेन करने से ना हमारा मन हल्का हो जाता है।
1: और मैं कहीं भी, चाहे घर रहूं चाहे बाहर रहूं, तुलसी का पौधा जरूर मैं अपने पास अपने घर में लगाती हूं, और परेशान होती हूं तो मेरा वही अड्डा होता है।
0: नहीं बहुत अच्छी बात है, अब नेक्स्ट टाइम कभी तुम परेशान, मुझे लगा ना कि लड़की दिखाई नहीं दे रही है, तो मैं अब मेरे को आइडिया मिल गया, ये पक्का तुलसी जी की पौधे के पास जाकर बैठी होगी।
1: हाँ, अब तुम्हें आइडिया मिल गया ना।
0: हाँ,
1: तो देखिए, ऑफिस से निकलते समय हम सोचते हैं आज घर जाकर आराम करेंगे, आराम करूंगी, लेकिन घर का दरवाजा खुलते ही दूसरा शेड्यूल सामने आ जाता है। सब्जी काटनी है, खाना बनाना है, बच्चों को देखना है, घर का कोई काम है, या अगले दिन की तैयारी करनी है। जो हमारी लेडीज होती है ना, प्यारी विमेन होती है, उनके दिमाग में ये खुराफात जरूर चलता है जो ऑफिस से काम करके आती है। और साथ ही साथ खासकर वर्किंग वुमेन के लिए ऑफिस खत्म होने के बाद, मतलब हमेशा काम खत्म होना नहीं होता, इसीलिए अगर आप ऑफिस और घर दोनों संभाल रही हैं, तो खुद को भी थोड़ा टाइम देना बहुत जरूरी है। हर दिन परफेक्ट होना जरूरी नहीं है, कभी कभी कभी खाना सिंपल हो सकता है, कभी घर थोड़ा मिस हो सकता है। आखिर इंसान है, मशीन तो नहीं है ना कि वो जाते ही सब कुछ रेडी कर देगा। क्यों सही कहा ना मैंने खुशी?
0: हाँ रीना, देखो आजकल ना, चाहे बॉय हो या गर्ल्स हो, एंड सभी वर्किंग हो गए हैं आजकल, क्योंकि वर्क करते हैं, ऑफिशियल वर्क है, घर का भी मैनेजमेंट है, सारी चीजें मैनेज करते हैं, तो मुझे लगता है कि इंसान है, बॉडी है, कोई AI तो नहीं है, रोबोट तो नहीं है जो थकेगा नहीं, उसको जब चाहे काम पे लगा दो, है ना, तो उनको भी रेस्ट चाहिए होता है, तो थोड़ा रिलैक्स कीजिए, उसके बाद आपको लगता है कि काम हमारा बाकी है तो वो भी कर लीजिएगा, लेकिन पहले आप रेस्ट करो, थोड़ा खुद को बॉडी को रेस्ट देना, रिलैक्स करना बहुत जरूरी है, उसके बाद आप काम शुरू कर लो, आपकी जो शाम है वो और ज्यादा अच्छी हो जाएगी। बच्चों का इंतजार, ओहो हो, मत पूछो भैया, बच्चे ना बार बार कॉल करते रहते हैं, हेलो दीदी आप कब आ रहे हो, कब मेरे लिए चॉकलेट लेकर आ रहे हो? मैं बोलती हूँ कि बस मैं आ रही हूँ, 5 मिनट लगेंगे, वो फिर कॉल आता है 5 मिनट के बाद, दीदी आपके 5 मिनट अभी कंप्लीट नहीं हुए। हमारे जो नेबर्स है ना, तो वहाँ पे बड़े प्यारे प्यारे चाइल्ड हैं, बच्चे हैं चाइल्ड्स, और वो मेरे को ना एवरी इवनिंग उनको इंतजार होता है कि खुशी दीदी आएंगी तो कुछ ना कुछ मेरे लिए लेकर आएंगी। और जब मैं शाम को जाती हूँ तो फिर उन बच्चों से मैं बातचीत करती हूँ, उनके लिए मैं कुछ लेकर जाती हूँ तो बड़ा अच्छा लगता है वो। मुझे भी खुशी होती है और बच्चों को भी खुशी होती है। कई वर्किंग पेरेंट्स के लिए शाम को घर जाने की जल्दी सिर्फ आराम के लिए नहीं होती है, बच्चे इंतजार कर रहे होते हैं। सुबह जाते वक्त कह दिया आज जल्दी आऊंगा, शाम को साथ बैठेंगे, लेकिन ऑफिस में काम बढ़ जाते हैं और निकलते निकलते देर हो गई। फिर रास्ते भर मन में वही बात चलती रहती है, ऐसे में अगर देर हो रही है तो बच्चों को बता देना अच्छा है। और जब घर पहुँचे तो फोन लाइट में रखकर कुछ समय सिर्फ उनके साथ बिताइए, क्योंकि बच्चे शायद ये याद ना रखें कि आपने कितने घंटे काम किया, लेकिन ये जरूर याद रखेंगे कि आपने उनको उनके साथ कितना समय बिताया, उनको आपसे बात करके कितना अच्छा फील हुआ। तो मैं पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि माना आप बहुत ज्यादा थक गए हैं, बहुत ज्यादा काम होता है ऑफिस का, तो जब आप घर जाते हैं तो ऑफिस के बारे में भूल जाइए, सिर्फ अपने बच्चों पर अपनी फैमिली पर फोकस कीजिए।
1: ये तो बिल्कुल सही कहा आपने। और देखिए ऑफिस से निकलते समय बहुत दूर से ऑफिस से आते हैं तो कभी कभी ऐसा हो जाता है ना कि जल्दबाजी के चक्कर में फोन का जो बैटरी है वो नहीं देखते हैं, 5% होता है या फिर 2% होता है, ऐसे में अचानक फोन स्विच ऑफ भी हो जाता है और फिर घर से कॉल आने लग जाते हैं, और जब फोन स्विच ऑफ आता है ना
0: फिर
1: तो घर वाले बहुत टेंशन लेते हैं, अरे कुछ हो तो नहीं गया
0: मेरी मम्मा रह गया। मैं आपको बताती हूँ रीना, इसी बात को मेरे को याद आया। एक्चुअली जब कहीं भी मेरे बड़े ब्रदर मैं खुद ट्रैवल करती हूँ तो मेरी मम्मा ना फोन करती रहती है, मेरा फोन डाउन हो जाता है, मतलब फोन करते करते ब्रदर को, लेकिन वो उनको ना सुकून नहीं मिलता जब तक बच्चे बोलना देना कि हाँ हम पहुँचने वाले हैं मम्मी, तब तक वो कॉल करती रहती है। और कभी अगर जैसे फोन डाउन हो गया है तो वो बेचैन रहती है, बार बार दरवाजे से बाहर आती है, बार बार अंदर जाती है, मतलब देखती रहती है कि बच्चे कब आएंगे,
1: और भगवान से प्रार्थना करती है कि मेरे बच्चे घर पर
0: सही समय पर सलामत घर पहुँच
1: जाए।
0: इंडियन पेरेंट्स ये कल्चर है कि वो ना बस चाहते हैं प्रार्थना करने लगते हैं तुरंत अपने बच्चों के लिए,
1: जैसे बच्चे लेट हुए उनके फोन स्विच ऑफ आया, दिमाग में भी पता नहीं और ख्याल आने लगते
0: हैं, ओवरथिंकिंग बहुत ज्यादा हो जाती है, बहुत ज्यादा सोचने लगते हैं। पर रीना देखो हम कितने भी बड़े हो जाएं लेकिन हम पेरेंट्स के लिए ना हम हमेशा बच्चे ही रहते हैं, वो हमें भी अभी भी ऐसे ही गाइड करते हैं जैसे अभी हम 2 इयर्स के हैं, संभल के जाना ठीक है, गाड़ी ठीक से चलाना केयरफुली होकर, और हाँ किसी से अनजान व्यक्ति से ज्यादा बात मत करना।
1: हाँ ये तो आता ही है। और देखिए रास्ते में सामान लेने निकलते हैं, जब हम ट्रैफिक से आते हैं तो घर जाते समय याद आया कि एक सामान लेना है, सोचा रास्ते में दुकान से ले लूंगी, दुकान पहुंचे सामान लिया पैसे दिए और घर आए, घर पहुंचकर पता चला जिस चीज के लिए दुकान गए थे वही नहीं लाए।
0: अरे यार लड़की कैसी कैसी बातें कर रही है,
1: यही होता है खासकर
0: शाम। मेरे साथ भी ऐसा ही होता है, पता है मैं क्या करती हूँ, मैं लिस्ट तो बनाकर नहीं लेकर जाती हूँ रीना, और जब मैं मार्केट में से सोच के जाती हूँ कि ये मेरे को सामान लेकर आना है मोस्ट, और मैं शॉपिंग करने जाती हूँ जो सामान की मुझे नीड नहीं होती है मैं वो ले लेती हूँ, और जिसकी ज्यादा आवश्यकता होती है वो मैं भूल जाती हूँ, फिर घर आकर मुझे याद आता है अरे यार ये तो मुझे सामान लाना था लेकिन भूल गई, फिर दोबारा जाना पड़े। तुम्हारे साथ हुआ है ऐसा?
1: हाँ मेरे साथ होता है, जो मतलब मेरे साथ बहुत कम होता है, लेकिन जो मेरा भाई है ना लगता है कि जरूरतमंद चीजें वही भूल जाता है। हाँ, और फिर बोलेगा मम्मी को तुमने नहीं बताया था मुझे।
0: अच्छा?
1: मुझे बोलेगा अरे तूने बोला ही नहीं, मैं तो लाऊंगा कहाँ से, तुम बोलती तो पक्का ले आता ना, अरे इतना सामान लेकर आया
0: मतलब,
1: वो भी ले आता।
0: वो कहते हैं ना कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे।
1: तो देखिए अगर आपको लगता है कि मैं भूलता हूँ या भूलती हूँ तो अपना लिस्ट जरूर बना कर रखे। और घर पहुँचते पहुँचते भूख भैया बहुत जोरों से लग जाती है, ऑफिस से निकलते वक्त सिर्फ घर पहुँचने की जल्दी नहीं होती, कभी कभी भूख भी बहुत लगी होती है। दोपहर के लंच के बाद पूरा काम और शाम होते ही पेट बोलता है अब कुछ खिलाओ, रास्ते में समोसे चाट गोलगप्पे या चाय की खुशबू मिल जाए तो घर का खाना कुछ देर के लिए भूल जाते हैं, खासकर शाम का ट्रैफिक और खाने की खुशबू, ये अनएक्सपेक्टेड बड़ा ही डेंजरस वाला हो जाता है। लेकिन रोज बाहर का खाना खाना भी सही नहीं है, कभी चाय और हल्का स्नैक, कभी घर का खाना बैलेंस जरूरी है। तो बताइए ऑफिस से घर जाते वक्त रास्ते में सबसे ज्यादा किस चीज को देखकर आपका मन ललचाता है?
0: तो दोस्तों आज की शाम हमने बात छोटी सी जल्दी की जो हर ऑफिस गोइंग इंसान महसूस करता है, शाम होते ही घर जाने का मन, डेस्क पर छूटता चार्जर, ऑफिस में पड़ा लंच बॉक्स, रास्ते में याद आने वाली शॉपिंग लिस्ट, ट्रैफिक में फंसा घर वालों का फोन, और फिर घर पहुंचकर भी कामों की एक नई लिस्ट, यही तो है हमारी रोज की जिंदगी है ना। लेकिन इस पूरी भागदौड़ में ना एक चीज कभी मत भूलिएगा, अपनों के पास वापस जाना। इसलिए सुरक्षित वापस जाना है। आज जब आप ऑफिस से घर निकलें, एक बार पीछे मुड़कर अपनी टेबल चेक कर लेना, सामान भी साथ लें, जो आपका सामान है वो भी साथ लेकर आए, और ट्रैफिक रूल्स भी याद रखिएगा। और अब मुझे दीजिएगा घर जाने की अनुमति, मैं भी चलती हूँ। एंड टेक केयर एवरीवन, सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, केयरफुली गाड़ी चलाइएगा।

0: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशांत जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर नैनीताल में, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
1: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।